हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
5: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
6: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
5: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
6: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

सुन्दरी सबला चक्रिका स्थिता सर्वभक्त्यात्मिका परिक्तर्विभक्तिर्विजयात्मिका दिग्वासा नववासा च कर्णिका कमलोद्भवा।

मृत्युनाशिनी अन्तर्बहिस्थिता लक्ष्मीर्जरा मरणनाशिनी त्र्यंबका च महामारी सोम सूर्याग्निलोचना अदितिर्देव माता च सुमित्रा च सुयोनिका अष्ट प्रकृतिरिष्टा च विभ्रष्टा विकृतिः कृतिः

सर्वज्ञा सर्वसाक्षी च प्रसन्ना च चराचरा अणिमादि गुणोपेता परा काष्ठा परागतिम् हंसयुक्त विमानस्था हंसारूढा शशिप्रभा भावना वासना वित्तिः प्रकृतिः कमला।

च विशेषतः नाभौ वह्निशिखाकारा ललाटे चन्द्रसन्निभा भ्रूमध्ये भास्कराकारा मुण्डकण्ठः हृदि स्थिता कृत्तिकाद्युडसंस्थाना काशी कामात्मिकात्मिका विद्या विद्यात्मिका देवी पञ्चभूतात्मिकाक्षया सर्वमन्त्राक्षरा बीजा सर्वकामप्रदायिनी ब्रह्माण्डगर्मिणी देवी सप्तावरणमातृका वराजपुरुषा भद्रा कुमारी कुशलात्मिका अचला विचला देवी शिवदूती शिवात्मिका हिमविन्ध्याद्रिसंस्थाना कावेरी रश्मिसंहितः योगनिद्रा महानिद्रा वनिता राजिताश्रिया द्वासुर्पणाभिदारम्भा सर्वकामार्थदायिनी अजपानामया विद्या महालक्ष्मी सरस्वती प्रसादैकाक्षरा देवी जीवन्ती जीवमातृका आसुरी राक्षसी देवी कल्याणी कल्पनाकृतिः।

नापि विशेषतः सर्वरक्षा महामाया ऋषिदेव नमस्कृता अष्टाष्टक महारूपा प्रत्यक्षाति प्रमातृका वेदशास्त्र प्रमातीता मिथ्या प्रपंचवादिनी सत्य प्रपंचवादाख्या विशोकाशोकनाशिनी भौतिका भूत सूक्ष्माध्याह्यादिभूताधिदेवता अधिलोकाधि पंचाख्या पंचाख्या पंच संहिता उद्ग्राहिणी कला वेद्या चेतना चित्तरंजनी एक संख्या परार्धांता संख्या संख्येय रूपिणी समुद्रव्यो मध्यस्था व्योम बुद्धि समाश्रिता वीणा सरस्वती देवी वैष्णवी विष्णु संभवा वलित्रय समायुक्ता भारती भरताश्रया षड्ब्रह्मात्मिका देवी ज्ञान ब्रह्म परात्मिका कालिकेयी महारावा महोदाधिजलाश्रया।

0: देवता सर्व प्रमाण संपत्ति सर्वापद निवारिणी ब्रह्मांड बहिरंतस्था वर्ण मात्राधि देवता महामाता महाभोक्त्री मंगला च समाश्रया आर्या शिवकरा देवी प्रवरा परहेतुकी हेतुकी हेतुमाला च त्रिशिखा पंचलोचना सर्वांग समदाचारा मन्युहास्य परंपरा गीता गाथात चंद्राभा सर्वातर ज्योति रूपिणी।
1: मुरादाबाद की महिलाओं के लिए खास मौका, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है एक निशुल्क स्त्री व बांझपन रोग परामर्श शिविर, जो होने वाला है 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। अगर आप परेशान हैं बांझपन, पीरियड की समस्या या प्रेगनेंसी से जुड़ी दिक्कतों से, तो मिलिए अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता से, और साथ ही MRI CT स्कैन और अन्य जाँचों पर 50% की छूट, और साथ ही अपनी पुरानी रिपोर्ट्स को साथ लेकर आए। कॉल करें 9927033666।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद की महिलाओं के लिए खास मौका, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है एक निशुल्क स्त्री व बांझपन रोग परामर्श शिविर, जो होने वाला है 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। अगर आप परेशान हैं बांझपन, पीरियड की समस्या या प्रेगनेंसी से जुड़ी दिक्कतों से, तो मिलिए अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर ऋषिका गुप्ता से, और साथ ही MRI, CT स्कैन और अन्य जाँचों पर 50% की छूट, और साथ ही अपनी पुरानी रिपोर्ट्स को साथ लेकर आएं। कॉल करें 9927033666।
2: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
3: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
2: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है, पहली रैपिड रेल यहीं चली है, पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है,
3: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: सरकार में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि सीपीआईएम के राज्य सचिव पी शुनगमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्षेत्र वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह पांचवा कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सोनाना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्यभर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत

0: वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति युवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किये। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, 1 गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समेट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्ना रालोक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, नया भारत और बदलती सियासी समझ। संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 प्वाइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद। जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, अब क्यूआर कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला। मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: अगर ट्वेल्थ के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान, तो सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
4: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।
5: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
7: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
6: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
8: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
9: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
8: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
10: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एफएम मुरादाबाद आप सुन रहे हैं और इस स्टेशन पर आप सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सही लाभ कहीं। एक बार फिर से लौट कर आ गए हम आपके दोस्त। और दोस्तों आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि कैसे एक फॉरवर्ड पूरे घर का मन डगमगा देता है, आज हम उसी डर के बीच दो सबसे बड़ी अफवाहों पर सीधा बात करेंगे। क्या HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ सकते हैं? क्या इससे आगे चलकर बांझपन हो सकता है? ऐसे सवाल ने बहुत सी माओं को रोका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डर सच है या यह वही बात है जो बार बार दोहराई गई है इसीलिए सच जैसी लगने लगी है। हमारे साथ हैं टीकन भाभी और पिछली बार की हमारी श्रोता सुनीता भी लौट आई है। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने पिछले एपिसोड के बाद क्या किया है। सुनीता जी आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, और आप हमारे श्रोताओं को बताएंगी कि आपसे जब हमने बात की थी उसके बाद आपने क्या किया।
1: शुक्रिया मुझे अपने सेहत सही लाभ कई के लाइव एपिसोड में जोड़ने के लिए। सबसे पहले मैं कहूंगी कि यह कार्यक्रम एक बार ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमें सही राह दिखाता है, चेतावनी भी देता है और सही इलाज पर फोकस करता है। अब आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगी कि ने अगले दिन ही स्वास्थ्य केंद्र जाकर बात की। डॉक्टर ने भी वही कहा जो कि टीकन भाभी कह रही थी। पर आपसे सच बोलूं, मन में एक गांठ अभी भी है क्योंकि हमारी बेटी की उम्र ही ऐसी है, शरीर बदल रहा है, पीरियड्स नए नए शुरू हो रहे हैं। ऐसे समय में कोई भी दखल डराती है।
2: और यही वजह है कि इस एपिसोड में आपका जुड़ना जरूरी है। माँ तो मैं भी हूँ लेकिन मेरी बच्ची छोटी है। उन सब माओ को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है जिनकी बच्चियाँ अभी आपकी बेटी की उम्र की हैं, और आपकी इस बात को सही तरह से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। और आप इस बात को सही तरह से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। लोग सोच लेते हैं कि लड़की जवान हो रही है, अब कुछ हुआ तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर हर चीज को उसी डर से जोड़ देते हैं।
0: चलिए सबसे पहले वही सवाल रखते हैं जो हर दूसरे घर में पूछा जा रहा है, क्या HPV वैक्सीन मासिक चक्र को बिगाड़ देती है?
2: सीधा जवाब नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं पीरियड्स के दौरान भी इसे लेना सुरक्षित बताया गया है, यानी पीरियड्स रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, अनियमित हो जाएंगे। ऐसी बातें वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है।
1: पर लोग उदाहरण देते हैं, कोई कहेगा मेरी भाभी की लड़की को टीका लगा है फिर 2 महीने गड़बड़ रही, तब क्या करें?
2: हर शारीरिक बदलाव को एक घटना से जोड़ देना आसान है। किशोरावस्था में शरीर खुद भी बदलता है। खान पान, तनाव, वजन, पढ़ाई, नींद, कई चीजें पीरियड्स को प्रभावित कर सकती हैं। पर हर उतार चढ़ाव को वैक्सीन पर डाल देना गलत है। विज्ञान यही देखता है कि बड़ी संख्या में लंबे समय तक क्या कोई स्थायी संबंध पाया गया, और जो आधिकारिक सामग्री उपलब्ध है वह साफ कहते हैं कि पीरियड्स पर असर नहीं है।
0: यह फर्क समझना जरूरी है, किसी एक घटना का सुना जाना और वैज्ञानिक रूप से साबित होना एक बात नहीं। अब दूसरा सवाल, बांझपन शायद सबसे खतरनाक अफवाह है?
1: हाँ यही बात घरों में सबसे गहरी चोट करती है। लोग लड़की की सेहत को नहीं पहले उसका भविष्य, शादी, बच्चा होने की क्षमता इस सब से जोड़कर देखते हैं। कोई कह दे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है तो घर वाले एकदम पीछे हट जाते हैं।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि बांझपन वाली अफवाह तेजी से फैलती है। पर उपलब्ध मिथक तथ्य सामग्री साफ कहती है कि HPV वैक्सीन फर्टिलिटी पर असर नहीं डालती। उल्टा आधिकारिक प्रचार में ऐसे अनुभव भी साझा किए गए हैं कि जहां महिलाओं ने सालों पहले वैक्सीन ली है वे आज भी माँ हैं। एक गवाही तो साफ कहती है 2010 में वैक्सीन ली और आज गर्व से माँ है। यह अफवाह को सीधी चुनौती देती है।
1: यह सुनकर थोड़ी राहत मिली क्योंकि हम माओं को यही लगता है कि कहीं आज की जल्दी कल की मुसीबत ना बन जाए।
2: समझ में आता है, लेकिन सोचो अगर किसी चीज का उपयोग दुनिया भर में इतने साल से हो रहा है और लगातार सुरक्षा निगरानी हो रही है, तब भी हम बिना प्रमाण के डर को सच मान लें तो नुकसान किसका होगा? उसी बच्ची का जिसे हम बचाना चाहते हैं।
1: टीकन भाभी तुमने कहा था कि वैक्सीन 2006 से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, इतने साल हो गए तो फिर इतना शोर अभी क्यों?
2: क्योंकि सूचना का जमाना है पर समझ का नहीं। पैफवा एक गली तक रहती थी, अब एक वीडियो हजारों घरों तक पहुंच जाए। ऊपर से स्वास्थ्य, शरीर, प्रजनन, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर लोग खुलकर बातें नहीं करते। जहां चुप्पी ज्यादा होती है वहां अफवाह और तेज लगती है।
1: घर में यही होता है, पीडियर्स पर खुलकर कौन बात करता है, लड़की भी झिझकती है। माँ भी ऐसे में बाहर से कोई डरने वाली बात आ जाए तो वह मन में बैठ जाती है।
2: इसलिए इस विषय पर साफ, सहज और सम्मानजनक भाषा जरूरी है। देखो, पीरियड्स कोई बड़ी चीज नहीं, शरीर की प्रक्रिया है। फर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं, पर स्वास्थ्य का हिस्सा है। जब हम इन बातों को छुपाते हैं तब झूठ इन्हीं अंधेरों में पनपता है।
0: यह बात तो सिर्फ चिकित्सा की नहीं, सामाजिक सोच की भी है। खासकर दक्षिण एशिया समाजों में लड़की के शरीर पर नियंत्रण, शर्म और अफवाह का जाल बहुत गहरा होता है। इसीलिए सही जानकारी को सिर्फ सूचना नहीं, सामाजिक हस्तक्षेप की तरह देखना चाहिए।
1: एक और डर बताऊं, कुछ लोग कहते हैं इतनी छोटी लड़की को ऐसा टीका क्यों?
2: पर आधिकारिक जन संदेश यही कहते हैं कि कम उम्र में सुरक्षा बेहतर होती है, यह बाद में देखेंगे वाली चीज नहीं है। 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना इसी सोच का हिस्सा है कि सुरक्षा समय पर मिले, रोकथाम देर से नहीं पहले की जाती।
1: और अगर कोई कहे कि हमारी बेटी तो बिल्कुल

0: हमें संतुलित दृष्टि रखनी होगी, हल्की अस्थायी प्रक्रिया बनाम लंबे समय की सुरक्षा।
1: अब मुझे लग रहा है कि हमें कितनी सारी बातों को बहस, किसी ने कहा के आधार पर सच मान लिया।
0: यही तो होता है, और खासकर लड़की के शरीर से जुड़ी बातें। हमारे समाज में लड़की के भविष्य को इतना जोखिम का मैदान मान लिया गया है कि कोई भी बातें सीधे उस पर असर डालती हैं। पर हमें ये पूछना चाहिए, जो लोग डर फैला रहे हैं, क्या उनके पास प्रमाण है? क्या वे डॉक्टर हैं? क्या वे आधिकारिक स्रोत बता रहे हैं? क्या उनका दावा बड़े अध्ययन से समर्थित है? अगर नहीं, तो उनके शब्द क्यों हमारे घर का फैसला करें?
2: चलिए अब एक छोटा सा मिथक बेनाम तथ्य खंड करते हैं। मिथक: HPV वैक्सीन से पीरियड बिगड़ते हैं। तथ्य: उपलब्ध आधारिक सामग्री कहती है कि इसका मासिक धर्म पर असर नहीं होता। पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। मिथक: HPV वैक्सीन से बांझपन होता है। तथ्य: आधारिक जागरूकता सामग्री इसे अफवाह बताती है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। गवाही में ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले वैक्सीन ली और आज भी माँ हैं। मिथक: अभी छोटी है, बाद में देखेंगे। तथ्य: समय पर सुरक्षा का ही महत्व है। 14 साल की लड़की के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्धता इसी सोच पर आधारित है। मिथक: मुफ्त है तो भरोसे के लायक नहीं। तथ्य: मुफ्त होना इसकी कमतर होना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सभी के लिए उपलब्ध होना है।
1: जब आप ऐसे एक एक करके बताते है ना, तो बात बैठती है, नहीं तो घर में सब उथल पुथल हो जाता है।
0: इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मुद्दों को टुकड़ों में समझो, एक झूठ को एक सच से काटो, तभी मन साफ होगा।
1: अच्छा, अगर मेरी बेटी खुद पूछे, अम्मा यह टीका मुझे क्यों लेना चाहिए, तो मैं क्या कहूँ?
0: ना, क्योंकि कुछ बीमारियों से बचाव पहले ही किया जा सकता है, पर टीका तुम्हें भविष्य में एक गंभीर बीमारी के जोखिम से बचाने का तरीका है। और अगर वह पूछे क्या इससे मेरे पीरियड्स पर असर होगा, तो कहो नहीं, डॉक्टर और सरकारी जानकारी यही कहती है कि ऐसा नहीं होता। अगर वह पूछे क्या मैं इससे आगे चलकर माँ भी नहीं बन पाऊंगी, तो कहो यह अफवाह झूठी है।
2: यह भी ध्यान रहे कि बच्चियों से बात करते समय भाषा डराने वाली नहीं, भरोसा देने वाली हो। उन्हें यह महसूस हो कि उनके शरीर के बारे में फैसला उनसे छुपाकर नहीं, समझाकर लिया जा रहा है।
1: हमारे यहाँ तो कई बार बच्चे पूछा भी जाता है, बस बड़े लोग आपस में तय कर लेते हैं
0: और फिर बच्ची डर जाती है। इसलिए संवाद जरूरी है। बच्ची को समझाओ कि यह सुरक्षा का कदम है, उसे अधिकार है पूछने का कि यह किस लिए है। यह भी सेहत शिक्षा का हिस्सा है।
2: और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, स्वास्थ्य लोकतंत्र होना चाहिए, विशेषकर स्वास्थ्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के मामले में। जानकारी ऊपर से थोप दी जाए और सवाल की जगह ना हो तो भरोसा नहीं बनता।
1: टीकन, कल रात मैंने अपनी बेटी से खुलकर बात की। पहले तो वह हंस रही थी, कहती है अम्मा आप तो हर बात पर डर जाती हो। फिर मैंने उसे कहा कि डरती हूँ क्योंकि दुनिया आसान नहीं है, लेकिन फिर मैंने यह भी कहा कि अब मैं सही जानकारी लेकर चलूंगी। वह बोली ठीक है अम्मा, हम साथ चलेंगे।
0: देखा, जब माँ खुलकर बात करती है तो बच्ची भी मजबूत होती है, डर आधा हो जाता।
1: और मैं यह भी सोच रही हूँ कि मेरी ननद की बेटी के घर भी यही बात लेकर जानी चाहिए, वहाँ तो पीरियड्स का नाम लेते ही लोग भोहे चढ़ा लेते हैं।
0: तो यही बदलाव है, शर्म की जगह समझ। स्वास्थ्य की बातें जितनी खुलकर होंगी, अफवाह उतनी कम चलेगी।
2: अब अंत से पहले एक और उपयोगी बात, अगर परिवार में किसी महिला की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो नियमित सर्वाइकल जांच के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। आधारिक जन संदेशों में यह भी कहा गया है कि नियमित स्क्रीनिंग समय पर पहचाने और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी एक तरफा किशोरियों के लिए वैक्सीन, दूसरी तरफा वैश्विक महिलाओं के लिए जांच, दोनों साथ चलने चाहिए।
1: यह बात मेरे मन में गहरी बैठ गई। हम अपनी बेटी के लिए टीका सोच रहे हैं, पर अपनी जांच के बारे में कभी नहीं सोचा।
0: यही तो, महिलाएं अक्सर सबकी चिंता करती हैं, अपनी नहीं। अब इस कहानी को उलटना है, अपनी देह की जिम्मेदारी लेना शर्म नहीं समझदारी है। और मेरी तरफ से जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है, उसी पर सबसे साफ बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड्स, फर्टिलिटी, ये सब शर्म की नहीं स्वास्थ्य की बातें हैं।
1: और मेरी तरफ से अब मैं अगर किसी को पीरियड्स बिगड़े या बांझपन आ जाए कहते सुनूंगी, तो डरूंगी नहीं, पूछूंगी तुम्हारे पास प्रमाण क्या है।
2: यही है सही दिशा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुफ्त उपलब्धता सरकारी केंद्र।

0: यूविन और बड़ी महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की अहमियत, यानी सिर्फ टीका नहीं पूरी सुरक्षा श्रृंखला। तब तक याद रखिए, अफवाहें तेज होती हैं पर सच टिकाऊ होता है। और श्रोताओं, यही है एक सामाजिक परत और समझनी चाहिए। कई बार लड़कियों के स्वास्थ्य से जुड़े फैसलों में लड़की की आवाज़ सबसे कम होती है, लेकिन डर सबसे ज्यादा उसी पर थोपा जाता है। उसे कहा जाता है, ये मत पूछो, ये बात बाहर मत करना, ये शरीर की बात है, चुप रहो। ऐसी चुप्पी में सही स्वास्थ्य पनप ही नहीं सकती।
1: बिल्कुल। और जब चुप्पी होती है तब पड़ोस, रिश्तेदार, मोबाइल वीडियो यही गुरु बन जाते हैं। जबकि गुरु डॉक्टर होना चाहिए, आशा होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए।
2: अब मैं समझ रही हूँ कि सवाल पूछना भी सेहत का हिस्सा है। पहले लगता था ज्यादा पूछना मतलब झगड़ालू होना, अब लग रहा है ना पूछना ही बड़ी गलती है।
1: और खासकर बेटियों के मामले में हम उन्हें पढ़ाई के लिए कहते हैं, समझदार बनने को कहते हैं, पर शरीर और स्वास्थ्य पर सवाल पूछने का हक नहीं देते। यह दोहरा व्यवहार है। अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटियां मजबूत हों तो उन्हें जानकारी भी देनी होगी।
0: यह बिंदु नीति और समाज दोनों के स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सिर्फ उपलब्धता पर नहीं, सामाजिक स्वीकृति और भरोसे पर भी निर्भर करती है। और भरोसा तभी बनता है जब संवाद संपूर्ण हो।
2: एक बात और मैंने देखा है, जब भी महिलाओं की बीमारी की बात होती है लोग उसे धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई पूछने वाली चीज हो। कैंसर शब्द आते ही लोग नजरें फेर लेते हैं।
1: हाँ, और यही कारण है कि देर होती है। डर, शर्म और चुप्पी बीमारी को बढ़ाते हैं, इसलिए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि यह रोकी जा सकती है और महिलाओं की जान बचाई जा सकती है।
0: और यह सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, परिवार और समुदाय का भी मामला है। जब एक महिला बीमार होती है तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। कमाई, बच्चे की देखभाल, मानसिक बोझ, इलाज का खर्च, सर, इसीलिए रोकथाम को महिलाओं का निजी मुद्दा समझना गलत है।
2: सही कहा, अगर माँ बीमार पड़े तो पूरा घर हिल जाता है, फिर भी हम माँ की सेहत को आखिर में रखते हैं।
1: इसलिए मैं कहती हूँ कि बेटी की सुरक्षा, माँ की जांच और घर की समझ तीनों साथ चले, तभी असली लाभ है, तभी सेहत सही लाभ कई सच में घर तक पहुँचे।
0: अब एक छोटा सा अभ्यास, मान लीजिए आपसे कहें, मैंने सुना है HPV टीका लगाने के बाद लड़की माँ नहीं बन सकी, आपका क्या जवाब होगा? पहला, एक घटना की कहानी विज्ञान नहीं होती। दूसरा, आधारिक सामग्री बांझपन के दावे को मिथक बताती है। तीसरा, ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने साल में पहली बार टीका लिया है और आज माँ हैं। चौथा, स्वास्थ्य निर्णय डॉक्टर से पूछकर ही लें। यह चार स्तरीय जवाब हर श्रोता अपने पास रख सकता है। आज की मुख्य बातें, HPV वैक्सीन से पीरियड प्रभावित नहीं होते। दो, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। तीन, यह बांझपन का कारण नहीं बनती। चार, यह दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। पाँच, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपलब्ध है, खासकर 14 साल की लड़कियों के लिए। और छह, डर को दबाइए मत, पर उसका जवाब फॉरवर्ड से मत ढूंढिए। सात, बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए सिर्फ आदेश नहीं।
2: अब लग रहा है कि मैं भी ठीक से जवाब दे पाऊंगी, पहले सब घबरा जाती थी।
1: और यही आत्मविश्वास चाहिए। जानकारी का मतलब सिर्फ खुद समझना नहीं, जरूरत पड़े तो दूसरों को समझाना भी है। और हम सब मिलकर आज ही शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
2: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएं और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
2: संतुलित आहार और व्यायाम कर अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ कई।
0: तो श्रोताओं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। फिलहाल इस प्रोग्राम से अब लेता हूँ मैं जाने की इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और मोड़ पर एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सेहत सही तो लाभ कई। नमस्कार श्रोताओं।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
3: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
5: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
6: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
5: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
6: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।

0: गारे गारे
1: गारा बड़ा जी
0: गारे गारे
1: ये सूर बदल
0: ओ गारे गारे
1: ये हम को बटका
0: गारे गारे
1: ये सूर की तरह जी ये सूर ये इन्ना आया है तो

0: चतुरा गोला, ये क्या रहा गोला चतुरा, गोला चतुरा एक पे रहना, या गोला बोलना या चतुरा बोलना।
1: एक चतुर नार

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: साथ लेने।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ सर।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम

0: FM मुरादाबाद 89.6 आप सुन रहे हैं। मेरा नाम RJ आनंद है और आप सभी को पता है जब भी हम लोग रेडियो स्टेशन पे आते हैं आपके लिए कुछ ना कुछ काम की चीजें लेकर आते हैं और इस कंपनी को फुलफिल करने के लिए मैं अकेला नहीं हूँ, RJ राज भी मेरे साथ हैं। भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच यार अपने काम की चीज में मुझे भी जोड़ने के लिए। फिलहाल हम जुड़े हुए होते हैं, बहुत कम होता है कि जब हम जुड़े हुए नहीं होते किसी काम की चीज में,
0: लेकिन मजा तब आता है जब एक साथ दो लोग होते हैं।
1: हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजते तो दो हाथ का होना बहुत जरूरी है। तो बस आज के शो में ऐसे ही कुछ होने वाला है, दोनों हाथों को मिलाकर ताली बजने वाली है। उस ताली का रिजल्ट क्या मिलने वाला है वो आपको हौले हौले बता लेगा वो आनंद बताएगा।
0: सो देखिए क्या है ना लेडीज एंड जेंटलमैन, रेडियो सिर्फ गाने नहीं सुनाता है, एंटरटेनमेंट नहीं करता है, वो आपकी फिटनेस का भी ध्यान रखता है। और नवरात्रि के 9 दिन चल रहे हैं, इसी खास मौके पे हमने भी एक खास एनर्जेटिक और पॉजिटिविटी जिनसे मुझे मिल रही है, तो मैं चाहूंगा RJ राज जरा उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कुछ।
1: देखो ऐसा है ना कि तारीफ करने को तो मैं बहुत कर सकता हूँ, ठीक है ना
0: भाई, तू तारीफ मत करना, तारीफें थोड़ी सी अलग वे में जाएंगी, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी सिर्फ काम की बातें हो जाए।
1: मेनली मैं बस इतना बोलने वाला हूँ और इंट्रोड्यूस करने के लिए शायद इतना ही काफी है कि मुरादाबाद की क्वीन फिटनेस के मामले में, हाँ जी बिल्कुल, मतलब फिटनेस की क्वीन उन्हें बोल सकते हैं। और मुझे लगता है कि मुराद का हर लड़का या फिर हर लड़की उन्हें जानती है अगर वो फिटनेस से कनेक्टेड है, और फिटनेस से कनेक्टेड नहीं है तो आज हम कनेक्ट कराने वाले हैं। और आखिर कौन है वो फिटनेस की क्वीन, तो चलो उन्हें इंट्रोड्यूस करा।
0: तो चलिए RJ राज प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए भाई,
1: बिल्कुल।
0: और आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट है जिनके बारे में हमने एक लंबा चौड़ा चिट्ठा पढ़ा है, उनका स्वागत कर लेते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू FM मुरादाबाद, कौन है ये फिटनेस की खिलाड़ी अपूर्वा शर्मा जी, वेलकम टू FM मुरादाबाद फिटनेस कोच अपूर्वा जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए पहले तो आपको कैसा लगा स्टूडियो में आके?
2: मुझे कैसा लगा, इट इज लाइक ड्रीम कम ट्रू। मैं बहुत टाइम से ये सोचती थी कि कैसा स्टूडियो होता होगा जहाँ आप लोग बोलते हैं और सिर्फ हम आपकी आवाज सुन पाते हैं विदाउट योर एक्सप्रेशंस, और आपकी आवाज से ही हमको आपके एक्सप्रेशन जज करने होते हैं कि जब आप प्रैंक्स करते हैं तो आप खुद भी हंस रहे होंगे या नहीं, या सीरियस होंगे, या फिर जब वो आपका लाइफ होता है उसके बाद आप कितना हंसते होंगे कि आज हमने ये किया। तो वो आज मुझे लाइव देखने का मौका मिल रहा है, आई एम प्रिविलेज्ड, थैंक यू सो मच।
0: एंड टू बी ऑनेस्ट टुडे आई फील कि मैं कांटा लगा गर्ल के साथ बैठा हूं, बिकॉज आप देख नहीं पा रहे होंगे अभी आप, मतलब वो मैं आपको लाइव बता रहा हूं उनकी जो चोटी है ना आगे की बड़ी स्टाइलिश दिख रही है मुझे, वो रील्स भी जाएगा इंस्टाग्राम पे, डोंट वरी। सो भाई राज मुझे कैसे लग रहा है आज इतना सुंदर चांद स्टूडियो में आए, लाइटें फेल हो गई है।
1: देखो ऐसा है ना
0: ये ऐसी बात है, मैं राज के साथ क्यों मजा आएगा।
1: देखो मेन चीज ये है कि इन सफेद दीवारों में बैठे बैठे हम बोर हो चुके थे,
0: और आज ये रंगीन सफेद
1: करने के लिए, आज रंगीन करने के लिए कोई आ गया है
0: क्या लवली यार, ब्यूटीफुल।
2: अच्छा तो ये बहुत अच्छा तरीका था फ्लर्ट करने का, आई लाइक।
0: बहुत कम ऐसा मौका मिल पाता है हम लोगों को। एनीवेज चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैम देखिए नवरात्रि का जो है बहुत ही पावन पर्व चल रहा है, सो मुझे लगता है राज भाई कि इस खास मौके पे एक बहुत ही खूबसूरत देवी शक्ति हमारे स्टूडियो में आई, तो हम फ्लर्ट कम करेंगे अब,
2: बिल्कुल
0: अब काम की बात ज्यादा करेंगे हम।
1: सॉरी गाइस,
0: तो फिलहाल एवरीबॉडी
1: हम करेंगे कंट्रोल
0: करने, बिल्कुल। तो एवरीबॉडी अब काम की बात करते हैं, तो अपूर्वा जी सबसे पहले ये बताइए आपकी खूबसूरती का राज क्या है?
1: ओह माय गॉड,
2: मेरी खूबसूरती का राज है
0: मेकअप राज या फिर फिटनेस?
2: ऐसा कुछ नहीं है, मेरी खूबसूरती का जो राज है वो राज नहीं है,
0: राज तो यही बैठा है,
2: राज नहीं है वो है मेरी, मेरा जिम, मेरा स्केड्यूल, मेरा डिसिप्लिन, मेरा डाइट एंड माई फिटनेस।
0: ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया आपने और बहुत मजा आने वाला है एवरीबॉडी आपको भी इस कॉन्वर्सेशन में। तो अपूर्वा जी सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं हमारे FM मुरादाबाद परिवार की ओर से। प्रोग्राम का नाम है एक खास बातचीत, मतलब विशेष बात, और उस विशेष बात में आप विशेष गेस्ट हैं हमारी आज की, RJ राज भी हमारे साथ कंपनी दे रहे हैं। तो मैं सबसे पहला सवाल ये पूछूंगा कि आपको फिटनेस का क्रेज कहाँ से आया? मतलब
2: एक्चुअली मेरे को जो इंस्पिरेशन मिली है वो मेरी मदर से मिली है।
0: ओके
1: ओके।
2: और मतलब जब हम छोटे छोटे से थे तब से शी इज वर्किंग। और सबसे बड़ी चीज क्या थी, एक दिन मैंने अपनी मम्मा से क्वेश्चन किया, माय मदर नीरा शर्मा जी, तो मैंने उनसे एक दिन क्वेश्चन किया कि मम्मा आप जॉब भी करते हो, आप हम लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी करके जाते हो, हमारा लंच भी बना के जाते हो, फिर उसके बाद वापस आके इवनिंग स्नैक्स भी बनाते हो, फिर शाम को फिर म्यूजिक क्लासेस भी लेते हो, और फिर अर्ली मॉर्निंग 5 बजे 6 बजे उठ के आप पूजा भी कर लेते हो, कैसे पॉसिबल है? तो उन्होंने मेरे को एक छोटी सी बात बोली कि बेटा अगर आप अपने आप को और अपनी डाइट को और अपनी फिटनेस पे ध्यान दोगे ना, तो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप जीत नहीं सकते।
0: True.
2: तो ये एनर्जी मेरी इसलिए आती है क्योंकि मैं कभी ये नहीं सोचती कि मैं थकूंगी, ये मेरी सारी ड्यूटी है जो मुझे परफॉर्म करना है, और मैं इसके लिए अपने डाइट का और अपनी फिटनेस का ध्यान रखती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों की भी डाइट का ध्यान रखती हूँ, तो आगे चल के आप इसी को फॉलोअप करो। तो ये मेरी सारी इंस्पिरेशन मेरी मदर से।
0: क्या बात है,
1: क्या
0: आपकी
1: बात
0: मदर
1: है?
0: के लिए जोरदार तालियां, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अपूर्वा जी आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आपको जो मोटिवेशन आया वो अपनी मम्मी से आया, और मोस्टली मुझे लगता है कि जब पेरेंट्स का सपोर्ट हो जाता है एक लड़की को तो आगे और ज्यादा बढ़ चढ़ के चीजों को अच्छे से करती है, मतलब उनकी कोशिश होती है कि आप अपना 100% दें। ये चीज आप भी कर रही है मुरादाबाद शहर में, नो डाउट सारे लोग आपको जानते हैं, आई एम श्योर जो नहीं जानते आज वो भी जानेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है यार जैसे ये विमेंस के लिए स्पेशल काम कर रही है यार, मतलब मुझे भी नहीं पता था कि, मुझे बाद में पता चला मैम कि आप स्पेशली विमेंस के लिए करती है, तो थोड़ा सा बताइए ये वाला कैसे आपने सोचा?
2: एक्चुअली मैंने इसलिए सोचा ये कि देखिए जिम तो मुरादाबाद में बहुत सारे हैं, यूनिसेक्स है, और ऐसा नहीं है, मैं कभी ये नहीं कहती कि यूनिसेक्स जिम में सेपरेट फीमेल्स बैचेस नहीं है, बट उसमें उन बैचेस में भी आप कोई मेल का कोई टाइमिंग इन आउट होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप उनको आने से रोक सकते हो, किसी कोई इवनिंग नहीं आ पाया तो हो सकता है फीमेल टाइमिंग में आके अपने कार्डियो कर रहा है ऑल, बट मुझे एक ऐसा लगता है कि जिम एक ऐसा प्लेस है जहां पर एक फीमेल जो है बहुत कंफर्ट माहौल चाहती है, और जो एक्सरसाइज के हमारे पोस्चर्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि आप किसी मेल के सामने कंफर्टेबल नहीं हो सकते, फिर क्या करना है हमको वो एक्सरसाइजेस स्किप करनी पड़ती हैं, या फिर इफ यू आर फीलिंग लाइक कि मैं थोड़ा सा फ्री होके थोड़े यू नो कह सकते हो आप शॉर्ट्स में मैं इजीली वर्कआउट करूं, तो कई बार ऐसा होता है यार बॉयज भी जैसे वर्कआउट करते हैं तो वो अपना यू नो गंजी वंजी पहन के और शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन के, रीजन है उसका, आप जब तक मसल जिस पे आप वर्क कर रहे हो आपको दिखेगी नहीं मेरा, तो आपको एक मोटिवेशन नहीं आएगा काम करने का, ऐसे गर्ल्स फील करती है, बट अगर यूनिसेक्स जिम है और मेल्स है वहाँ तो बहुत सारी फीमेल्स जो है वो ये फील करते हैं कि यार हम ये एक्सरसाइज स्किप कर देते हैं या फिर हम ये नहीं करते या फिर शाय फील करती हैं, हेजिटेट फील करती हैं, तो ये सारी चीजें मैं फील कर रही थी जब मैं खुद यूनिसेक्स जिम में जा रही थी, तो फिर मैंने इस चीज का एक बैरियर को तोड़ने का सोचा कि यार क्यों ना सिर्फ लड़कियों के लिए ही खोला जाए जिसमें लड़कियां जो मर्जी पहने जैसे मर्जी रहा, एक सेफ माहौल हो, एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर हो, और जब उन्हें एक फीमेल को एक फीमेल ट्रेनर मिलेगी तो शायद वो और भी अच्छे से ब्यूटीफुली अपनी बॉडी को मेंटेन कर पाएंगी, तो ये एक रीजन था कि सिर्फ फीमेल को एक ऐसा एटमॉस्फेयर दे दो जहां पर वो बिना, और सबसे बड़ी चीज है एक और चीज है अबव ऑल कि कितने मुरादाबाद में कितने ऐसी फैमिलीज हैं जो एक लड़की को या अपनी वाइफ को या अपनी डॉटर को वहां उस जगह पे भेजना ही नहीं चाहते जहां पर मेल्स, तो उनके लिए भी एक बड़ा ड्रॉबैक था, वो चाह रही है जिमिंग करना फिटनेस करना वर्कआउट करना बट उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, उनके हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे, तो उस सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए मैंने एक ऐसी जगह बनाई जहां पर विदाउट एनी कोई रोक टोक आप आओ अपने फिटनेस पे ध्यान दो, अपना मेंटली हीलिंग करो, अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो, और इसके अलावा भी अगर कोई दिल में कुछ राज वाज परेशान कर रहे हैं, राज का नाम फिर आ गया यार क्या
0: आता ही रहेगा,
2: कोई सीक्रेट ऐसे जो आप किसी से नहीं कह पा रहे हैं, आप उससे परेशान हो रहे हैं, वो भी आप आके डिस्कस कर सकते हो, तो मेंटल फिजिकल एंड वोकल तीनों चीजें एक ही जगह पे लाके रखती है,
0: बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस।
1: मतलब
3: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका, नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन, सबसे बड़ी खुशखबरी नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री, और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस सब कुछ फ्री, 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं, पता अपोजिट जीनस पेपर मिल अगवानपुर मुरादाबाद, कॉन्टैक्ट 9528911112, जल्दी करें सीटें सीमित हैं, जैकब हाई स्कूल आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
4: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान, पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
5: टायर लो सोना जीतो,
6: क्या?
5: जी हाँ,
6: चावला टायर
5: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका, जल्दी कीजिए,
7: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद, कॉल 9412211111।
0: FM मुरादाबाद 89.6 आप सुन रहे हैं, मेरा नाम आर।
2: अल्टीमेट क्या होने वाला है?
1: अल्टीमेट क्या होने वाला
2: तो हम यहाँ पर अल्टीमेट चीजें दे रहे हैं, हम यहाँ फिजिकल फिटनेस भी दे रहे हैं, हम यहाँ मेंटल हीलिंग भी दे रहे हैं, यहाँ हम एंटरटेनमेंट भी दे रहे हैं, समय समय पर हम लोग इतनी मस्ती करते हैं, कभी माहौल हुआ डांसिंग का तो डांसिंग ही हो रही है, कभी माहौल हुआ चिट चैट का तो सिर्फ वोकल चिट चैट हो रही है, जिससे मानसिक रूप से भी जब कोई आपको फ्रेंडली माहौल मिलता है फीमेल्स के साथ तो स्पेशली है कि अगर वो घर से डिप्रेस्ड होके आई हैं और अगर हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं और काइंड ऑफ काउंसलिंग कह लो या कुछ, तो वो जब घर जाती हैं तो रिफ्रेश होके जाती हैं, तो नेक्स्ट डे वहां से एक हमें बड़ा अच्छा कमेंट मिलता है, यार बीवी गई तो नाराज थी, आ तो बड़ी खुश होके आई है, इट्स लाइक दैट, हम वी आर गिविंग अल्टीमेट थिंग्स, और अब बहुत कुछ और भी इनोवेटिव करने वाले हैं, इसीलिए हमने इस जिम का नाम द अल्टीमेट फिटनेस जिम रखा।
1: क्या बात है, मतलब कि नाम के पीछे भी राज थे और राज खुल के आ गए हैं सामने का।
0: लेडीज आपको सुन रही हैं इस वक्त, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बहुत सारी लेडी हैं जो जिम जाना तो चाहती हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके घर के इतने सारे काम होते हैं, कुछ घर के रूल्स होते हैं कि वो नहीं आ पाती है, ठीक है, हर किसी के घर में परमिशन भी नहीं है, क्योंकि आज भी मैं मानता हूँ कितना हमारा समाज एजुकेट हो जाए हो रहा है, बट कुछ चीजें हैं जो भी है समाज में, तो क्या वो घर पे रहकर भी अपने आप को फिट रख सकती हैं? आपके पास कोई ऐसे टिप्स जो आप उन्हें देना चाहें?
2: अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, और मैं यहाँ इसलिए भी आना चाह रही थी आपको बताऊं आनंद कि ये इन्फॉर्मेशन ना मैं अपने सोशल मीडिया पे टाइम टू टाइम डालती हूँ, लेकिन जो 89.6 के व्यूअर्स हैं वो मेरे सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग होंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंचेगी। ये मेरा बेस्ट रीजन था, ये क्वेश्चन इतना ब्यूटीफुल पूछा है आपने कि जो फीमेल्स अफोर्ड नहीं कर सकती या फिर वो आ नहीं सकती अपने टाइम स्केड्यूल की वजह से या फिर घर में परमिशन ना होने की वजह से, वो फिटनेस को कैसे लेती हैं और उन्हें कैसे लेना चाहिए। तो उन सबके लिए मेरे लिए मेरा ये एक मैसेज है कि गाइस देखिए, जिंदगी में शरीर से बड़ी पूजा, शरीर से बड़ा मंदिर कोई नहीं है। आप लोग कुछ भी आज कर पा रहे हैं बचपन से लेकर अब, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी बॉडी आपका साथ दे, ठीक है। और ये वो जगह है, आप अपना घर क्लीन करते हो, आप अपना मंदिर क्लीन करते हो, आप अपने बच्चों का रूम्स क्लीन करते हो, आप अपना आस पड़ोस क्लीन करते हो, इवन कि हफ्ते में एक बार आप अपना टेरेस भी क्लीन करते हो। व्हाट अबाउट योर बॉडी, जिसकी वजह से आपका वजूद है, जिसकी वजह से आपकी आइडेंटिटी है। तो इसको सिर्फ ये सोच के इग्नोर ना करें, ठीक है। एज के साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सबके साथ होती हैं, मेडिकल हेल्थ इश्यूज हैं, घुटनों में दर्द, एज के साथ कभी प्रॉब्लम्स नहीं होती, प्रॉब्लम्स होती हैं अनफिट, इस तरीके से आप एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल को कैरी कर रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए है, अगर आप जिम नहीं आ पा रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से, अपना एक स्केड्यूल बनाइए पूरे दिन में, एक घंटा किसी भी वक्त, इसका कोई टाइम नहीं होता, आप जब भी फ्री हो एक घंटा अपने वर्कआउट के लिए निकालिए। चाहे आप योगा करें, चाहे आप साइकिलिंग करें, चाहे आप ब्रिस्क वॉक करें, चाहे आप रनिंग करें, चाहे कुछ भी ना हो तो आपके घर में अगर स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां, तो 10-15 बार उसको ऊपर चढ़ें उतरें। इस तरीके का कोई भी फिजिकल वर्कआउट एक घंटा कंटिन्यूअसली, सबको अलग हटा के, पूरी दुनिया को अलग हटा के अपने लिए करें, पहली चीज। दूसरी चीज, डाइट का ध्यान रखें। मैं नहीं कहती कि आप बहुत ज्यादा हेल्दी खा सकते हो ऐसे एटमॉस्फेयर में जब आपको सबको सब कुछ बनाना होता है, बट इतना जरूर हो सकता है कि आप पोर्शन कंट्रोल करें। अगर अनहेल्दी बनाए तो उसको कम खाएं, कुछ हेल्दी बनाए तो उसको ज्यादा। सिर्फ इतने ही चेंजेस से। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग जिमिंग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए, रात का खाना प्लीज बंद करें। रोटी, चावल, ये जितनी भी हैवी चीजें हैं, ऑयली नॉन वेज हो गया या आपका पनीर हो गया, ये सब अपनी जितनी फेवरेट चीजें हैं सब लंच में ऐड करें। और रात में आप या तो खाना बिल्कुल ना खाएं, और खाएं तो बहुत लाइट खाएं और सेमी लिक्विड खाएं। सिर्फ ये दो तीन चीजें करने के बाद ही आपकी लाइफ में इतने ड्रास्टिक चेंज हो जाएंगे ना, मैजिकली चेंज हो जाएंगे कि आपको खुद बॉडी से, अपनी अपनी एनर्जी से प्यार होने लगेगा और आपको खुद ब खुद जिम खींच के अपनी तरफ बुला
0: लेगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया पूर्वा जी आपने। एक क्वेश्चन और है राज, फिर तू पूछ लियो। मैंने ना बहुत सारे लोगों के साथ मैंने जब बातचीत की है जो मेरे खुद के रिलेटिव जिम जाते हैं, तो बहुत सारे लोग मुझे भी रेकमेंड करते हैं कि आने तुम जिम जाओ। तो मैंने उनसे पूछा जिम में सबसे सॉर्टेड चीज क्या है, तो उसने मेरे को ना एक चीज बोली है पूर्वा जी, कि लोग कहते हैं नहीं 50% जिम होता है, 30% 40% आपका डाइट होता है, तो ये कंफ्यूजन बहुत है लोगों में। आप एक सही सजेशन क्या देना चाहेंगे कि डाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वर्कआउट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है?
2: फाइन, मैं उसका आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूं। सपोज कोई इंसान है जो कोई काम, ठीक है, उसके पास सारी फैसिलिटीज है घर पे, वो बहुत अच्छी डाइट ले रहा है, उसको शेफ भी है उसके यहाँ, एवरीथिंग इज मतलब लाइक जितनी भी रिसोर्सेज होते हैं अवेलेबल है, लेकिन उसके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, ना मेंटली ना फिजिकली, वो घर में है लाइक अ किंग या लाइक अ क्वीन, और वो बहुत हेल्दी डाइट ले और बहुत अच्छा अच्छा खा रहा है, कोई ऑयली नहीं खा रहा, कोई जंक नहीं खा रहा, कोई पैकेजिंग फूड नहीं खा रहा। अगर आप उसका डेटा चेक करोगे या किसी डॉक्टर के पास जाके उसे एग्जामिन करोगे, तो वो अनहेल्दी निकले। इसी तरीके से कि एक इंसान है जो बिल्कुल भी डाइट फॉलो नहीं कर रहा है और वो घंटों जिम में रहता है और वर्कआउट करता रहता है और बहुत अच्छी बॉडी मेंटेन करी, आप उसको भी एग्जामिन करोगे तो कहीं ना कहीं वो भी अनफिट। तो इट्स अ रोल ऑफ 50। डाइट जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट वर्कआउट है। अगर खाली डाइट से आप पतले होगे तो बॉडी लूज हो जाएगी, बॉडी पतली जरूर होगी, आप वेट लॉस जरूर करोगे, लेकिन बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपका जो फैट एक्सबेट वो वैनिश नहीं होगा, वो लटक जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप वर्कआउट करोगे और डाइट नहीं करोगे तो कैलोरी डेफिशिएट में नहीं जाएगी, ना वेट बढ़ेगा ना कम होगा, और वो पैरेलल रहेगा। दोनों का रोल बिल्कुल माँ और पिता जैसा है, जैसे माता और पिता का एक बच्चे।
0: जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अपूर्वा जी जैसे मतलब अगर आप जिम जाओगे तो मोटे हो जाओगे, जिम मोटे होने के लिए जाते हैं, कुछ कहते हैं नहीं जिम में सिर्फ आप फिट होने के लिए जाते हो, आपकी बॉडी जो है कट शेप में आती है, थोड़ी सी स्टाइलिश आप दिखते हो, तो क्या ये भी एक मिथी है या फिर सच में वेट ग्रो होता है हमारा अगर हम जिम जाते हैं?
2: मैं बताती हूँ आपको, एक्चुअली मैं भी ऑनलाइन लाइव करती रहती हूँ इंस्टा पे या फेसबुक पे, तो मेरे पास बहुत सारे डीएम आते हैं, जैसे अगर हम जिम ज्वाइन करेंगे और जिम छोड़ देंगे उसके बाद हम वापस वही वेट गेन कर, मतलब
0: हाँ, ये तो है
2: ना। ऐसे ही आपने जो क्वेश्चन किया कि जिम क्या सिर्फ मोटे और पतले होने के लिए, ऐसा तो ये सारे मिथ्स, ये उन लोगों के मिथ्स बनाए हुए हैं जो जिम को कभी प्रेफर ही नहीं करेंगे, ना अपने आप के लिए और ना दूसरों। अभी लास्ट मैंने वीडियो भी बनाई थी एक बॉडी शेमिंग के ऊपर, अभी इंस्टा पे मैंने बनाई है, शायद आपने, जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं वो बॉडी शेमिंग को लेके हथियार बना लेते हैं कि यार हम जैसे मर्जी सही, आप कोई नहीं होते हम पर फिंगर आउट करने वाले, हम अपने घर में अच्छा खा पी रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ, बट अंदर इंटरनली आप जाके देखेंगे तो वो इतने ज्यादा अनफिट हैं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने हैं। तो ये सारे मिथ्स हैं उन लोगों के बनाए हुए जो जिनको फिट रहना पसंद नहीं, ठीक है, या जो फिटनेस को बिल्कुल वेस्ट चीज। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप जिम आ रहे हो, एग्जांपल देती हूँ, एक बाथरूम में 3 टैप्स लगी हुई है,
0: ठीक है,
2: 2 टैप्स हम रेगुलर यूज कर रहे हैं, उनका फ्लो बिल्कुल रेगुलर है और बकेट में पानी आ रहा है या शावर है उसको रेगुलर यूज कर रहे हैं, वो पानी फ्लो में, एक टैप जो हमारी कभी यूज नहीं हो रही थी उसको जब हम अचानक खोलेंगे तो पानी का फ्लो गड़बड़ाए, पहले दिन भी गड़बड़ाएगा, दूसरे दिन भी गड़बड़ाएगा, कहीं जाके 3rd-4th day वो फ्लो में पानी आना स्टार्ट होगा। सिमिलरली जब आपने अपनी बॉडी को फिटनेस दिया ही नहीं तो फिटनेस का ज्ञान आपको कैसे मिल सकता है। स्टार्टिंग में आप जिम आओगे आप डिमोटिवेट भी होगे, आपको बॉडी पेन भी होगा, आपको मसल पेन भी होगा, लेकिन एक दिन आफ्टर अ वीक और आफ्टर 15 days आप इतना स्मूथ आपकी बॉडी हो जाएगी कि आपको लगेगा कि अब तक तो मैं कर क्या रहा था यार अपने साथ, मैं कितना गलत कर रहा था अपने साथ, ये तो राइट वे है जिसको मुझे करना चाहिए था, जो लाइफ मेरे को लीड करनी चाहिए। तो जिम एक ऐसा प्लेस है, इट्स लाइक अ मंदिर फॉर अ बॉडी, तो जिम से कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता अंटिल अनलेस आपका ट्रेनर अच्छा हो, उसको नॉलेज हो, कोई झोला जाप लेके नहीं बैठा हो, कोई यूट्यूब देखने वाला गूगल सर्च करके
0: एक्सरसाइज भी बहुत चल रहा है,
2: एग्जैक्टली वो ना बैठा हो, अगर आपका ट्रेनर अच्छा है और उसको नॉलेज है तो वो आपके लिए बिल्कुल वैसा ही वर्क करेगा जैसे एक मंदिर एक परेशान व्यक्ति के लिए काम करता है।
0: वेरी नाइस, बहुत ही।
1: तो चलो एक काम करते हैं, मैं भी पूछ लेता हूं आनंद भैया बीच में।
2: आपके क्वेश्चन से तो मुझे डर लग।
1: नहीं नहीं, मेरे क्वेश्चन से बिल्कुल मत डरो, काम का क्वेश्चन पूछने वाला हूं, बिना काम का नहीं पूछने वाला हूं मैं। एक्चुअली मेरा जो अगला क्वेश्चन रहेगा ये क्वेश्चन रहेगा पूर्वा जी, जिम को हम चले जाएंगे, ठीक है ना, जिम जाने के बाद
2: मुझे आप देख नहीं रहे हैं थोड़ा सा।
1: मैं देख नहीं रहा हूँ, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो फिलहाल मैं पूछ रहा था, हम जिम तो चले जाएंगे,
2: हाँ।
1: पर जिम जाने के बाद मैटर करता है कि ट्रेनर वहाँ पे अवेलेबल है या फिर नहीं है,
2: हाँ।
1: ठीक है, तो एक जिम के अंदर ट्रेनर क्या रोल अदा करता है इस बारे में बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रेनर के बिना जिम अधूरी है, और अगर आपको फिट रहना है तो ट्रेनर का होना भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम जिम तो चले जाते हैं पर ट्रेनर नजर आता नहीं, बस वेट उठाते रह जाते हैं, उसके बाद बदलता है कि नहीं यार कमर में दर्द बढ़ गया है, वेट हमारा कम लॉस हुआ है, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है, तो इस बारे में थोड़ा बताइए।
2: ये प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत सारे लोगों, इसलिए मैंने ट्रेनर का जिक्र किया अभी कि जिम होना, जैसे स्कूल में स्कूल होना तो कितना भी लेवल स्कूल हो, कितनी अच्छी फैसिलिटीज हो, टीचर्स के बिना और एक एडमिनिस्ट्रेशन के बिना स्कूल बिल्कुल इनकम्प्लीट है। इसी तरीके से एक जिम में और ट्रेनर का वही रोल है, क्योंकि कितनी सारी एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जिनके पोस्चर्स आपको पता ही नहीं, आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको कितना वेट उठाना है, किस तरीके का पोस्चर रखना है, वो बड़ी मीम्स बन रही है ना, वो जिम ट्रेनर आता है वो पोस्चर हमेशा वो बम आउट वाला करा देता है, कितने सारे वो मतलब मीम्स है, तो वो गलत नहीं है। एक्चुअली स्टूडेंट्स जो है वो यूट्यूब से गूगल से इधर उधर से इंस्टा से देख के एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और वो गलत पोस्चर्स होते हैं, तो जिम में एक ट्रेनर का तो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सबको यही इन्फॉर्मेशन दूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले उस जिम में ये देखें कि ट्रेनर्स अवेलेबल हैं या नहीं है और वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं या नहीं देते हैं, अदरवाइज आपका जिम करना खराब है, आप अपना हार्म कर लेंगे अच्छा करने के बजाय।
1: बट एक चीज ये भी है ना कि हम कैसे समझेंगे कि जो सामने ट्रेनर बैठा है वो हमारे लिए परफेक्ट है या फिर नहीं है, क्योंकि जिम तो बहुत है ट्रेनर भी बहुत है, पर वो ट्रेनर एजुकेटेड है या फिर नहीं है उस चीज को लेकर वो कैसे हम समझेंगे, ये चीज भी तो मैटर करता है।
2: देखिए ये ऐसे मैटर करता है कि जब आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में कराने जाते हैं तो आप उसकी ये पूरा होमवर्क करते हैं, वो कैसे टीचर्स हैं, कैसा स्कूल है, कितने साल पुराना है, कहाँ से एफिलेशन है, कहाँ ट्रेन टीचर्स हैं या अनट्रेन टीचर्स हैं। सिमिलरली मैं वही बोलूंगी, इसके लिए आपको थोड़ा सा होमवर्क करने की जरूरत है, थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत है कि ये ट्रेनर क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसका जिम कब से ओपन हुआ है, कितने टाइम से काम कर रहा है, और सबसे बड़ी बात उसके रिव्यूज क्या है। आजकल तो सोशल मीडिया पे आपको रिव्यूज मिलते हैं कि फीडबैक्स क्या है, उसने कितने लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन दिया, कहीं इसके जिम में कोई हादसा तो नहीं हुआ, कोई इंजरी तो नहीं हुई, सारा होमवर्क आपको करना पड़ेगा। आपका एक बार होमवर्क कंप्लीट होता है और आपको पॉजिटिव चीजें मिलती हैं तो जस्ट गो इट।
1: मतलब ये है कि आप जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पे पॉजिटिव देखिए, अगर पॉजिटिव थिंग आपको नजर आ रहा है तो डेफिनेटली आप जाएंगे, नहीं तो कह दो भैया बाद में आएंगे, बस हम नहीं। कभी कभी खासकर हम लड़कों का मुझे इतना बताया कि हम लोग जिम तो जाते हैं पर वहाँ पे एक वीक का हमें ट्रायल मिलता है फ्री, हम ना ट्रायल लेकर वापस आ जाते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि वुमेन्स आती तो हैं पर एक वीक का ट्रायल लेकर वो वापस चली जाती है, वो लौट कर नहीं आती, तो ये प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं।
2: आपको सच बताऊं आपको झूठ लगेगी,
1: हाँ जी,
2: ये मैंने बाकी के जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिम ट्रेनर्स और जिम ओनर्स उनसे तो सुना है कि वो बंदी आई थी उसने इतना हार्ड वर्कआउट कराया और ट्रायल लिया और वापस लिया, बट टच वुड मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ। अगर मेरी चेयर पे ऑफिस टेबल पे कोई क्लाइंट आ गया और मैंने खुद से उसको डील कर लिया तो अभी तक मेरे पूरे करियर में ऐसा नहीं हुआ कि वो मेरे पास वापस ना।
1: मतलब इन्फ्लुएंस पावर मैम की अच्छी है, ठीक है।
2: वॉट एवर आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, आई एम अग्री विद इट, बट कोई भी स्टूडेंट जो मेरे पास बैठ के डिटेल्स लेके गया हो वो क्योंकि मैं कनेक्ट इतने अच्छे से कर पाती हूँ, मैं समझ पाती हूँ चीजों को, जो चीज चाहिए अगर आप उसको, आप ऐसे भी कह सकते हो, जो चीज अगर सामने वाले को चाहिए और आप उसको दे रहे हो है ना, और उसके इकोनॉमिकल रेट्स में दे रहे हो या फिर जिस तरीके से वो कंफर्टेबल है उस टाइमिंग पे दे रहे हो, तो आपका क्लाइंट क्यों जाएगा?
1: क्लाइंट क्यों जाएगा, ये बात तो।
0: तो राजी कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: यार देखो मैं बात जरूर करने वाला हूँ, एक क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में और वो क्वेश्चन मैं पूछे बिना शायद आज जाने नहीं दूंगा, ठीक है। फीमेल्स जिम की मतलब फीमेल्स की बात हो रही है और फीमेल्स की फिटनेस की बात हो रही है, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि पूछना चाहिए पीरियड्स के टाइम पर,
2: हाँ जी,
1: क्या फीमेल्स को जिम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए?
2: Okay.
1: क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम जिम जाते हैं और जब हम जिम के प्रति प्यार नहीं करते हैं तो आलस ना
0: हाँ।
1: और छुट्टी लेने का हमारा मन करता है कि आज छुट्टी हो जाए बहुत, ठीक
2: है।
1: तो पीरियड्स के टाइम पे क्या फीमेल्स ये बहाना बनाती है या फिर पीरियड्स के टाइम पे जिम जाना सही है या फिर नहीं है, इस बारे में अगर आप थोड़ा बताएंगे तो शायद हमारे फीमेल्स के लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा।
2: नहीं बिल्कुल बताऊंगी, एक्चुअली क्या है देखिए कुछ लोग वाकई में एक्सक्यूजेस बनाती हैं कुछ फीमेल्स कि उनको कोई क्रैम्प्स नहीं होते या इतना फ्लो नहीं होता, लेकिन वो कहती हैं कि भाई ठीक है इस बहाने दो दिन की छुट्टी मिल जाएगी, ट्रेनर भी नहीं डांटेगा और घर पे भी कोई प्रेशर नहीं होगा। लेकिन कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको सच में मेडिकल हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो उनके लिए तो ओके है कि आप स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड डे जब आपको पेन बहुत है, क्रैम्स हो रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रा फ्लो हो रहा है, तो आप दो दिन का रेस्ट ले लें। लेकिन बाकी अगर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है इस लेवल की कि आप चल नहीं पा रहे हैं या कोई और काम नहीं कर पा रहे हैं, तो बल्कि पीरियड्स के टाइम पे वर्कआउट करना और भी अच्छा होता है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। उसका पहला रीजन तो ये है कि जिन लोगों को फ्लो कम होता है उनका फ्लो अच्छा होता है। दूसरी चीज, जिनको पीसीओस और पीसीओडी की प्रॉब्लम है के साथ अगर वो पीरियड्स के टाइम पे वर्कआउट करते हैं तो वो बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव होता है, और आगे चल के अगर वो लगातार ऐसा करते हैं तो उनके पीसीओस और पीसीओडी की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। और थर्ड वन इज कि आपकी जो बॉडी है वो पीरियड्स के टाइम पे नीडेड होती है कि अगर आप उसको वर्कआउट दोगे जो वर्कआउट चाहिए, वही बात आ गई कि अगर ट्रेनर आपका अच्छा हो तो वो आपको बता सकता है कि जब आपको पीरियड्स हो रहे हैं आपको क्या वर्कआउट करना है क्या नहीं करना। बट मिस करने वाला यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पीरियड्स की वजह से वर्कआउट मिस करने वाला कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आता।
1: ओके,
2: और मैं उसको मतलब मैं उसको प्रमोट भी नहीं करती,
1: प्रमोट भी नहीं करती। तो मतलब मेन थिंग ये है कि पीरियड्स के टाइम पे आप जिम जा सकते हैं,
2: बिल्कुल करना चाहिए,
1: आपके लिए हार्मफुल नहीं रहेगा।
2: बिल्कुल,
1: आपके दिमाग में ये मिथ था कि आप नहीं जा सकते, आप जाना शुरू कीजिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा जैसे कि मैम ने बताया। तो ओवर टू यू आनंद भाई।
0: चलो भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत ही बढ़िया, मुझे लगा चलो एक तो ऐसा सवाल निकल के आया जो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मुझे लगता है बात विमेन्स की हो रही है, नारी शक्ति की हो रही है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छा लगा। और आजकल तो समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है।
2: मैं आप कर रही हूँ, चलते चलते आपके व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा सॉन्ग सुनाना चाहूंगी।
0: अच्छा भाई, हमने तो बोला भी नहीं, देखिए मैम के अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है, अभी ये बोलेंगी चलते चलते मैं आरजे भी बोलना चाहूंगी। तो गाइस आप सुनने के लिए रेडी रहिए।
1: ऐसे लगता है आनंद भैया आपने मैम का इंट्रो नहीं सुना था, मैम ने इंट्रो में बताया कि इनके जो मदर हैं, लेकिन वो सिंगर हैं ऑलरेडी,
2: सिंगर हैं
1: होना चाहिए, है ना? तो वो
2: इंस्ट्रूमेंट नहीं है, चाहे वो सिंथेसाइजर हो, चाहे वो तबला हो, चाहे वो हारमोनियम हो, चाहे वो व्हाटएवर इट मे बी, चाहे वो गिटार हो, माय मदर
0: ऑलराउंडर लग रही है,
2: वो सब कुछ आता है, उन्होंने कभी सीखा नहीं है।
0: अरे वाह,
2: मतलब सीखा इन द सेंस बाद में तो उन्होंने म्यूजिक में ही सब कुछ किया, लेकिन उनको ये बाय बर्थ उनको गॉड गिफ्ट था, तो उनको सब कुछ आता है, तो वो प्रेरणा थोड़ी सी हमें मिली है
0: अपनी मधुर आवाज में। जरा हमारी
2: मधुर तो नहीं है, जिम वालों की आवाज
0: तो मधुरी आ रही थी मुझे,
2: जिम वालों की
0: गाने के बाद कितनी मधुर
2: मधुर नहीं हो सकती। बट ये सॉन्ग मेरा बहुत फेवरेट है, आई ऑलवेज यूज टू सिंग दिस जब भी मैं कहीं जाती हूँ, और बहुत अच्छे से
0: ये गाएंगे और हम बजाएंगे बाद में।
2: हाँ, जब मैं किसी से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाती हूँ तो मैं ये लाइनें जरूर बोलती हूँ। तो ये 89.6 के व्यूअर्स के लिए, और जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनके लिए,
0: हम भी करते हैं।
2: थैंक यू, थैंक यू।

0: ब्रॉडकास्टिंग ब्यूटीफुल. मैंने कहा था ना मधुर आवाज है इनकी, वाकई में बहुत मधुर आवाज है. बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच. आज आप आई, इतना इंपॉर्टेंट टाइम आपने दिया. और गाइज आपने हमारे वीडियोस डेफिनेटली देखे होंगे, नहीं देखे तो अभी भी देख सकते हो. मैम इंस्टाग्राम आप बता दीजिए अपना, जो हमारे लिसनर्स हैं जो ब्यूटीफुल आवाज सुन रहे हैं वो देखना भी चाहते हैं ब्यूटीफुल.
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप इंस्टाग्राम पे अपूर्वा 65 से जा सकते हैं. अपूर्वा शर्मा भी डालेंगे तब भी आ जाएगा अपूर्वा 65 से. इसके अलावा अगर आपको जिम के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए या फ्री फिटनेस टिप्स चाहिए तो हमारा पेज है फेसबुक पे द अल्टीमेट फिटनेस जिम के नाम से, TUFG के नाम से.
0: और बाकी अगर इनका पेज ना दिखे तो आप हमारे ऑफिशियल पेज पे आइए FM मुरादाबाद 89.6, वहाँ पर एक वीडियो दिखेगी जो मैम के साथ कोलैब है, वहाँ से भी आप मैम के अकाउंट में जा सकते हैं.
1: राइट,
0: जाने से पहले कोई एक मैसेज आ

0: मुझे लगता है भाई होना चाहिए, है ना?
1: जाने से पहले
0: हम दोनों लड़कों के लिए एक मैसेज दे, आई डोंट नो इसको पतला होना है मुझे नहीं पता, बट मुझे थोड़ा सा हेल्दी होना है।
1: ठीक है, पर मैं उससे पहले कहना चाहूंगा, जैसे मैम ने बोल दिया कभी अलविदा ना कहना, तो फिर हम भी कहना चाहेंगे अभी ना जाओ छोड़ कर दिल अभी बनाने।
0: भाई इसका चालू रहेगा, एक काम करते हैं हम अपना शुरू करते हैं, तो प्लीज ना।
2: अच्छा ऐसा कैसे है कि मतलब आप तो बड़े सोफिस्टिकेटेड से फन लविंग एंड ऑल, ये इतने फ्लर्टिंग में?
0: यार देखो अपना एक जोनर होता है पूरा जी, मैं आपको बताऊं तो इसका नाइट का शो है, तो ये रात में जो लोग खाना खा रहे थे वो भी रोमांस में नृत्य करते हैं इसकी बातें सुनकर। तो ये एक्चुअली बना है इसलिए, और होता है हर इंसान में कोई स्पेशलिटी होती है, हर इंसान
1: चांद की चांदनी तुम्हें पसंद करने लगे तो इंसान को ऐसा बनना पड़ता है, तो चांद की चांदनी मुझे पसंद करती है इसलिए मैं थोड़ा फ्लर्टिंग।
0: तू अभी शरद पूर्णिमा आ रही, तू जाके चांद देख लो, तो
1: हम चांदनी देखो
0: चांदनी जो भी है व्हाटएवर। तो अभी हम ये कह रहे थे मैम, तो
1: एक प्यारा सा मैसेज
2: आप दोनों के लिए, ये मैसेज है कि आप दोनों बिल्कुल मुझे मेंटली फिजिकली बिल्कुल फिट लग रहे हैं, लेकिन हाँ अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम है, आप इक्विपमेंट्स अपने घर पे आके रख ले, मेरे से पूछ ले किस तरीके से यूज होना है, आपके पैसे वहाँ बच सकते हैं, लेकिन आपको वर्कआउट तो करना पड़ेगा, उससे नहीं बच सकते, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ फिटनेस,
0: नो एक्सक्यूजेस। अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं यार कल पक्का करूंगा, मैं कई बार मैं भी ऐसा करता हूँ लेकिन वो कल आता ही नहीं है,
1: अगले हफ्ते जरूर ज्वाइन करूंगा।
2: इसके लिए तो इसके लिए इसी के लिए
0: मेरे जैसे बहुत लोग हैं, उनको कुछ कहना चाहूंगा
2: इसी के लिए शायद हम आज यहाँ बैठे हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जो लोग ये कहते हैं ना कल आएगा कल आएगा कल आएगा, तो टुमारो इज नेवर, आज जो कर लिया
0: जो करना है
2: आज ही करना है,
0: आज इंटरव्यू आज ही करना था, इन्होंने मेरे को बोला भाई कल मत कर आज ही करना है, आज ही करना है, बिकॉज़ तो वो आज ही हुआ।
2: हाँ क्योंकि वो टलता है तो फिर टलता चला जाता है, तो फिटनेस को मजाक ना ले सभी लोग, आप प्लीज कल ना सोचे आज अभी, और जितने लोग हमें सुन रहे हैं वो तो तुरंत भाग के जाके रजिस्ट्रेशन करा के आए जिम में,
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
2: फीमेल्स को भेजिए हमारे पास और मेल्स जाम,
0: वेरी नाइस। चलो भाई राज कुछ कहना चाह रहे हो, पूछना चाह रहे हो?
1: फिलहाल देखो ऐसा है ना कि आनंद भैया हो गए बहुत सारे सवाल,
0: एग्जैक्ट
1: है ना, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी भावनाओं में बहूं, तो एक काम करते हैं मैम को थोड़ा सा
0: फ्री करते हैं अभी आज के लिए, एंड सीरियसली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम वंस अगेन, बहुत अच्छा लगा, एंड ऑल द बेस्ट आपकी फिटनेस में जो आप इतना अच्छा रॉक मचा रही हैं स्पेशली विमेन्स के लिए, हमारी तरफ से हमारी टीम की ओर से है ना हमारे रेडियो स्टेशन की ओर से बहुत बहुत बधाइयां, एंड आई एम श्योर आप आगे भी ऐसी रॉक मचाती रहेंगी, एंड मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी जरूर आएंगी, ठीक है, आपकी अल्टीमेट फिटनेस जिम को बहुत बहुत शुभकामनाएं,
2: थैंक यू सो वेरी मच, और आप
0: जी राज का ख्याल रखेंगे हम,
2: आप दोबारा राज और आनंद आपको भी बहुत बहुत बधाई, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं टाइम टू टाइम 89.6
0: FM। एक चीज और मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी टू से, अपूर्वा जी के बारे में जाने से पहले, ये ना रेडियो फैन भी बहुत अच्छी है, ये बहुत टाइम से रेडियो सुन रही है, तो रेडियो लवर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारी आवाजें आप गाड़ियों में सुनती है, आज आप लाइव हमें देख रही है, हमारे साथ बैठी है, सो कैसा फील?
2: वही मैं बोल रही थी कि मतलब इसलिए मैं आप लोगों को थैंक्स करूंगी क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये जो कई बार ऐसा होता है हम हाथ में मोबाइल नहीं ले पाते हैं या स्क्रीन पे नहीं बैठे होते हैं, तो गाड़ी जो चलाते हैं हम वो टाइम हमारा बड़ा ना वेस्ट सा टाइम होता है डिस्टेंस को मेंटेन करने के, उस वक्त हम ना कोई फिजिकल वर्कआउट कर सकते हैं ना किसी से ज्यादा कॉल पे बात कर सकते हैं, तो ये जो 89.6 से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो एंटरटेनमेंट मिल रहा है, और जो टाइम टू टाइम आपने ये नया इनिशिएटिव लिया ना, किसी भी अच्छे एक जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो या फिर कोई डॉक्टर्स हैं या कोई फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं, ये जो लगातार आप बुला रहे हो, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं उस टाइम अगर हमें कोई सुनने मिले तो एक तो बहुत मजा आता है, हमारा टाइम पास हो रहा है बहुत अच्छा,
0: और इन्फॉर्मेशन
2: मिल रही है और हमें डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा, डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं तो भाई बहुत बिग फैन हूँ रेडियो की, और मैं मुझे इतना मजा आता है आरजे आनंद और आरजे राज को सुन के, मेरा तो दिन बन जाता है सीरियसली, तो मैं आप सबसे भी बोलूंगी कि अभी जिन लोगों ने रेडियो 89.6 सुनना शुरू नहीं किया है वो सुनना शुरू कर दें, आज मुझे इस स्टूडियो में इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, इतना मजा आ रहा है, आप लोग सुनेंगे तो आपको कितना मजा आएगा
0: सीरियसली। बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत अच्छा लग रहा है, इससे ज्यादा मत बोलना नहीं तो हम बाहर हो जाएंगे।
2: केली
0: सो मच, बंद करते हैं इस पॉडकास्ट को, सुनने वालों को लगेगा गाना नहीं आया, पूर्वा जी ने इतना अच्छा सुनाया, तो चलिए ये वाला गाना अब हम आपको सुनाएंगे मैं और राज, फिर किसी और प्रोग्राम में मिलेंगे किसी और मस्त पर्सनालिटी के साथ,
2: बिल्कुल
0: ठीक है पूर्वा जी,
2: वेरी
0: थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखिए आप, और फिर दोबारा जरूर आइए कभी मौका लगे तो, चलिए बाय
2: बाय,
0: टेक केयर,
2: बाय।
3: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है, दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान, ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से, आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जाने और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, पहला सामुदायिक रेडियो। और इस रेडियो पर पहला प्रोग्राम जो चल रहा है आपकी सुबह को एनर्जेटिक बनाने वाला, जिसका नाम है बिंदास मॉर्निंग। और इस प्रोग्राम में आज मैं हूं आपका दोस्त आनंद, और आज हमारे साथ हैं रीना। तो रीना, आपका स्वागत है, कैसी हैं आप इस प्रोग्राम में? आपका स्वागत करते हुए आगे बढ़ेंगी। गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग, मैं बहुत बढ़िया हूं, तुम बताओ तुम कैसे हो?
0: बहुत अच्छा हूं। और आज सुबह सुबह उठने में ठंड लगी या नहीं आपको?
1: नहीं नहीं यार, मेरे को सुबह उठने में ना, सच बताऊँ, जिंदगी का काम बड़ा मुश्किल लगता है सुबह उठना।
0: मुझे भी लगता है यार, लेकिन फिलहाल आज का विचार कहता है कि मन का हो तो बहुत अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा।
1: बिल्कुल।
0: तो देखिए, हर चीज हमारे मन से हो जरूरी नहीं है। जब हमारे मन से नहीं होती है तो वो ऊपर वाले के मन से होती है, यानी कि उस परमपिता परमात्मा के मन से होती है। और जब उसके मन का होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। जी हाँ। तो चलिए श्रोताओं, आज का हम आपका वार्म वेलकम करते हुए स्वागत करेंगे। आज प्रोग्राम में बहुत सारी खास बातचीत आपको बतानी है, तमाम जानकारियां हैं जो हमारे आसपास के लोगों के डेली रूटीन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिलने वाली है, और कहीं ना कहीं आपके काम में भी आने वाली है। तो मैं और रीना तमाम सारी जानकारियों के साथ आपके रेडियो पर हमने दस्तक दे दी है। आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं हमें संदेश पहुंचाकर, दोस्तों 9837896896। श्रोताओं, एक बहुत ही खूबसूरत गाना आपका इंतजार कर रहा है। इस गाने के बाद मैं और रीना पुनः लौटेंगे, आपसे और भी बहुत सारी बातचीत करेंगे। तो आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: चैन तो हमें भी मिल जाता है श्रोताओं जब हम आपसे बातचीत करने आते हैं, क्यों रीना, मैं रीना को भी लेकर आ गया हूँ सुबह सुबह। आज आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और दोस्तों बिंदास मॉर्निंग में हम बातें कर रहे थे अभी आज 1 मार्च को क्या स्पेशल, लेकिन कहीं ना कहीं जो ठंड है ना इसका असर भी अभी देखने को मिल रहा है। देखो भाई मार्च शुरू हो गया लेकिन ठंड फिर भी जो है लगातार जारी है।
1: बिल्कुल, जब आनंद ने मेरे को कॉल किया रीना तुम्हें शो में आना है भैया, मतलब आने से पहले ना 10 बार तो मैंने सोचा मैंने कि जाऊं ना जाऊं, कंबल से बाहर निकालो तो पैर तो ठंड लगने लग जाती है।
0: और सुबह सुबह तो यार बहुत मुश्किल होता है, मतलब रेडियो आना शो करना, लेकिन वो ये ना जब श्रोताओं से प्यार होता है तो आना ही
1: मजा आ जाता है,
0: मजा ही आ जाता है। लेकिन आजकल ना हमारे आसपास में ये लाइट की समस्या बड़ी हो रही है रीना,
1: मतलब
0: मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि रात में जब ये लाइट चली जाती है ना तो हालांकि मच्छर भी जो है अभी आने शुरू हो गए हैं।
1: ऊपर से हमें कुछ दिखता नहीं है भैया, किचन में जाए तो चले जाते बाथरूम में,
0: वो बात अलग है कि तुम्हें उसके लिए हमेशा लाइट का सहारा लेना पड़ता है। सो दोस्तों ये तो मस्ती मजाक है, फिलहाल आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं और अब हम बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। सुबह सुबह मुझे लगता है कि हर इंसान को ना एक अच्छे रूटीन की जरूरत होती है, एक अच्छे लाइफस्टाइल की जरूरत होती है, क्यों रीना?
1: बिल्कुल।
0: तुम अपने दिन की शुरुआत कैसे करती हो रीना?
1: जब भी मैं उठती हूँ गर्म पानी पीती हूँ सबसे पहले, फिर चने में रात को जो भिगो कर रखती हूँ उसको खाती हूँ, और उसके बाद मैं जस्ट 1-2 घंटे बाद फिर मैं उस जूस पीती हूँ।
0: अच्छा, मतलब तुम इस तरीके से अपनी सुबह की शुरुआत करती हो। तो दोस्तों ये तो थी रीना की दिन की शुरुआत। अगर मैं बात करूं अपने आसपास के लोगों की, अगर आसपास की महिलाओं की या पुरुषों की या उन छोटे बच्चों की जो सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, या वो बुजुर्ग जो घर में हैं और अपना मतलब जो है ख्याल तो रखते ही है, लेकिन अपने दिन की शुरुआत की अगर हम बात करें तो हर किसी का तरीका बहुत अलग होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल अलग।
0: तो आप लोग अपने दिनचर्या की शुरुआत कैसे करते हैं? आप योगा करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं? कैसे अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं आप जरा हमें फोन करिएगा 9837896896 यानी कि 9837896896। ये हमारे स्टूडियो का नंबर है, इस नंबर के जरिए आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। प्रोग्राम है बिंदास मॉर्निंग, आरजे रीना और आरजे आनंद आपके साथ इस प्रोग्राम में बने हुए हैं। कुछ संदेश आ गए हैं, जैसे हमारे पास शुरभि का मैसेज आया है, ये लिखती है सर आज तो खासी ठंड है लेकिन आप दोनों को सुन के बहुत मजा आ रहा है। क्या बात है रीना, मुझे तो अच्छा लगा इनका मैसेज।
1: और ये गर्मा गर्म चाय भी पी रही है, अदरक वाली देख नहीं रही हो भेज रही है।
0: देखो आप गलत कर रही है शुरभि जी, मैं बताऊं तो हमें भी भेजो इस तरह की चाय बनाकर।
1: बिल्कुल, हमें भी ठंड लग रही है, मजा आएगा थोड़ा चाय पीते पीते शो करेंगे तो।
0: चलो एक काम करते हैं, अब एक कार्यक्रम में गीत सुनते हैं और अब लौट कर आते हैं थोड़ी देर में, तो तब तक आप हमें फोन करते रहिए 9837896896। बताइए आप अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: एक और प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद हम आएंगे, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद।
1: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: क्या बात है।

0: श्रोताओं बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। एफएम मुरादाबाद 89.6 आप सुन रहे हैं, प्रोग्राम में आनंद आपके साथ है, रीना भी मेरा साथ दे रही हैं। दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने म्यूजिकल ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात की थी कि सुबह की अपनी शुरुआत आप कैसे करते हैं, अपने दिन की शुरुआत आप कैसे करते हैं, आप हमें फोन करके बता सकते हैं। और यही बताने के लिए एक बड़े प्यारे श्रोता का फोन आया है हमें, कहाँ से कौन जुड़े हैं आइए जरा इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सर।
1: नमस्कार आनंद जी, मैं बोल रहा हूँ प्रणव लाजपत नगर से।
0: जी लाजपत नगर से प्रणव हाँ। जी जुड़े हैं सुबह सुबह। सर स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं, पहले बताइए कैसे हालचाल है।
1: हालचाल बहुत बढ़िया है आनंद जी। और आनंद जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन देते हैं रेडियो पे
0: जी,
1: जो
0: जी।
1: मतलब एक तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे मुरादाबाद का ये पहला रेडियो स्टेशन है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, जो इतनी सारी बातों से हम लोगों को आप बताते हैं हमारे शहर में क्या चल रहा है। कभी कभी होता है ना, कभी हमें नहीं रहता तो सुन लेते हैं, हम ट्यून अप कर लेते हैं सुबह सुबह, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारे शहर में क्या चल रहा है। मतलब
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसके लिए तो आपको और आपकी टीम को मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। जी बताएं अखिल जी, क्या करते हैं वैसे आप असल जिंदगी में?
1: असल जिंदगी में मैं जरा अभी जॉब करता हूँ।
0: अच्छा, मैं जरा अभी जॉब करता हूँ, ये समझ में नहीं आए बीच में क्यों आ गए।
1: ये रहता है ना, क्योंकि मन करता कि अब इस कंपनी में काम कर रहे हैं, दूसरी कंपनी में जाके
0: समझ सकते हैं। वो देखिए जब इंसान धरती पर आता है तो उसकी इच्छाएं और उसकी जो अंदर की चीजें वो बदलती रहती है समय समय पर, है ना?
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो बस जॉब जो है जरा जरा सी चलती रहती है।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जरूरी है साहब। अच्छा तो अखिल जी बताइए आप अपने सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं, जैसे कि हम पूछ रहे हैं आज अपने श्रोताओं से।
1: सुबह की शुरुआत तो सबसे पहले जो है हमारी बैग टी से होती है
0: जी,
1: जब एक बैग टी आ जाती है, गरम गरम प्याली सी चाय आ जाती है, और आपके शो से होती है सच में तो।
0: अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: और विद आनंद के साथ, और उसके साथ चाय, गरम गरम चाय।
0: क्या बात है, चाय से आप सुबह की शुरुआत करते हैं। और कई लोग जैसे हमें कहते हैं कि सुबह सुबह फ्रूट्स खाने चाहिए, सुबह सुबह चाय नहीं पीनी चाहिए, और हेल्दी ब्रेकफास्ट को शामिल करना चाहिए सुबह सुबह अपने रूटीन में।
1: वो भी मैंने किया है और मैंने करके भी देखा है, और होना भी चाहिए। एक्चुअल में होता है कि आपके पास फ्रेश फ्रूट्स हो, सब कुछ आपके पास स्टार्टिंग में, अगर मॉर्निंग आपकी फ्रेश फ्रूट्स हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और बस ये है, चाय हमारी रेगुलर उसमें आ गई, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अभी ये हैबिट्स चेंज होंगी।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है। और अखिल जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और हम तो यही कहना चाहते हैं कि देखिए चाय बिल्कुल आप पीजिए, बहुत जरूरी है। सुबह सुबह चाय की तलब तो हर हिंदुस्तानी को होती है सुबह उठते ही, है ना? लेकिन उसके
1: हाँ आनंद जी, मेरा नाम प्रणव है। प्रणव
0: जी जी जी, प्रणव जी माफी चाहूंगा, मैं बस यही कहना, आपसे पहले हमारे जो कॉलर जुड़े थे उनका नाम था इसीलिए वो दिमाग में आ गया। सी मैं कहना चाह रहा था आपसे प्रणव जी कि देखिए क्या है ना कि सुबह सुबह एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है खान पान के साथ साथ।
1: हाँ एक्सरसाइज तो है, मैं ये थोड़ा सा मिस तो करता ही हूँ कि एक्सरसाइज एक्चुअली क्या है, अगर एक्सरसाइज रहता है तो पूरे दिन आपका फ्रेश रहता है, थोड़ा सा आप पूरे एक्टिव जोन में भी रहते हैं। एक्सरसाइज तो मैं मतलब करता हूँ रेगुलर, उसमें मतलब वैसे तो नहीं कह सकता कि जिम ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि अब इस समय मेरे पास टाइम नहीं रहता सुबह सुबह जिम का,
0: भाग दौड़ वाला समय रहता है मतलब काफी।
1: तो मैं ये है कि सुबह सुबह अपना हाँ, जब अपने बेड से उठा, थोड़ा सा एक्सरसाइज हुई, थोड़ी सी वॉक भी करके आता हूँ, क्योंकि कॉलोनी में वॉक से ये भी पता चलता रहता है कि क्या एक्टिविटी चल रही है आपकी। तो ये करके उसके बाद अपनी एक्सरसाइज करके फिर अपना एक चाय और आपका शो, और उसके बाद फटाफट तैयार हो जाए भैया काम पे निकल।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा आपने फोन किया प्रणव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहाँ से फोन किया था मुरादाबाद में?
1: लाजपत नगर
0: से। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हैव अ गुड डे, आपने फोन किया, ख्याल रखिए अपना और ध्यान रखिए और रेडियो सुनते रहिए साहब।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जुड़े थे हमारे साथ प्रणव जी लाजपत नगर से, इन्होंने बताया ये तो अपनी सुबह की शुरुआत गर्मा गर्म एक कप कड़क चाय से करते हैं। बाकी श्रोताओं आप भी बता सकते हैं, दीदी जी आप भी बता सकती हैं, आप सुन रही हैं आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और आज हम बात कर रहे हैं अपने श्रोताओं से आज की सुबह की, आप बताइए आप अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं। ये रीना अभी तक नहीं स्टूडियो में आई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी अपनी सुबह की शुरुआत करने गई हो, कभी ब्लैक कॉफी बनाने गई हो? चलिए मैं उसको ढूंढकर लेकर आता हूं, कुछ शॉर्ट एड ब्रेक आएंगे, उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मैंने आपके लिए निकाल के रखा है, उसको सुनेंगे आप और हमारी आपकी मुलाकात होगी जरा सी देर में। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।

इस खूबसूरत सी गीत के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और दोस्तों, मुझे तो लगता है कि रीमा वाकई में गायब हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ प्यारे प्यारे संदेश पहुंचे हैं। सबसे पहले एफएम मुरादाबाद सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका इस खूबसूरत सी सुबह में। और मेरे पास संदेश पहुंचा है यहाँ पर निधि जी का, ये मुझे लिखती है, आनंद जी सुप्रभात, और सुबह सुबह आपका कार्यक्रम सुन के बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ एक गिलास गर्म पानी से, और ये गर्म पानी जो है मेरी स्किन के लिए और मेरे बालों के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा है और सभी को पीना चाहिए। और मैं योगा भी करती हूँ, प्राणायाम भी करती हूँ, और आनंद जी आपके प्रोग्राम के माध्यम से हमें तमाम सारी जानकारियां भी मिलती हैं। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इसी बीच हमारे पास मनोज पाल जी का भी संदेश आया है, इन्होंने लिखा है, आनंद जी सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, आपका कार्यक्रम हमें काफी अच्छा लगता है और हम अपनी सुबह की शुरुआत आपके रेडियो से करते हैं। अरे भैया, हमने पूछा था मतलब कैसे करते हैं, मतलब खाने पीने से रिलेटेड बातें हो रही थी यार। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप हमारा रेडियो सुनते हैं और उससे अपनी दिन की जो है शुरुआत करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोता, हम बात कर लेते हैं अपनी महिलाओं से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। तो बहुत जरूरी है उनके अधिकारों को पहचानना, उनके राइट्स को पहचानना। तो देखिए, अब जो है जमाना, महिलाओं, अब जितनी भी लेडीज हैं मुझे सुन रही हैं सुबह सुबह, उन सभी से कहना चाहते हैं, जमाना बहुत आगे हो गया है। अगर अभी तक आप डिजिटली एक्टिव नहीं है, अगर आप अभी तक ऑनलाइन पेमेंट नहीं करती है, तो शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि आप बहुत पीछे हैं। तो देखिए, ऑनलाइन पेमेंट करने का तरीका बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने अकाउंट्स बनाने हैं आपको ऑनलाइन। आपको अपने फोन पे जो भी आप डाउनलोड करती हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, डाउनलोड कीजिए, अपना अकाउंट बनाइए और उसके बाद सीधा आप भी डिजिटल हो जाइए। आजकल तो खैर तमाम सारे वीडियोज और तमाम सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके फोन पर ही मिल जाती है, तो जरा डिजिटल ही हो जाइए, ये सब चीजों में जुड़ना शुरू कीजिए, बहुत जरूरी है। जितनी भी महिलाएं हमें सुन रही हैं इस वक्त इस प्रोग्राम में, उनसे यही कहना चाहते हैं कि भाई साहब, आप जो है चाहे महिला हो या पुरुष हो, सबको राइट है सही समय पे सही चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए और समय के साथ मिलकर जो है कंधे से कंधा मिलाकर कदम को चलाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मुझे जो है घड़ी की सुइयां और ज्यादा वैसे खैर इजाजत नहीं दे रही है कि मैं आपसे और ज्यादा बातचीत करूं, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि अगला प्रोग्राम भी तो आपके लिए आने वाला है। अगला प्रोग्राम यानी कि अगला कार्यक्रम लेकर आ रही अगली आरजे प्रस्तुत होंगी आपके बीच में। तब तक के लिए आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। कल सुबह सवेरे फिर जुड़िएगा मेरे साथ इसी प्रोग्राम में, जहां कुछ नई बातें होंगी, कुछ नई चर्चा होगी और कुछ नई खबरें होंगी। अभी के लिए आरजे आपसे लेता है जाने की इजाजत। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और हाँ, कल का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, कल का प्रोग्राम बहुत खास होगा। क्यों, इसके विषय में अगर आपको जानना है तो आप स्टे ट्यून रहना पड़ा एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर, यानी कि आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। चलिए श्रोताओं, अभी मैं लेता हूं आपसे जाने की अनुमति। नमस्कार, गुड डे, बाय।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, पहला सामुदायिक रेडियो। और इस रेडियो पर पहला प्रोग्राम जो चल रहा है आपकी सुबह को एनर्जेटिक बनाने वाला, जिसका नाम है बिंदास मॉर्निंग। और इस प्रोग्राम में आज मैं हूं आपका दोस्त आनंद, और आज हमारे साथ हैं रीना। तो रीना, आपका स्वागत है। कैसी हैं आप इस प्रोग्राम में? आपका स्वागत करते हुए आगे बढ़ेंगी। गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग, मैं बहुत बढ़िया हूं। तुम बताओ, तुम कैसे हो?
0: बहुत अच्छा हूं। और आज सुबह सुबह उठने में ठंड लगी या नहीं आपको?
1: नहीं नहीं यार, मेरे को सुबह उठने में ना, सच बताऊं, जिंदगी का काम बड़ा मुश्किल लगता है सुबह उठना।
0: मुझे भी लगता है यार, लेकिन फिलहाल आज का विचार कहता है कि मन का हो तो बहुत अच्छा, और ना हो तो और भी अच्छा।
1: बिल्कुल।
0: तो देखिए, हर चीज हमारे मन से हो जरूरी नहीं है। जब हमारे मन से नहीं होती है तो वो ऊपर वाले के मन से होती है, यानी कि उस परमपिता परमात्मा के मन से होती है। और जब उसके मन का होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। जी हाँ। तो चलिए श्रोताओं, आज का हम आपका वार्म वेलकम करते हुए स्वागत करेंगे। आज प्रोग्राम में बहुत सारी खास बातचीत आपको बतानी है। तमाम जानकारियां हैं जो हमारे आसपास के लोगों के डेली रूटीन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिलने वाली है, और कहीं ना कहीं आपके काम में भी आने वाली है। तो मैं और रीना तमाम सारी जानकारियों के साथ आपके रेडियो पर हमने दस्तक दे दी है। आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हमें संदेश पहुंचाकर दोस्तों 9837896896। चलिए श्रोताओं, एक बहुत ही खूबसूरत गाना आपका इंतजार कर रहा है। इस गाने के बाद मैं और रीना पुनः लौटेंगे, आपसे और भी बहुत सारी बातचीत करेंगे। तो आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।
2: माँ की नज़र फिर से साफ हो, पापा बिना चश्मे अखबार पढ़ सकें, बच्चों को कम उम्र में चश्मा ना लगे, यही तो ख्वाहिश है हर परिवार की। तो आंखों से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आज ही आए बजाज आई हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर आकाश बजाज और डॉक्टर अशोक बजाज लाते हैं आधुनिक मोतियाबिंद सर्जरी और नेत्र रोगों का विशेषज्ञ इलाज। हॉस्पिटल का पता ताड़ीखाना चौराहा मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9548088900।
3: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
4: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
3: अरे वाह।
4: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
3: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965।
5: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। यह है आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। और दोस्तों, यहां पर वक्त हुआ है 10:09। बहुत ही खूबसूरत सा दिन है, बुधवार का 13 मई की तारीख है। और आपकी खुशी हाजिर है आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम लेकर। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही पावन और शुभ है, क्योंकि आज है भगवान विष्णु जी की अपारा एकादशी। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत और भगवान हरि श्री हरि का स्मरण करने से जीवन में सुख शांति और सकारात्मकता ऊर्जा का आगमन होता है। कहते हैं, जहाँ सच्ची श्रद्धा और भक्ति होती है, वहाँ भगवान विष्णु की कृपा स्वयं रास्ता बना देती है। तो आज के इस पावन अवसर पर आप सभी को हमारी तरफ से एकादशी की, अपारा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड दोस्तों, कहते हैं ना, आज के इस पावन अवसर पर आप सभी अपने मन में अच्छे विचार रखें, ज़रूरतमंद की मदद करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हरि विष्णु भगवान जी आपके जीवन में खुशियां लेकर आएं और आपका जीवन ऐसे ही खूबसूरती के साथ बीते और अपनों के साथ बीते। दोस्तों, सुबह की खूबसूरत सी सुबह में खुशी आपके साथ है। और मैं आपसे कहती हूँ कि देखिए, हल्की हल्की हवाएं भी चल रही हैं, मौसम बहुत ही अच्छा है। कभी धूप हो जाती है तो कभी हल्के से बादल भी हो जाते हैं। और इस ब्यूटीफुल प्रोग्राम में आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। एक खूबसूरत सा गीत आपको सुनवाते हैं फ्रॉम द मूवी तेरे नाम। लौट कर आती हूँ मैं इस प्यारे से गीत के उस पार। साथियों, आप भी जुड़ जाइएगा। करेंगे आज क्या क्या स्पेशल है, कौन सा डे आज सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत कुछ खास है आज हमारे शो में। तो आप बस अपने संदेश हमें पहुँचा दीजिएगा और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, चिपके रहिए, सुनते रहिए। मुझे पता है आप ब्रेकफास्ट बनाने में रेडी करने में बिजी हैं और कुछ अभी ऑफिस जा रहे हैं तो कुछ पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर, कुछ अभी भाग दौड़ करते हुए कॉलेज जा रहे हैं। और इस समय जो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं ऑटो वाले भैया, वो भी हमें सुन रहे हैं, सवारी को बिठाकर लेकर जा रहे हैं उनकी मंजिल तक। आप सभी को हम दिल से सलाम करते हैं और आप सभी का शो में स्वागत करते हैं। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक शानदार गीत, उसके बाद इस शानदार गीत के बाद मैं लौट कर आती हूँ। आप कहीं मचाइए, दिल से मुस्कुराइए, खुशी आपके साथ है।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और समय हुआ है 10:23 राइट नाउ। तेरह मई की तारीख है दोस्तों और कैसे यू नो साल का पांचवा महीना भी लाइक कंप्लीट आज 13 दिन हो गए हैं और पता नहीं चल रहा है। बहुत सारे खुद से प्रॉमिस किए थे आपने, रेजोल्यूशन लिए थे कि हम इस साल ये करेंगे जो हमने पहले नहीं किया है। बट दोस्तों अभी भी आपके पास वक्त है, हर एक दिन एक नया मौका मिलता है खुद को इम्प्रूव करने का, खुद को बेस्ट लाइफ में आगे यू नो बढ़ाने का, बेस्ट करने का, परफॉर्म करने का। तो इस मौके को ना बिल्कुल भी मिस मत करो। जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं और शुरुआत कल से नहीं अभी से करो। हाँ, कल पर मत टालिएगा क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है, तो बिल्कुल भी टालना नहीं चाहिए। कोई अगर कार्य आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और अभी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि जब आप शुरुआत करेंगे तो समझो आधी मंजिल तो आपकी मिल गई है। सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरजी खुशी का गुड मॉर्निंग। और साथियों, आज का दिन आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है क्योंकि आज जन्मदिन है आध्यात्मिक गुरु और शांति के संदेश वाहक श्री श्री रवि शंकर जी का। उन्होंने पूरी दुनिया को प्रेम, शांति, ध्यान और मानवता का संदेश दिया। उनकी बातें हमें सिखाती हैं श्रोताओं, मन शांत हो तो जीवन की हर मुश्किल आसान लगने लगती है। आज उनके जन्मदिन पर हम यही कामना करते हैं कि उनके विचार हर किसी के जीवन में खुशियां, सुकून और नई प्रेरणा लेकर आए। श्री श्री रविशंकर जी को हमारी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्रोताओं, मैं कहना चाहती हूँ कि इस बहुत ही खूबसूरत सी कार्यक्रम में आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं बिना किसी देरी के। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और एक सवाल भी हम आपसे पूछने वाले हैं। जी हाँ, आपकी हेल्थ से ही रिलेटेड है और हम आपसे जानेंगे, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उससे पहले ना सवाल से पहले हम आपके संदेश शामिल कर लेते हैं। बैक टू बैक आप सभी के यहाँ पर खूबसूरत संदेश आ रहे हैं, तो उनको कैसे हम पीछे स्किप कर सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता है। और सच बताऊं ना दोस्तों, आपके मैसेजों के बिना, संदेशों के बिना ये शो अधूरा लगता है। जब आप सब पार्टिसिपेट करते हैं, आपके संदेश आते हैं तो खुशी का मन और खुश हो जाता है। एंड आप भी खुश होते हो ना? बताओ बताओ। हाँ हाँ, मुस्कुरा रहे हो, चलिए मुस्कुराइए। सुबह सुबह की शुरुआत मुस्कुरा कर ही करनी चाहिए। और तमाम श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं और हमारे पास यहाँ पर बैक टू बैक संदेश आ रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर मैसेज आया हुआ है, हाय मैम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन। ये मैसेज हमें पहुँचाती है रहमत नगर छपर वाली मस्जिद से। पहुँचाते हैं बाबू अंसारी जी, इरशाद अंसारी जी और साथ में इनके फ्रेंड्स शादी कली जी हैं, महाराज अंसारी जी हैं। और इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी फोटो क्लिक करके भेजी है जहाँ पर इन्होंने बहुत सारे खूबसूरत पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स भी खिले हुए हैं। वाओ, वेरी गुड सर। वैसे मुझे भी बहुत ही ज़्यादा यू नो शौक है गार्डनिंग करने का, पेड़ पौधे लगाने का और उनकी देखभाल करने का। जब आंगन में फूल खिलखिलाते हैं, खुशबू आती है, बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह का वो एकदम पॉजिटिव वातावरण। और जब हम सुबह सुबह उठ के अपनी बालकनी में जाते हैं, वहाँ की फ्रेश हवा, खूबसूरत प्लांट, मुस्कुराते हैं और आपको गुड मॉर्निंग भी विश करते हैं। श्रोताओं, देखिए प्लांट लगाना ज़रूरी है, लेकिन प्लांट लगाकर उसकी देखभाल करना भी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो उसकी भी देखभाल करो। एंड नियमित, मतलब अगर आपको रेगुलर टाइम नहीं मिलता तो वीकली साफ़ सफाई कीजिए, उनको नियमित रूप से पानी दीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जैसे हमें पानी की ज़रूरत होती है, वैसे ही पेड़ पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है। तो उनको भी समय समय पर पानी दें ताकि वो भी और ज़्यादा ग्रीन, खूबसूरत हो जाएं। और हमारे पास यहाँ पर और भी संदेश आए हैं, लेकिन मैं बातों में इतना मशरूफ हो जाती हूँ ना कि संदेश ही आपके यू नो पढ़ने में थोड़ा सा लेट कर देती हूँ। बट हाँ, अब लेट नहीं होगा, अब हम बैक टू बैक मैसेज पढ़ते हैं। ठीक है एवरीवन, अब मुस्कुरा दूँ, अब आपकी बारी है। जो आपने संदेश भेजा है ना, मैं उसी को पढ़ने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास खूबसूरत सा ये मैसेज कश्मीर से आया है महराजुद्दीन जी का। और ये कहते हैं, खुशी जी को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग।
अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है। कहते हैं कि आदरणीय प्रसारक जी को हमारा नमस्कार और तहे दिल से आपका शुक्रिया, मोस्ट वेलकम सर। ये मैसेज पहुँचाते हैं ताज मोहम्मद अंसारी जी, साथ में महराज जहाँ हैं। और ये मैसेज हमें मिला है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, उत्तराखंड से हमारे श्रोता जुड़ते हैं, बहुत सारे अच्छा लगता है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है सिरगांव छत्तीसगढ़ से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा जी का। कहते हैं आरजी जी को हमारा नमस्कार। अरे थैंक यू सो मच, आपको भी नमस्कार सर। और इन्होंने जो फ्लावर्स भेजे हैं, जो डिज़ाइन करके ये मैसेज भेजा है ना, दिल से शुक्रिया। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, बस गुड मॉर्निंग विश कर दिया है। ऐसे मत किया करो साथियों, मैं कितनी बार बोलती हूँ, जब आप मैसेज करते हैं तो अपना नाम भी ज़रूर शामिल किया कीजिए, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। अगला मैसेज हमारे पास आया है, हाय नमस्कार खुशी जी, सोनू गौतम जी का मैसेज हमारे पास आया है रामपुर उत्तर प्रदेश से। थैंक यू सो मच, वेरी गुड मॉर्निंग सोनू जी, आपने अपना संदेश यहाँ पर पहुँचवाया है। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, प्रिय मित्र खुशी जी को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं गणेश प्रसाद जी उजदार काठमांडू से। थैंक यू सो मच, आप सभी ने खूबसूरत मैसेज यहाँ पर पहुंचाए हैं। और दोस्तों मेरा एक सवाल है, वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अभी मालूम करूँ या पहले एक गाना प्ले कर दूँ? अच्छा सुनो, पहले एक गाना प्ले कर देते हैं, है ना, उसके बाद हम आपसे एक सवाल पूछने वाले हैं और वो सवाल बहुत प्यारा है, ठीक है? तो आप पहले एक गाना सुनो, उसके बाद मैं लौट कर आती हूँ, फिर हम करेंगे और भी गुफ्तगू, बहुत सारी गपशप, बहुत सारी बातें, ढेर सारा प्यार आप सभी के लिए। आरजी खुशी लेकर आई है।

0: गीतांजलि पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
4: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
3: अरे वाह।
4: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी
3: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965।
5: अगर 12th के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान, तो सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
1: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।
6: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
7: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
8: अरे भैया, नाचना है तो

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। और श्रोताओं, यहां पर वक्त की बात करें तो अभी समय हुआ है 10:40 और खुशी आपके साथ है। अब खुशी ने आपसे एक वादा किया था, आपको याद है? अच्छा, नहीं याद है। ओहो, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपसे कहा था कि श्रोताओ, मैं जब लौट कर आऊंगी ना, तो आपको एक बहुत ही प्यारा सा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, एक सवाल मैं आपसे मालूम करने वाली हूँ। और उस सवाल का जवाब देने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, ये बात तो मैं जानती हूँ, क्योंकि

हम अपने श्रोताओं की दिल की बात जानते हैं, यही तो रिश्ता होता है ना, दिल से दिल का। और अभी इस समय हमारे श्रोता कुछ काम में बिजी हैं, तो कुछ अभी आराम से शॉप पर बैठे हैं, दुकान पर बैठे हैं, कुछ अभी कार में हैं, समय ड्राइव कर रहे हैं। और हमारी जो मैम है वो अभी थोड़ा सा फुर्सत से आराम से बैठी है। क्या कर रही है? हाँ, अभी वो रेडियो सुन रही है, कुछ गाने वाने सुन लेती हैं, और कुछ तो अभी सब्जियां भी कट कर रही हैं कि चलिए रेडियो भी सुन लेते हैं, काम भी कर लेते हैं, कपड़े भी वॉश कर लेते हैं, बहुत सारे काम घर के होते हैं। और मैं आप सभी की कामों में ना हेल्प कराने के लिए आ गई। देखियो, मैं वहाँ पे घर पर आकर तो हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मैं आपको प्यारे प्यारे यहाँ पर ट्रैक जानकारियाँ सारे कुछ लेकर आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, ताकि आपका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा सा कम हो जाए और आप हैप्पी फील करें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो संदेश आए हैं उनको भी हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल था जो मैं आपसे मालूम करने वाली हूँ। क्या सवाल है वो जानने के लिए आप उत्सुक है ना? हाँ हाँ, चलिए पूछ लेते हैं। दोस्तों देखिए, गर्मी अपने पूरे शबाब पर है, और ऐसे में खुद का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आप मुझे बताइएगा, हमें बताइए कि इस गर्मी में आप खुद का ख्याल कैसे रखते हैं? क्या आप ज़्यादा पानी पीते हैं, ठंडी चीज़ें खाते हैं, घर में रहते हैं, या फिर कोई देसी नुस्खा अपनाते हैं? खुद को तरोताज़ा रखने के लिए आप क्या करते हैं, बताइए श्रोताओं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस गर्मी में अपना ख्याल कैसे रखते हैं। फटाफट से हमें मैसेज कीजिएगा, नंबर 9837896896। ये है हमारे स्टूडियो का मैजिकल नंबर, जहां पर आपको अपने संदेश हमें पहुंचाने हैं। और श्रोताओं, यहां पर जो मैसेज आए हैं उनको भी मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूं। अब हम कोई भी देरी नहीं करेंगे। और यहां पर हमारे पास संदेश आया है, ये हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। जोन रोजी परवलीज जी कहते हैं, रिस्पेक्टेड आरजे जी, आपको गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। ये हमें जनकपुरी सहारनपुर से अपना मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, हाय मैम गुड मॉर्निंग, रामपुर से शमा जी का मैसेज हमारे पास आया है। शमा, आई एम गुड, आप बताओ आपकी कैसे हाल चाल है? और आप पूरे दिन अपने घर में इतने सारे काम्स होते हैं, फीमेल्स के ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन सभी के बीच आप खुद के लिए कितना समय निकालती हैं और खुद को कैसे तरोताज़ा रखती हैं इस गर्मी में, ज़रा बताइएगा अपने मैसेज करके। हाँ, हम जानना चाहते हैं हमारे जो श्रोता हैं वो खुद का ख्याल कैसे रखते हैं। एंड अगले मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है नईमूल अक्रम जी का, सिरसवा दोराहा से, और ये कहते हैं, खुशी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। अच्छा लगता है इतने सारे गुड मॉर्निंग आप विश करते हैं, लेकिन गुड मॉर्निंग के साथ साथ हमारे सवालों की जवाब भी पहुँचाइए। और मैं अभी आती हूँ बस लौट कर एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं फिर लौट कर आते हैं। तब तक के लिए खुशी आपसे कहती है कि आपको कहीं नहीं है जाना, रेडियो की स्विंग को बिल्कुल भी नहीं घुमाना है, और दिल से मुस्कुराना है, ठीक है? क्योंकि मुस्कुराते हुए आप सब बहुत अच्छे लगते हो, और मुस्कुराने में ना कोई कंजूसी मत किया करो, क्योंकि मैं आपसे बताऊं, मुस्कुराने का ना कोई पैसा खर्च नहीं होता है, ठीक है? चलो मुस्कुराओ और ये प्यारा सा गाना एंजॉय करते जाओ।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
5: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
4: हाँ छोटी, आज हम सब समुद्र की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
6: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
7: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
8: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये जो हवाएं हैं ना, ये हमें आपकी ओर खींच कर ले आती हैं, हम आपकी ओर खींचे चले जाते हैं, क्योंकि आप सब इतना प्यार जो करते हैं अपने शहर के, जी हाँ, पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 से, और यही तो मोहब्बत है जो आपकी ओर हमें खींच कर लेकर आती है और आप हमारी ओर खींचे चले आते हैं। दोस्तों देखिए, अभी बहुत ही खूबसूरत सा आपने ट्रैक सुना, ले जाए जाने कहाँ हवाएं, कुछ नहीं पता है और मौसम भी कुछ ऐसा ही रंग बदल रहा है। दोस्तों अभी देश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं एंड बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और कई सक्रिय मौसम प्रणालियों के कारण दक्षिण भारत, पूर्वी उत्तर पहाड़ी राज्यों में और अंडमान निकोबार में बारिश, आंधी और गरज चमक का दौर जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दूसरी ओर राजस्थान, गुजरात और कई इलाकों में भीषण गर्मी और लू का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जबकि पश्चिम भारत में गर्मी से राहत फिलहाल मुश्किल दिख रही है एंड पता नहीं आने वाले मौसम में समय में कैसा होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मौसम चाहे कैसा भी हो, आप हमेशा सावधान रहिए एंड कुछ चीज़ों के साथ आप हमेशा जब बाहर जा रहे हैं तो बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, अपने साथ लेकर जाना है। जैसे अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो उस समय अपना छाता, रेनकोट साथ रखें। बारिश के दौरान खुले मैदान और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें और बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि मौसम बदलता रहता है लेकिन हमारी मुस्कुराहट और सावधानी हमेशा साथ रहनी चाहिए। क्यों दोस्तों, अर्जी खुशी सही कहती है ना। और चलिए, अभी हमने आपसे एक सवाल पूछा था, बहुत ही खूबसूरत था और बहुत इजी सा क्वेश्चन था हमारा आज की सुबह, वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ अगेन। अभी आप भूले तो नहीं हो ना, चलो याद है, वेरी गुड। हमने आपसे पूछा है दोस्तों कि इस गर्मी में आप खुद का ख्याल कैसे रखते हैं, लाइक खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने आपसे बस यही पूछा है कि आप हमें बताइएगा कि इस गर्मी में आप खुद का ख्याल कैसे रखते हैं। क्या आप ज़्यादा पानी पीते हैं, ठंडी चीज़ें खाते हैं, घर में रहते हैं या फिर कोई देसी नुस्खा अपनाते हैं, खुद को तरोताज़ा कैसे रखते हैं, ज़रा बताइएगा। और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत संदेश भी आ गए हैं आपके लगातार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप इतना प्यार करते हैं FM मुरादाबाद से और लगातार आप जुड़े रहते हैं, अपने फीडबैक, अपने मैसेज हमें कंटिन्यू आप करते रहते हैं। बहुत ही एक्टिव लिसनर हैं हमारे, मानना पड़ेगा आपको। और अभी यहाँ पर जो मैसेज आए हैं हम उनको भी जल्दी से शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं सैयद शारिक अली जी, बाबू अंसारी जी, महराज अंसारी जी, और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप, आपका शो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। ओहो क्या बात है जी, आज मौसम बहुत खूबसूरत है। चलिए ऐसे खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठाइए, प्यारे प्यारे गाने, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सुनते रहिए। एंड इन्होंने कहा है कि मैम हम गर्मी में इस तरह से अपना ख्याल रखते हैं, तेज धूप में कम से कम निकलते हैं, खास तौर से दोपहर के टाइम में, और खाने के साथ में दही और सैलड का हम सेवन करते हैं। ओके, और दही की लस्सी, बेल का शरबत और नींबू की सिकंजी, ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं और पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं। अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड, तालियां आपके लिए, इतने अच्छे से अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप तो, ओहो मैं भी तो सोचूं कि सर इतने यंग कैसे दिखते हैं, इतना ख्याल जो आप अपनी फिटनेस का रखते हैं। दोस्तों कहते हैं ना, जो फिट है वो हिट है, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखो, स्पेशली हम फीमेल्स से भी कहना चाहते हैं।

0: वो भी बहुत ज्यादा बिजी रहती हैं घर के कामों में, कहीं ना कहीं वो अपने आप को पीछे रखती हैं। देखो, काम करना जरूरी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है माना, लेकिन सबकी जिम्मेदारियों के साथ साथ आप खुद भी एक जिम्मेदारी हैं अपनी। तो आप खुद को भी टाइम दीजिए, खुद का ख्याल रखिए, समय समय पर पानी पीती रहिए, और नो डाउट आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। लेकिन बस मैं ही कहती हूँ कि ये सुंदरता ऐसे ही बरकरार रखो, अपने लिए टाइम निकालो ढेर सारा, खुद से प्यार करो जो कि बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं भी करना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, समय जो है ना, अभी स्टूडियो की घड़ी में 11 बज चुके हैं और इस समय कुछ एड ब्रेक का टाइम होता है, तो एड ब्रेक के बाद मैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक लूँगी, फिर लौट कर आऊँगी, ठीक है? और जो आपके यहाँ पर बैक टू बैक संदेश आ रहे हैं ना, उनको भी हम शामिल करेंगे, ठीक है एवरीवन? और हाँ, एक और बहुत ही खूबसूरत सी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास जो मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत प्यारी सी है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बस मैं लौट कर आती हूँ प्यारी सी म्यूजिकल ब्रेक की उस बार।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइन्स नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
7: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
8: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
9: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
8: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और आप सभी का खुशी पूरे दिल से स्वागत करती है, खुशी खुशी स्वागत करती है। और दोस्तों, यहाँ पर वक्त हुआ है 11:12 और हमने आपसे जो सवाल पूछा था उसके बैक टू बैक आप सभी के यहाँ पर बहुत खूबसूरत आंसर आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और ये मैसेज हमारे पास आया है दिया जी का, न्यू मुरादाबाद से। कहती है, हाय गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग दिया, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और दिया ने हमारा दिल चुरा लिया, वो कैसे मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतने खूबसूरती से आंसर दिया है और बताया है कि मैं किस तरह से फिट रहती हूँ, किस तरह से वो अपनी फिटनेस का ख्याल रखती हैं। कहती हैं कि मैम, मैं इस गर्मी में खुद को हाइड्रेट रखने के लिए खूब पानी पीती हूँ और जब मैं घर से निकलती हूँ तो उस समय मैं छाता लेकर जाती हूँ और साथ ही मैं नींबू पानी पीती हूँ क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। ओहो हो, क्या बात है भाई, विटामिन सी, वेरी गुड। बॉडी में एक अलग ही एनर्जी देता है जब हम नींबू पानी पीते हैं, सिकंजी पीते हैं और सुकून देता है, इस गर्मी में राहत भी देता है। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है दीपक जी का और ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। विकास नगर से दीपक जी मैसेज पहुँचाते हैं और कहते हैं, आज का सवाल आपका बहुत ही खूबसूरत है। एक्चुअली ना, हम अपनी फिटनेस का, अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखते हैं इस गर्मी में, मैं आपको बताता हूँ मैम। मैं देसी नुस्खा अपनाता हूँ, मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी पीता हूँ और आम का पन्ना गर्मी में मुझे बहुत राहत देता है। मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ और अपनी गर्मियों को एंजॉय करता हूँ। वेरी गुड दीपक जी, थैंक यू सो मच अपना संदेश यहाँ पर, ब्यूटीफुल अपने जो आंसर हमें पहुँचाया है, दिल से शुक्रिया। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है दीपांश का और ये प्रकाश नगर से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। कहते हैं, मैम हम एफएम मुरादाबाद सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमें मिलती हैं जो हमारी सेहत से जुड़ी हैं, हमारी करियर से जुड़ी हुई हैं और हमें यहाँ पर एंटरटेन भी हम होते हैं, इतने खूबसूरत गाने यहाँ पर प्ले होते हैं और आरजे की जो बातें होती हैं वो तो दिल को छू लेती हैं, थैंक यू सो मच। और ये कहते हैं, मैम हम गर्मी से बचने के लिए दही, छाछ और फल ज़्यादा खाते हैं और कोशिश मैं करता हूँ कि दोपहर की तेज धूप से मैं बच सकूं और मैं उस समय अवॉइड करता हूं, बाहर नहीं जाता हूं एंड इन चीज़ों का, बस मैं छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखता हूं और गर्मियों का फुल आनंद लेता हूं। एंड इन्होंने कहा है कि अभी मार्केट में बहुत ही खूबसूरत फ्रूट्स आए हुए हैं, मौसमी फल, उनका भी हम सेवन करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपने संदेश यहाँ पर पहुँचाए, दिल से शुक्रिया आपका। और बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने एक्टिव होकर, इतनी गौर से हमारी बातों को ध्यान से आप सुनते हैं एंड फिर उनका जवाब भी आप पहुंचाते हैं। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है, ये नाम इन्होंने लिख दिया है, हाँ ये मिला है हमें विकी सागर जी का मुरादाबाद से और कहते हैं, खुशी जी हम आपको सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। खुशी को सुनकर तो खुशी होनी चाहिए ना एवरीवन। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, हाय दी गुड मॉर्निंग निखत फातिमा जी का, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ निखत, आप बताइएगा आपके परिवार में और आप कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, इन्होंने अपना नाम लिखा है पूजा और पूजा कहती है, मैम हम आपका शो सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एफएम मुरादाबाद हमारे घर में सुबह से ऑन हो जाता है और रात तक चलता रहता है क्योंकि पापा जी को बहुत ज़्यादा शौक है रेडियो सुनने का, तो पूरे दिन तो हम लोग सुनते हैं और रात में पापा लेट नाइट होते हैं तो वो सुनते रहते हैं, उनको पुराने गाने बहुत पसंद आते हैं आपके जो आप प्ले करते हैं यहाँ पर, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। लेकिन एक और खूबसूरत सा ट्रैक मैं यहाँ पर प्ले करने वाली हूँ, बहुत ही प्यारा सा है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। कौन है वो चांद का टुकड़ा, हाँ बताओ जरा हमें दोस्तों। अरे शर्माइए मत, मजाक कर रही हूँ, ठीक है। और चलिए ये प्यारा सा गीत एंजॉय कीजिएगा ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं लौट कर आती हूँ इस प्यारे से गीत के उस पार, आप कहीं मत जाइए और खुशी आपसे बार बार कहती है, पानी पीती रहिए, मुस्कुराती रहिए, क्योंकि ये जो मुस्कुराने वाली वजह है ना, मुस्कुराने की वैसे कोई वजह नहीं होनी चाहिए, बेवजह भी कभी कभी मुस्कुरा लिया करो।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
3: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, आपको पता है, कभी कभी ना कुछ तस्वीरें और खबरें हमें अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देती हैं। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां भीषण गर्मी और तेज धूप के बीच एक महिला मजदूर अपने दुख में बच्चे को पीठ पर बांधकर कोयला साइट पर काम करती नजर आई। एक तरफ दुनिया मदर्स डे पर माँ को बहुत प्यार करती है एंड और जश्न भी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये माँ अपने बच्चों को साथ लेकर पसीना बहा रही थी ताकि परिवार के लिए दो वक्त की रोटी जुटा सकें। ये सिर्फ एक, दोस्तों, सोशल मीडिया पर तस्वीर बहुत वायरल कर रही है। और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि उन लाखों मेहनत कशा महिलाओं की कहानी है, जो हर मुश्किल हालात में भी अपने परिवार के लिए मजबूती से खड़ी रहती हैं। एंड ये खबर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हर माँ और हर बच्चे को सुरक्षित और बेहतर जीवन मिल पा रहा है, और क्या अनगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं, मजदूरों को वो सुविधाएं मिल रही हैं जिनकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोस्तों, मेहनत करने वाली हर माँ को दिल से सलाम है, क्योंकि माँ सिर्फ मेहनत नहीं, माँ सिर्फ प्यार नहीं देती, वो हर संघर्ष में अपने बच्चों की सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ी रहती हैं। और हम भी अपनी मामा को, सभी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, मामा से बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, आपके लिए पूरा जीवन उछावर कर दिया है, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप भी उनके साथ समय बिताएं, उनको टाइम दें एंड उनकी रिस्पेक्ट करें, ढेर सारा उनसे प्यार करें। और फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले उनकी रिस्पेक्ट करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने परिवार में अपने सिस्टर मदर की रिस्पेक्ट करते हैं, तभी आप बाहर भी करेंगे। और ये सबसे ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि सभी को सम्मान मिलना चाहिए। और मैं कहूँगी कि इस भागती दौड़ती भरी ज़िंदगी में ना, अपनों के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर अपने पेरेंट्स के लिए, जो अपनी खुशियों को पीछे छोड़कर हमारी खुशियों के लिए सब अपनी खुशियाँ त्याग देते हैं। तो उनका भी सम्मान कीजिए और उनको ढेर सारा प्यार कीजिए। कार्यक्रम को भी यहाँ पर हम आगे बढ़ाते हैं और लगातार हमारे पास जो संदेश आए हैं उनको भी हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं। ये मैसेज हमें पहुँचाती हैं नवीन नगर मुरादाबाद से ललिता कश्यप जी, हमारी रेगुलर लिसनर हैं और हमेशा कार्यक्रम में हमारे साथ कनेक्ट रहती हैं, हर एक शो में फटाफट से मैसेज पहुंचा देती हैं। बहुत एक्टिव लिसनर हैं हमारी ये, और कहती हैं कि मैम कैसी हैं आप, मैं बहुत ही अच्छी हूँ, आपका शो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। एंड कहती हैं मैम आज मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है, बारिश भी हो रही है, तेज़ हवाएँ चल रही हैं। ये मैसेज उन्होंने पहुंचाया था 10:58 पर, और कहती हैं कि थैंक यू। बट थैंक यू किस लिए? देखिए, खुशी का काम है खुशियां बांटना, और अपनों को थैंक यू नहीं कहते हैं, ठीक है? तो आप थैंक यू मत बोलिएगा, बस आपने प्यार से ना आपको क्या करना है, थैंक यू की जगह आप स्माइल कर दो, समझो कि आपका थैंक यू मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, ओके? बस इतना सा आपको काम करना है। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और ये कहती हैं कि जब आप आती हैं, सबके फेस पर मुस्कुराहट, प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। और ये मैसेज पहुँचाती हैं शबीना खान जी, रहमत नगर मुरादाबाद से। थैंक यू शबीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो मुस्कुरा रही हैं, ये तो हमें पता है, और श्रोता भी मुस्कुरा रहे हैं, ये भी जानते हैं हम। देखिए, मैं खुश होती हूँ ना, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने श्रोताओं को भी हम ढेर सारी खुशियाँ बांटें। और जब खुश रहते हैं ना, तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगती है, आसान लगती है। चाहे हम मुश्किल समय में भी होते हैं ना, लेकिन जब एक प्यारी सी स्माइल हमें मिल जाती है, कोई मुस्कुराकर हमसे हमारा हालचाल पूछ लेता है, या फिर कोई मुस्कुराने की वजह मिल जाती है ना, तो इंसान उस मुश्किल को भी पार कर जाता है ना? जैसे कि अभी आप मुस्कुरा रहे हैं, और इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी लाइन लिखी है कि तकनीक जितना
जितनी पास आती है जिंदगी में लोग उतने ही दूर होते जा रहे हैं। एग्जैक्टली राइट। अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, जितनी फास्टली रिश्ते बनते हैं उतनी फास्टली रिश्ते टूट भी जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि दोस्तों, रिश्ता कोई भी आप अगर बना रहे हैं तो उसको ऐसा बनाइए कि हमेशा लॉन्ग टाइम तक चलाइए, साथ रहिए। और क्योंकि अगर कोई आपको सच्चा मित्र मिल रहा है, सच्चा दोस्त मिल रहा है, सच्चा लाइफ पार्टनर मिल रहा है, तो उन रिश्तों को ना संभाल कर रखो, क्योंकि अच्छे रिश्ते ना बार बार नहीं मिलते हैं। और आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपके पास अच्छे मित्र हैं एंड अच्छा जीवन साथी है, और फैमिली तो साथ में रहती है हमेशा ऑलवेज, लेकिन ये सब भी साथ में होना बहुत ज़रूरी है। और सच्चे रिश्ते मिल गए हैं आपको, तो आप शुक्र मनाइए ऊपर वाले का भी और अपने दोस्त का भी, ठीक है? और ईमानदारी से, सच्चाई से रिश्ता निभाइए। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है, ये किनका संदेश आया है जरा हम भी नज़र घुमा लेते हैं। ये मैसेज हमारे पास इधर आया है आज़ाद नगर करोला मुरादाबाद से शहीद शारिक अली जी का, और कहते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ, और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी हैप्पी होंगी। अगला मैसेज हमारे पास एक और आया है, बहुत ही प्यारा सा, और ये मैसेज हमें मिला है अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल जी का, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत एंड गुरु शब्द सिंह राहुल जी का मैसेज हमारे पास आया हुआ है। और इन्होंने बहुत सारे पैरेट हमें भेजे हैं, पैरेट्स भेजे हैं। इतने सारे तोते मैं कहाँ रखूँगी, मेरे पास में तो वो भी नहीं है, क्या बोलते हैं, पिंजरा नहीं है। वैसे ये पक्षियों को ना पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए ना, खुले में रखना चाहिए। जैसे हमें आज़ादी पसंद है, वैसे उनको भी आज़ादी पसंद है ना। और वैसे इनको, तोतों को ना हरी मिर्च बहुत पसंद होती है, और ये बोलते भी बहुत ज़्यादा है सब। एक हमारे रिलेशन में उनके यहाँ पर पैरेट था तोता, और वो सबके नाम लेता था घर में, जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स थे एंड पापा मम्मी सब बोलता था, और सुबह सुबह सबको गुड मॉर्निंग भी विश करता था। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा इसको आप पिंजरे में क्यों रखते हो? कहते हैं कि ये हम पिंजरे से इसे निकाल देते हैं, लेकिन ये फिर भी वहीं बैठ जाता है, क्योंकि जब वो छोटा सा था ना, बहुत छोटा सा बेबी, तो उसको पिंजरे में रखा हुआ था। उसकी मामा उसको छोड़कर चली गई थी, तो उन्होंने उसको पाला, और अभी वो काफ़ी बड़ा हो गया है और सबके नाम लेता है। ऐसा लगता है कि एक फैमिली मेम्बर्स है, उसके बिना घर अधूरा लगता है। वो जब भी कहीं जाते हैं तो उसके पास एक ना एक को छोड़कर जाते हैं, उसको अकेला नहीं छोड़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत होते हैं ना, देखिए पक्षी भी हमारी भावनाओं को समझते हैं, तो हमें भी उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। दोस्तों अभी देखिए जैसे गर्मी है, तो इस मौसम में आप पक्षियों के लिए पानी आप रख सकते हैं अपने टेरेस पर, छत पर, बालकनी में, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर पक्षी आते हैं, तो आप वहाँ पर पानी रखिए उनके लिए, खाने पीने के लिए दाना जो खाते पीते हैं कुछ रख दीजिए, ताकि उनका भी पेट भर जाए और उनकी भी ब्लेसिंग्स मिल जाए। बिलीव इन कर्मा, जो हम करते हैं वो हमें मिलता है, और हमारी जिम्मेदारी है। हमें इतना अच्छा जीवन मिला है तो अच्छे काम करूँ ना, क्योंकि ये जीवन पता नहीं दोबारा मिले या ना मिले, लेकिन इस जीवन को यूटिलाइज करो, अच्छे से ज़िंदगी को जियो, सबके साथ अच्छा करो, आपके साथ भी अच्छा होगा। और चलो मैं अभी आपको एक ट्रैक सुनवाती हूँ, बहुत सारी बातें हो गई हैं, खुशी कितना बोलती है ना, आप सोचते होंगे, पर मैं क्या करूँ, मैं ऐसी ही लड़की हूँ, कुछ अपने दिल की कहती हूँ और कुछ आपके दिल की बातें सुनती हूँ। चलो अभी एक गाना सुनते हैं, फिर लौट कर आते हैं।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिखे खुशी अपने वादे के अनुसार लौटकर आ चुकी है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और यहाँ पर बातें होती हैं आपकी हेल्थ के बारे में, आपके करियर के बारे में एंड पूरी वर्ल्ड में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। एंड श्रोताओं, यहाँ पर अभी वक्त हुआ है 11:45 और हम अब ये जो समय होता है ये होता है हेल्थ के बारे में जानने का। जी हाँ, कैसे आप खुद को फिट रख सकते हैं, क्या क्या आप चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि श्रोताओं कहते हैं ना, जो फिट है वो हिट है। और हेल्दी अगर स्वास्थ्य आपका होगा, सही होगा, फिट होगा, तो आप जीवन का लुत्फ अच्छे से उठा पाएंगे। एंड दोस्तों देखिए, गर्मी का मौसम है और इस मौसम में अगर हम खुद का सही तरीके से ख्याल रखें तो ना सिर्फ फिट और हेल्दी रहेंगे बल्कि हर पल को पूरी खुशी और एनर्जी के साथ एंजॉय भी कर पाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिए कुछ छोटी लेकिन ज़रूरी बातों का। शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने दें, समय समय पर पानी पीते रहें। मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूजा, आम और खीरा अपनी डाइट में ज़रूर ज़रूर ज़रूर शामिल करें, ठीक है। और ज़्यादा धूप और भाग दूर से बचें और कोशिश करें कि ठंडी और साफ जगह पर रहें एंड हल्के और सूती कपड़े पहनें ताकि शरीर को आराम मिले। कॉटन के कपड़े पहनिएगा और जब आप कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो वो आपको सुकून भी देते हैं एंड आपकी हेल्थ के लिए गर्मी में भी अच्छा रहता है। एंड दोस्तों जब शरीर स्वस्थ रहेगा मन भी खुश रहेगा और जब मन खुश रहेगा तब ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी खुशी का असली आनंद आप ले सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि इस गर्मी खुद का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी को दिल से जीते रहिए। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये तो आपकी हेल्थ के बारे में बातचीत हमने की है, जो यहाँ पर संदेश आए हैं उनको भी हम जल्दी से शामिल करते हैं बिना किसी देरी के। और ये संदेश हमारे पास आया है नवीन नगर मुरादाबाद से गौरव टेलर जी का। कहते हैं, खुशी जी कैसे हैं आप, आपका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है जो आप पेश करती हैं। आपके शो को प्रेजेंट करने का जो अंदाज़ है ना, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच एंड जानकारियां भी आप बहुत ही प्यारी प्यारी लेकर आती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और इन्होंने बड़े ही खूबसूरत सा थाट्स शेयर किया है। कहते हैं कि अच्छा दिल और अच्छी सोच सब लोगों के पास नहीं होती, अच्छा दिल और अच्छी सोच सब लोगों के पास नहीं होती, और जिनके पास होती है वो लोग दिल के बहुत खूबसूरत होते हैं, जैसे कि आप सब कितने प्यारे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि आप सब हमें मिले हैं और आप सबका प्यार भी हमें मिलता है। एंड जितना प्यार आप सब हमसे करते हैं ना, उतना ही प्यार हम भी आप सभी से करते हैं। एंड एक और बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज यहाँ पर आया हुआ है और ये मैसेज हमारे पास आया है सना जी का रामपुर से। इन्होंने बहुत सारे रोज़ हमें भेजे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपको पता है कि हमें रोज़ पसंद है, आप हमारे दिल की बात कैसे जान गई? हाँ, ओहो, दिल से दिल का रिश्ता है ना, तो आप समझ गई हैं। हाँ, वैसे हम बताएं आपको, सना हमें रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है प्रिया का और ये कहती हैं कि खुशी मैम, आपका शो सुनकर ना हमारा जो एकदम माइंड है ना वो फ्रेश हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। कैसे, मतलब 2 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हम चाहते यही हैं, हमारी जो हमारा जो रीज़न है शुरू करने का वो यही है कि हमारे श्रोता हमारे साथ रहें, खुश रहें और थोड़ी सी भी उनको परेशानी ना हो एंड एंजॉय भी करें शो को और साथ में जानकारियां भी आपके लिए हम लेकर आते हैं। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं लेकिन उससे पहले एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है अमित जी का और ये कहते हैं, मैम आपने जो सवाल पूछा था आज की सुबह कि इस गर्मी में आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको, मैं ऑफिस जाता हूँ और ऑफिस जाते समय मैं पानी की बोतल हमेशा साथ रखता हूँ और बाहर की ज़्यादा तली भुनी चीज़ों से मैं बचता हूँ। मैं अपने घर का ही खाना बना हुआ ही खाता हूँ और अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मैं पहले ही मम्मा को बता देता हूँ, तो वो टिफ़िन रेडी करके दे देती हैं और मैं घर का ही खाना खाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। वेरी गुड।
अमित जी, बहुत अच्छा आपने बताया है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि घर का खाना ही खाना चाहिए, बाहर के खाने को कम से कम मतलब खाएं। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है, बहुत मतलब कहीं जा रहे हैं आप और बहुत ज़्यादा भूख लगी, तब तो आप खा सकते हैं, फिर मजबूरी है। लेकिन जब आपको पता है कि हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, कहीं दूर सफ़र पर जा रहे हैं, या फिर सुबह आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो आप साथ में लेकर जा सकते हैं और बीच में आप खा सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी होता है। हमारी पूरी दिन की एनर्जी वाला डोज होता है सुबह का जो नाश्ता होता है, तो सुबह के नाश्ते को बिल्कुल भी स्किप ना करें और हेल्दी नाश्ता खाएं एंड मुस्कुराएं आप। बस यही कहेगी खुशी। और एक और खूबसूरत से गाना आप सभी के लिए, आपको कहीं नहीं जाना, रेडियो किसी को बिल्कुल भी नहीं घुमाना है, और खुशी आपसे कहती है दिल से मुस्कुराना है, क्योंकि मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। और एक प्यारा सा गाना, बहुत ही खूबसूरत सा, इसको एंजॉय करें आप। बस मैं लौट कर आती हूँ छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

दोस्तों आपने बहुत ही खूबसूरत से गीत अभी सुना और बहुत ही प्यारा सा था फ्रॉम द मूवी जय विक्रांता से रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया मैं तेरा लाला। और माँ और बच्चों का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है जो इतना प्यार करे हमें। और दोस्तों अब मैं आपसे जाने की अनुमति लेती हूँ क्योंकि स्टूडियो की घड़ी में 12 बज चुके हैं और आपके लिए एक बेहद खूबसूरत सा प्रोग्राम हम यहाँ पर प्ले करने वाले हैं और आप उसको सुनिएगा। एंड क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि गानों के साथ साथ जानकारियाँ होना भी मिलना भी बहुत ज़रूरी है, जानकार रहना भी बहुत ज़रूरी है समय के साथ। और हम एक बहुत ही करियर काउंसलिंग एपिसोड प्ले करने वाले हैं, करियर से रिलेटेड है और आपके लिए बहुत लाभदायक भी रहेगा। तो आप इसको सुनिएगा और अपने फीडबैक भी हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और अब मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, लेकिन जाते जाते खुशी आपसे कहेगी कि दोस्तों आप जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ रहिए हमेशा एंड खुश रहिए और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखिए। बाकी सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए। ऐसे ही खूबसूरत

0: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस क्यू, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।
5: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: हेलो दोस्तों, आज हमारे बीच में खास मेहमान विदिशा सिंह, जो एक काउंसलर, पीयर सपोर्टर एवं पॉजिटिव साइकोलॉजी कोच हैं, जो बच्चों के साथ उनके माता पिता और महिलाओं के इमोशनल वेलबींग, सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ लव के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत हैं। दोस्तों, उनका मानना है कि सशक्त मन ही सशक्त जीवन की नींव होता है। माइंडफुलनेस और मोटिवेशन के माध्यम से वह बच्चों को आत्म जागरूकता, भावनात्मक संतुलन और आत्मविश्वास की दिशा में प्रेरित करती हैं। उनका कार्य केवल काउंसलिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्वास, आत्म स्वीकृति और सकारात्मक परिवर्तन की एक सतत यात्रा है। मैं हूं भावना और मेरे साथ है मेरे साथी आशीष। हमारे बीच में स्वागत करते हैं दोनों मिलके विदिशा सिंह जी का। हेलो मैम।
1: हेलो भावना जी।
2: और जैसा हम लोग हमेशा से किसी ना किसी विषय पर चर्चा करते हैं, तो आज आपके साथ विशेष चर्चा हम बच्चों को लेकर करना चाहेंगे कि जब हम बच्चों के एग्जाम्स के रूटीन में जा रहे होते हैं तो बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर काम कर रहा होता है, और भले ही पेरेंट्स उनको ये समझाएं कि बेटा तुम बहुत मेहनत से पढ़ो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर बहुत सारे डर घर कर गए होते हैं क्योंकि उनको अच्छे मार्क्स चाहिए। तो ऐसे में आप उन्हें क्या यहाँ से कोच करना चाहेंगी और कैसे उनके अंदर की ये एंग्जाइटी, ये डर हम दूर कर पाएंगे मैम?
1: जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हम बड़े ही उस डर की शुरुआत करते हैं। आमतौर पर कभी भी आपने देखा होगा जब बोर्ड एग्जाम्स या नॉर्मल एग्जाम्स की शुरुआत होती है तो हम हमेशा बच्चों को सिर्फ एग्जाम्स आ रहे हैं नहीं बोलते, एक तरह से एक एनवायरमेंट सेटअप कर देते हैं जिसमें कि हम बोलते हैं एग्जाम फीवर, एग्जाम स्ट्रेस,
2: फोबिया।
1: Exactly. तो कहीं ना कहीं हमने ऑलरेडी बच्चों को ये बता दिया कि ये जो एग्जाम है ये आपको स्ट्रेस देगा ही देगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर शुरुआत से हम थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान दें कि एग्जाम्स हैं, साल भर आपने जो पढ़ा है वो बस एक तरह से आपका एक टेस्ट लेने की उसमें कोशिश है कि आपने कितना सीखा, कैसे सीखा और उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपनी लाइफ में।
2: फटाफट उठो, पढ़ाई करो, रात में जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी जाग जाना क्योंकि तुम्हें पढ़ाई करनी है, सुबह का पढ़ा हुआ बच्चों को याद ज्यादा रहता है। तो उसको हम कैसे क्या ऐसा बताएं कि वो उनके लिए स्ट्रेस बस्टर का काम करें और वो अपने उस फ्लो चार्ट पर काम करें, उस पैटर्न पे काम करें जिससे उनके मार्क्स पर उसका असर दिखाई पड़े।
1: एग्जैक्टली। अब मैं आपको आप ही के इस लाइन से एक चीज बताना चाहूंगी कि ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही एग्जाम्स के बारे में बात आती है तुरंत उसका जो रिलेशन होता है वो मार्क्स कितने स्कोर करोगे, कैसा परफॉर्म करोगे उसके ऊपर हो जाता है।
2: एग्जैक्टली।
1: सबसे पहले मैं हर माता पिता को ये बोलना चाहूंगी कि जब एग्जाम है तो उसको आप एक पर्टिकुलर चीज लेकर के चलिए। आज टाइम है कि बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम पूरा फोकस दे देते हैं जैसा अभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे वैसा ही रिजल्ट आएगा।
2: एग्जैक्टली।
1: रिजल्ट एक सेकेंडरी ऑप्शन है जो एग्जाम्स देने के बाद आता है। आई अंडरस्टैंड कि एग्जाम है तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, लेकिन अभी जो फोकस है वो सिर्फ इस पे होना चाहिए कि हमारे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं तो उस वक्त हम क्या ऐसा कुछ करें कि जिससे हमारे बच्चे जो हैं वो थोड़े से शांत मन से रहें, एंग्जाइटी कम रहे उनके अंदर और एक जो डर है वो खत्म हो। और उसके लिए इस वक्त मैं आपको बताऊं कि माता पिता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि आपका बच्चा ऑलरेडी परेशान है, और खास करके ये बात मैं माओ के लिए कहना चाहूंगी कि जितना बच्चा परेशान नहीं होता शायद उससे 50-60% ज्यादा उनकी माताएं परेशान हो जाती हैं। आप एक ऐसा एनवायरमेंट ऑलरेडी अपने घर में सेटअप कर दे रहे हैं, टीवी नहीं चलेगा, खेलने नहीं जाना है, हम बाहर खाना नहीं खाने जा सकते, किसी की वेडिंग अगर, क्योंकि देखिए मार्च ही सीजन होता है, फरवरी मार्च जिस टाइम पे शादियां भी हो रही होती हैं और इसी टाइम पे एग्जाम्स भी आ रहे होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन घर में कर्फ्यू जैसा माहौल बन जाता है। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं इस बात पे भी हमें थोड़ा सा रुककर सोचने की जरूरत है कि अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और जितना उनको पढ़ना था उन्होंने ऑलरेडी अपनी पढ़ाई अब पूरे साल भर कर ली है।
2: एग्जैक्टली।
1: अब खाली जो उन्होंने पढ़ा हुआ है उस चीज को वो कितना याद कर पा रहे हैं, उस चीज को रिवाइज कितना कर पा रहे हैं उसके ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए।
2: लेकिन नहीं लगता भावना कि एक साइकोलॉजी ऐसी है जो कहीं ना कहीं बच्चों की कंडीशनिंग के साथ में आती है क्योंकि हम जब बच्चा छोटा है, जैसे अभी आपने कहा कि बड़े बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई कर चुके हैं, उनको भी पता है कि उन्हें क्या तैयार करना है, लेकिन कंडीशनिंग वैसी हुई है ना फ्रॉम द रूट्स, तो वो फ्रॉम द रूट वाली कंडीशनिंग का कहीं ना कहीं एक ओवर शेडो बनता बनता उनके हायर क्लासेस में भी दिखाई पड़ता है और वो एक फोबिया उनके चारों तरफ क्रिएट करके हम रख देते हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो स्वतंत्र होकर दिमाग से काम करें जैसे आपने कहा।
0: और आशीष एक बात और मैं कहूं कि बड़े बच्चे के साथ साथ अब हम लोग छोटे बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डालने लगे हैं कि आपका बच्चा नर्सरी या फर्स्ट में ही रहता है फिर भी आप उससे इतनी ज्यादा उम्मीदें करने लगते हैं कि हमारा बच्चा जितने भी क्षेत्र है उसमें बिल्कुल अव्वल ही आए, और वो बच्चा पीठ पर बोझ लादे किताबों का, वो कहां से बढ़ता साइकोलॉजिकल चेंजेस कहां से शुरू हो रहे हैं।
1: बहुत समय लगेगा और कहीं ना कहीं मेरा जो काम है मेरी भी कोशिश इसी क्षेत्र में है कि सबसे पहले ये जो कंडीशनिंग हो गई है कि एग्जाम्स चाहे सेकेंड थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चे का हो या क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के बच्चे का हो, एक कंडीशनिंग के साथ हमने ये मान लिया है कि एग्जाम्स हैं तो हमें वो प्रेशर बनाना ही है, हमें पढ़ाना ही है और बच्चों को अच्छा स्कोर करना ही है। इसमें आपको पता है मैं एक बात बहुत इम्पोर्टेंट ये करना चाहूंगी कि आपको सबसे पहले अपने बच्चे का जो शेड्यूल है ना उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करना होगा कि क्या आपका बच्चा जिस चीज को आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट ले रहा है
2: जी,
1: क्या वो कभी भी एग्जाम आने से पहले, एक अलग बात हो गई, लेकिन पूरे साल में क्या वो पूरे दिन भर में एक बार भी उन किताबों को, अगर उसको होमवर्क नहीं मिला है उसके अलावा भी क्या वो उन किताबों को खुद कभी उठा करके बैठता है या सिर्फ उन पन्नों को खुद पलट करके ऐसे देखने की कोशिश करता है कि आज मुझे स्कूल में क्या पढ़ाया गया। तो शुरुआत हमें वहां से करनी है
2: जी।
1: ये नहीं कि जब बच्चा क्लास टेंथ में आ गया तो उस चीज को आपने एक फोबिया बना दिया कि अब आपके बोझ आ गए हैं और आपको बिल्कुल करो या मरो की स्थिति को में पहुंच चुके हैं और इसको आपको पूरा करना ही करना है
2: जी।
1: कहीं ना कहीं एक और बात मैं बोलना चाहूंगी दोबारा से कि ये जो मार्क्स है ना ये इतना बच्चों के लिए ट्रॉफी सिंबल नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉफी सिंबल है कि मेरे बच्चे ने 99% स्कोर किया, 95% स्कोर किया। आप अपने बच्चों से उम्मीदें रखते हैं, हर माँ बाप रखते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस उम्मीद को पूरा करने के लिए कब आपने उसका हाथ पकड़कर साथ उसके बैठ करके ये बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कितने भी नंबर आ जाएं,
0: बिल्कुल
1: तुम लाइफ में कुछ बन पाओ नहीं बन पाओ, आगे बढ़ पाओ नहीं बढ़ पाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। सिर्फ ये एक लाइन एक बच्चे को जो आत्मविश्वास दे सकती है वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे सकता, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं दे सकता, कोई काउंसलर नहीं दे सकता
2: जी,
1: क्योंकि ये एक ऐसा कनेक्शन फॉर्म करता है जहां बच्चे को ये एहसास होता है कि मुझे ये पढ़ाई किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी है लेकिन Correct. एक विश्वास जो मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर है, जो माता पिता ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है उसे मुझे आगे बढ़ाना,
2: उसे प्रूव करना है कहीं। लेकिन नहीं लगता आपको कि ये एक स्टिग्मा हो चुका है सोसाइटी लेवल पर, या जैसे आपने पेरेंट्स का जिक्र किया तो एक मजबूरी भी है शायद पेरेंट्स की, क्योंकि जब बच्चों का परसेंटाइल देखे जाते हैं, परसेंटेज देखे जाते हैं, पता चला कि साहब किसी का 92% आ रहा है, किसी के 95, अब तो 99% नंबर भी मिलने लगे बच्चों को, हालांकि हमारे टाइम पे ऐसे हम लोगों को तो नहीं मिलते थे, लेकिन जहां 99 के स्कोर तक कुछ बच्चे पहुंच रहे हैं और वहां पर अगर कोई बच्चा 90% भी ला रहा है तो ये माहौल बन जाता है कि अरे इसके तो 90% आए, मतलब इतने कम ये क्या कर पाएगा। ये पेरेंट्स में जो बना हुआ एक डर है, आपको नहीं लगता कि पहले ये निकल जाए?
1: ये जो डर है ना ये कलेक्टिवली नहीं निकल पाएगा क्योंकि जब कलेक्टिवली हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तो आप भी ये मानेंगे कि हर अभिभावक जो होता है ना वो हामी जरूर भरता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, परेशान होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही वो भीड़ से अपने घर के दरवाजे के अंदर पहुंचता है तो उसको अगर आंख बंद करके वो सोचे ना तो वो सच में ये बात बोलता होगा अपने आप से, बात तो सही कह रहे हैं लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया।
2: वही चीज।
1: यहां मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो सोच बदलने की बात हो रही है ये हमें इंडिविजुअल स्तर पे करनी पड़ेगी। हर एक पेरेंट जब इस विश्वास के साथ अपने बच्चे से बात करेगा कि जो कंपटीशन का माहौल हो रहा है, जिस तरह से हमें आगे बढ़ना है, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, उसमें एवरेज होकर के भी आप कुछ अलग कर सकते हैं, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको पता लगाना पड़ेगा। देखिए, बहुत नॉर्मल सी बात है, हर कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता,
2: राइट।
1: आजकल के टाइम में भी जिस तरह से कंपटीशन है, या बहुत पहले से चला आ रहा है, जितनी सीट्स हैं, जिस हिसाब से बच्चे परफॉर्म करते हैं, जो लोग निकलते हैं, लेकिन मेरा आज भी ये मानना है कि अगर आप 99% नहीं स्कोर कर पा रहे, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आप कुछ लाइफ में कर नहीं पाएंगे।
2: एग्जैक्टली, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे आपके बीच में, जहां पर बहुत कम स्कोर करने वाले भी इतिहास रच के चले गए। क्यों भावना?
3: बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी मैम, आपने अभी कहा है कि ना, कि 99% के बावजूद भी 90% लाने वाले भी लोग बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन ये बात जो है माता पिता के मन में ये कैसे बिठाए जाए, क्योंकि वो इतना प्रेशर कर देते हैं कि बच्चा इंटर किया नहीं। आप आज हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा सरकारी नौकरी में आए ही आए, क्या इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है? ये माता पिता के दिमाग में कैसे लाई जाए ये बात?
1: भावना जी, ये जो मार्क्स है ना, कब तक? जब तक आप ग्रेजुएशन करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन कब तक?
3: जी,
1: जब तक आप वहां पर पहुंच रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो चेंजेस आपके अंदर आने वाले हैं, कहीं ना कहीं लाइफ में, आज मैं फिर इस बात को बोलूंगी कि वही इंसान सक्सेसफुल हो पाता है जो उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ तो क्या, मैं कुछ और जरूर तलाश लूंगा अपने लिए। फेल हो जाना या नंबर कम लाना, वो आपको एक दूसरी अपॉर्चुनिटी भी उसके साथ साथ देते हैं कि ये एक पर्टिकुलर चीज है जहां मैं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि अब समय मेरे लिए रुक गया। इनफैक्ट अब तो जिंदगी की शुरुआत हुई है, असली समय तो अब शुरू हुआ है जब वो आपके घर के उन बाउंड्रीज, उन सेफ स्पेस से आगे निकलेगा।
2: एग्जैक्टली,
3: बहुत अच्छी बात आप बोल रही हैं मैम, और ये बात सिर्फ और सिर्फ माता पिता के लिए ही नहीं है, ये बात उन सारे बच्चों के लिए है कि सिर्फ जिंदगी यहीं खत्म नहीं हो जाती। बहुत ही अच्छी बात आप बोल रही, क्योंकि ये बात सिर्फ माता पिता ही नहीं समझा सकते, ये बात आप जैसे काउंसलर भी समझा सकते हैं।
1: एक माता पिता अपने बच्चे का सबसे बड़ा सपोर्टर होता है।
3: जी,
1: विश्वास मानिए, आज भी हर बच्चा जो मेहनत करता है और जब उसके पिताजी घर में आ रहे होते हैं और एक नजर जब उस बच्चे की अपने पिता जी पे, अपने माता जी पे पड़ती है, तो उसे आज भी ये लगता है मुझे दुनिया को नहीं, मुझे इनको प्रूव करना है।
2: Correct.
1: और सिर्फ उस वक्त अगर आप अपने बच्चे के कंधे पे हाथ रख के ये कह देंगे ना कि बेटा मुझे पता है तुमने मेहनत की है, चाहे जितनी भी की हो, जितना पढ़ लिया है उतना ही परफॉर्म कर लो। यकीन मानिए, अगर बच्चे ने अपना सिर्फ 60% कोर्स भी पूरा करा हुआ है ना, और उस 60% को वो अगर 100% लगन से रिवाइज कर लेगा, जो टाइम पीरियड इस वक्त चल रहा है, बिल्कुल एग्जाम्स 2-3 दिन ही बाद हैं, शुरू होने वाले हैं, उसके परफॉर्मेंस में 70-80% इम्प्रूवमेंट आ जाएगा।
2: करेक्ट, और वैसे भी देखिए, स्काई इज द लिमिट, आपके पास खुला आसमान है, आप अपने आप को जैसा भी मोल्ड करना चाहते हैं ढाल सकते हैं, बशर्ते आपको एक अच्छा गाइडेंस मिले। और शायद रेडियो खीरी 88.4 मेगाहर्ट्ज़ अपने तमाम लिसनर्स को इसी तरीके से गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो बीइंग अ पेरेंट आप हमारे शो को सुनिए, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो बीइंग अ स्टूडेंट आप हमारे शो को सुनिए, और कुछ ऐसी बातें अपने अंदर बदलने की कोशिश कीजिए जो आपके फ्यूचर को और बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकती हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान विदिशा सिंह जी हमारे साथ में हैं, जो काउंसलर हैं और जो आपको ये बता सकती हैं कि एक साइकोलॉजी कौन सी काम कर रही होती है कि बच्चा उस फोबिया को अपने अंदर से निकाल सके। लेकिन विदिशा जी, आपने कामनेस की बात की कि पेरेंट्स जब आए तो एक बच्चों को कंसोल करते हुए कामनेस दें कि बेटा तुम चिंता मत करो। हमें भी ऐसा लगता है कि अगर हम लोग अपने थोड़ा सा जिंदगी में थोड़ा सा पीछे जाकर देखें, तो जब हमारे माता पिता हमारे सामने आते थे तो हमें डर ये लगता था कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, कि डांट पड़ जाए। लेकिन आज बच्चे, मुझे लगता है कि उस गलती के बारे में नहीं सोचते कि डांट पड़ेगी अगर कुछ गलत करेंगे, लेकिन हाँ, उनके दिमाग में ये जरूर है, स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो जरूर हमारी खिंचाई होने वाली है, डांट पड़ने वाली है। साइकोलॉजी जो काम कर रही होती है, क्योंकि मैं आपसे थोड़ा सा टेक्निकली जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या होता है कि हम बच्चे के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं और अपने ऊपर भी क्रिएट करते हैं, और उसका रिजल्टेंट क्या होता है कि हमने देखा बहुत सारे कोटा में बच्चों को देख लीजिए जो डेथ कर जाते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर लेते हैं, और छोटे छोटे बच्चों के अंदर आज के डेट में आप देखिए डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं बच्चे, जबकि ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियों के बाद होता था। तो इसको कैसे कैसे दूर करें, इसके लिए क्या फ्लो चार्ट बना के चलें, क्या क्या हमको सेगमेंटाइज करना होगा अपनी चीजों को?
1: बहुत दुख होता है जब ऐसी कोई खबरें मैं सुनती हूँ, या कभी कभी ऐसा होता है कि ऑलरेडी मैं कुछ ऐसे पेरेंट्स से डील कर रही होती हूँ जिनको मैं समझाने में बहुत असमर्थ रहती हूँ कि इतनी प्रेशर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद भी बहुत रिलक्टेंट होते हैं, वो मेरी बात को सुनने को नहीं तैयार रहते। लेकिन इन सब में सबसे पहले मैं बोलूंगी कि जो सबसे ज्यादा कम समय हम देते हैं वो शायद हम देते हैं इमोशंस के ऊपर ध्यान नहीं देकर। बच्चा आया और उसने बोला मम्मी मुझे डर लग रहा है, तुरंत क्या जवाब आता है? डरने की कोई जरूरत नहीं है।
2: या फिर कंपेयर कर देते हैं हम किसी से, देखो वो तो नहीं डरता।
1: एग्जैक्टली। लेकिन आपको मैं सच बताऊं, इसका शायद सही तरीका ये होता है कि उस वक्त आप बच्चे को बोलिए कि हाँ बेटा मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, ऐसे समय में ये होना बहुत आम बात है। जब बच्चा जो फील कर रहा है, जो भी उसके डर, भय या एक तरह से आत्मविश्वास नहीं आ पाना, जो भी उसके इमोशंस हैं, अगर आप उन इमोशंस पे ध्यान दें और उनको एक्सेप्ट करें कि हाँ मेरा बच्चा ऐसा फील कर रहा है, और इनफैक्ट ये बात मैं बच्चों के लिए भी बोलूंगी कि जब आपको ऐसा फील हो कि मुझे घबराहट हो, तो बिल्कुल ही जैसे जिसको हम अपने टर्म्स में एक फेक पॉजिटिविटी भी कहते हैं
2: जी,
1: जिसमें हम कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आप कुछ फील कर रहे हैं और आप अगर उसको दबाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो इमोशन शूट अप करेगा।
2: एग्जैक्टली।
1: तो जब आपको डर लगे, जब आपको एंग्जाइटी हो, हर बच्चे से भी मैं ये बोलूंगी, उनके माता पिता को भी ये बोलूंगी कि आप एक्सेप्ट करिए कि आपके बच्चे को डर लग रहा है
2: जी।
1: बहुत नॉर्मल है, एंग्जाइटी हो रही है, हार्ट बीट्स बढ़ रही हैं, घबराहट हो रही है। आप अपने बच्चे को बताइए कि हाँ ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसके लिए बच्चों को मैं एक बहुत क्विक टिप देना चाहूंगी
2: प्लीज,
1: कि सबसे पहले तो जब आप अपने रिविजन के टाइम पे या नॉर्मल भी अगर आप पढ़ाई करने बैठते हैं, तो हमने देखा होगा कि बच्चे अमूमन क्या करते हैं कि वो 1.5 से 2 घंटे का पूरा शेड्यूल बना करके रखते हैं, और अगर 2 घंटे से पहले बच्चा कमरे से बाहर आ गया तो उसको घर के सारे लोग ऐसी निगाहों से देखते हैं जैसे कि उसने कितनी बड़ी कोई गलती कर दी। बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन स्पैन सिर्फ 35 मैक्सिमम 40 मिनट्स का होता है, उसके बाद अगर आपका बच्चा बैठ के पढ़ भी रहा है तो यकीन मानिए वो डिस्ट्रैक्टेड है, जिसमें उसको भी नहीं पता होता कि वो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्शन में जा चुका है। बच्चों के लिए क्विक टिप ये है कि हर 30 मिनट पे एक अलार्म क्लॉक रखिए और उसमें अलार्म सेट करिए। जैसे ही 30 मिनट्स का टाइम पीरियड चला जाएगा, आपका अलार्म बजेगा, आप उसको बंद करिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, और क्विकली आप अपने आप को ये एक ऐसे फेज में ला करके रखिए कि आप यहाँ पे रिवाइज कर पाएं, देख पाएं कि आप जब आपने अलार्म बंद किया तो आप पढ़ रहे थे या आपका माइंड कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड था। ये एक अवेयरनेस क्रिएट करता है।
2: ठीक है।
1: बच्चा जितनी ज्यादा 35 to 40 मिनट्स के बाद जब एक क्विक राउंड लेके आएगा, घर में एक अच्छा माहौल देखेगा, माता पिता भाई बहनों या आजू बाजू थोड़ा सा वो बाहर निकल के आएगा, तो वो दोबारा से रेडी होगा अपने कॉन्सेंट्रेशन स्पैन को शुरू करने के लिए।
2: बहुत ज्यादा बच्चों पर लोग बोलते हैं कड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे जमाने में तो कहा था समझावन लाल होते थे, समझावन लाल छड़ी को बोलते थे हमारे मास्टर्स की, जब तक तुम्हारे ऊपर छड़ी नहीं पड़ेगी तब तक तुमको आएगी नहीं, कहते मुक्का पड़े घमाघम विद्याए झमाझम, ऐसा बोलते थे। तो अब कहीं ना कहीं वो नैरेटिव्स बदल चुके हैं पढ़ाई के,
1: और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा भी है, क्योंकि बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ इसके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी को आप डरा करके बिठा तो सकते हैं लेकिन पढ़ा नहीं सकते।
2: बहुत बढ़िया, करेक्ट।
1: और जैसे आपने मुझे बोला कि ऐसा क्यों माँ बाप को लगता है कि अगर वो डांटेंगे नहीं, अपनी आवाज को ऊंचा करके नहीं बोलेंगे, तो उनकी बात सुनी नहीं जाएगी। हमेशा हमें अपनी बात बोलने के टाइम पे अपने टोन पे ध्यान देना चाहिए
2: जी।
1: आवाज ऊंची करके, चिल्ला करके यकीन मानिए आप उस टाइम बच्चे को जैसे ही आप चिल्लाना शुरू करते हैं बच्चा का दिमाग ऑलरेडी बंद हो जाता है, उसे सुनाई देना समझना सब कम हो जाता है। उससे ज्यादा बेहतर ये है कि आप अपनी एक फिक्स्ड टोन रखिए, सीरियसली, बेटा मैंने तुम्हें बता दिया है ये समय पढ़ने का है, जाओ कमरे में बैठो पढ़ो, बात खत्म हो जाती है।
2: ठीक है, मान लीजिए अगर वो फिर भी नहीं मान रहे, देन
1: ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ आता है। आप ये एक्सपेक्ट करें कि एग्जाम्स के पहले बिल्कुल आपने अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर करना शुरू कर दिया, यही मैं बोलना चाहूंगी कि आपका बच्चा किसी भी क्लास में हो इस वक्त, ये टाइम है एज अ पेरेंट आपको ऑब्जर्व करने का।
2: ठीक है,
1: कि आपका बच्चा जो है वो बोलने पे भी पढ़ने जा रहा है या नहीं जा रहा, ये आपको रियलाइज कराएगा कि अब समय जो है अभी वाला रुक चुका है। फिर मैं बोलूंगी समय खत्म नहीं हुआ है।

0: लास्ट टाइम, मतलब जब से सेशन शुरू होता है तब से हम पढ़ाई exactly. बच्चों के लिए आपने अप्रैल मई में सारी चीजें फिर से पढ़ाई एक बार शुरू हो जाती है और जुलाई से तो सभी फिर से कंटिन्यू हो जाते हैं, अब तो जून में ही क्लासेस शुरू होने लगी हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए उनका शेड्यूल अभी से बनाना शुरू कर दे, चाहे वो 2 घंटे का हो या 3 घंटे का हो। और कहीं ना कहीं मैम ये भी जरूरी है कि बच्चों के साथ माता पिता को खुद भी बैठ के पढ़ना चाहिए या पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मोबाइल का आज जो समय है
1: करेक्ट
0: वो कहीं ना कहीं बच्चों और माता पिता को डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है। आशीष जी आपका क्या कहना है?
2: नहीं बिल्कुल सही कहा, स्क्रीन टाइमिंग बच्चों की बहुत कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। मुझे लगता है कि रैंडमली अगर बच्चा फोन उठा ले रहा है तो मुझे लगता है उसको एक, जैसे आपने बोला कि फिक्स टाइम होना चाहिए कि बेटा अब उठिए, अब आपका टाइम हो गया, जाइए पढ़िए। इसी तरीके से अगर उनको मोबाइल देखना है या टीवी देखना है, क्योंकि आप रोक तो नहीं सकते उन्हें कि ऐसा मत करो क्योंकि आप उन्हीं के सामने मोबाइल देख रहे हो। तो बच्चों के आजकल अक्सर सवाल भी होते हैं, भावना आप तो कर रहे हो मुझे रोक रहे हो, तो
3: कैटेगरी के लिए देखिए, क्योंकि इसका जवाब हर एज ग्रुप के लिए बहुत डिफरेंट, मतलब जैसे जब हम छोटे बच्चों को केटर करेंगे तो अलग होगा, बड़े बच्चों के लिए इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि आजकल काफी ज्यादा स्कूल्स भी डिपेंडेंट हो गए हैं मोबाइल फोन्स पे ही, बहुत सारे मैसेजेस हो गए, जो भी पढ़ना है ये सारी चीजें भी
2: कंटेंट आता है उसपे
3: एग्जैक्टली, और कहीं ना कहीं बच्चों ने भी एक ही आदत बना ली है कि मैं मोबाइल पे पढ़ूंगा, मेरा ये पर्सनली मानना है। वैसे
2: कोविड ने तो ये सिखा दिया है कि पढ़ो
0: मोबाइल से पढ़ो,
3: लेकिन मेरा फिर मैं बोलूंगी मेरा ये एक बहुत पर्सनल ओपिनियन यही है कि जो भी पढ़ाई हो रही है जितनी अच्छी पढ़ाई आप बुक से कर सकते हैं उतनी अच्छी पढ़ाई शॉर्ट नोट्स की तरह आप एक क्विक रिविजन तो YouTube पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, आपको बैठ करके कंसिस्टेंटली पढ़ना है। जब हम किसी चीज को विजुअली देखते हैं तो देखिए ये तो बहुत डेफिनेट है कि विजुअल देखने में हमें वो चीज दिमाग में बैठ जाती है, लेकिन आपको एग्जाम्स ओरली नहीं देने होते राइट, आपको बड़े बड़े लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स या मैं कहूंगी MCQs भी आपको करने होते हैं। उसके लिए अगर आप प्रॉपर ब्रीफली पढ़ाई नहीं करेंगे, आप पैराग्राफ वाइज रीडिंग्स अगर नहीं करेंगे तो आपको उन आंसर्स को लिखने में परेशानी डेफिनेटली आएगी।
2: करेक्ट,
3: आप अपना जो टाइम शेड्यूल है अगर आप 1 घंटे में 45 मिनट्स बुक्स को दे रहे हैं तो 15 मिनट का टाइम आप मोबाइल फोन से, यूट्यूब से उसके रेफरेंसेस को पढ़ने के लिए दे लीजिए, लेकिन आजकल शायद इससे ऑपोजिट चीजें चल रही हैं कि 45 मिनट्स स्क्रीन टाइम देखते हैं और 15 मिनट आप उसके बाद उन किताब के जो भी आपके टॉपिक्स हैं उन पेजेस को आप आगे पीछे करके देख लेते हैं।
2: मुझे लगता है कि बच्चों को इस तरीके की यूटिलिटी या फैसिलिटीज देनी चाहिए, लेकिन उसको मॉनिटर आप करते रहें, बीइंग अ पेरेंट बहुत जरूरी है।
3: मैं फिर बोलूंगी कि अगर बच्चा इतना बड़ा है कि आपने मोबाइल फोन उसके हाथ में दिया, ऐसा तो होगा नहीं कि बच्चे ने,
2: नहीं, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पर्सनल मोबाइल फोन्स नहीं है लेकिन अपने पेरेंट के मोबाइल फोन तो यूज कर रहे हैं,
3: परफेक्ट परफेक्ट,
2: और जैसे आपने यूट्यूब का जिक्र किया या वो यूट्यूब पे हो सकता है कुछ कार्टून्स देख रहे हो या कुछ पोएम सीख रहे हो या कुछ इस तरीके के इंटरेक्टिव सेशंस लर्न कर रहे हो, तो ऐसे में हमें कम से कम ये मॉनिटर तो करना जरूरी है ना कि वो देख क्या रहे हैं।
3: एग्जैक्टली, इसके लिए तो मैं हमेशा बोलूंगी कि वो देख क्या रहे हैं, ये हमेशा पेरेंटल कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके माध्यम से इस बात को भी मैं अवगत सच में कराना चाहूंगी कि जो बच्चे YouTube किड्स करके आता है उस पे भी आप मेरी बात मानिए, ऐसे ऐसे कंटेंट आते हैं जो शायद बच्चों को नहीं देखने चाहिए, जो उनकी नजरों के, लेकिन वो एनिमेटेड होते हैं, बच्चों को भी नहीं पता होता कई बार, मुझे लगता है कि
2: बिल्कुल सही कह रही हैं।
3: देखिए मैं आपको बहुत छोटे, क्योंकि मैं बहुत सारे स्कूल्स भी विजिट करती हूँ, ऑनलाइन पेरेंटिंग सेशंस भी लेती हूँ, मदर से भी स्पेशली मेरी बहुत बात होती है, हमेशा एक सवाल आता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे बच्चे को इसके बारे में पता कहाँ से चला।
2: अगर
3: मतलब यहाँ क्योंकि हम एक नॉर्मल पेरेंटिंग के ऊपर भी बात कर रहे हैं, तो मेरा दोबारा से ये कहना है कि अगर आपको ये पता चल भी गया कि आपके बच्चे को किसी एक पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक के बारे में पता चला है जिसको आपको लगता है कि इस एज ग्रुप में उसे नहीं पता
2: जो
3: होना चाहिए
2: लगता है हमें,
3: बिठाइए, डांटने से पहले अपने बच्चे से उसके बारे में बात करिए
2: जी,
3: ये बिल्कुल मत पूछिए कहाँ से पता लगा, क्योंकि यकीन मानिए अगर वो किसी दोस्त ने बताया होगा तो आपका बच्चा आपको कभी नहीं बताने वाला कि मुझे मेरे दोस्त ने बताया है।
0: जी
2: जी,
3: लेकिन जब आप बोलेंगे कोई बात नहीं मुझे नहीं फर्क पड़ता तुमने ये कहां से सीखा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास अवेलेबल है वो आधी अधूरी है। मैं कह रही हूँ शायद अगर वो अमूमन बोलचाल की भाषा में गाली के बारे में ही क्यों ना हो, जिस दिन आपने

0: बच्चे को ये परमिशन दे दी कि मैं ही तुम्हारा गूगल हूं,
1: जी
0: मैं ही तुम्हारी टीचर हूं, मैं ही तुम्हारे लिए यहाँ अवेलेबल हूं,
2: बिल्कुल
0: आओ उस सवाल को मुझसे पूछो, हम दोनों साथ मिलके देखेंगे कि तुम्हारी एज ग्रुप के हिसाब से कौन सी चीज कितनी चाहिए।
1: जी, जी। सही बात है, वो कहीं ना कहीं बच्चों को भी इस बात के लिए उनका नर्चर करना जरूरी है कि आप भी समझें क्या आपके लिए ठीक है क्या नहीं ठीक है। ठीक है, जहां तक बात हम लोग कर रहे हैं पेरेंटिंग को लेकर भी कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम्स के खासकर टाइम पर बच्चे बहुत सारी उलझनों में होते हैं अपने नोट्स को लेकर, अपने कंटेंट को लेकर, तो ऐसे में हम चाहेंगे कि थोड़ा आप सेगमेंट वाइज उनको बता सकें कि आप अपने पढ़ाई के फ्लो चार्ट को कैसे बनाएं ताकि अपने फोबिया भी दूर करें, और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एक डर है तो उस डर को धीरे धीरे निकालें और अच्छा परफॉर्म करें।
0: सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत जो है एक स्ट्रेस वाले माहौल से मत करिए। जैसे ही आप उठे, बॉक्स ब्रीदिंग करके एक टेक्निक होती है जिसमें आपने ब्रीद लिया, 1 2 3 4 4 सेकेंड्स के लिए ब्रीद को रोकिए और एक्सहेल करिए मुंह से जोर से। वो एक्सहेल भी 1 2 3 4 आपने रोका और दोबारा आपने इनहेल किया, तो एक तरह से साइकिल की तरह फॉर्म हो गया, एक बॉक्स फॉर्म हो गया। आपने इनहेल किया और आपने एक्सहेल किया और उस बीच में आपने 4 सेकेंड का
1: स्टे किया,
0: स्टे रखा। इससे आपकी जो स्ट्रेस है, आप जब सुबह उठे हैं तो आपका जो एनवायरमेंट है वो आपको अपने कंट्रोल में फील होगा।
1: ओके।
0: दूसरा, अपने दिन की शुरुआत एफर्मेशन से कीजिए। दिन भर आप ये सुनते होंगे कि बेकार है, कुछ नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा बदलते हैं, दुनिया नहीं बोल रही लेकिन मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप बहुत जोर से अपने आप को गले लगाइए, हक करिए जैसे कहते हैं। जैसे जब मैं ये बात बोलती हूँ तो हर बच्चा बहुत सरप्राइज्ड होता है, हम अपने आप को कैसे हक कर सकते हैं। करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। हक करिए और बोलिए आई एम इनफ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है।
1: करेक्ट,
0: मैं आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ। सुनने में ये बातें बहुत नॉर्मल रहती हैं, लगती हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि जब आपको क्लास स्कूल में क्यों होता है कि एक टाइम टेबल

0: एग्जाम चल रहे हैं, अच्छा लगेगा, लेकिन फ्रूट्स खाइए,
1: हेल्दी खाइए,
0: अच्छी चीजें खाइए जो आपको एक्टिव रहने में बहुत मदद करेंगे।
1: एग्जैक्टली।
0: और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आजकल मुझे लगता है 90% बच्चे नहीं करते हैं, प्लीज प्लीज समय पे सोना शुरू कर दीजिए। मैक्सिमम मैं कह रही हूँ 11 o'clock, 11:30 इसको खींच लीजिए, लेकिन टाइम पे सोना शुरू करिए। जब आप अपना टाइम थोड़ा सा सेट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि मॉर्निंग में अगर आप 7 बजे उठ रहे हैं तो अगर आपने 11 बजे सोना शुरू कर दिया तो आप अगर 6 से 6:30 बजे उठना शुरू कर देंगे वो आपको फोकस करने में बहुत हेल्प करेगा।
1: मतलब एक फिक्स स्लीप साइकिल आपका होना चाहिए,
0: आपको टाइम शेड्यूल कहते हैं ना, बहुत ज्यादा बच्चे जो है ये बात बोलते हैं कि अरे 24 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला
1: जी,
0: क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत बहुत देर से की है।
2: बिल्कुल सही बात है। मेरा एक प्रश्न ये है कि हमारे जो ज्यादातर श्रोता हैं, रेडियो खीरी के सुनने वाले श्रोता, वो ज्यादातर ग्रामीण समुदाय से हैं, और जब हमारी टीम विजिट करने जाती है तो आमतौर पे माता पिता का एक सवाल होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के करी है का, हम क्यों पढ़ाएं उन्हें। आपको पता है बहुत ज्यादातर बच्चे यहाँ पे एनरोल है सरकारी स्कूल में, वहाँ की पढ़ाई की वजह से कि क्या वजह है वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, और जो भेजना भी चाहते हैं तो वो उनका यही प्रश्न रहता है कि आधे समय में बच्चा वापस आ जाता है। उनको पढ़ाई की ऐसे माता पिता के लिए एक ऐसा संदेश कुछ दीजिए कि उनके अंदर भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने की एक ललक हो, पढ़ाई के प्रति भी वहाँ के जो माहौल है, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके घर का माहौल नहीं बन पाता है, आखिर क्या वजह है।
0: भावना जी, क्योंकि आपको पता है आज भी हम जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर हम पढ़ाई को सीधे सीधे नौकरी से ही जोड़ते हैं
2: जी,
1: बिल्कुल,
0: कहीं ना कहीं हम,
1: और वो भी सरकारी नौकरी से,
0: कहीं ना कहीं हम बहुत असफल हैं ये बताने में कि अगर आपका बच्चा आज पढ़ लेता है तो वो अपने लिए एक बदलाव ला सकता है। जिस माहौल में आप रह रहे हैं वो आगे चल के अपने बच्चों के उस माहौल को बदल सकता है। जैसे हमेशा एक बात होती है कि ये महिलाओं के लिए भी कहा जाता है, इतना पढ़ लिख करके घर संभाल रही हो,
2: संभाल रही है,
0: लेकिन एक पढ़ी लिखी महिला जिस तरह से अपने घर को संभाल रही होगी
1: या संभाल सकती है,
0: या जैसे संभाल सकती है, और एक ऐसी महिला जिसको नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, अच्छा सेहतमंद खाने के लिए किस तरह से क्या बनाना चाहिए, घर का माहौल कैसे रखना चाहिए उसमें, और जो पढ़ी लिखी है जिसको जानकारी है इन सारी चीजों के बारे में, बहुत ज्यादा अंतर होगा। तो बस सबसे पहले तो माता पिता को ये समझना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा पढ़ लिख लेगा तो वो अपने लिए एक ऐसा जीवन खोज सकता है या ऐसे एक जीवन को तैयार कर सकता है जिसमें उन्हें प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि वो खाएगा क्या।
2: बिल्कुल
1: ठीक है। बहुत सारी चर्चा हुई है मुझे लगता है कि, लेकिन एक बहुत अगर रैपिड राउंड में मैं जाऊं तो मैं कुछ कुछ चीजें आपसे पूछना चाहूंगा कि बच्चों को डांटना चाहिए,
0: डांटना चाहिए लेकिन अपने शब्दों पे काबू रखना चाहिए।
1: ठीक है, बच्चों को पढ़ाई में हम कैसे लगाएं और क्या ऐसा कह दें कि वो तुरंत जुट जाएं?
0: सबसे पहले पढ़ाई बहुत जरूरी है, ये एक जो फोकस है वो आपको बच्चों को हमेशा बता करके रखना चाहिए। एक एनवायरमेंट, एक डिसिप्लिन, एक रूटीन बच्चों को आपको सेट करके देना ही पड़ेगा।
1: बच्चों को मोबाइल से कितना जल्दी दूर करें?
0: बहुत जल्दी।
2: कितने घंटे देखें मोबाइल?
0: अमूमन पूरे दिन भर में शायद 1 से 2 घंटा सफिशिएंट है, छोटे बच्चों की बात में।
2: माँ बाप कितने घंटे देखें?
0: ये उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो मोबाइल फोन के अलावा अपने आप को और दूसरे किन चीजों में इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये तो देखिए एक ब्लेम गेम हो गया फिर।
1: Correct.
0: आपने देखा, मैंने देखा, मैंने नहीं देखा, आपने देखा, और इस लड़ाई में हम कहीं भी कभी भी कहीं पहुंच नहीं पाएंगे।
1: करेक्ट। टीचर्स को क्या ऐसे में करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के लिए?
0: टीचर्स को अवेलेबल रहना चाहिए, उन्हें बच्चों के ऊपर ये विश्वास जताना चाहिए कि जो भी आपने किया है सब कुछ बहुत अच्छा होगा, और ये सिर्फ एक एग्जाम है। और पेरेंट्स के साथ साथ जो रिलेटिव्स हैं, मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब बच्चा एग्जाम देके आ जाए तो प्लीज मत पूछिए एग्जाम कैसा गया, दे आया, अच्छा ही गया,
1: जो
0: होगा वो देखा जाएगा।
1: ठीक है। बहुत सारी पीटीएम्स होती हैं जिसमें पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि किस पॉइंट को सबसे ज्यादा पीटीएम में डिस्कस होना चाहिए इन बिटवीन पेरेंट एंड टीचर?
0: बच्चे का बिहेवियर कैसा है क्लास में, मेरा बच्चा इन्वॉल्व रहता है कि नहीं रहता है, क्या कुछ ऐसा है जो आपको बच्चे के बिहेवियर में एज अ टीचर लगता है कि घर के माहौल में कुछ ऐसे चेंजेस करने चाहिए?
1: योगा करना चाहिए?
0: बिल्कुल करना चाहिए।
1: बच्चों के लिए कितना फिट है?

0: बच्चों के लिए 110% फिट है। डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। इनफैक्ट क्लास में भी जब बच्चे पहुंचे या जब दिन की शुरुआत हो तो एक अच्छी ब्रीदिंग टेक्निक से अगर आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं है।
1: क्या एग्जामिनेशन के टाइम पर उनको खेलने का मौका देना चाहिए?
0: बिल्कुल देना चाहिए।
1: कितने टाइम का?
0: ये डिपेंड करता है कि बच्चा कितना प्रिपेयर्ड है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि 35-40 मिनट्स के बाद आप अगर आपका बच्चा खुद कमरे से बाहर नहीं निकल रहा तो आप वहां जाकर के कोई एक जोक सुना के चले आइए, कुछ एक ऐसा एनवायरमेंट वो कर लीजिए, बच्चे का हाथ पकड़ करके टेबल चेयर से उठाइए और बोलिए आओ एक राउंड लगा करके आते हैं।
1: ठीक है, तो बहुत सारी चर्चा हमने की है और निश्चित रूप से ये चर्चाएं हमें लगता है कि हमारे लिसनर्स के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली हैं।
2: बहुत ज्यादा आशीष, बहुत ज्यादा, और खासकर स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी।
0: और मेरी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट दोबारा है पेरेंट्स के लिए, जिन्होंने भी ये सुना हो जहां से भी वो सुन रहे हैं, जब वापस आप घर जाइए तो एक बार बहुत जोर से अपने बच्चे को गले लगाइए और बोलिएगा कि मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ तो बेटा कर ही लोगे। ये बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा क्या करना चाह रहा है। अगर आप उस चीज पे आत्मविश्वास नहीं दिखाएंगे और अगर आपका बच्चा थोड़ा सा जिद्दी है तो वो उस चीज को करेगा ही करेगा।
1: एग्जैक्टली
0: बस आपसे डिस्कनेक्ट होके करेगा और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि सिर्फ परेशानियां के अलावा कुछ और हाथ नहीं आता
2: जी।
0: है तो बेहतर है, एक परिवार है तो हाथ पकड़ करके आगे सब लोग जब बढ़ेंगे तो सबको वो खुशी मिलेगी और सब उस चीज को, उस सक्सेस को एंजॉय कर पाएंगे।
2: बिल्कुल श्रोताओं, पूरा आसमान आपका है।
1: बिल्कुल, एक लास्ट सवाल, रेडियो खीरी में आप आए, कैसा लगा?
0: बहुत अच्छा और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं चाहूंगी कि आगे और इस तरह के सेशंस होते रहें ताकि लोगों को सुनने का भी मौका मिले और ग्रेजुअली वो समझ भी पाएंगे कि ये सेशंस हम क्यों कर रहे हैं
2: जी।
0: और एक्चुअली इसके पीछे का रीजन क्या है।
3: हाय दयाल एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
6: टायर लो सोना जीतो।
7: क्या?
6: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
8: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
9: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
10: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
11: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
12: कॉल 8826213131।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सेहत सही लाभ कई और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, किशोरियों का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य। 10 से 19 साल की उम्र में न सिर्फ शरीर बदलता है बल्कि मन में भी कई सवाल उठते हैं, ऐसे में सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इस उम्र में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह माता पिता, स्कूल, समाज और सरकार मिलकर बच्चों की मदद कर सकते हैं। इन सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए सेहतिया भैया जी हैं।
1: नमस्कार खुशी जी। जैसे किसी बगीचे में सही समय पर पानी और खाद ना मिले तो पौधा सूख जाता है, वैसे ही किशोर उम्र में अगर सही जानकारी और सलाह न मिले तो बच्चा उलझ सकता है, इसलिए सही बातें जानना और समझना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। वैसे प्रवस्था के दौरान शरीर और मन में क्या बदलाव आते हैं?
1: जब बच्चा 10-11 साल का होता है तब से उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाते हैं, जैसे लड़कों की आवाज भारी होने लगती है, उनका कद एकदम तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, लड़कियों में मासिक धर्म यानी पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। शरीर बदलेगा तो इसका असर मन पर भी पड़ेगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी बिना बात के मन उदास हो जाएगा या अकेलापन लगेगा, ये सब एकदम नॉर्मल है, डरने की बात नहीं है।
0: भैया जब हम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या बातें आती हैं?
1: देखो जी, कई बातें हैं जिनके बारे में खुलकर बात करना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि महावारी यानी पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर लड़की और औरत के शरीर में होती है। इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि किसी को शर्म या डर न लगे। अब बात आती है गर्भ ठहरने की यानी बच्चे होने की बात। आजकल ये जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों ये समझे कि बिना सोचे समझे जल्दी माता पिता बन जाना मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसलिए बचाव के तरीके जैसे गर्भ निरोधक उपाय की जानकारी सबको होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, किसी भी संबंध का फैसला सोच समझकर होना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ना कहने का हक है और अपने शरीर के बारे में फैसला लेने का अधिकार भी है, ये समझना ही असली समझदारी है।
0: अगर किसी किशोर को डर लगे, शर्म आए या मन में कोई सवाल हो तो उसे कैसे क्या करना चाहिए?
1: सवाल उठाना तो अच्छी बात है, ऐसे में संकोच नहीं करना चाहिए, अपने घर में माता पिता से, स्कूल में टीचर से या किसी ऐसे बड़े से बात करनी चाहिए जिस पर भरोसा हो। अगर डॉक्टर या काउंसलर से बात करने का मौका मिले तो बिना हिचक अपने सारे संदेह पूछ लेने चाहिए।
0: सेहतिया भैया, जब हम किशोरों की यौन और प्रजनन सेहत की बात करते हैं तो कई बार समाज की पुरानी सोच और परंपराएं ही रुकावट बन जाती है, जैसे लड़कियों पर जल्दी शादी करने का दबाव और लड़कों पर हमेशा रो मत मर्द बन, ऐसे माहौल में सही जानकारी और सही सुविधाएं कितनी जरूरी हैं।
1: बिल्कुल आरजे खुशी, चाहे गांव हो या शहर, ऐसी सोच हर जगह मिलती है। लड़की बड़ी हो गई तो लोग कहते हैं कि बोझ बन गई है, लड़कों से कहा जाता है कि अब घलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब ऐसे ताने मिलेंगे तो बच्चे कैसे खुलकर बात करेंगे, इसलिए जरूरी है कि किशोरों को सही जानकारी दी जाए, अच्छे से समझाया जाए और उनकी बात सुनी जाए। किशोरों को डांटना नहीं है, उन्हें प्यार से समझाना है, उनकी बात सुननी है और उनका साथ देना है।
0: सेहतिया भैया, हम देख रहे हैं कि कई जगह बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है, ऐसी करने से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है और अगर किशोरी गर्भवती हो जाए तो ये खतरनाक हो सकता है ना?
1: बिल्कुल, ये चिंता की बात है। शादी से लड़की के ऊपर बहुत बोझ आ जाता है, शरीर पर भी और मन पर भी। अगर कम उम्र में वो गर्भवती हो जाए तो माँ बच्चे की जान जाने का खतरा भी हो सकता है, फिर लड़के की पढ़ाई, करियर, सपने सब पीछे छूट जाते हैं, जिंदगी बस घर गृहस्थी तक ही सिमट जाती है।
0: अगर कोई लड़की गलती से गर्भवती हो जाए तो डर की वजह से चोरी छुपके गर्भपात करवा लेती है, ये कितना खतरनाक है?
1: जब किसी किशोरी को डर लगता है, शर्म आती है या सही जानकारी नहीं होती तो वो चुपचाप गलत जगह जाकर डॉक्टर की सलाह गर्भपात करवा लेती है, ऐसे में उसे नुकसान हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, बहुत खून बहना, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है, इसलिए सही जानकारी जरूरी है। अगर लड़की को सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालात से बचा जा सकता है।
0: ठीक कहा आपने। अब एक दूसरी समस्या पर आते हैं। आजकल किशोरों में यौन संक्रमण और HIV जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है।
1: किशोरावस्था में शरीर और मन में कई बदलाव आते हैं, वे बहुत ही नई बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें जरूरी जानकारी नहीं मिलती, जैसे कि सुरक्षित यौन संबंध क्या है या कॉन्डम का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो वह कभी कभी ऐसे काम कर सकते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं होते हैं। HIV और बाकी यौन संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। अगर किशोरों को ये नहीं पता कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए, तो वह अपनी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि उन्हें खुलकर सही और साफ जानकारी दी जाए।
0: सेहतिया जी, हमने किशोरों की शारीरिक सेहत और यौन स्वास्थ्य की बात की है, लेकिन एक बात जो अक्सर पीछे छूट जाती है वो है मानसिक स्वास्थ्य। आजकल किशोरों में डिप्रेशन, चिंता और तनाव की दिक्कत क्यों बढ़ रही है?
1: देखिए, किशोर नए माहौल में जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, पढ़ाई का दबाव होता है, शरीर में बदलाव आता है, और ऊपर से समाज की उम्मीद की तू लड़का है रो नहीं सकता, तू लड़की है समझदारी से चल, ये बातें दिमाग पर बोझ डालती हैं। कोई लड़का या लड़की किसी बात को लेकर परेशान है, लेकिन उसे बोलने की इजाज़त नहीं है, तो क्या होगा, सब कुछ अपने अंदर छुपाएगा। धीरे धीरे ये चीजें तनाव, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की वजह बन सकती है। कई बार किशोर रिश्तों को लेकर डरते रहते हैं और कोई उनकी बात नहीं सुनता, उल्टा लोग कहते हैं कि चुप रह, ऐसी बातें मत कर। इसलिए किशोर को सुनने और समझने की जरूरत है। अगर वो मदद लेते हैं तो वो कमजोर नहीं है, एक समझदारी वाला काम है। स्कूलों में काउंसलर हो, घर में प्यार से बात हो और हेल्थ सेंटर में उचित सलाह मिले, तो बहुत कुछ सुधर सकता है।
0: किशोरों के सामने बहुत सवाल होते हैं, जैसे शरीर में हो रहे बदलाव, रिश्तों की समझ और सही गलत का फर्क। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वे अपने फैसले समझदारी से ले सके?
1: सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चों को समग्र यौन शिक्षा दी जाए। अब नाम सुनकर कुछ लोग सोचते होंगे इसमें सिर्फ सेक्स की बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बच्चों को ये समझाया जाता है कि उनका शरीर कैसे बदलता है, उनके अधिकार क्या होते हैं और रिश्तों में कैसी समझदारी और जिम्मेदारी से फैसले लेने चाहिए। जैसे अगर किसी लड़की को स्कूल में बताया जाए कि पीरियड्स बिल्कुल सामान्य चीज है और इसे लेकर शर्माने की जरूरत नहीं है, या किसी लड़के को सिखाया जाए कि अगर कोई न कहे तो उसे मानना चाहिए, तो दोनों आगे चलकर ज्यादा समझदारी और इज्जत से रिश्ते निभाएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, किशोरों को सही जानकारी और सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या गर्भ से बचने के लिए उपाय यानी गर्भ निरोधक की जानकारी भी दी जानी चाहिए?
1: एकदम दी जानी चाहिए। जब कोई किशोर या किशोरी यौन संबंध के बारे में सोचने लगे तो उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी देना बहुत जरूरी है। गर्भ निरोधक साधन इस जानकारी का अहम हिस्सा है। अगर किसी को कुछ पता ही नहीं हो तो वो किसी रिश्ते में शारीरिक रूप से जुड़ जाए, फिर अगर अनचाही प्रेगनेंसी हो जाए तो उसकी पढ़ाई, करियर, पूरा भविष्य बिगड़ सकता है, उस लड़की की सेहत पर भी खतरा पड़ सकता है। अब अगर पहले से उसे पता हो कि कॉन्डम क्या होता है, गर्भ निरोधक गोली क्या होती है, कैसे काम करती है, या फिर इमरजेंसी पिल कब लेनी चाहिए, इन बातों की जानकारी से फैसला समझदारी भरा होता है।
0: लेकिन एक बात बताइए सिहतिया जी, कुछ लोग कहते हैं कि अगर किशोरों को ये सब सिखाया बताया वे गलत रास्ते पर ना चल पड़े।
1: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जानकारी देना कोई गलत रास्ता दिखाना नहीं होता है, बल्कि समझदार और जिम्मेदार बनाना होता है। अगर किशोरों को कुछ बताया ही नहीं गया तो वे कहीं और से, इंटरनेट या दोस्तों से अधूरी या गलत जानकारी लेकर उलझ सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल, घर या हेल्थ सेंटर में खुले मन से बात हो तो वे खुद और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे।
0: सिहतिया जी, आपने बताया कि किशोरों को सही जानकारी और सही माहौल देना जरूरी है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा ही पहल हुई है?
1: बिल्कुल जी, सरकार ने इस पर काफी काम किया है। देखिए, एक योजना है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKSK। इसके तहत किशोरों को सेहत, पोषण, मानसिक तनाव, यौन स्वास्थ्य और नशे से बचाव जैसी चीजों पर जानकारी दी जाती है।
0: आखिर इस योजना में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? यदि कोई किशोर या किशोरी हेल्प लेना चाहे तो उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं?
1: RKSK बहुत ही काम की चीज है। सरकार ने इसे खास तौर पर 10 से 19 साल के किशोरों के लिए शुरू किया है। इस योजना के कई हिस्से हैं। पहला है किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक। ये सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं जहां किशोर अपनी समस्याएं खुलकर डॉक्टर या काउंसलर से कह सकते हैं। क्लिनिक में उन्हें उचित सलाह मिलती है। दूसरा है अनुपूरण कार्यक्रम। इसके तहत लड़के और लड़कियों को हफ्ते में एक बार आयरन की गोली दी जाती है ताकि उनमें खून की कमी ना हो। तीसरा है सहकर्मी शिक्षक योजना। इसमें गाँव के ही कुछ लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने जैसे बाकी बच्चों को सेहत के बारे में बता सके।
0: अच्छा सिहतिया जी, ऐसा क्या है?
1: हाँ, अब जैसे मेरे गाँव की है वो कक्षा 2 में पढ़ती है। RKSK से जुड़ने के बाद सीमा अपनी सहेलियों को मासिक धर्म, साफ सफाई और सुरक्षित यौन व्यवहार पर खुलकर बात करना सिखाती है, जानकारी देती है। सहेलियां भी अपनी बात बिना झिझके सीमा से साझा करती हैं। चौथा है मासिक धर्म स्वच्छता योजना। इसमें सरकार सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए पैसे देती है ताकि गांव की लड़कियां साफ सफाई से पीरियड संभाल सकें। पहले कई लड़कियां कपड़े का इस्तेमाल करती थी जिससे इन्फेक्शन हो जाते थे, अब ये स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। RKSK सिर्फ आम किशोर के लिए ही नहीं बल्कि LGBTQ बच्चों जैसे लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर के लिए भी है। डॉक्टर, ANM, काउंसलर सबको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वह सभी की मदद बिना भेदभाव के कर सके।
0: सिहतिया जी, अगर RKSK जैसे प्रोग्राम हर गांव, हर स्कूल तक पहुंच जाएं, तो किशोर सिर्फ तंदुरुस्त नहीं होंगे बल्कि कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे।
1: देखिए जी, एक और बढ़िया योजना है अर्श, इसका मतलब है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, यानी किशोरों को उनकी उम्र के हिसाब से शरीर और सेहत से जुड़ी जरूरी बातें समझाना, जैसे कि शरीर में बदलाव क्यों होते हैं, पीरियड्स और यौन व प्रजनन से जुड़ी बातें क्या हैं। इन बातों को धीरे धीरे प्यार से खुलकर समझाया जाता है।
0: ये तो बहुत ही बढ़िया बात है सिहतिया जी।
1: हाँ, अब सरिता की आप बीती आपको सुनाता हूँ। 14 साल की सरिता पढ़ाई में बहुत तेज है। पहले जब कोई पीरियड्स या शरीर के बदलाव की बात करता था तो सरिता और उसकी सहेलियां नजरें चुराने शुरू कर देती थी, शर्मा जाती थी। फिर एक दिन गांव में RKS की योजना के तहत किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। उस दिन ANM दीदी भी आई। उन्होंने लड़कियों से प्यार से बात की, बोली कि पीरियड्स आना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो शरीर का एक सामान्य हिस्सा है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे साफ सफाई रखनी है, कौन सी आदतें अपनानी है। उस दिन की बातें सरिता के दिल और दिमाग में घर कर गईं। अब सरिता खुलकर बोलती है, अपनी सहेलियों को भी समझाती है।
0: बिल्कुल सहेतिया जी, जब कोई इतनी गंभीर बात हो खासकर सेहत को लेकर, तो बात खुलकर ही करनी चाहिए। इसमें डर और शर्म करके अपना ही नहीं दूसरों का भी नुकसान होता है।
1: सरिता की सहेली गीता कई दिनों से थकी थकी सी रहती थी, कुछ खाने का मन नहीं करता था, चक्कर आ जाते थे। फिर वह आंगनवाड़ी केंद्र गई और वहाँ मौजूद ANM रेखा दीदी ने गीता से बात की, फिर उसकी जांच करवाई। पता चला कि उसे खून की कमी यानी एनीमिया है। अगर समय रहते पता न चलता तो परेशानी बढ़ सकती थी, लेकिन समय पर इलाज मिला और गीता स्वस्थ हो गई।
0: मतलब ये योजना सच में जमीन पर असर कर रही है।
1: और सुनिए, सबसे प्रेरणादायक बात तो ये है कि पास के गाँव की रीना की कहानी। रीना बहुत होनहार लड़की थी, 8वीं में पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लाए थे उसने, लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो घर वालों ने उसकी शादी करवा दी। बोली अब ज्यादा पढ़ाई का फायदा नहीं है, लड़की तो घर ही संभालेगी। रीना ने हिम्मत जुटाई और अपनी आंगनवाड़ी दीदी और स्कूल की शिक्षिका से बात की। उन्होंने उसके माता पिता को समझाया कि 18 साल के पहले शादी करना ना सिर्फ कानूनी गलत है बल्कि लड़की की सेहत और भविष्य के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने यह भी बताया कि अब सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और स्किल ट्रेनिंग दे रही है। धीरे धीरे परिवार मान गया। आज रीना इंटर की पढ़ाई कर रही है और आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों को पढ़ाने में मदद भी करती है।
0: अरे वाह सिहतिया जी, जब सही जानकारी सही समय पर सही तरीके से मिल जाए तो किशोर अपने फैसले खुद लेने लगते हैं।
1: किशोर छोटे बच्चे नहीं होते और न ही वो पूरी तरह बड़े हो जाते हैं, वह बीच का सफर तय कर रहे होते हैं। ऐसे में उन्हें सुना जाना और साथ दिया जाना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा सिहतिया जी। दोस्तों, ये ठान लें कि हम किशोरों को टोकेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे, सुनेंगे और उनका साथ देंगे, क्योंकि जब जानकारी सही होगी, सोच खुलेगी, तभी सेहत भी अच्छी होगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई में। तब तक के लिए सुनते रहिए, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड में। पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजना का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी सेहत के लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। धन्यवाद।

0: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
1: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
0: अरे वाह।
1: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
0: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
2: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
4: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने शो सेहत सही लाभ कई में। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे रीना। दोस्तों, जब हम सेहत की बात करते हैं तो कई ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य पर असर करती है। इसमें से एक और मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी मासिक धर्म, स्वच्छता। दुनिया की 50% जनसंख्या मेंस्ट्रुएशन अनुभव करती है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं, शर्म महसूस करते हैं, घरों में, स्कूल में बात नहीं करते हैं।
5: बिल्कुल सही कह रही हैं आप आर्जेरीना जी। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ये बात सच है कि हम मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक धर्म और उससे जुड़ी हुई बातों पर चर्चा नहीं करते, लेकिन ये भी सच है कि आज की नई पीढ़ी अब खुलकर बात करने के लिए तैयार है।
4: जी बिल्कुल, लेकिन अभी भी बहुत कम है हमारे गांव में बात करना, तो दूर बल्कि सदियों से चले आ रहे इससे जुड़े हुए भ्रम और रूढ़िवादी प्रथाओं को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन मैं अपनी सभी श्रोताओं को बताना चाहती हूं कि इस बार जब मैं रेडियो फेस्टिवल के लिए दिल्ली गई थी, तो मैंने एक महिला और सामाजिक सोच पर बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन सुना। आपको पता है, उसमें एक प्राइवेट चैनल की बहुत मशहूर महिला आरजे जैसे ही मंच पर आई और बोली, भाई मैं कुर्सी पर पांव ऊपर करके बैठूंगी क्योंकि मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, कृपया बुरा ना माने। उन्होंने कहा कि मासिक धर्म के कारण उनकी पीठ में भी दर्द है, इसीलिए उन्हें आराम से बैठना है। कुछ सेकंड के लिए तो हॉल में बैठे सभी लोग शांत हो गए, फिर किसी ने ताली बजाई और हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। जो शो को मॉडरेट कर रहे थे, उन्होंने भी उस आरजे की सराहना करते हुए कहा कि यदि और महिलाएं इस प्रकार से खुलकर बात करें तो शायद मासिक धर्म जैसे मुद्दों पर चर्चा नॉर्मल समझी जाने लगेगी।
5: ये तो वाकई में बहुत बड़ी बात है कि एक 300-400 लोगों की सभा में कोई महिला इस प्रकार खुलकर बात करे। और अब मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मैं जब यहाँ आ रही थी तो मैंने सुना और देखा भी कि पीरियड्स की सुंदा जी अपनी बेटी को अपने आंगन में खड़ा करके बोल रही थी कि रसोई में मत जाना, जो खाना होगा बता देना, मैं लाकर दे दूंगी, और कपड़े भी एक ही जोड़ी पहनना, बार बार बदलना नहीं। आप टीकन देवी यानी मुझे तो जानते ही हैं। मैंने तुरंत दरवाजा पूरा खोला और अंदर चली गई। मैंने उनसे पूछा कि क्यों, क्या हुआ? बेटी को धीरे से मेरे कान में फुसफुसाकर बोली, अरे धीरे बोलो, उसे मासिक धर्म आ रहा है।
4: अरे ये तो बड़े अफसोस की बात है कि आज भी ऐसी धारणाएं हमारे समाज में प्रचलित है। लेकिन आपने क्या किया?
5: उन्हें बताया कि इसमें धीरे बोलने, एक ही जोड़ी कपड़े पहनने या छुआछूत करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हर महिला को होता है और ये कोई बीमारी नहीं।
4: तो क्यों ना हम अपने सभी सुनने वालों को, महिला, पुरुष, लड़के, लड़कियों को, बूढ़े, जवान, सभी को मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जिसका सेहत से डायरेक्ट लिंक है, इसके बारे में बताएं। शायद हमारा प्रोग्राम सुनकर वहम भ्रम और सोच में परिवर्तन आ जाए।
5: बिल्कुल, और आज का दिन भी इस बात पर चर्चा करने के लिए बिल्कुल सही है। आज 28 मई है और आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी है।
4: मुझे तो पता ही नहीं था कि मासिक धर्म के दौरान साफ सफाई रखने पर बात करने के लिए भी एक दिवस होता है।
5: बहन, अभी तो आपको बहुत कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए तो मैं और सिहतिया सिंह जी आपके साथ इस सीखने सिखाने और ज्ञान बांटने के मुँह में जुड़ गए हैं। आपके इस कार्यक्रम सेहत से ही लाभ कई के चलते हम भी हर सप्ताह कुछ नया सीखते हैं। हमारे श्रोताओं के साथ सेहत से जुड़ी ढेर सारी बातें करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, हर साल 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, इसलिए इस दिन का मकसद होता है कि हम मासिक धर्म को लेकर फैली गलतफहमियों को दूर करें और साफ सफाई को बढ़ावा दें।
4: तो यह दिन कब से मनाया जा रहा है?
5: ये दिन सबसे पहले वर्ष 2014 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत जर्मनी के एक संस्था वॉश यूनाइटेड ने की थी, जिसका उद्देश्य स्वच्छता, स्वच्छ जल और हाथ धोने जैसी आदतों को बढ़ावा देना है। तब से हर वर्ष ये दिन वैश्विक स्तर पर लोगों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है और ये हर वर्ष एक नई थीम देता है।
4: तो फिर इस साल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे का विषय क्या होता है?
5: इस साल की थीम है पीरियड्स फ्रेंडली वर्ल्ड के लिए है एक साथ, मतलब हम सब मिलकर ऐसा माहौल बनाएं जहां कोई लड़की या महिला सिर्फ इसलिए पीछे ना रह जाए क्योंकि वो पीरियड्स में है।
4: जी, मैं श्रोताओं में आपको एक ऐसी जानकारी देना चाहती हूँ जिससे आप बहुत चक्के रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं दुनिया में हर दिन करीब 80 करोड़ महिलाएं मासिक धर्म से होती हैं और इसके दौरान होने वाली कोई स्वास्थ्य संबंधी बात या साफ सफाई या फिर पोषण की हम बात नहीं करते हैं।
5: जो बात होती है वो केवल पीरियड्स को लेकर जो मान्यताएं चलाई जा रही हैं वही होती हैं, जैसे पीरियड्स के दौरान महिला कहीं खान पीन की चीजें के आसपास ना आए, पूजा में ना बैठे, मंदिर में ना जाए क्योंकि अशुद्ध माना जाता है, लड़कियों को स्कूल जाने से रोक दिया जाता है, कई जगहों पर बच्चियों को शादी के लिए तैयार मान लिया जाता है मानो कि बस इसलिए कि उन्हें पहली बार पीरियड्स हुआ है,
4: और यही सोच उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान से दूर कर देते हैं। बहुत सी लड़कियां स्कूल नहीं जाती क्योंकि उनके पास सैनिटरी पैड्स नहीं होते हैं या स्कूल में शौचालय की सुविधा नहीं होती है और बहुत सी जगह पर पानी की कमी होती है, उसके कारण भी पीरियड्स के दौरान बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
5: सबसे पहले मैं ये समझाना होगा कि मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं है, ये एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है, हमें इसे सामान्य बात की तरह अपनाना होगा। दूसरी बात ये है कि अनेक प्रथाओं के कारण और सुविधाओं की कमी के कारण महिलाएं अपनी देखभाल नहीं कर पाती, वे किस दौर से गुजरती हैं उसे सिर्फ एक महिला ही समझ सकती है।
4: आपकी बात 50% सही और 50% सही नहीं है। जो भी थोड़े सेंसिटिव और पढ़े लिखे लोग है वह सख्त है कि मासिक धर्म से पहले कई महिलाओं को शारीरिक या मानसिक परेशानी होती है जिसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, पीठ दर्द, ब्रेस्ट में दर्द, नींद ना आना आदि।
5: मुझे खुशी हुई ये सुनकर। PMS हर महिलाओं को अलग तरह से प्रभावित करता है, ये हार्मोन में बदलाव की वजह से होता है, कुछ महिलाओं को ज्यादा असर होता है, कुछ को कम, लेकिन ये हमें ये समझना चाहिए कि PMS को लेकर भी कई गलत धारणाएं हैं,
4: जैसे कि हर महिला PMS में मूडी हो जाती है या काम नहीं कर सकती, ये बिल्कुल गलत है। हर व्यक्ति अलग होते हैं, कुछ महिलाओं को PDS में काफी पीठ और पेट में दर्द होता है, कुछ को उल्टी होती है और कुछ के चेहरे पर दाने निकल आते हैं। पीरियड्स के पहले वाटर इरिटेशन हो सकता है, चेहरा और शरीर थोड़ा भारी हो जाता है और कुछ महिलाओं को कोई भी परेशानी नहीं होती है।
5: और एक जरूरी बात, क्या आप जानती हैं कि कोई महिला पीरियड्स में भी प्रेग्नेंट हो सकती है? जी हाँ, ये सच है।
4: सही कहा, लोग सोचते हैं कि पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, लेकिन ये गलतफहमी है, खासकर अगर महिला की साइकिल अनियमित हो। अब थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात कर लेते हैं। टीकन भाभी, आप हमारे श्रोताओं को बताइए,
5: मासिक धर्म के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि महिलाएं इस दौरान क्या इस्तेमाल करती हैं। कई महिलाएं सैनिटरी पैड इस्तेमाल करती हैं, कुछ महिलाएं टेम्पर्स इस्तेमाल करती हैं और काफी कामकाजी शहरी महिलाएं मेस्टॉक कप का इस्तेमाल करती हैं।
4: तो क्या हर एक समाधान के लिए अलग अलग सफाई के तरीके हैं?
5: सफाई तो सभी साधनों के लिए सेम ही है। इस समय इस्तेमाल किए जा रहे कपड़े, सैनिटाइजर पैड, टेम्पर्स को हर 4-6 घंटे में बदलना चाहिए और मेंस्ट्रुअल कप को हर 4-6 घंटे में खाली करना चाहिए ताकि संक्रमण से बचा जा सके।
4: लेकिन डिस्पोजल या बदलने के बाद कहाँ फेंके, कहाँ धोए और कहाँ खाली करें?
5: ये बहुत जरूरी सवाल है, ध्यान से सुनिए। इस्तेमाल इस्तेमाल किए गए सैनिटरी पैड्स को कभी भी इधर उधर या खुले में नहीं फेंकना चाहिए। इन्हें किसी पुराने कागज या अखबार में अच्छे से लपेटें और फिर ढक्कन वाले कूड़ेदान में डालें। कभी भी पैड को शौचालय में फ्लश ना करें, इसे नाली जाम हो सकती है। टेम्पून भी ऐसे ही डिस्पोज किए जाते हैं, लपेट कर बंद डस्टबिन में। अगर कोई कपड़ा इस्तेमाल कर रही है तो उसे अच्छे से साबुन और साफ पानी से धोकर धूप में सुखाना चाहिए ताकि उसमें कोई जीवाणु ना बचे। यदि आप उसे दोबारा नहीं इस्तेमाल करना है तो कम से कम 2 फीट का गड्ढा खोदें और उसमें उसे दबा दें और अच्छे से मिट्टी से बंद करें, जिससे कि कुत्ता या बिल्ली उसे बाहर ना निकाल सके।
4: और मेस्ट्रुअल कप,
5: मेस्ट्रुअल कप की बात करें तो उसे हर 4-6 घंटे में साफ हाथों से निकाल कर टॉयलेट में खाली करें, पानी डाल दें, कप को साफ पानी से धोएं और दोबारा इस्तेमाल करें। हर माह के अंत में उसे उबाल कर अच्छी तरह स्टरलाइज करके किसी सेफ जगह पर रखें।
4: तो मतलब साफ सफाई की ही असली सुरक्षा है।
5: बिल्कुल, जितनी अच्छी सफाई उतनी ही अच्छी सेहत, और जब हम खुद ध्यान रखेंगे तभी अगली पीढ़ी को भी सही जानकारी दे पाएंगे।
4: क्या और भी कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए?
5: बिल्कुल, बहुत कुछ बताना है अभी। हर बार पैड बदलने से पहले और बाद में हाथ को साबुन से धोना चाहिए। जांघों की सफाई के लिए केवल साफ पानी का उपयोग करें और तीज या सुगंधित साबुन से बचें, क्योंकि ये पीएच संतुलन बिगाड़ सकते हैं। हमेशा सूखे और साफ कॉटन के अंडरवेयर पहनें और गीले या गंदे कपड़े तुरंत बदलें। यदि किसी भी प्रकार की जलन, खुजली, बदबू या असामान्य डिस्चार्ज हो तो बिना देरी के डॉक्टर से संपर्क करें। मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखना न केवल शरीर के लिए जरूरी है बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के लिए महत्वपूर्ण है।
4: बहने, भाभियाँ और आदरणीय माताएं, यह याद रखिए कि इस्तेमाल किए गए पैड्स, टेम्पर्स या कपड़े को खुले में ना फेंके, उन्हें पेपर में लपेटकर ढक्कन वाले कूड़ेदान में डाले या 2 फुट के गड्ढे में दबाए। और अगर आप सैनिटरी पैड को भी गाड़ते हैं तो उसमें से प्लास्टिक की सीट को निकालकर कूड़ेदान में डाले। लेकिन मासिक धर्म को लेकर बहुत सारे भ्रम है, क्या उसके बारे में भी थोड़ी बात करें?
5: इस सवाल जवाब के राउंड के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ, पूछिए।
4: मासिक धर्म के समय खाना नहीं बनाना चाहिए, पीडियर्स वाली लड़कियाँ अशुद्ध होती है, उन्हें मंदिर नहीं जाना चाहिए, ये सिर्फ अंधविश्वास है।
5: ये सब धारणाएं एकदम गलत हैं, इसमें कोई भी वैज्ञानिक सच्चाई नहीं है। ऐसी सभी भ्रमित को खत्म करना होगा।
4: क्या ये सच है कि नेपाल में कुछ जगहों पर लड़कियों को पीरियड्स के दौरान घर के बाहर जानवरों के बाड़े में रहना पड़ता है?
5: दुर्भाग्यवश ये सही है, लेकिन ये प्रथा गलत है, बहुत खतरनाक भी है। जानवरों का खतरा, ठंड और अकेलापन वैसे ही महिलाओं को अंदर से कमजोर कर देती है और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है।
4: साथ ही हमें लड़कों और पुरुषों को भी इन बातों में शामिल करना होगा। जब तक वे समझेंगे नहीं, बदलाव नहीं आएगा। पर भाभी, पुरुष और किशोरी कैसे भाग ले सकते हैं, इसमें जरा हमारे श्रोताओं को बताइए।
5: पुरुष और किशोरी अपनी माताओं और बहनों को मासिक धर्म के दिनों में घरेलू कामकाज में थोड़ा योगदान दें, जो कि ऐसे भी देना चाहिए, साथ ही उनका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सही कहा आपने, और हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना होगा। प्लास्टिक वाले सैनिटरी पैड्स को सैकड़ों सालों तक नष्ट नहीं होते, लेकिन कुछ पर्यावरण के अनुकूल विकल्प जैसे कपड़े वाले पैड, मेस्ट्रुअल कप, बायोग्रेडेबल पैड्स भी उपलब्ध हैं, जिनको महिलाओं को इस्तेमाल करना होगा।
4: हाँ, लेकिन जरूरी है कि हर महिला को अपनी सुविधा और संस्कृति के अनुसार विकल्प चुनने का अधिकार मिले। हर चीज हर किसी के लिए अनुकूल नहीं होते हैं।
5: ये भी ठीक है, क्योंकि पानी का स्तर भी बहुत जरूरी है। हम ये भी नहीं भूल सकते कि कोविड-19 महामारी के समय भी बहुत सी महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन नहीं मिल सके। पानी की कमी रही, स्कूल बंद हो गए, इससे उनकी तकलीफें और बढ़ी।
4: वो तो एक बहुत कठिन वक्त था, अलग अलग कारणों की वजह से।
5: अब आपकी इजाजत हो तो मैं बात करूंगी सरकार की कुछ पहलों की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFY ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे मीनू अभियान, जिसमें किशोरी लड़कियों को पीरियड्स और हाइजीन के बारे में जानकारी दी जाती है। RKS के तहत स्कूल कार्यक्रमों में किशोर किशोरियों को सही स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी दी जाती है। फ्री पैड वितरण, कुछ राज्यों में सरकार फ्री या सस्ती दर पर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करा रही है।
4: यही नहीं स्कूल और पंचायत स्तर पर भी जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। पर जरूरत है कि हम इन पहलों का हिस्सा बने।
5: आप कुछ पॉजिटिव बातें भी करें। पीरियड्स का होना महिलाओं की सेहत का संकेत है। ये शरीर के कामकाज को समझने में मदद करता है। कुछ परंपराओं में जैसे राजस्थान में पीरियड्स के समय महिलाओं मायके जाती हैं और आराम करती हैं।
4: हाँ, पीरियड्स को भी एक सेलिब्रेशन की तरह लिया जाना चाहिए। ये जीवन की प्रक्रिया है, ना कोई शर्म ना कोई डर, और अब समय है कि हम मिलकर आगे बढ़े और अपने बच्चों को सही जानकारी दे, स्कूल में साफ सफाई की स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करे और सबसे जरूरी पीरियड्स पर खुलकर बात करे।
5: एक पीरियड्स फ्रेंडली वर्ल्ड मनाना हम सबकी जिम्मेदारी है, शर्म नहीं समझ चाहिए।
4: बहुत बढ़िया बात कही भाभी आपने। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें जरूर लिखे या कॉल करे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और जरूरी मुद्दे के साथ।
5: तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।
6: सुनिए आरजे रीना, और आज हमारे साथ है अनुला मैम, जिनसे हम बात करेंगे पीसीओडी क्या होता है। मैम, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे लिसनर्स को।
7: मैं प्रोफेसर डॉक्टर पूनम सिंह, आई एम इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, और मैं इनफर्टिलिटी ट्रीट कर रही हूँ सिंस 2005 और आई एम प्रैक्टिस फॉर लास्ट 26 इयर्स।
6: मैम, पीसीओडी क्या होता है?
7: पीसीओडी का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसमें कि फीमेल के अंदर मेल हॉर्मोन्स मेनली एंड्रोजन्स ज्यादा हो जाते हैं, और जो दूसरे फीमेल हॉर्मोन्स हैं हार्मोन उनका भी इम्बैलेंस हो जाता है।
6: और हमारा सेकेंड क्वेश्चन होगा मैम, पीसीओडी और पीसीओएस में क्या अंतर है?
7: हाँ, थोड़ा सा माइनूट सा फर्क है। पीसीओडी इज मेनली कंसिडर्ड एज की जब तक डिजीज ओवरी तक कन्फाइंड है, कि ओवरी में जब तक डिजीज है, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में और भी चीजें आती हैं जिसमें मेटाबॉलिक इन्वॉल्वमेंट्स हो जाते हैं, डायबिटीज हो जाती है और भी चीजें हो जाती है। तो सिंड्रोम एक बड़ा रूप है पीसीओडी।
6: मैम, पीसीओडी के मुख्य कारण क्या है?

0: मालूम रहता, लेकिन वो डॉर्मेंट रह सकता है जब तक कि वो अपना एक रेगुलर हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं। और यदि फीमेल्स जो कि अभी तक हेल्दी थी, अगर वो वेट गेन कर लेती हैं या फिर वो अपनी डाइटी हैबिट्स को पुअर कर लेते हैं, जैसे आजकल कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड्स का ज्यादा फैशन है, तो अगर डाइट अपना हेल्दी नहीं रखते हैं तो ये सिम्टम्स सामने आने लगते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो पीसीओडी है भी तो वो कंट्रोल में रहे।
1: हमारा अगला क्वेश्चन होगा मैम, पीसीओडी के सामान्य लक्षण क्या है?
0: पीसीओडी में सबसे पहले मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटी शुरू होती है, मेंसेस देर में आता है, कम कम आता है, कभी कभी एक दो महीने में आता है। उसके अनमैरिड गर्ल्स में जो सिम्टम्स देखने में आते हैं वो यही मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटी से फर्स्ट वो प्रेजेंट करती है। कई बार वो एक्ने जो हो जाते हैं फेस पे, उनके बहुत ज्यादा

0: मीन्स बाचपन की प्रॉब्लम लेकर भी हमारे पास आते हैं।
1: हमारा अगला क्वेश्चन है मैम, पीसीओडी में कौन कौन से हार्मोन असंतुलित होते हैं?
0: मैंने आपको जैसे बताया कि FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एंड्रोजेंस ये इरेगुलर हो जाते हैं।
1: और मैम अगला क्वेश्चन हमारा, क्या पीसीओडी बाचपन का कारण बन सकता है?
0: यस ऑफ कोर्स पीसीओडी बाचपन का कारण है, क्योंकि पीसीओडी में हो क्या रहा है एक्चुअली, जो ओवरी की नॉर्मल फिजियोलॉजी है जो कि अंडे बनाने का काम होता है ओवरी का, कि एक अंडा छोटा होता है तो वो धीरे धीरे 14 डेज में वो मैच्योर होता है, फिर वो मैच्योर होकर ओवरी से रिलीज होकर यूट्रस में आता है जूट के थ्रू और फर्टिलाइज होकर बच्चा बनाता है। लेकिन जब ये फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होते, पीसीओडी में यही प्रॉब्लम होती है कि वो छोटे छोटे फॉलिकल्स इकट्ठे होते रहते हैं और मैच्योर नहीं होते हैं, तो फिर उसमें बाचपन की समस्या आ जाती है और उसी वजह से मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटी भी होती है, क्योंकि फिर वो हार्मोन रिलीज नहीं करते जो कि प्रॉपर उन्हें रिलीज करना चाहिए बड़े होकर। फॉलिकल्स जब बड़े होते हैं हार्मोन रिलीज करते हैं, वो अब नहीं कर रहे हैं रिलीज, छोटे रह रहे हैं, तो उससे सारी प्रॉब्लम आती है बाचपन की और मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटी।
1: मैम अगला क्वेश्चन।

0: है बदलाव जरूरी।
1: वही जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको फास्ट फूड खाने की आदत है, पिज्जा बर्गर आप बहुत खाते हैं, मैक्रोनी पास्ता बहुत खाते हैं, वो खाना बंद कर दीजिए। होली ग्रेन रोटी खाइए, स्प्राउट्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, नट खाइए, जिससे कि इन सब चीजों में प्रोटीन और फाइबर्स होते हैं। तो जब ये चीजें बढ़ेंगी बॉडी में और कार्बोहाइड्रेट्स आप कार्ब्स आप कम लेंगे, और तो एक तो ये यहाँ से कंट्रोल हो गया, दूसरा जब आप एक्सरसाइज करेंगे अच्छे से और अपनी कैलोरी बर्न करेंगे तो फिर ये आप इस कंडीशन को रिवर्ट कर सकते हैं। कई बार तो मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ती है और मेडिसिन से रेगुलर हो जाता है जो लोग अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हैं।
0: जो अगला क्वेश्चन है मैम, क्या योगा व्यायाम करने से पीसीओडी ठीक हो सकता है?
1: बिल्कुल ठीक हो सकता है। योगा का रोल है, अगर आप किसी लर्नेड मीन्स जिसको योगा अच्छे से पता है योगा के बारे में, अगर आप उससे योगा सीखते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। और एक्सरसाइज से तो फायदा होगा ही, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ एक्सरसाइज तो करना ही है। चाहे आप सिंपल एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, वॉकिंग करें, उतना ही काफी है। और अगर आप 5% भी वेट कम कर लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी।
0: तो मैम मैं जो लास्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा, मैं यही पूछना चाहूंगी आपसे कि जो हमारी जो और लड़कियां हैं जिनको पीसीओडी से ज्यादा प्रॉब्लम है, वो ऐसे बोलती है डिले करती है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे इसमें? मतलब बोलती है कि नहीं मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही हूँ।
1: नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास एक बार जब आप आएंगे तो हम लोग अल्ट्रासाउंड करेंगे और उसे इन्वेस्टिगेशन करके हम ये देखेंगे कि आपको एक्चुअली किस किस मेडिसिन की जरूरत है, या कि आपको मेडिसिन के बिना ही आपका काम चल जाएगा, ये आप खुद नहीं डिसाइड कर सकते। ये डॉक्टर्स डायग्नोज कर सकते हैं, हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं कि क्या डाइट और लाइफ स्टाइल से आपका काम चल जाएगा, या कभी कभी कुछ ऐसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी होती है जिनमें कुछ ऐसे प्रॉपर मेडिसिन होती है, उनको उसी की कुछ फॉर्म में देते हैं हम लोग एक रूगी में, तो उससे मेडिसिन रेगुलर हो जाता है। और जब हॉर्मोन्स आपके कंट्रोल में रहेंगे डिजीज प्रोग्रेस नहीं करेगी आगे, क्योंकि कल आपको शादी भी करनी है, आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 साल बाद, नहीं तो 4 साल बाद शादी तो होती है आगे। और फिर अगर बच्चे नहीं होंगे तो वो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि मैं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ, तो ये चीजें मैं बहुत कॉमनली देखती हूँ। और ये बहुत टैबू है कि अनमैरिड गर्ल है तो उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे, पता नहीं सब क्या समझेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। डिजीज डिजीज है, उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए।
0: तो मैम एक मेरा जो खुद का जो क्वेश्चन होगा ये है कि पीरियड्स में पेन बहुत ज्यादा होते हैं, तो घर वाले भी बोलते हैं, जिनसे भी पूछो तो वो बोलते हैं कि मेडिसिन लेनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि आप मेडिसिन हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए?
1: एक्चुअली डिपेंड करता है कि अगर तो पैटर्न में चेंज हो रहा है, मीन्स आपको पहले दर्द नहीं होता था और अगर आपको अचानक से दर्द होना शुरू हो गया है, तो हो सकता है कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो, हो सकता है आपके अंदर आयरन की कमी हो, वो कमी जैसे ही पूरी होगी तो आपको दर्द होना कम हो जाएगा। कुछ गर्ल्स को इनबॉर्न स्पास्मोडिक डिस्मिनोरिया होता है, ये फैमिलियर टेंडेंसी है कि अगर मदर को स्पास्मोडिक डिस्मिनोरिया है तो मदर को भी बेटी को भी होगा, तो उसके लिए एक दो दिन मेडिसिन लेनी पड़ सकती है, इतना सीवियर पेन होता है कि उसके लिए मेडिसिन लेनी ही पड़ती है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमने देखा है वो कैल्शियम और आयरन की कमी से मेडिसिन ज्यादा पेन होने लगता है, या कभी कभी इन्फेक्शन भी उसका कारण है कि क्योंकि आप पब्लिक टॉयलेट अगर ज्यादा यूज करते हैं, या अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन आपकी प्रॉपर नहीं है तो इन्फेक्शन हो जाते हैं, और उस इन्फेक्शन की वजह से फिर मेंसेस के टाइम में ज्यादा पेन।
2: हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि
3: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
4: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
2: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
3: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
4: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
2: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
3: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
4: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
2: सेहत सही तो लाभ कई।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइन्स, नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।

0: अगर 12th के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान, तो सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
1: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। आपके साथ मैं हूं आशीष और
3: मैं हूं भावना। आज का हमारा यह विशेष शो समर्पित है हमारे समाज की उस शक्ति को जिसके बिना संसार अधूरा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में।
2: बिल्कुल, तो भावना, आज भी हमारे देश के कुछ हिस्सों में बेटियों को बोझ समझा जाता है, पता है आपको। लेकिन सरकार की इस पहल ने लोगों की सोच बदलने में एक बहुत बड़ी लहर पैदा की है।
3: बिल्कुल आशीष, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य गिरते लिंगानुपात को सुधारना और बेटियों की शिक्षा सुनिश्चित करना है।
2: बिल्कुल जरूरी है भावना, क्योंकि सेक्स रेशियो यानी जो लिंगानुपात की हम बात करते हैं, अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब हम उनके अनुपात की बात करते हैं तो कई बार ये भी सवाल आता है कि अरे बेटियां तो कम हैं, जब बेटियां ही कम हो जाएंगी तो वंशावली कैसे बढ़ेगी, कैसे देश बढ़ेगा, कैसे समाज बढ़ेगा।
3: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष।
2: और सिर्फ यही नहीं भावना, इस योजना का फोकस लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकना, यानी कि जिस तरीके से कन्या भ्रूण हत्या होती है उसे रोकना, और लड़कियों की सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास पर फोकस करना भी है।
4: एक दशक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बेटियों के लिए नए अवसर और उज्जवल कल सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से आरंभ हुई इस यात्रा ने पूरे देश को बेटियों के प्रति अपनी सोच बदलने का संदेश दिया। इस अभियान के तहत प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने बेटियों को अपने पंख फैलाकर उन्मुक्त उड़ान भरने के सभी अवसर प्रदान किए। उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। हरियाणा में 2014 के मुकाबले लिंगानुपात काफी बेहतर हुआ है। आज हरियाणा सहित पूरे देश की बेटियां हर क्षेत्र में नित नई उपलब्धियां अर्जित कर रही हैं।
5: मेडिकल फील्ड हो या खेल का मैदान हो, बिजनेस हो या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी है बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही है।
4: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के शुभारंभ के साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना ने हौसला बढ़ाया है।
5: भाइयों और बहनों, माताओं बहनों बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। इसलिए 2014 में जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया, तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाए, वो जन्म ले, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम ये है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। प्रसव के बाद भी बिना चिंता के अपने बच्चे की शुरुआती देखरेख करते हुए मां अपना काम जारी रख सके, इसके लिए महिलाओं की छुट्टी को 6 महीने किया गया है।
3: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास है?
2: चलिए अब बात करते हैं उन फायदों की जो सरकार बेटियों के भविष्य के लिए दे रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सुकन्या समृद्धि योजना।
3: सही कहा आशीष आपने, यह बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए बचत करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। इसमें बहुत कम राशि से खाता खुलवाया जा सकता है और ब्याज दर भी काफी आकर्षक है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने भावना, इसीलिए तो सरकार कहती है जब पढ़ेंगी बेटियां तो आगे बढ़ेंगी बेटियां।
6: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमारी बेटी पारुल चौधरी और अन्नु रानी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आती है। गोल्ड मेडल ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उन 4 करोड़ परिवारों को जिसमें ज्यादातर मालिकाना अधिकार बहनों को दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर का उपहार भी उन्हें देकर के लखपति बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 55 लाख बहनों को एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है।
2: भारत सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और विभिन्न छात्रवृत्तियों जिसे स्कॉलरशिप कहते हैं उसके जरिए ये सुनिश्चित किया है कि आर्थिक तंगी किसी भी बेटी की पढ़ाई के बीच में ना आए।
3: और तो और आशीष, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जननी सुरक्षा योजना और मातृ वंदना योजना भी बेटियों और माताओं को मजबूती प्रदान कर रही है।
2: तो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की और साथ ही साथ उन बेटियों की जिनको कहीं ना कहीं गर्भपात का शिकार होना पड़ता है, जिनका भविष्य गर्भ में ही खत्म हो जाता है। ऐसी बेटियां जो अपना जीवन देख ही नहीं पाती, और अगर देख भी पाती हैं तो कहीं ना कहीं उनके सामने भविष्य में इतनी अड़चनें आ जाती हैं, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो या आर्थिक रूप से, जहां उनका भविष्य बनना होता है लेकिन वो बन नहीं पाता। भावना, ये आप तो जानती हैं कि बहुत बड़ा विषय है, और मैं तो आपसे इसलिए भी बात करना चाहता हूँ क्योंकि आप खुद एक बेटी हैं, आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष भी देखे हैं, और आप एक समाज सेवी की तौर पर भी काम करती रही हैं, और आपने अपने उस समाज सेवा में भी कई नन्ही जानों को जो बेटियां हैं उन्हें अपने हाथ में खिलाया है। तो मैं चाहूंगा कि आप वो भी अपना कुछ अनुभव साझा करें कि आखिर में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान कितना जरूरी हो जाता है ऐसे हालातों के बीच में।
3: आशीष, हम जरूर बताना चाहेंगे आपको, क्योंकि जब बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी परिवार का हर सदस्य आगे बढ़ेगा। और जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है आशीष, तो मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ऑर्फनेज में काम किया था तो जो अनाथ बच्चों की संख्या बेटों की अपेक्षा बेटियों की ज्यादा थी, बहुत अधिक अनुपात में बेटियां रोड के किनारे लावारिस अवस्था में, कहीं कूड़े के किनारे तो कहीं कहां तो कहीं कहां, ऐसे मिलती थी। ऐसी बच्चियों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी।
2: बिल्कुल भावना, और कहीं ना कहीं इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकार इतनी गंभीर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए, और वो चाहती है कि जो सेक्स रेशियो की बात हम लोग कर रहे हैं, जो लिंगानुपात की हम बात कर रहे हैं, वो सुधरे, बल्कि बेटियों की संख्या ज्यादा करने पर जोर दिया जाता है। अगर बहुत सारे देश के ऐसे राज्य हैं, खासकर हम जब हरियाणा या राजस्थान का जिक्र करते हैं, वहां पर इस तरीके के मामले बहुत आते थे। एक समय तो ऐसा भी हरियाणा में हो गया जहां बेटियों की संख्या बहुत कम हो गई थी, उनका जो लिंगानुपात था वो इस स्तर पर पहुंच गया था कि चिंता का विषय बन गया था कि अब यानी कि जिनके बेटे थे उनकी शादियां कैसे होंगी।
3: बिल्कुल सही कहा आशीष आपने, क्योंकि ये जो आप बात बता रहे हैं वो लगातार जारी है, क्योंकि लोगों को अपने बच्चों के लिए यानी बेटों के लिए बेटियां मिलना मुश्किल हो गई थी आशीष।
2: अच्छा, तो आपको भावना नहीं लगता कि इसमें सबकी गंभीरता और सजगता बहुत जरूरी है, खासकर वो माँ जो खुद एक बेटी है किसी की, जो खुद एक लड़की से माँ बनती है, जब वो बच्चे को जन्म देती है तो वो खुद भी इस बात को एक्सपेक्ट करती है कि उसको बेटा पैदा हो।
3: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आशीष, लेकिन ये कम कैसे होगा? ये तभी हो सकता है जब शिक्षा की बात हमारे और सभी बच्चियों के लिए एकदम जिसे कहते हैं अनिवार्य हो जाए। अनिवार्य तो खैर सरकार ने कर ही दिया है, लेकिन इसके साथ ही साथ और इसका इम्प्लीमेंटेशन करें कि बेटियां आगे बढ़ सकें।
2: बिल्कुल जरूरी है और जागरूकता फैलाना जरूरी है, इसीलिए हम अपने रेडियो चैनल के जरिए सभी को जागरूक करना चाहते हैं कि बेटियों को सहेज कर रखिए, यही असली धन है। ये पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो ये सिर्फ अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगी बल्कि आपके परिवार और आपके समाज को एक बहुत मजबूती के साथ संबल देते हुए भविष्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की कोशिश करेंगी। इसीलिए बहुत सारी बेटियों की सफलता की कहानियां भी हम आगे अपने कार्यक्रमों के जरिए बताएंगे, सुनाएंगे, उनके बदलाव भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है भावना कि हवा बदल रही है क्या? आज ओलंपिक से लेकर अंतरिक्ष तक अगर आप देखें तो बेटियां ही तिरंगा फहरा रही हैं।
3: आपने बिल्कुल ठीक कहा आशीष, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा ही नहीं है, यह एक जन आंदोलन बन चुका है। हमें अपनी सोच की बेड़ियां तोड़नी होंगी, बेटी है तो कल है।
2: बिल्कुल, अभी तक हम ये जरूर कहते हैं कि जल है तो कल है, लेकिन बात जल की नहीं, बात है बेटी की। बेटी भी एक जल, जल जो कि जीवन के लिए जरूरी है, और बेटी भी है जो खुद में जीवन है। अगर बेटी है तभी कोई ना कोई संतान इस दुनिया में आएगी जो भविष्य में अपना कहीं ना कहीं एक अलग मकाम हासिल करेगी। अगर बेटी नहीं है तो जन्म होना किसी का ये संभव ही नहीं हो सकता है। इसलिए बेटी है तो कल है। हमारी सरकार, हमारा समाज, हमारा सिस्टम, हमारी तमाम तरीके की गैर सरकारी संस्थाएं या जिम्मेदार लोग सभी यही जागरूक करना चाहते हैं कि हमें अपनी बेटियों को सहेज कर संभाल कर रखना चाहिए, उनकी संरक्षा के लिए काम करना चाहिए, उनकी पढ़ाई के लिए काम करना चाहिए। और शायद भावना यही श्रोताओं के लिए संदेश भी है।
3: बिल्कुल ठीक कहा आशीष आपने। तो रेडियो के सभी श्रोताओं से हमारी एक अपील है कि अपने आसपास किसी भी बेटी की पढ़ाई रुकने ना दें। यदि आप किसी ऐसी बेटी को जानते हैं जिसे सहायता की जरूरत है तो सरकारी हेल्पलाइन या पास के आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करें।
2: बिल्कुल, और याद रखिए जब एक बेटी पढ़ती है तो दो परिवार संवरते हैं।
3: तो जाने का वक्त हो गया है, पर यह चर्चा आपके घरों में हमेशा ही जारी रहनी चाहिए श्रोताओं।
2: बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसी चर्चा, एक ऐसा विषय है जो कभी ना खत्म होने वाला, ना रुकने वाला विषय है। बेटियां हमेशा इस देश को इसकी तरक्की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ाती रहेंगी। बेटियां आज हर क्षेत्र में हैं, चाहे वो सेना हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो विज्ञान हो, वैज्ञानिक के तौर पर बेटियां आगे बढ़ रही हैं, अंतरिक्ष में बेटियां जा रही हैं, खेलों में बेटियां जा रही हैं, और इसीलिए भावना कहते हैं हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है।
3: बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो श्रोताओं सुनते रहिए अपना फेवरेट रेडियो, खुश रहिए, बेटियों को आगे बढ़ाइए
2: और बेटियों को खूब पढ़ाइए, क्योंकि बेटियां हैं तो हमारा समाज है, और हमारा समाज है तो हमारा
3: कल है।
2: तो आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रेजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत

0: 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली दो दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अधिक संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य 4 मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जाने और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
6: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
7: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
6: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

0: समाज की उस शक्ति को जिसके बिना संसार अधूरा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में।
1: बिल्कुल। तो भावना, आज भी हमारे देश के कुछ हिस्सों में बेटियों को बोझ समझा जाता है, पता है आपको? लेकिन सरकार की इस पहल ने लोगों की सोच बदलने में एक बहुत बड़ी लहर पैदा की है।
0: बिल्कुल आशीष, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य गिरते लिंगानुपात को सुधारना और बेटियों की शिक्षा सुनिश्चित करना है।
1: बिल्कुल जरूरी है भावना, क्योंकि सेक्स रेशियो यानी जो लिंगानुपात की हम बात करते हैं, अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब हम उनके अनुपात की बात करते हैं तो कई बार ये भी सवाल आता है कि अरे बेटियां तो कम हैं, जब बेटियां ही कम हो जाएंगी तो वंशावली कैसे बढ़ेगी, कैसे देश बढ़ेगा, कैसे समाज बढ़ेगा।
0: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष।
1: और सिर्फ यही नहीं भावना, इस योजना का फोकस लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकना, यानी कि जिस तरीके से कन्या भ्रूण हत्या होती है उसे रोकना और लड़कियों की सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास पर फोकस करना भी है।
2: एक दशक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बेटियों के लिए नए अवसर और उज्जवल कल सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से आरंभ हुई इस यात्रा ने पूरे देश को बेटियों के प्रति अपनी सोच बदलने का संदेश दिया। इस अभियान के तहत प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने बेटियों को अपने पंख फैलाकर उन्मुक्त उड़ान भरने के सभी अवसर प्रदान किए। उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। हरियाणा में 2014 के मुकाबले लिंगानुपात काफी बेहतर हुआ है। आज हरियाणा सहित पूरे देश की बेटियां हर क्षेत्र में नित नई उपलब्धियां अर्जित कर रही हैं।
3: मेडिकल फील्ड हो या खेल का मैदान हो, बिजनेस हो या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी है बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही है।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के शुभारंभ के साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना ने हौसला बढ़ाया है।
3: भाइयों और बहनों, माताओं बहनों बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। इसलिए 2014 में जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाए, वो जन्म ले, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम यह है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। प्रसव के बाद भी बिना चिंता के अपने बच्चे की शुरुआती देखरेख करते हुए मां अपना काम जारी रख सके, इसके लिए महिलाओं की छुट्टी को छह महीने किया गया है।
0: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा

0: मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास है।
1: चलिए अब बात करते हैं उन फायदों की जो सरकार बेटियों के भविष्य के लिए दे रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सुकन्या समृद्धि योजना।
0: सही कहा आशीष आपने, यह बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए बचत करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। इसमें बहुत कम राशि से खाता खुलवाया जा सकता है और ब्याज दर भी काफी आकर्षक है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने भावना, इसीलिए तो सरकार कहती है जब पढ़ेंगी बेटियाँ तो आगे बढ़ेंगी बेटियाँ।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमारी बेटी पारुल चौधरी और अन्नू रानी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आती है। गोल्ड मेडल ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 4 करोड़ परिवारों को, जिसमें ज्यादातर मालिकाना अधिकार बहनों को दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर का उपहार भी उन्हें देकर के लखपति बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 55 लाख बहनों को एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है।
1: भारत सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और विभिन्न छात्रवृत्तियों जिसे स्कॉलरशिप कहते हैं उसके जरिए ये सुनिश्चित किया है कि आर्थिक तंगी किसी भी बेटी की पढ़ाई के बीच में ना आए।
0: और तो और आशीष, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जननी सुरक्षा योजना और मातृ वंदना योजना भी बेटियों और माताओं को मजबूती प्रदान कर रही है।
1: तो दोस्तों हम आज बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, और साथ ही साथ उन बेटियों की जिनको कहीं ना कहीं गर्भपात का शिकार होना पड़ता है, जिनका भविष्य गर्भ में ही खत्म हो जाता है। ऐसी बेटियां जो अपना जीवन देख ही नहीं पाती, और अगर देख भी पाती हैं तो कहीं ना कहीं उनके सामने भविष्य में इतनी अड़चने आ जाती हैं, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो या आर्थिक रूप से, जहां उनका भविष्य बनना होता है लेकिन वो बन नहीं पाता। भावना ये आप तो जानती हैं कि बहुत बड़ा विषय है, और मैं तो आपसे इसलिए भी बात करना चाहता हूँ क्योंकि आप खुद एक बेटी हैं, आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष भी देखे हैं, और आप एक समाज सेवी की तौर पर भी काम करती रही हैं, और आपने अपने उस समाज सेवा में भी कई नन्ही जानों को जो बेटियां हैं उन्हें अपने हाथ में खिलाया है। तो मैं चाहूंगा कि आप वो भी अपना कुछ अनुभव साझा करें कि आखिर में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान कितना जरूरी हो जाता है ऐसे हालातों के बीच में।
0: आशीष, हम जरूर बताना चाहेंगे आपको, क्योंकि जब बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी परिवार का हर सदस्य आगे बढ़ेगा। और जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है आशीष, तो मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ऑर्फनेज में काम किया था तो जो अनाथ बच्चों की संख्या बेटों की अपेक्षा बेटियों की ज्यादा थी। बहुत अधिक अनुपात में बेटियां रोड के किनारे लावारिस अवस्था में, कहीं कूड़े के किनारे तो कहीं कहां तो कहीं कहां, ऐसे मिलती थी। ऐसी बच्चियों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी।
1: बिल्कुल भावना, और कहीं ना कहीं इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकार इतनी गंभीर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए, और वो चाहती है कि जो सेक्स रेशियो की बात हम लोग कर रहे हैं, जो लिंगानुपात की हम बात कर रहे हैं, वो सुधरे, बल्कि बेटियों की संख्या ज्यादा करने पर जोर दिया जाता है। अगर बहुत सारे देश के ऐसे राज्य हैं, खासकर हम जब हरियाणा या राजस्थान का जिक्र करते हैं, वहां पर इस तरीके के मामले बहुत आते थे। एक समय तो ऐसा भी हरियाणा में हो गया जहां बेटियों की संख्या बहुत कम हो गई थी, उनका जो लिंगानुपात था वो इस स्तर पर पहुंच गया था कि चिंता का विषय बन गया था कि अब यानी कि जिनके बेटे थे उनकी शादियां कैसे होंगी।
0: बिल्कुल सही कहा आशीष आपने, क्योंकि ये जो आप बात बता रहे हैं वो लगातार जारी है, क्योंकि लोगों को अपने बच्चों के लिए यानी बेटों के लिए बेटियां मिलना मुश्किल हो गई थी आशीष।
1: अच्छा, तो आपको भावना नहीं लगता कि इसमें सबकी गंभीरता और सजगता बहुत जरूरी है, खासकर वो माँ जो खुद एक बेटी है किसी की, जो खुद एक लड़की से माँ बनती है, जब वो बच्चे को जन्म देती है तो वो खुद भी इस बात को एक्सपेक्ट करती है कि उसको बेटा पैदा हो।
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आशीष, लेकिन ये कम कैसे होगा? ये तभी हो सकता है जब शिक्षा की बात हमारे और सभी बच्चियों के लिए एकदम जिसे कहते हैं अनिवार्य हो जाए। अनिवार्य तो खैर सरकार ने कर ही दिया है, लेकिन इसके साथ ही साथ और इसका इम्प्लीमेंटेशन करें कि बेटियां आगे बढ़ सकें।
1: बिल्कुल जरूरी है और जागरूकता फैलाना जरूरी है, इसीलिए हम अपने रेडियो चैनल के जरिए सभी को जागरूक करना चाहते हैं कि बेटियों को सहेज कर रखिए, यही असली धन है। ये पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो ये सिर्फ अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगी, बल्कि आपके परिवार और आपके समाज को एक बहुत मजबूती के साथ संबल देते हुए भविष्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की कोशिश करेंगी। इसीलिए बहुत सारी बेटियों की सफलता की कहानियां भी हम आगे अपने कार्यक्रमों के जरिए बताएंगे, सुनाएंगे, उनके बदलाव भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है भावना, कि हवा बदल रही है क्या? आज ओलंपिक से लेकर अंतरिक्ष तक अगर आप देखें तो बेटियां ही तिरंगा फहरा रही हैं।
0: आपने बिल्कुल ठीक कहा आशीष, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा ही नहीं है, यह एक जन आंदोलन बन चुका है। हमें अपनी सोच की बेड़ियां तोड़नी होंगी, बेटी है तो कल है।
1: बिल्कुल, अभी तक हम ये जरूर कहते हैं कि जल है तो कल है, लेकिन बात जल की नहीं, बात है बेटी की। बेटी भी एक जल, जल जो कि जीवन के लिए जरूरी है, और बेटी भी है जो खुद में जीवन है। अगर बेटी है तभी कोई ना कोई संतान इस दुनिया में आएगी जो भविष्य में अपना कहीं ना कहीं एक अलग मकाम हासिल करेगी। अगर बेटी नहीं है तो जन्म होना किसी का ये संभव ही नहीं हो सकता है। इसलिए बेटी है तो कल है। हमारी सरकार, हमारा समाज, हमारा सिस्टम, हमारी तमाम तरीके की गैर सरकारी संस्थाएं या जिम्मेदार लोग सभी यही जागरूक करना चाहते हैं कि हमें अपनी बेटियों को सहेज कर संभाल कर रखना चाहिए, उनकी संरक्षा के लिए काम करना चाहिए, उनकी पढ़ाई के लिए काम करना चाहिए। और शायद भावना यही श्रोताओं के लिए संदेश भी है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आशीष आपने। तो रेडियो के सभी श्रोताओं से हमारी एक अपील है कि अपने आसपास किसी भी बेटी की पढ़ाई रुकने ना दें। यदि आप किसी ऐसी बेटी को जानते हैं जिसे सहायता की जरूरत है तो सरकारी हेल्पलाइन या पास के आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करें।
1: बिल्कुल, और याद रखिए, जब एक बेटी पढ़ती है तो दो परिवार संवरते हैं।
0: तो जाने का वक्त हो गया है, पर यह चर्चा आपके घरों में हमेशा ही जारी रहनी चाहिए श्रोताओं।
1: बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसी चर्चा, एक ऐसा विषय है जो कभी ना खत्म होने वाला, ना रुकने वाला विषय है। बेटियां हमेशा इस देश को इसकी तरक्की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ाती रहेंगी। बेटियां आज हर क्षेत्र में हैं, चाहे वो सेना हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो विज्ञान हो। वैज्ञानिक के तौर पर बेटियां आगे बढ़ रही हैं, अंतरिक्ष में बेटियां जा रही हैं, खेलों में बेटियां जा रही हैं, और इसीलिए भावना कहते हैं, हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो श्रोताओं, सुनते रहिए अपना फेवरेट रेडियो, खुश रहिए, बेटियों को आगे बढ़ाइए
1: और बेटियों को खूब पढ़ाइए, क्योंकि बेटियां हैं तो हमारा समाज है, और हमारा समाज है तो हमारा
0: कल है।
1: तो आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
5: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
4: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
6: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
7: कोमल है तो कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। हेलो हाय, मेरा नाम आनंद है, आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम। और आज की जो स्टूडियो की वाइब है ना, बहुत अलग है, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टेशन में एक ऐसी महिला मौजूद है, एक ऐसी नारी शक्ति मेरे साथ आज हमारे स्टूडियो में है, जिनके बारे में मैं जितनी बातें बोलूंगा ना, शायद मेरा समय कम पड़ जाएगा। वो कहते हैं ना, जहां चाहा है वहीं रहा है। जब एक महिला कुछ करने की ठान ले तो वो सब कुछ कर लेती है, और वैसे ही आज सेशन में, इस स्टोरी में, इस कहानी में, इस इंटरव्यू में हमारे रेडियो का हिस्सा बनी है एक बहुत ही खूबसूरत लेडी, जो हमारे शहर के अंदर ऑटो चलाती हैं, ऑटो रिक्शा चालक हैं। आज हम इनसे बात करने वाले हैं। वैसे तो हमने बहुत बड़ी पुरुषों को ऑटो चलाते हुए देखा है ना, जब भी हम ट्रैवल करते हैं, हमें कहीं जाना होता है तो हम ऑटो में अक्सर मेल्स को देखते हैं, लेकिन मैंने पहली फीमेल मुरादाबाद के अंदर देखी है, और आज वही फीमेल को हम स्टूडियो लेकर आए, उसी नारी शक्ति को। हेलो मैम, कैसे हैं? नमस्ते, क्या नाम है आपका?
8: मैडम रामवती शर्मा।
7: रामवती शर्मा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जोरदार तालियां रामवती मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। कैसी है पहले बताइए मैम?
8: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
7: अच्छा, तो ये बताइए आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है?
8: बहुत अच्छा लगा।
7: अच्छा, आपने सोचा था कभी अच्छा कि आप किसी जगह आएंगी?
8: नहीं नहीं, वैसे आपसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार।
7: अरे थैंक यू सो मच आंटी। तो आंटी बोलू या मैम बोलता हूँ मैं तो आपको? अच्छा, क्या नाम बताया आपने?
8: रामवती
7: शर्मा जी मेरे साथ मौजूद है। रामवती जी, थोड़ा अपने, हमारे जो सुनने वाले हैं, आप उनको थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए।
8: अरे मैं बहुत परेशान थी पहले, बहुत अपने, मतलब शादी जब हुई थी तो मैं बहुत दुखी थी, मेरे बच्चे मतलब ये था भूखे मरने लगे।
7: ओहो, अच्छा, तो मतलब आपकी शादी यही हुई है मुरादाबाद?
8: नहीं नहीं, मेरी शादी बिलारी में हुई थी।
7: अच्छा, बिलारी। तो मुरादाबाद कैसे आना हुआ?
8: मुरादाबाद जब मेरे बच्चे, मतलब हमारे, मेरे हस्बैंड का काम नहीं चला, वो अच्छा। है साइकिल टेलपिंचर थे।
7: अच्छा अच्छा अच्छा।
8: तो उनका काम नहीं चला तो देखो बच्चे हम बहुत परेशान रहने लगे थे। हाँ। तो मैं अपने एक जने मुझे लेके आई थी यहाँ पर। हाँ। काम पे लगवाने के लिए। हाँ। तो मैंने उनके साथ, मतलब पहले फैक्ट्री में जॉब करी।
7: अच्छा,
8: पैकिंग हॉल में।
7: अच्छा,
8: उसके बाद करते करते मैं चेकर बनी।
7: अच्छा, अरे वाह। फिर
8: चेकर बनने के बाद फिर मैंने लड़के की शादी करी तो मेरी बहू खत्म होगी, किसी मतलब दिक्कत में आके।
7: ओके ओके।
8: उसके बाद मेरा एक छोटा सा होता है, आपने देखा भी होगा।
7: हाँ हाँ, मैंने देखा है आपके साथ।
8: तो मैंने उसकी वजह से ये रिक्शा लिया है।
7: अच्छा, तो उसकी वजह से रिक्शा चला रहे हैं?
8: उसे पाल रही हूँ। हाँ। और अपना पेट भी पाल रही हूँ।
7: अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आंटी आपके?
8: मेरे एक लड़की एक लड़का है।
7: एक लड़की और लड़की। हाँ। की शादी हो गई?
8: शादी दोनों बच्चों की हो गई।
7: अच्छा, दोनों बच्चों की हो गई। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ऑटो चलाने का ख्याल कैसे आपके आया दिमाग?
8: ऐसे आया जब फैक्ट्री में काम करने लगी तो मैंने सोचा फिर कहीं ऐसा ना हो कि पहले इतना मैं फिर मुसीबत उठाने लगू। तो मैं, मेरे दिमाग में आया कि मैं ऑटो चला के देखती हूँ। तो मैंने पहले पुराना ऑटो लिया था।
7: अच्छा,
8: उससे मैं सीखी।
7: अरे वाह।
8: उससे सीखने के बाद
7: पहले ट्रेनिंग ली आपने? अच्छा,
8: सीखी अपना भी थी।
7: अच्छा, अच्छा,
8: किसी ने सिखाया नहीं था।
7: अच्छा अच्छा, अच्छा।
8: उसके बाद मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा, मैंने, मेरे मन है ऑटो चलाने के लिए।
7: हाँ, तो क्या कहा सर ने? तो, मतलब परमिशन दी? हाँ, पति देव ने?
8: तो उन्होंने क्या बोले, ठीक है ले लो।
7: अच्छा,
8: फिर मैंने ऑटो ले लिया।
7: तो मतलब पति की तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी?
8: नहीं।
7: परिवार की तरफ से कोई
8: रोक टोक?
7: अच्छा अच्छा, तो मतलब पहले ट्रायल लिया, पहले ट्रेनिंग ली, उसके बाद जब आपको लगा मैं मजबूती के साथ चल सकती हूँ, चला सकती हूँ, तब आप सड़क पे उतरे। तो कितने समय से आप ऑटो चला रही
8: हैं? मुझे अब एक साल लगातार हो गया।
7: एक साल हो गया?
8: मार्च में हो गया।
7: अच्छा अच्छा, एक साल आप ऑटो चला रही हैं मार्च में? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइएगा मैम, जब आप ऑटो पहली बार सड़क पे लेके निकली थी तो आपको कैसा लगा? मतलब थोड़ा अजीब लगा,
8: अजीब सा लगा। हाँ, क्योंकि लोग ये देख रहे हैं कि मैं चलाती रहूं।
7: अच्छा अच्छा, अभी ये लगता है कि चलाती रहूं।
8: हाँ।
7: ओके, तो मतलब जब आपके ऑटो में लोग बैठते हैं, लेडीज बैठती हैं, जेंट्स बैठते हैं, तो कुछ कभी कोई सवाल जवाब करते हैं कि आप कैसे, क्यों चलाती हैं?
8: पूछते हैं?
7: हाँ,
8: पूछने वाले तो क्या बताया, किसको क्या बताया,
7: क्या बताया जाए,
8: तो ने बताई जाती है, कहते हैं हमारी मर्जी, हम चला रहे हैं।
7: हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद है जिन्हें आप सुन रहे हैं, ये मुरादाबाद की नहीं है रहने वाली, लेकिन अभी हम कह सकते हैं मुरादाबाद ही है ये। कितने समय से मुरादाबाद में आप रह रही हैं?
8: हमें 25 साल हो गए।
7: 25 साल से जो रह रही है तो वो मुरादाबाद ही होगी गाइस। तो मतलब आपका जो मतलब घर था वो चंदौसी, आपने बताया?
8: नहीं, बिलारी।
7: बिलारी से आप थी, तो मुरादाबाद आके फिर आपने शुरू किया अपना कारोबार और ये काम का सिलसिला?
8: फिर हमारा अपना हो गया।
7: अरे वाह, क्या बात है,
8: अभी हमारा अपना ही।
7: अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आंटी मुझे ये बताइएगा, आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ हुई?
8: हाई स्कूल पास।
7: अरे वाह, बहुत बढ़िया, हाई स्कूल पास है। हाई स्कूल पास थी आप, उसके बाद आपने कंपनियों में काम किया नॉर्मली, जो आप बता रही पैकिंग वगैरह में, फिर आपने क्यों सोचा कि मुझे ऑटो ही चलाना चाहिए?
8: ये मैंने सोचा, फैक्ट्री लेके बच्चे उजा नहीं सकते।
7: हाँ,
8: बच्चा बिना माँ के रह नहीं सकता।
7: बिल्कुल सही कहा आपने।
8: अब मैं उसे पालने वाली हूँ, मैं उसे रखने वाली हूँ, तो मैंने सोची, फिर मैंने काम छोड़ दिया बच्चे के खातिर, उसके वजह अगर फिर मैंने सोचा फिर मुसीबत ना आ जाए मेरे बच्चों पे।
7: जी,
8: इसीलिए मैंने सोचा ऑटो भी चलता रहेगा और मेरा बच्चा भी पलता रहेगा,
7: और साथ ही साथ अपने मन की मालिक हो, जब मर्जी ऑटो चलाओ, जब मर्जी अपना नहीं जाओ, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आपको जाना ही जाना है,
8: जबरदस्ती नहीं
7: है ना, जबरदस्ती नहीं है। तो कौन कौन सी रोड से आप ऑटो लेके निकलती हैं?
8: वैसे मैं सब रोड पे चला लेती हूँ।
7: सब रोड पे चलाती
8: हूँ। गुलाब बाड़ी, अभी तो मैं गुलाब बाड़ी से आई।
7: अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे ये बताइएगा मैम, मतलब आपने जब ये ऑटो का सिलसिला शुरू किया, जब आपका पहला दिन था, तो घर पर जब आप पहली कमाई लेकर गई तो कैसा लगा? घर वालों को दिखाया आपने
8: सब? और क्या ना, अभी मैं अपने घर वालों के हाथ में देती हूँ।
7: अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मतलब पति देव क्या करते हैं वैसे?
8: वो टायर पंचर का काम करते हैं।
7: टायर पंचर का काम करते हैं, बहुत बढ़िया। तो मतलब एक अलग ही खुशी होती है जब आप ये मेहनत से पैसे लेकर जाती हैं।
8: ये लगता है कि हाँ, देख पैसे, पहली बात तो पैसा देते हो आप लोग,
7: हाँ।
8: दूसरी बात मैं आपकी सेवा भी करती हूँ।
7: बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ये तो आपने बहुत सही कहा। सो दोस्तों, वो कहते हैं ना, जहाँ पर इंसान के अंदर कुछ करने की इच्छा होती है, जब आपके हौसले बुलंद होते हैं, तो आप वो सब कुछ कर पाते हैं जो आप चाहते हैं। और कहते हैं ना, एक नारी जिसे हम शक्ति नारी बोलते हैं, वो सब कुछ कर सकती है। तभी तो कहा जाता है, कोमल है तू कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। और ऐसे ही आज नारी शक्ति, एक सशक्त नारी, आज के जमाने की नारी मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में इस वक्त, जिनको आप सुन रहे हैं आरजे आनंद के साथ, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आप वैसे कहाँ रहते हैं मुरादाबाद में?
8: खदाना गांव में।
7: खदाना गांव में, तो ये मुरादाबाद में पड़ता है? अच्छा, अरे वाह। तो वहाँ से डेली आप सफर करते हैं, कितने बजे सुबह आपकी शुरुआत हो जाती है?
8: तो देखो, दो बच्चे हैं, दो लेडीज़ हैं मेरे पास, लगी बनी है वो।
7: अच्छा अच्छा,
8: तो मैं 7 बजे अपने घर से निकल कर आ जाती हूँ, खाना वाना बना के सारे काम घर के,
7: मतलब खुद करती है सारा काम।
8: हाँ जी। और
7: तो सुबह कितने बजे निकलती हैं?
8: सुबह मैं 7 बजे निकल,
7: 7 बजे निकल जाती हूँ। और शाम को कितने बजे घर लौटती हैं?
8: शाम को 6 बजे घर पहुँच जाती हूँ।
7: 6 बजे आप घर लौटती हैं। ओके, रामपती शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मुरादाबाद की सड़कों पर ऑटो चलाती है, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं, और ये काम बहुत आसान नहीं होता, स्पेशली एक महिला के लिए जब वो घर से बाहर निकलती है। लाइफ में बहुत चैलेंजिंग होती है, बहुत सारे चैलेंज आते हैं। लाइफ इतनी आसान जितनी मुझे और आपको लगती है ना सामने वाले की, उतनी एक्चुअली होती नहीं है। परेशानियां सबकी जिंदगी में आती है। रामवती जी, आपकी जिंदगी में थोड़ी मोड़ी परेशानियां आती होंगी,
8: तो
7: कैसे डील कर लेती हैं आप?
8: ये तो होता ही रहता है, घर
7: गृहस्थ। मतलब आप इतनी प्यारी हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी सुंदर मुस्कान के साथ मैम बात कर रही हैं, इतनी पोलाइटनेस के साथ, मतलब कैसे आप इतना कर लेती
8: हैं? सब हो जाता है।
7: मतलब आप हमेशा ऐसी रहते हैं?
8: हाँ।
7: ऐसी मुस्कुराते हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको हमारे ऑफिस में आके अभी कैसा लगा?
8: बहुत अच्छा।
7: बातचीत करके कैसा लगा?
8: बहुत अच्छा लगा।
7: अच्छा, मतलब कुछ डर तो नहीं लगा आपको?
8: नहीं, ऐसा लगा मैं अपने घर में बैठी हूँ।
7: अरे वाह, बहुत बढ़िया, बस हमें यही चाहिए। थैंक यू सो मच। ये रामवती शर्मा जी है जिनके बारे में हम बहुत देर से बातें कर रहे हैं। तमाम महिलाएं हैं जो आपकी तरह काम करना चाहती, अपना पेट पालना चाहती, अपने बच्चों को पालना चाहती हैं, क्योंकि एक सही काम करके अगर आप अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है मैम। तो उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी जो आपकी आवाज सुन रही है, जो करना चाहती है लेकिन घर की तरफ से रोक दिया जाता है?
8: वो भी हिम्मत रखें।
7: हाँ।
8: हिम्मत नहीं हारना चाहिए किसी को भी, मैं हूँ चाहे कोई सी भी लेडीज हो
7: जी,
8: उसे हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि हिम्मत हार जाता है तो इंसान समझ लो गया।
7: बिल्कुल, अगर आपकी बिल्कुल
8: दिल बुलंद होना चाहिए, अपनी हिम्मत बुलंद होनी चाहिए।
7: क्या बात है, और आप कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर आप सही है तो सब सही है ना। देखिए, बहुत अच्छी बात बोली है रामवती शर्मा जी ने। अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर जज्बा है, कुछ करने की आप ताकत रखती है, तो आपको कोई नहीं हिला सकता। बहुत अच्छी और मजबूती तरीके से जो है जवाब दे रही है। और मुझे बड़ी मजे की बात यह है कि देखिए, हम बहुत लोगों से मिलते हैं लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से बातचीत पा रही हैं, तमाम लोग आपको सुन रहे हैं। और मैम बिल्कुल, मतलब जो है ना, एक होता है कि थोड़ा नर्वसनेस, थोड़ा अनकॉन्फिडेंट, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बात कर रही हैं रामवती जी, मतलब बहुत ही बढ़िया। पहले कभी बोला है आपने ऐसे?
8: नहीं।
7: तो इतनी मतलब ऐसे कैसे आप बोल पा रही हैं?
8: जैसे जैसा इंसान मिल जाता है ना, मुझे उसी में रमना पड़ जाता है।
7: अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर्ब। तो दोस्तों, ये होता है एक असली कॉन्फिडेंस, एक असली जज्बा। और ऐसे जज्बों की कहानियां और ऐसे ही बुलंद कहानियां हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां आप सुनते हैं तमाम वो बातें जो शायद आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलती हैं। रामवती शर्मा जी से आज हम बातचीत कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम, आपसे जानना चाहूंगा मैं थोड़ा सा आपके संघर्ष के बारे में, थोड़ा सा जैसे बहुत सारी महिलाएं, जैसे मैंने कहा, करना चाहती हैं पर वो नहीं कर पाती, उन्हें लगता है परिवार रोक रहा है, बच्चे रोक रहे हैं, बच्चे शिकायत कर रहे हैं, बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है। तो आपके साथ आपके बच्चे सपोर्ट करते हैं या फिर कुछ की मम्मी आप क्यों चला रहे हो जब हम हैं? तो
8: किसी ने नहीं कहा, मैंने सबकी मर्जी से काम किया।
7: अच्छा, सबने आपको परमिशन दे दी। तो अभी मुरादाबाद सड़कों पे आप इकलौती महिला ऑटो चलाती हैं या और भी हैं?
8: मैंने तब तक कोई देखा नहीं है।
7: आप ही चलाती हैं ना? तो गाइस, अगर आपको अगली बार कोई महिला दिखती है पीली कोठी की तरफ, कहाँ कहाँ से आप गुजरती हैं?
8: मैं सब तरफ दिख जाती हूँ।
7: सब तरफ जाती
8: हैं? हाँ।
7: तो अगर आपको कहीं पर भी दिखे तो एक बार नाम पूछ लीजिएगा, कहीं आप वही रामवती तो नहीं जो रेडियो पे बात कर रही थी? तो आपको लोग पहचानेंगे, तो आप भी पहचान जाइएगा। ठीक है मैम।
8: हाँ।
7: चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहती है? बहुत लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं रेडियो पे, कोई मैसेज देना चाहे, कोई संदेश महिलाएं जो लेडीज?
8: मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ, जैसे मैं हिम्मत रखती हूँ, वैसे सारी महिलाएं हिम्मत रखें। देखो, घर परिवार चलाना है तो हिम्मत अपने अंदर रखनी चाहिए।
7: अब मैम, आपकी कितनी उम्र होगी अभी?
8: मेरी 45।
7: देखिए 45 की उम्र में भी सड़कों पर ऑटो चलाती हैं और जिसे कह सकते हैं कि अपना भरण पोषण अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो एक सही डायरेक्शन में काम कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है मैम, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। थैंक यू सो मच, आप आए और आपने हमारी तमाम महिलाओं को एक इंस्पिरेशन दी है जो यहाँ पर आपने बातें रखी हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए। आपको यहाँ आके अच्छा लगा?
8: बहुत अच्छा।
7: आगे भी आना चाहोगे?
8: बिल्कुल, जब आप बुलाओगे मैं पक्का हाजिर हो जाऊंगी।
7: चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो गाइज आप ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम। फिर मिलेंगे कुछ और नई कहानी के साथ, किसी और नई लेडीज के साथ, कुछ और नई संघर्ष की कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस, सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
1: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
2: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
1: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
2: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
1: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी और दोपहर की इस प्यारी सी घड़ी में आपका दिल से स्वागत है आपके अपने शो हेलो फरमाइश में, जहां बातें होंगी दिल वाली, गाने होंगे आपके पसंद वाले और साथ होगा ढेर सारा प्यार, मुस्कुराहट और थोड़ा सा नटखटपन भी। दोस्तों फटाफट से अपना फोन उठाइए और हमें कॉल लगाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना मैं आपको सुनवाती हूँ, तब तक आप मुझे कॉल करो बिना किसी देरी के। नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। और सुनिएगा एक बेहतरीन सा गाना आप सभी के लिए। आज ये खुशी यहाँ पर डेडिकेट करती है और लौट कर आती है

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और श्रोताओं, अभी हम वक्त की अगर बात करें तो समय हुआ है 3:17 और दोपहर का ये समय कुछ ऐसा होता है ना पूरी थकान होती है और ना ही पूरी राहत, बस एक अच्छी आवाज़ और पसंदीदा गाने। हाँ, मैं आपकी दोपहर को बनाऊंगी दोस्तों और भी ज़्यादा खूबसूरत, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप मुझे कॉल लगाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अभी बात करते हैं अपने कॉलर से कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश जी। आपको भी नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताइएगा आप। शमशाद अंसारी जी बात कर रहे हैं, बताइए कैसे हैं सर आप।
1: बढ़िया।
0: हाँ जी, हम भी बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा क्या करते हैं सर।
1: हम रेडीमेड का काम करते हैं।
0: रेडीमेड कपड़ों का?
1: जी जी।
0: अच्छा, शॉप है आपकी?
1: जी।
0: ओके, बहुत अच्छी बात है। तो बताइएगा सर, आज आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है मेरा घर मेरे बच्चे और गाना है मौसम आवाज़ें दे रहा है।
0: ओके, और ये खूबसूरत सा गीत आप किन के लिए सुनना चाहते हैं?
1: ये हमारी बीवी हैं अजमत जहाँ और हमारे प्यारे अजीज हैं मुरादाबाद से, मंसूर कॉलोनी से, शेरशाह अंसारी
0: जी। तो सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जी तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं सर की पसंद का ये खूबसूरत सा ट्रैक। एंड मौसम भी ना बड़ा ही नटखट है, कभी मौसम एकदम कूल हो जाता है तो कभी इतना हॉट हो जाता है, गर्मी हो जाती है। और इस चिलचिलाती धूप में ना मैं आपसे कहूँगी कि घर पर ही रहिए, अभी बाहर मत जाइए और पानी पीते रहिए। साथ में अगर थोड़ा सुकून चाहिए तो एफ एम मुरादाबाद में कॉल करती रहिए, नंबर 9837896896। और ये खूबसूरत से गीत का लुत्फ़ उठाते हैं, उसके बाद हम फिर से लौट कर आते हैं आप सभी के बीच।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। बजाज आई हॉस्पिटल मुरादाबाद में पिछले 40 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। आंखों से संबंधित सभी प्रकार की जांचें, मोतियाबिंद, भेंगापन, नाखून एवं नासूर तथा आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा डॉक्टर अशोक बजाज और डॉक्टर आकर्ष बजाज द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की TPA कैशलेस एवं आयुष्मान द्वारा फ्री ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही विजिट करें ताड़ीखाना चौक मुरादाबाद। कॉल 9548088900।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
6: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
5: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
6: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
7: कॉल 7500153841।

0: हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। यह है आपके शहर का अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन और शो का नाम है हेलो फरमाइश, जहां पर हम करते हैं 2 घंटे आपसे बातें और आपके फेवरेट गीत भी यहां पर चलाते हैं, जो कि आपकी दोपहर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। एंड आज हमारे साथ हमारी सखी रेडियो सखी यहाँ पर जुड़ी हैं और वो मिलने के लिए आई थी। कहती बहुत दिन से इनकी रिक्वेस्ट थी कि मैम हम कभी जब आपसे मिलने आएंगे तो हमें ऑन ईयर आना है। मैंने बोला बिल्कुल जी, जब आप आएंगे तो ऑन ईयर भी आने का अवसर हम आपको ज़रूर देंगे। तो आज हमारे साथ जुड़ी हैं कुमकुम जी। हेलो, हाय कुमकुम, हाउ आर यू?
1: हाउ आर यू मैम? बहुत अच्छा लगा मुझे आज के रेडियो शो में लाइव आकर।
0: अच्छा लग रहा है
1: जी? बहुत।
0: ओके,
1: और आप कैसे हैं?
0: आई एम गुड, मैं बहुत अच्छी हूँ। और आप बताओ, आपकी फैमिली में सब ठीक है?
1: जी बहुत बढ़िया।
0: हाँ,
1: बस सब आपको पूछ रहे थे कि आपकी सहेली कैसी है।
0: अरे वाह, क्या बात है। आपने बताया नहीं कि हमारी सहेली जो खुशी है वो हमेशा खुश रहती है?
1: जी मैंने बताया था, जैसे उनका नाम है वैसे उनके काम है खुश रहना और खुश करना।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइएगा कुमकुम, अभी आपने सुना ये बहुत ही प्यारा सा गाना, मौसम आवाज दे रहा है और आप अभी बाहर से आई हैं, तो मौसम क्या कह रहा है जरा बताइए हमें इस बारे में।
1: मौसम का तो आप ना ही पूछे, बहुत है, क्योंकि अभी जो आई हूँ ना बिल्कुल बेहाल कर दिया है मौसम ने। सुबह इतना अच्छा हो रहा था और अब इतनी गर्मी हो चुकी है, बहुत गर्मी हो गई है।
0: हाँ,
1: तो सभी श्रोताओं से भी मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने पास पानी की बोतल रखें और थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि बदलता मौसम है, बीमारियां भी एकदम हावी होती हैं।
0: एग्जैक्टली राइट। और इस मौसम में ना आपको इस वेदर में थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करनी है एवरीवन, कि पानी तो हम जब पियेंगे जब हमें प्यास लगेगी। अभी हमें प्यास नहीं लग रही है, लेकिन प्यास ना लगे तो भी आप पानी थोड़ा थोड़ा बीच में पीते रहें, स्किप बिल्कुल भी ना करें पानी को। एंड अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं, वरना वो सोचेंगे कि दोनों लड़कियाँ ही बतियाना शुरू कर दिए, हमसे तो बात ही नहीं की। तो चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी बिल्कुल, एफ एम मुरादाबाद से हम बात कर रहे हैं। आप बताइएगा कैसे हैं आप और क्या नाम है आपका?
2: जी मैं रेडियो 2 परवेज अहमद बनारस से आपसे जुड़ा हूँ। मैम
0: बनारस से हमारे साथ जुड़े हैं और बताइएगा कैसे हाल चाल है आपके सर?
2: मैम बढ़िया है, और आज तो यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा हाई है, और अब वहाँ का कैसा मौसम है मुरादाबाद का मैम बताइए।
0: हमारे यहाँ का अभी जो वेदर है, जो टेम्परेचर है वो 36 डिग्री सेल्सियस है।
2: जी जी मैम
0: जी,
2: अभी तो उधर उस हफ्ते में जब हमारा कॉल लगा था 10 दिन पहले, तो उस हफ्ते में तो थोड़ा नॉर्मल मौसम था, लेकिन अभी मौसम थोड़ा सा बदल गया मैम।
0: सुबह में ये तो सुहाना मौसम था, लेकिन इस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन गर्मी के साथ साथ हवाएं भी चल रही हैं।
2: जी जी मैम, लेकिन कल बता रहे थे कुछ दोस्त हमारे कि कहीं कहीं बरसातें हुई थी, कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई है कहीं ऐसी ऐसी जगह।
0: हाँ जी,
2: लेकिन हमारे बनारस में नहीं हुई है। अब यहाँ इंतजार है बारिश का, लेकिन अब मई का महीना चल रहा है तो बारिश का तो उतना वो नहीं है, लेकिन मौसम है, मौसम तो बदल ही जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और बनारस में भी बारिश हो जाएगी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप सर।
2: जी जी जी मैम, और यहाँ तो बारिश हो जाती है तो फिर तो हम लोग घाट पे चले जाते हैं गंगा जी के किनारे और घूमते हैं, बहुत अच्छा सुहाना मौसम हो जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और बनारस की तो बात ही अलग है।
2: जी मैम, लेकिन आप मैम हमेशा यही कहती है, लेकिन कभी आप आई नहीं, इतना अच्छा घाट बनाया आपने तो
0: आगे, मैं एक बार घूम। बिल्कुल आएंगे सर, देखिए
2: आप आएंगे तो आपके साथ रीना जी भी आ जाएंगे ना, आप पहले तैयार होंगे तो रीना जी भी तैयार हो जाएंगे आपके साथ आने के लिए।
0: बिल्कुल, हम दोनों लड़कियां तो घूमने के लिए तैयार हैं, लेकिन वक्त ही नहीं मिल पा रहा है, क्या कर सकते हैं।
2: जी जी मैम, आप लोग तो चंडीगढ़ घूम के आ गए।
0: अच्छा चंडीगढ़ हम कहाँ घूम के आए?
2: अब आप जानिए कब घूम के आए हम, मेरे पति शर्मा जी कह रहे थे कि वो लोग आने वाली हैं, हम सुने हैं।
0: हाँ एक्चुअली ना चंडीगढ़ हम लोगों ने एक रील्स शूट किया था, तो रीना जी और मैं दोनों साथ में ही थे।
2: जी जी मैम, वो बोल रही थी रीना जी, बोल रही थी चलिए चंडीगढ़ चलिए, तो आप बोले हाँ चलिए।
0: हाँ
2: वही सुने थे चंडीगढ़, शक्ति शर्मा जी सुने थे तो बोले क्या वो लोग आने वाली हैं, तो मैं ठीक भैया आ जाएंगे घुमा दीजिएगा।
0: जी
2: चंडीगढ़ को सिटी ऑफ ब्यूटीफुल भी कहा जाता है।
0: हाँ जी बिल्कुल, मैं गई हूँ चंडीगढ़ अमृतसर घूमने के लिए।
2: जी जी बहुत अच्छी स्थिति है मैम।
0: हाँ
2: हम तो गए नहीं, हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि परवेज भाई आइए घूम जाइए।
0: हाँ जी
2: बहुत अच्छी स्वच्छता के मामले में तो बहुत ही आगे है चंडीगढ़
0: जी। तो बताइएगा सर, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या फरमाइश है आपकी?
2: मैम मेरे एक दोस्त है मुफ्ती नाथी, जो कि इस समय गए हैं, जो दर्शन कर ले उज्जैन गए हैं।
0: अच्छा, महाकाल जी की नगरी उज्जैन एमपी।
2: जी जी आज गए, कल के ही गए हैं मुफ्ती नाथी, नेपाल से जुड़ते हैं आपके यहाँ।
0: हाँ जी, हाँ जी, जुड़ते हैं।
2: उनके उनके लड़की का आज जो हैप्पी वाला बर्थडे है, तो मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से हैप्पी बर्थडे टू यू महिमा, उनके लड़की का नाम महिमा है।
0: बिल्कुल, हमारी तरफ से भी मैना को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: जी जी जी मैम, तो आज मैम जो कि फिल्म रहेगी आजूबा, सुनने का गाना है मैम माटी का गुड्डर गुड्डर तू सोने की गुड़िया, गाना रहेगा मैम।
0: ओके,
2: और ये पहले जी मैम ये पहले आपको डेडिकेट रहेगा, रीना जी को, राज सर को, आनंद भाई को, और हमारे सतीश शर्मा जी हैं, और सतीश शर्मा जी हैं, मुक्तिनाथ भाई हैं, और एक सोनू गौतम जी जो हैं, और एक प्रिंस पासवान है। सोनू गौतम जी का कल हो सकता फोन आया रहा मैम आपके यहाँ।
0: जी जी बिल्कुल, कल से कार्यक्रम में जुड़े थे, उनका कॉल लगा था।
2: दिल्ली रहते हैं, और जो की उनका रामपुर में घर है।
0: हाँ जी, हाँ जी।
2: एक बार मुरादाबाद के यहाँ वो जो दानी सिद्दीकी जी हैं, वो भी गाने में डेडिकेट रहेंगे। मुकेश कश्यप जी हैं मुरादाबाद के, और तमाम रेडियो जो मुरादाबाद सुनने वाले श्रोताओं के गाना डेडिकेट रहेगा मैम आपके माध्यम से।
0: बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए सर।
2: एक बार फिर खुशी जी आपको मेरा नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार सर, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए हमेशा और हेल्दी रहिए।
2: जी जी,
0: FM मुरादाबाद सुनते रहिए। हाँ जी सर, थैंक यू, बाय। तो चलिए श्रोताओं, अभी सर की पसंद का एक खूबसूरत सा ट्रैक सुनते हैं और उसके बाद हम लौट कर आते हैं। तब तक आप भी ट्राई कीजिएगा, नंबर 9837896896 रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नंबर मैं आपको बताती हूँ एक बार फिर से, 98-378-96-896 इस पर कॉल लगाइए। खुशी आपके साथ कनेक्ट होगी, और जो मेरी सखी है वो भी मुस्कुरा रही है, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले ही खूबसूरत सा गाना सुन लेते हैं एवरीवन।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक एंजॉय किया, मैं मार्टी का गुड्डा तो सोने की गुड़िया। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं हमेशा अखिल जी को बोलती हूँ, अब आप अखिल जी को तो जानते ही हैं। जी हाँ, हमारे साथ रेगुलर होस्ट करते हैं, बहुत ही हैंडसम से हैं और मुस्कुराते रहते हैं हमेशा खुशी की तरह। मैं बोलती हूँ, ये मुस्कुराने का रीज़न क्या है आपका, आप इतना खुश क्यों रहते हैं? कहते हैं कि खुशी जी, जब से हम आपसे मिले हैं तो हमेशा खुश रहते हैं। मैंने बोला, रियली? कहते हैं, हाँ जी, देख लीजिए हमारी स्माइल। तो जब भी मैं देखती हूँ, ये ऑफिस में एंटर करते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। ये मुस्कुराहट इनकी मुझे बहुत पसंद है। फिलहाल इनसे बातचीत करते हैं। हाय, हेलो, कैसे हैं अखिल सर आप?
1: जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइएगा कैसे हाल चाल है? चिलचिलाती गर्मी में सुकून मिल रहा है या नहीं मिल रहा है?
1: बिल्कुल सही मिल रहा है, और एक गन्ने का रस भी मिला था अभी, हमने वो भी पी लिया।
0: अरे वाह, क्या बात है, मैं तो सुबह चाय के साथ वो रस लेती हूँ। हाँ, होता है, कॉमन है, सभी के साथ हो जाता है। छोटे छोटे शहर, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: सही बात करी, छोटी छोटी बूंदाबांदी तो होती
0: रहती है। अभी सुबह हुई थी, अब देखो कितना वेदर हॉट हो गया, इतना गर्मी हो गई है। और हमारे साथ में इधर कुमकुम भी है, ये भी मुस्कुरा रही है। तो बताइएगा आज इतना खुश क्यों है आप लोग?
2: आप दोनों की बातें, चुगलबंदियां देख के अच्छा लग रहा है,
0: अच्छा लग रहा
2: है, फील हो रही है।
0: हाँ, हमारे सामने वाले देख तो नहीं पा रहे हैं हमारे लिसनर, लेकिन हाँ वो फील पूरा कर पा रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं, कह रहे हैं बहुत बढ़िया जी, आज तो सब छाए हुए हैं फिर मुरादाबाद पर।
1: बिल्कुल सही, वो बेचारे ड्राइव करते करते सब हम लोगों की ये सुन रहे हैं बातें।
0: कुछ ड्राइव कर रहे हैं तो कुछ अभी आराम फरमा रहे हैं, और कुछ अभी शॉप पर बैठे हैं, ओहो कस्टमर को डील करने में बिजी हैं, तो कुछ अभी सोच रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कस्टमर कब शॉप पर आए। वैसे जब कस्टमर शॉप पर आते हैं तो कैसे, किस तरह से डील करना चाहिए?
1: बहुत ही मतलब डील इन सेंस की बहुत ही स्वाभाविक होता, मतलब बहुत ही
0: क्योंकि
1: आराम से ऐसा कंफर्टेबल फील होना चाहिए कस्टमर को कि हाँ भाई वो उसी जगह पे आया, जो पर्पस उसका था, जो सामान लेने आया है, तो सही जगह पे आया है।
0: बिल्कुल। और क्या

0: कहते हैं ना कि जो हमारे लाइक कस्टमर होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, तो हमेशा पोलाइटली और अच्छे से उनको डील करना चाहिए। ऐसा स्वभाव, ऐसा व्यवहार बनाओ कि वो एक बार नहीं हजार बार आप ही की शॉप पर आए और अपने रिश्तेदारों को भी लेकर आए कि भाई वहां पर चलो आप शॉपिंग करने या वहां चलो खाने, बहुत ही टेस्टी खाना, बहुत अच्छी शॉप मिलती है। हाँ जी, बिल्कुल बुद्ध बाजार में तो मैं गई थी, बहुत रश रहता है वहाँ, बहुत भीड़ रहती है। मैं एक बारी गई, लगना था 1 घंटा, लग गई 4 घंटे वहां पर शॉपिंग करने के लिए। गई, समझ ही नहीं आ रहा इतना मार्केट बड़ा है और इतनी भीड़, बहुत ज्यादा। चलो अभी हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, पहले अपने श्रोता से भी बात कर लेते हैं क्योंकि वो इंतजार कर रही हैं। कौन जुड़ी है हमारे साथ, वो तो अखिल जी बताएंगे। अखिल सर कौन जुड़ी है हमारे साथ, मैम जरा बताइएगा।
1: हेलो फरमाइश, स्वागत है आपका।
2: गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून मैम, आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम रूबी।
1: रूबी जी, रूबी जी कैसी हैं आप?
2: हम बहुत अच्छे हैं, आप सब बताइए कैसे?
1: बढ़िया है मैम, सब हम सब बढ़िया हैं। आज क्या फरमाइश है आपकी गाने की?
2: आज बर्थडे रिलेटेड कोई सॉन्ग सुनवा देना, मेरे बेटे का बर्थडे।
1: अरे अरे,
0: क्या नाम है आपकी बेटी का बताइएगा मैम?
2: हमजा अली।
1: हमजा अली को हम मुरादाबाद एफएम की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई जन्मदिन की।
0: अरे वाह वाह, क्या बात है। मुस्कुराने से मैम, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, केक किधर भी भिजवाना पड़ेगा आपको,
1: ठीक है ना रूबी जी? हमारे में कहावत है, जब केक कटेगा तो सब में बटेगा।
0: क्या कह रही रूबी मैम आप?
2: मेरा भी बहुत मन होता है वहाँ पे आने का।
0: हाँ बिल्कुल आइएगा, आपका स्वागत है,
1: जल्दी ही बुलाएंगे हम आप सभी को।
0: तो
1: गाना बताइए, क्या फरमाइश है गाने में, कौन सा
0: स्पेशल ट्रैक बताया है? तो एक गाना मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है।
1: चलिए आज एफएम की तरफ से एक बर्थडे सॉन्ग हो जाए।
0: थैंक यू रूबी जी हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए और ये प्यारा सा ट्रैक सुनवाते हैं। एंड आप कुछ कहना चाहते हैं अखिल सर?
1: मैं कुछ नहीं कहना चाहता।
0: जो हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं वो किस तरह से हमें सुन सकते हैं और कैसे वो कॉल लगा सकते हैं, प्लीज बताइए।
1: सिंपली 9837896896 पे हमें कॉल कर सकते हैं या अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर वो ऐप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू हमें चाहें तो अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर में जाके मुरादाबाद एफएम की 89.6 की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। रेड कलर का हमारा लोगो आएगा, सिंबल आएगा कलर में, और उसे आप डाउनलोड करें और उस पे हमारे साथ आप ऑन एयर हो सकते हैं
0: जी, कनेक्ट हो सकते हैं। और अभी फिलहाल ये प्यारा सा बर्थडे स्पेशल ट्रैक हम इंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद बातचीत करेंगे एवरीवन। तब तक आप भी ट्राई करती रहिए, जैसे अखिल सर ने आपको नंबर बताया है मैं आपको बता देती हूँ हिंदी में, 98-378-96-896। रेडियो बजाती रहिए
1: और गुनगुनाते रहिए
0: और मुस्कुराती रहिए, और हाँ पानी भी पीते रहिए आप, ठीक है? कॉफी तो मैं नहीं बना सकती लेकिन पानी ही पी सकते हैं, वो रखा हुआ है,
1: बना देना पानी को ही बना देना,
0: ठीक है? तो चलिए श्रोताओं, ये मटर गश्ती यहाँ पर चलती रहेगी, प्यारा सा गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं हम।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
4: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
5: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
6: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: लोकल श्रोताओं, अच्छे तो आप भी हमें लगते हैं। देखते हैं हम आपका प्यार इतना, यू नो, इतनी सारी कॉल्स हमारे पास आती हैं और सभी कॉल्स को एक बारी में अटेंड करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एवरीवन, आप जो आपका जो प्यार है, जो आपका लाइक डेडिकेशन है एफएम मुरादाबाद के प्रति, शो के प्रति, बहुत अच्छा लगता है। और हमारे साथ एक लिसनर जुड़े हैं तो उनसे बात करते हैं। अखिल सर कौन जुड़े हैं, जरा बात करिएगा।
1: आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं
0: अयुब जी, कनेक्ट हुए हैं।
1: कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। कहाँ से बोल रहे हैं आप? रामपुर में मौसम कैसा है?
2: गर्मी बहुत है।
1: बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, सेम टू सेम चल रहा है मुरादाबाद में भी। और बताइए अयुब साहब, क्या फरमाइश है आज आपकी? रामपुर से तो नैनीताल पास में ही है। कितनी बार घूम के आए हैं आप नैनीताल, आज बताई दीजिए अपने सारे दर्शकों को हमारे।
2: अभी तक तो जाना हुआ नहीं सर, काम के सिलसिले में।
1: हम चाहेंगे आप जल्दी से जल्दी नैनीताल घूम के आए, कम से कम पड़ोस में ही है नैनीताल, ज़्यादा दूर भी नहीं है, आप पहुँच ही जाएंगे 2-3 घंटे में। चलिए, बहुत बढ़िया अयूब भाई, आपने जो है हमसे संपर्क किया और आज हम आपकी फरमाइश का गाना भी प्ले करते हैं।
2: थैंक यू सर।
1: ओके, चलिए अयूब जी के लिए बजाइए गाना ऐसा जो पहुँच जाए नैनीताल तक भी।
0: बिल्कुल, प्ले करते हैं ये खूबसूरत सा गीत। बाकी आप बड़ा मुस्कुरा रही हैं कुमकुम, क्या बात है, बताइए जरा।
3: मैंने देखा कि अयुब जी का गाना जो है नैनीताल से रिलेटेड, वो खुद नहीं जा पाया तो सॉन्ग सुन के इनको तसल्ली दे रहे हैं।
0: हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा है। चलिए, इस गाने के जरिए हम भी नैनीताल की सैर करते हैं, बैठे बैठे यहीं पर झूम लेते हैं। और श्रोताओं, हम आपसे कहेंगे कि आप भी हमें कॉल कीजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए
1: और गुनगुनाते रहिए।
0: हाँ जी, गुनगुनाते रहिए और एक खूबसूरत से गाना एंजॉय कीजिएगा। हम लौट कर आते हैं बस इस ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के उस पार।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ,
4: चावला टायर
2: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: स्किन एलर्जी, मस से नाखून, बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
6: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
7: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
8: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
7: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
9: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
10: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
11: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। समय हुआ है अभी 4:08। देखिए दोस्तों, 4:08 हो गए हैं, लेकिन बाहर का जैसा मौसम है ना, इतना गर्म लग नहीं रहा है कि 4 बज चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी 3 ही बजे हैं, इतनी गर्मी है बाहर। अखिल सर, आप बाहर से आए, बताइएगा अभी बाहर का वेदर कैसा है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने खुशी जी। और बाहर तो गर्मी है ही, आपने अंदर भी गर्मी कर रखी है, ऐसा क्यों?
0: एक्चुअली ना, मुझे ठंड लग रही थी, आपने इतना एसी ऑन करवा के रखा हुआ था 16 पर, तो मैंने कहा मुझे तो यहाँ पर ब्लैंकेट की नीड पड़ जाएगी, और ब्लैंकेट मेरे पास है नहीं, तो मैंने कहा अभी बंद कर देते हैं एसी को थोड़ा सा।
1: एक बात कहूँगा इसी बात पे।
0: बिल्कुल कहिए इरशाद, फरमाइएगा जनाब।
1: मुस्कुराने की वजह ढूंढते हो क्यों?
0: हाँ,
1: रेडियो लगाओ और टेंशन भूल जाओ।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया,
1: सही कहा,
0: बिल्कुल सही कहा। तो चलिए अभी बात करते हैं अपने कॉलर से, कौन जुड़े हैं हमारे साथ।
1: हेलो हेलो, फरमाइश, कैसे हैं आप? हाँ जी अंसारी जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। अंसारी जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? क्या
0: क्या बात जी बोल रहे हैं,
1: और क्या काम करते हैं अंसारी जी आप? अच्छा, क्या बात है, क्या बात है अंसारी जी, बहुत ही बहुत शुक्रिया आपका। क्या क्या फरमाइश है आपकी? बहुत बढ़िया। कुछ कहना चाहेंगे आज, कुछ कोई शायरी आप भी बोलना चाहेंगे अंसारी साहब? हाँ, हर थोड़ी देर में पानी पानी पीता रहे, बिल्कुल सही बात कही आपने, बहुत बिल्कुल। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात कही आपने। अंसारी जी, क्या गान, कौन से गाने सुनना चाहेंगे आप? ओके ओके ओके, और ये गाना किसको डेडिकेट करना चाहेंगे आप? क्या बात, क्या बात है, सभी आज आपके आसपास ही हैं? सभी को हमारी तरफ से भी नमस्कार कहिएगा। चलिए आपका लगाते हैं फरमाइश का सॉन्ग। नमस्कार अंसारी जी।
0: तो अभी तो ये बात की है हमने सर से, और मैं अभी बात करना चाहूँगी अखिल सर से भी और कुमकुम से भी, जो कि अभी कुमकुम भी थोड़ा सा यू नो फरमाइशें कहती हैं कि मैम, आपकी जो हमारे जो श्रोता हैं, जो सुनते हैं इस वक्त रेडियो को, और जो कॉल भी कर रहे हैं, उनकी पसंद के गाने बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं। मैं तो सुनकर झूम रही हूँ, क्यों कुमकुम जी, कैसा लग रहा है बताओ? कितना झूम रही हैं आप, इतना झूम रही हैं कि कुर्सी से गिर गई एक बारी तो। अखिल सर ने उठाया कि आराम से कीजिए डांस।
1: अच्छा, ऐसा भी हुआ है?
0: हाँ जी बिल्कुल
2: जी, झूम झूम के चक्कर आने लगे ना।
0: हाँ देखो, मैं कह रही हूँ डांस करो, लेकिन इतना मत करो कि चक्कर आ जाए। भैया गर्मी है, अपना ख्याल रखो अच्छे से।
1: कुमकुम जी थोड़ा कम घूमी है।
0: ये अच्छा है, कुमकुम जी कम घूमी। कुमकुम कुछ कहना चाहती हूँ आप? हाँ हाँ बिल्कुल, अपने दिल की राज आप भी खोल दीजिएगा आज।
2: एक छोटी सी शायरी कहूंगी अपने शहर के लिए।
0: इरशाद,
2: सबके लिए सबका शहर कुछ खास होता है।
0: हाँ।
2: सबके लिए
0: सबका शहर कुछ
2: सब खास। कुछ खास होता है।
0: हाँ।
2: बस सबका शहर अपना मुरादाबाद नहीं होता।
0: वाह वाह,
1: क्या बात कह दी, क्या बात कह दी है।
0: पीतल नगरी की बात तो अलग ही है। अखिल सर कुछ आप कहना चाह रहे थे?
2: जैसे समय बदल रहा है, हमारा मुरादाबाद काफी बदल रहा है, स्मार्ट सिटी बन चुका है। आप जगह जाइए, बाहर निकलिए, देखिए अपना मुरादाबाद हर गली में, हर कोने में आपको एक नए रंग में दिखेगा।
1: बिल्कुल सही बात कही है।
0: लेकिन मुरादाबाद के लोगों को नहीं बदलना चाहिए, उनको ऐसे ही रहना चाहिए, स्वीट एकदम प्यारे से।
2: मुरादाबाद के लोगों में तो बदलाव ही नहीं, तभी तो ये इतना शहर खूबसूरत होता जा रहा है,
0: तभी चमक रहा है। मैं भी तो कहूँ इतना शाइन क्यों कर रहा है।
1: बिल्कुल सही, आते हैं इस गाने के बाद ना, फिर हम मुरादाबाद के अपने सभी लिसनर्स के साथ एक गेम खेलेंगे, रैपिड फायर गेम।
0: ठीक है चलिए, अभी ये प्यारा सा गाना सुनते हैं, उसके बाद हम दोस्तों आप सभी के साथ फिर से कनेक्ट होते हैं।
3: कहिए क्या सुनेंगे आप?
4: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
3: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
4: कौन है वो?
3: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

0: कभी कभी गाने जो हैं सिर्फ गाने नहीं होते, यादें भी होती हैं और एहसास भी होते हैं। इतने प्यार से बुलाया है हमें तो आना तो पड़ेगा ही ना खुशी जी।
1: बिल्कुल सही कहा है आपने अखिल सर। एंड देखिए हमारी श्रोता आपको इतने प्रेम से बुला रहे थे, गिन गिन के कर रही हूँ तेरा इंतजार और आप चले आए, बड़ा अच्छा लगा हमें। तो अखिल सर बताइएगा हमारे साथ कौन जुड़े हैं और क्या उनकी फरमाइश है,
0: अभी बताते हैं आपको।
1: ओके, हम भी जरा जान लेते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है, क्योंकि मैं भी उत्सुक रहती हूँ जानने के लिए।
0: हेलो फरमाइश।
2: हेलो।
0: हेलो सर, नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: नमस्कार सर, ठीक है, आप कैसे हैं?
0: बढ़िया सर, बढ़िया। अपना नाम और बताइए किस जगह से बोल रहे हैं आप?
2: जी मैं बोला हूँ वाराणसी, बनारस से।
0: बनारस से?
2: जी हाँ।
1: गुप्ता जी बात।
0: गुप्ता जी नमस्कार।
2: नमस्कार सर जी, नमस्कार। और सर जी आप कौन बोल रहे हैं?
0: हम बोल रहे हैं अखिल, मुरादाबाद से।
2: अच्छा
0: जी, खुशी जी हैं अभी हमारे साथ अभी।
2: ठीक है,
0: सब सही है।
2: हम
0: दोनों ही बात करेंगे आपसे। आप ये बताइए बनारस, बनारस का मौसम कैसा है इस समय?
2: सर यहाँ बहुत गर्मी है सर।
0: यहाँ भी गर्मी है?
2: हाँ यहाँ बहुत गर्मी है सर, यहाँ पंखा कपा नहीं काम कर रहा, कूलर वगैरह है तो कुछ ठीक लग रहा है। और सर बहुत गर्मी यहाँ पर है
1: जी। बताइएगा आप इस गर्मी में कौन सा ऐसा गाना है जो आपको
0: ठंडक पहुँचाए?
1: हाँ ठंडक पहुँचाए, आपको माइंड एकदम कूल हो जाए।
2: एक गाना तो है जरूर से
1: जी, बताइएगा।
2: गाय बजाएगा जरूर।
0: हाँ जी बताइए बताइए।
2: अरे आजा मेरी जान, ये है जून का महीना, गर्मी है गर्मी, पसीना ही पसीना। अरे आजा मेरी जान, ये है जून का महीना, गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने, ये जो जून का महीना है ये हमें मई में ही ऐसा लग रहा है कि एकदम पसीना।
2: नहीं सर, जून महीना समझिए है, उसी तरह गर्मी पड़ रही है।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। बहुत ही अच्छी आवाज है आपकी गुप्ता जी, बहुत ही बढ़िया सुरीली आवाज है आपकी
2: जी। सर मैं तो दूसरा गाना गाना चाहता हूँ, मगर आपने बोला ऐसा गाइए तो मैं दूसरा गाना गा दिया, दूसरा गाना सोच के रखे थे।
0: चलिए हम अगली बार आपसे वो दूसरा गाना भी सुनेंगे, हमारे लिए भी कुछ सरप्राइज छोड़िए गुप्ता जी।
2: ठीक है सर जी, आपको तो मुखड़ा सुना छोड़ देना सर जी, अगर दूसरा गाना गाते हो तो याद रहा वो पूरा सुनाते हैं आप वो गा करके सर।
0: ठीक है ठीक है, हम पूरा पूरा सुनेंगे आपसे वो गाना तो अगली बार। ठीक है,
2: ओके
0: ओके सर। देखिए हमारे साथ बनारस से भी जुड़े हुए हैं लोग। खुशी जी आपने बहुत दूर दूर से लोगों को जोड़ रखा है, इसके बहुत ही अच्छा लगता है।
1: थैंक यू अखिल जी। अच्छा अखिल सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप बनारस गए हैं?
0: मैं बनारस अभी तक नहीं जा पाया मेरा, मगर अंदर से बहुत तमन्ना है, बहुत ही मेरी इच्छा है कि मैं बहुत जल्दी बनारस होके आऊँ।
1: बिल्कुल, बहुत सारे इनविटेशन हमें बनारस से आए हुए हैं, हमारी काफी लिसनर हैं, हम इनवाइट किए हुए हैं। तो अखिल सर जब हम जाएंगे तो हम

0: सब साथ चलेंगे।
1: पक्का पक्का, पूरा अपडेट देंगे हम काशी में जब घूमेंगे।
0: हाँ जी,
1: सबसे और... पहली नगरी कहलाती है काशी, अगर सबसे पहले कोई बसा है, कोई क्या कहते हैं, कोई नगरी बसी है तो काशी ही थी जो सबसे पहले बसी इस पृथ्वी पे।
0: ओके, काशी बनारस। तो चलिए अभी खूबसूरत सा गीत सुनते हैं एवरीवन, उसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक आप भी प्रयास कीजिए कि आपका भी कॉल जल्दी से लग जाए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए,
1: गुनगुनाते रहिए।
0: जी हाँ, ये है आपके शहर का अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, और सुनिए का ये खूबसूरत गीत। मिलते हैं अभी इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार।

0: दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है FM मुरादाबाद 89.6 पर और शो का नाम है हेलो फरमाइश। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजी खुशी। और श्रोताओं, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत सुना किशोर कुमार जी, साथ में आशा भोसले जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में प्यारा सा ट्रैक। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, हमारे साथ कौन कहाँ से कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: गुड इवनिंग मैम।
0: हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका? जी लाइन पार से बात कर रहे हैं। पिंटू जी बताइए, कैसे हैं आप?
1: तो फर्स्ट क्लास मैम, आप सुनाइए आपके परिवार में और स्टाफ में सब कैसे हैं?
0: हाँ जी, ऑल गुड, आई एम फाइन। मैं भी ठीक हूँ, आप बताइएगा आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? सर
1: इस समय तो मैम मैं चाय पी रहा हूँ, रात का सब सुन रहा हूँ मैम, थोड़ा सा बुखार भी था।
0: अच्छा, तो अभी फीवर कैसा है आपका? मेडिसिन वगैरह लिया आपने? चलिए बहुत अच्छी बात है।
1: गर्मी में ठंडा पी लो ना तो उसकी वजह से हो जाता है मैम।
0: हाँ, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए ना सर। लाइक ज़्यादा गर्म, ज़्यादा ठंडा वंडा पीने से भी दिक्कत हो जाती है, गले में भी प्रॉब्लम हो जाती है सर। हाँ जी, तो आप बताइएगा पिंटू जी, आज कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े हैं, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप? अरे वाह, ये हल्की हल्की सी बरसात, रेगुलर सुबह कल भी हुई थी और आज भी हुई थी, फिर इतनी गर्मी हो जाती है। हाँ बिल्कुल, आपको डिविज वॉइस में ये ट्रैक सुनवाते हैं जी। कुछ बोलना चाहते हैं आप, बोलिएगा।
1: जी मैम, मैं शायरी अच्छा करना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल इरशाद फरमाइएगा
1: जी। कल सारी गलती है मेरी, आज कबूल करता हूँ। रोजाना तुझे याद करके वक्त फजूल करता हूँ।
0: अरे अरे क्या बात है।
1: अब नाकों को तेरा इंतजार नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं कि तुझसे प्यार नहीं। तुझे अपने पास रखो इतनी मेरी औकात कहाँ, तुझमें तो वो बात है पर मुझमें वो बात कहाँ।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत प्यारी लाइनें हैं आपकी पिंटू जी।
1: मैम बस थोड़ा थोड़ा मैम ऐसे गुनगुना लेता हूँ मैं।
0: अच्छी बात है, गुनगुनाना भी चाहिए, शायरी भी करना चाहिए, जो दिल करता है वो करना चाहिए।
1: बाद में अफसोस करने से अच्छा है जो तुम्हारा दिल करता है वो करो।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और सुनवाते हैं आपकी पसंद का एक खूबसूरत सा गीत, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये ब्यूटीफुल ट्रैक, हल्की हल्की सी बरसात आ गई, इस गर्मी में ये कूल सा गाना, हल्की हल्की बारिश को हम भी फील करेंगे, महसूस करेंगे। और जब हम चीज़ों को महसूस करते हैं तो अच्छा लगता है और दिल भी हल्का हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं आपसे कहूँगी जो इस समय ड्राइव कर रहे हैं, ऑन द वे हमें सुन रहे हैं कार में, सर आप हौले हौले ड्राइव कीजिए और इस ब्यूटीफुल ट्रैक का आनंद लीजिएगा। बस मैं लौट कर आ रही हूँ इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
5: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
4: अरे वाह।
5: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
4: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
6: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
7: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है और मेरे साथ में यहाँ पर कुमकुम जी भी हैं। हाय कुमकुम, हेलो, कैसे हैं आप?
1: हेलो खुशी जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ और बस आपसे बातें करके आज बहुत अच्छा लगा लाइव में आके।
0: हाँ, और मैंने आपसे बताया था ना दोस्तों कि डांस करने में मशरूफ हो गई थी, तो हमने कहा चलिए इनको डांस करने में व्यस्त कर देते हैं, हम थोड़ा सा बतिया लेते हैं। लेकिन अभी ये फिर से फ्री हो गई हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप मुझे बताइए कुमकुम, आपका मुरादाबादी फेमस फूड आपको लाइक क्या है मुरादाबाद का, और आपका फेवरेट फूड क्या है मुरादाबाद में? लाइक
1: खाने के बारे में आप पूछेंगे तो मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि मैं तो बहुत खाती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा थोड़ा मुझे बहुत पसंद है।
0: फूडी लड़की हैं आप?
1: हाँ,
0: लेकिन
1: आप
0: देखने में नहीं लगती हैं, देखने में ऐसी लगती हैं आप जैसे कि कितनी डाइटिंग पे रहती हैं भाई।
1: बट हाँ, जितने भी फूडी लोग होते हैं ना उनको
0: हाँ,
1: देख के कोई नहीं कह सकता हाँ, वो फूडी है।
0: हाँ,
1: यहाँ का जो सबसे फेमस और फेवरेट है ना मेरा, वो दाल समोसा है। बहुत ही टेस्टी होता है यार, बहुत ही डिलीशियस। कभी आप लोग भी जाइए, दाल समोसा खाइए, लाइन पार में बहुत ही टेस्टी दाल समोसा मिलता है वैसे तो। और आपके आसपास भी कहीं ना कहीं कोई ठेला लगता होगा तो मुरादाबादी दाल।
0: और ऐसा भी हो सकता है ना कुमकुम कि बहुत से लोग खा भी रहे हो।
1: हाँ, इस समय खा भी रहे हो सकते हैं
0: कुछ भी हो सकता है यार,
1: या कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हाँ शाम को चलते हैं।
0: शाम को चलते हैं, तो मैं भी अभी प्लान करने वाली थी आपके साथ, पर मुझे याद आया कि आज तो मेरा फास्ट है, तो आज तो मैं खा नहीं पाऊंगी। लेकिन नेक्स्ट कभी चलते हैं, पर
1: कोई बात नहीं
0: देखिए
1: कोई बात
0: खाने
1: नहीं।
0: के नाम पर ये कैसे जी इनका

मैं भी ठीक हूँ। आप बताइएगा, आज आपने कॉल किया सर, क्या सुनना चाहते हैं आप, क्या फरमाइश है आपकी? अच्छा, नदिया की पार मूवी का। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही अच्छा ट्रैक है। अच्छा ठीक है, सुनवाते हैं प्यारा सा गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद सर। हाँ जी, थैंक यू हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए से, और ये प्यारा सा ट्रैक सुनवाते हैं। एंड हम लौट कर आएंगे फिर कुमकुम से और भी बात करेंगे। और श्रोताओं, आपके पास भी अभी मौका है, आप भी हमें कॉल लगाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896 9837896896। मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी खुशी। और ये प्यारा सा गीत आप सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत सा है, मेरा फेवरेट है, आप जानते हैं। ओहो क्या बात है, थैंक यू जी।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: हाय दयन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
5: ब्रेन ट्यूमर, स्लिप डिस्क या लकवा जैसी जटिल समस्याओं का अब पक्का इलाज DMR हॉस्पिटल में मुमकिन है, जहां पर भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। संपर्क करें DMR हॉस्पिटल, सिविल लाइंस, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9760304534।
6: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंज वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060002430।
7: जा जी ले अपनी जिंदगी।
6: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश में। खुशी आपके साथ है और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय किया फ्रॉम द मूवी नदिया की पार। कौन दिशा में लेके चला रे बटो भैया। और जब इतने प्यारे प्यारे गीत हम सुनते हैं ना तो एक अलग ही ख्यालों में हम खो जाते हैं। और हमारे साथ एक लिस्टनर कनेक्ट हुए हैं तो आइए उनसे बात करते हैं और जानेंगे कि उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: आपको
0: हेलो फरमाइश,
1: नमस्ते।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर तहसील सिरोंज जिला उड़ीसा मध्य प्रदेश से।
0: जी बताइए कैसे हैं हारून जी आप।
1: बस बहुत अच्छे हैं, और आप कैसी हो?
0: हाँ जी मैं भी ठीक हूँ, आप बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी।
1: मौसम कैसा है आपके घर?
0: मौसम अच्छा है, गर्मी है, और आप बताइएगा आपके शहर का मौसम कैसा है। सो
1: बस घर तो गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है,
0: लू से बच के
1: थोड़ा
0: रहिए, घर में आराम से रहिए और अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखिए। भरपूर मौसमी फ्रूट्स का आनंद लीजिए और बताइएगा आज क्या फरमाइश है आपकी।
1: नहीं हो रही बाहर निकलने की।
0: हाँ बिल्कुल मत जाइएगा सर, गर्मी में अंदर ही रहो ज्यादा बेस्ट है।
1: जी, गाने के बोल हैं, पैदल चल रहा हूँ।
0: गाड़ी चाहिए।
1: जी गाड़ी चाहिए।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद।
0: तो चलिए श्रोताओं, ये बहुत ही प्यारा सा ट्रैक हम सुनते हैं मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी से, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक। एंड उदित नारायण जी साथ में अनुराधा पौडवाल जी की खूबसूरत सी आवाज़ में प्यारा सा ट्रैक। बिना किसी देरी के सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू माय ऑल लवली लिसनर्स. आप सभी का स्वागत करती है आरजे खुशी हेलो फरमाइश शो में. और मेरे साथ में देखिए अखिल जी भी यहाँ पर बैठे हैं, कुमकुम भी यहाँ पर बैठी हैं, और ये क्या कहना चाह रहे हैं वो हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं. जी बताइएगा, क्या बोलना चाह रही थी आप?
1: जी मैं बोलना चाह रही थी, आज पहली बार आपके साथ ऑन एयर लाइव आके बहुत मज़े आए मुझे. मैंने जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा अमेजिंग था. कब नून से इवनिंग हो गई पता ही नहीं चला, 2 घंटे कहाँ चले गए. और जैसा कि हमारे लिसनर हैं, यार कितने अच्छे हैं मुरादाबाद के लिसनर, इनकी तो तारीफ़ बनती है. मतलब इन्होंने सॉन्ग सुने हैं इतने मज़ेदार, मैं तो झूम ही उठी थी. जैसा
2: अच्छा
1: कि
2: फिर से नहीं गिरी थी.
0: हाँ जी, अखिल सर भी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ.
2: खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो से जुड़े रहिए, क्योंकि जिंदगी का असली मजा मस्ती और धमाल में ही है.
0: बिल्कुल सही बात है. और हमारे साथ एक लास्ट कॉलर कनेक्ट हुई है, तो उनसे भी बातचीत करते हैं. हेलो फरमाइश.
3: हेलो फरमाइश मैम, नमस्ते.
0: जी आपको भी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइएगा आप.
3: जी मेरा नाम रानी है, मैं कुंदनपुर से बोल रही हूं.
0: रानी जी मेरा नाम राजा है.
2: नहीं नहीं, इनका नाम खुशी है बस. ये
0: थैंक यू,
2: स्टूडियो की भली ये राजा है मगर इनका नाम है खुशी.
0: और बताइए रानी जी. हाँ जी ऑल गुड, आप बताइएगा आपकी परिवार में सब ठीक है?
3: हाँ मेरे परिवार में सब लोग ठीक हैं.
0: ओके, क्या कर रही थी इस वक्त आप? बड़ी खुश नजर आ रही हैं मैम.
3: मुझे अभी गाना याद आया था लेकिन मुझे नाम याद नहीं है मैम.
0: अच्छा,
3: दिल में दर्द उठा जरा सा
0: खुशी से.
3: ज्यादा नहीं है.
0: अच्छा चलिए,
2: डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा अगर थोड़ा ज्यादा हुआ तो.
0: नहीं हाँ बोलिएगा रानी जी.
3: मैं ये कह रही हूँ मैम, मतलब जितने भी वहाँ पे हैं स्टूडियो में सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार.
0: अरे वाह,
2: नमस्कार. हमारी तरफ से भी आपको प्यार भरा नमस्कार है रानी.
0: रानी जी का दिल बहुत बड़ा है, नाम भी उनका रानी है और दिल भी बहुत बड़ा है. थैंक यू रानी जी.
3: हाँ जी मैम.
0: चल चलिए, रानी जी ने बहुत अच्छी बातचीत की है. हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं?
2: मैं रानी जी की जो आवाज है और रानी जी की जो इस समय एनर्जी थी उसके ऊपर एक बात कहूंगा कि जिंदगी को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी खुद हमें सीरियसली नहीं लेती.
0: हाँ ये बात तो सही कही है आपने अखिल सर. और इन्होंने बहुत प्यारे सी गाने की हमें रिक्वेस्ट भेजी है, तो इस ट्रैक को सुनते हैं. और जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप दोनों?
2: मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोगों की फरमाइश कहीं भी रह गई हो तो टेंशन मत लेना, क्योंकि कल फिर खुशी आपको इसी समय इसी वक्त रेडियो स्टेशन पे मुलाकात करेंगी और आपकी फरमाइश को प्ले करेंगी. और सोच के रखिएगा थोड़ी सी स्पेशल अपनी फरमाइश को कि हाँ कल आपकी फरमाइश प्ले होनी है.
0: हाँ कुमकुम आप क्या कहना चाहेंगी?
1: मैं बस अपने श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी, जैसे मौसम बदल रहा है अपने मूड को ना बदलें, थोड़ा सा ध्यान रखें, पानी पीते रहें, गर्मी से बच के रहें और धूप में ज्यादा बाहर ना निकलें.
0: वाह जी वाह, लड़की छा गई हो आप तो, इतने खूबसूरत इन्फॉर्मेशन आपने दी है.
2: पानी, शिकंजी, गन्ने का रस, जो भी मतलब बहुत सारी चीजें
0: छाछ
2: हो गई.
0: और बताइए,
2: मतलब पानी से को रिलेटेड सभी चीजें पीती रहें.
0: एग्जैक्टली, बहुत जरूरी है बॉडी के लिए हेल्दी रहना.
1: मौसम के फल भी बहुत अच्छे हैं इस समय जो आपको तरोताजा रखेंगे.
2: अब तो राजा आ गए, फलों के राजा.
0: हाँ फलों के राजा जिसे मैं मिली हूँ. हाँ आज ही मिलकर आई हूँ. लेकिन खरीद के नहीं लेकर आई, बस मिलकर ही आई हूँ उनसे. हाय हेलो हुआ है.
2: आपने अपनी अपनी हेलो बोल दी आपने.
0: हाँ मैंने
2: आपने अपनी फरमाइश बोल दी. हेलो फरमाइश.
0: तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही मस्ती मजाक और आपको इशू बहुत पसंद आया होगा आई होप, हम उम्मीद तो यही करते हैं. लेकिन श्रोताओं आज अगर आपका कॉल नहीं लगा है तो आप परेशान मत होइए, ये वाला ऑप्शन आपको कल भी मिलेगा, ये मौका आपको कल भी मिलेगा. 3 से 5 आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हेलो फरमाइश में. हमारा नंबर है 9837896896. अब खुशी आपसे लेती है जाने की अलविदा, खुशी लेती है आपसे जाने का. मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है, सच बताऊं दोस्तों. मैं जब जैसे 5 बजते हैं ना, मेरा दिल कहता है कि थोड़ा और ठहर जाओ खुशी, अभी मत जाओ, अभी ना जाओ छोड़ कर, कि दिल अभी भरा नहीं.
2: ये कौन कहता है, लिसनर्स कहते हैं या तुम खुद?
0: ये मैं खुद से कहती हूँ, क्योंकि मुझे श्रोताओं से इतना प्यार है कि जाने का मन नहीं करता मेरा.
2: क्या बात कही, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने तो.
0: हाँ देखिए दोस्तों, 5:02 हो गए हैं और अब हम जाते हैं, लेकिन फिर कल सुबह मिलेंगे आपको 10 से 12. तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए
2: और गुनगुनाते रहिए
0: और मुस्कुराते रहिए. बाय एवरीवन.
2: बाय बाय.

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस, सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
3: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
4: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
3: अरे वाह।
4: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
3: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
5: टायर लो सोना जीतो।
6: क्या?
5: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
7: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
8: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
9: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
10: कॉल 8826213131।

क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू। माँ की नज़र फिर से साफ हो, पापा बिना चश्मे अखबार पढ़ सकें, बच्चों को कम उम्र में चश्मा ना लगे, यही तो ख्वाहिश है हर परिवार की। तो आंखों से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आज ही आए बजाज आई हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर आकाश बजाज और डॉक्टर अशोक बजाज लाते हैं आधुनिक मोतियाबिंद सर्जरी और नेत्र रोगों का विशेषज्ञ इलाज। हॉस्पिटल का पता ताड़ीखाना चौराहा मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9548088900।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सभी का स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो शायद आपका बैंक अकाउंट खाली होने से बचा सकता है। हाँ, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो एक ऐसे टॉपिक पर होने वाली है जो टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। क्योंकि आप सभी को बताया कि जैसे जैसे हम ऑनलाइन अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो आपके साथ हो रहे हैं। और ये जो अपराध हो जाते हैं उस अपराध के बारे में आप किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमारे साथ ये अपराध हो गया। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। तो ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो न सिर्फ आपका पैसा बल्कि आपका आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सम्मान भी छीन सकता है। इस अपराध का नाम है डिजिटल अरेस्ट। श्रोताओं, सबसे पहले ये बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कानूनी प्रक्रिया भारत में मौजूद नहीं है। यह पूरी तरह से एक साइबर ठगी है। ठग खुद को पुलिस अधिकारी, साइबर क्राइम ऑफिसर, CBI, ED या नार्कोटिक्स विभाग का कर्मचारी बताकर आपसे संपर्क करते हैं। वे फोन, व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल करते हैं, डर पैदा करते हैं। तो चलिए एक ड्रामे के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये साइबर ठग आपके साथ कैसा पेश आते हैं। यहाँ पर एक राजेश है और एक ठग है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं साइबर क्राइम विभाग से बोल रहा हूँ। राजेश कुमार, आपका आधार कार्ड अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है।
1: क्या?
0: मैंने तो कुछ नहीं किया साहब। आपके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स ट्रांजेक्शन हुआ है। आपको अभी डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। देखिए, ये मेरी आईडी है, कोर्ट का नोटिस है, आप किसी से बात नहीं करेंगे। अगर सहयोग नहीं किया तो जेल जाना पड़ेगा।
1: मैं क्या करूँ साहब?
0: आपकी जांच के लिए सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। अभी UPI से पैसे ट्रांसफर कीजिए।
1: मैंने पैसे भेज दिए हैं।
0: और यही पर राजेश ठगी का शिकार हो जाता है। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट ठग मानसिक दबाव का इस्तेमाल करते हैं। जल्दी जल्दी बोलते हैं, धमकी देते हैं, बदनामी और जेल का डर दिखाते हैं। यही सबसे बड़ा संकेत है कि यह ठगी है। याद रखिए, असली पुलिस कभी भी गोपनीयता के नाम पर आपको अलग थलग नहीं करती। असली अधिकारी कभी पैसे नहीं मांगते हैं। अगर ऐसा कॉल आए तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। श्रोताओं, अगर आपके पास ऐसा कॉल आए, सबसे पहले एक गहरी सांस लें, डरे नहीं, कॉल तुरंत काट दें। किसी भी हालत में OTP, बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड साझा ना करें। अपने परिवार से बात करें, नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन से संपर्क करें। सबसे ज्यादा ये ठग निशाना बनाते हैं बुजुर्गों को। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट के सबसे बड़े शिकारी हैं बुजुर्ग नागरिक, रिटायर्ड कर्मचारी, अकेले रहने वाले लोग। इसलिए आपसे अपील है, अपने माता पिता को ये जानकारी जरूर दें। उन्हें समझाएं कि फोन पर गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी ठग का काम है आपको ठगने के लिए। अगर गलती से आप इस ठग का शिकार हो जाते हैं और आपके पैसे चले जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर ठगी हो जाए तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, तुरंत एक नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो नंबर है 1930। इस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी परेशानी को उनसे बताएं। अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो www.cybercrime.government.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना बनेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं और आप इस अरेस्ट से बच सकते हैं। सबसे पहले, पुलिस फोन पर गिरफ्तारी नहीं करते हैं, ये आपको समझनी है। सरकारी अधिकारी कभी आपसे पैसा नहीं मांगता है। डर दिखाया जाए, समझ जाइए कि शायद आपके साथ ठगी हो सकती है। किसी से बात करने से रोका जाए, खतरे की घंटी हमेशा इस बात का ध्यान रखें, पुष्टि हमेशा खुद से करें। जाते जाते मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक झूठ है, लेकिन इसका डर सच्चा नुकसान करता है। डर को हराइए, जानकारी को हथियार बनाइए। याद रखिए, डर में लिया गया फैसला का नुकसान करता है। समझदारी आपको सुरक्षित रखती है। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जाते जाते आप सभी से इतना कहना चाहूंगा, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। नमस्कार, मैं हूं आपके दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। एक बार फिर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कृपया करके आप सबसे पहले तो घबराएं नहीं। अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज हो गई है तो 1930 पर कॉल करें। अगर आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी है तो www.cybercrime.government.in पर जाकर आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। हाँ, घबराना नहीं है, सुरक्षित रहें। जितनी जानकारी उतनी ज्यादा सुरक्षा। तो अभी के लिए लेता हूँ अलविदा। बाय बाय, टेक केयर।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज, और कर रहा हूं आपसे बात। तो दोस्तों, आज फिर आप सभी का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में जो आपको सतर्क कर रहा है। ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे आपके मोबाइल फोन और UPI से जुड़ी सुरक्षा के बारे में, क्योंकि आज आपका मोबाइल सिर्फ फोन नहीं बल्कि आपका बैंक है। तो दोस्तों, आखिर मोबाइल और UPI सुविधा भी आपके लिए खतरनाक हो सकती है, इस पर बात करेंगे। दोस्तों, आज हम मोबाइल से पैसे भेजते हैं, बिल जमा करते हैं, खरीदारी करते हैं और साथ में बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही आपका पूरा बैंक बैलेंस लीक कर सकती है। इसी लापरवाही का फायदा उठाते हैं साइबर ठग। तो चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं ये सारी बात समझाता हूँ। रमेश, हेलो, उधर से आवाज आती है। मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ सर, आपके बैंक अकाउंट में संदिग्ध निशान हुई है। क्या मेरा पैसा सुरक्षित है ना? हाँ सर, बस सुरक्षा के लिए आपके फोन पर जो OTP आएगा वह बता दीजिएगा। OTP आया है, मैं बता देता हूँ। अरे, मेरा अकाउंट तो खाली हो गया और पैसे कट गए हैं। और इस तरह रमेश UPI फ्रॉड का शिकार हो जाता है। आखिर UPI और मोबाइल फ्रॉड कैसे होता है? दोस्तों, मोबाइल और UPI फ्रॉड आम तौर पर इन तरीकों से होता है। बैंक अधिकारी बनकर कॉल किया जाता है, OTP या UPI पिन मांगा जाता है, फर्जी ऐप इंस्टॉल करवाए जाते हैं, स्क्रीन शेयर करवाई

जाती है, रिफंड या इनाम का लालच दिया जाता है। याद रखिए, ओटीपी और यूपीआई पिन सिर्फ आपके लिए ही है। खतरे के संकेत, अगर कभी ये बातें हो तो समझ जाइए खतरा है। कोई ओटीपी या आपका पिन पूछे, जल्दी करने का दबाव डाले, कहे अकाउंट बंद हो जाएगा, अनजान ऐप डाउनलोड करवाए, तो असली बैंक कभी ऐसा नहीं करता है। मोबाइल और यूपीआई को सुरक्षित कैसे रखें? दोस्तों, इन आसान नियमों को अपनाइए। ओटीपी, यूपीआई पिन किसी को ना बताएं। मोबाइल में लॉक और बायोमेट्रिक रखें। केवल ऑफिशियल ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। फोन और एप्स को अपडेट रखें। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग ना करें। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। खासकर मैं सलाह देना चाहूंगा बुजुर्गों और बच्चों को। श्रोताओं, यूपीआई और मोबाइल फ्रॉड के शिकार ज्यादातर बुजुर्ग, बच्चे, नए स्मार्टफोन यूजर, कम तकनीकी जानकारी वाले लोग होते हैं। इसलिए कोई भी कॉल आए तो पहले परिवार से पूछें, ओटीपी को चाबी समझें, किसी को बिल्कुल ना दें, शक हो तो कॉल तुरंत काट दें। अगर गलती से आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो, पैसे कट गए हो, ओटीपी शेयर हो गया हो, गलत ऐप इंस्टॉल हो गया हो, तो देर ना करें, कॉल करें 1930। हाँ जी, शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत, उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। मोबाइल और यूपीआई सुरक्षा के लिए 5 सुनहरे नियम। ओटीपी और पिन कभी साझा न करें। बैंक बनकर आने वाली कॉल पर भरोसा न करें। अनजान ऐप और लिंक से बचें। मोबाइल को हमेशा लॉक रखें। डर नहीं, समझदारी से काम लें। श्रोताओं, डिजिटल भुगतान आसान है, लेकिन सावधानी के बिना खतरनाक। मोबाइल आपका साथी है, उसे सुरक्षित रखिए। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको कर रहा है सतर्क फ्रॉड से, ताकि आप बच सकें। तो दोस्तों, जैसा कि इस कार्यक्रम में बात हुई कि आपका UPI, हाँ जी, उसकी वजह से भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ये बात तो आप भी मानेंगे कि आपका ये जो स्मार्टफोन है, सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं है, ये आपका बैंक है। आप कहीं भी जा रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर रहे हैं तो सावधान होकर करें, क्योंकि कभी कभी गलत QR कोड से भी आपका नुकसान हो सकता है और शायद आपका पैसा जा सकता है। हम सभी को पता है पैसा कमाने में जितनी मुश्किलें आती हैं ना, तो अगर वो गलती से कोई आपसे ले ले बिना आपकी परमिशन से, तो शायद सबसे ज्यादा नुकसान हम ही को होता है। तो सतर्क रहें, सेफ रहें। ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहेंगी FM मुरादाबाद 89.6 MHz के माध्यम से। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट RJ राज। अभी के लिए लेता हूं यहां से अलविदा। तो स्टे सेफ।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। आपके साथ मैं हूं आशीष और
1: मैं हूं भावना। आज का हमारा यह विशेष शो समर्पित है हमारे समाज की उस शक्ति को जिसके बिना संसार अधूरा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में।
0: बिल्कुल, तो भावना, आज भी हमारे देश के कुछ हिस्सों में बेटियों को बोझ समझा जाता है, पता है आपको। लेकिन सरकार की इस पहल ने लोगों की सोच बदलने में एक बहुत बड़ी लहर पैदा की है।
1: बिल्कुल आशीष, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य गिरते लिंगानुपात को सुधारना और बेटियों की शिक्षा सुनिश्चित करना है।
0: बिल्कुल जरूरी है भावना, क्योंकि सेक्स रेशियो यानी जो लिंगानुपात की हम बात करते हैं, अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब हम उनके अनुपात की बात करते हैं तो कई बार ये भी सवाल आता है कि अरे बेटियां तो कम हैं, जब बेटियां ही कम हो जाएंगी तो वंशावली कैसे बढ़ेगी, कैसे देश बढ़ेगा, कैसे समाज बढ़ेगा।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष।
0: और सिर्फ यही नहीं भावना, इस योजना का फोकस लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकना, यानी कि जिस तरीके से कन्या भ्रूण हत्या होती है उसे रोकना और लड़कियों की सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास पर फोकस करना भी है।
2: एक दशक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बेटियों के लिए नए अवसर और उज्जवल कल सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से आरंभ हुई इस यात्रा ने पूरे देश को बेटियों के प्रति अपनी सोच बदलने का संदेश दिया। इस अभियान के तहत प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने बेटियों को अपने पंख फैलाकर उन्मुक्त उड़ान भरने के सभी अवसर प्रदान किए। उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। हरियाणा में 2014 के मुकाबले लिंगानुपात काफी बेहतर हुआ है। आज हरियाणा सहित पूरे देश की बेटियां हर क्षेत्र में नित नई उपलब्धियां अर्जित कर रही हैं।
3: मेडिकल फील्ड हो या खेल का मैदान हो, बिजनेस हो या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी है बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही है।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के शुभारंभ के साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना ने हौसला बढ़ाया है।
3: भाइयों और बहनों, माताओं बहनों बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। इसलिए 2014 में जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाए, वो जन्म ले, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम यह है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। प्रसव के बाद भी बिना चिंता के अपने बच्चे की शुरुआती देखरेख करते हुए मां अपना काम जारी रख सके, इसके लिए महिलाओं की छुट्टी को 6 महीने किया गया है।
1: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास है।
0: चलिए अब बात करते हैं उन फायदों की जो सरकार बेटियों के भविष्य के लिए दे रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सुकन्या समृद्धि योजना।
1: सही कहा आशीष आपने, यह बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए बचत करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। इसमें बहुत कम राशि से खाता खुलवाया जा सकता है और ब्याज दर भी काफी आकर्षक है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने भावना, इसीलिए तो सरकार कहती है जब पढ़ेंगी बेटियां तो आगे बढ़ेंगी बेटियां।
4: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमारी बेटी पारुल चौधरी और अन्नू रानी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आती है। गोल्ड मेडल ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उन 4 करोड़ परिवारों को जिसमें ज्यादातर मालिकाना अधिकार बहनों को दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर का उपहार भी उन्हें देकर के लखपति बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 55 लाख बहनों को एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है।
0: भारत सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और विभिन्न छात्रवृत्तियों जिसे स्कॉलरशिप कहते हैं उसके जरिए ये सुनिश्चित किया है कि आर्थिक तंगी किसी भी बेटी की पढ़ाई के बीच में ना आए।
1: और तो और आशीष, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जननी सुरक्षा योजना और मातृ वंदना योजना भी बेटियों और माताओं को मजबूती प्रदान कर रही है।
0: तो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की और साथ ही साथ उन बेटियों की जिनको कहीं ना कहीं गर्भपात का शिकार होना पड़ता है, जिनका भविष्य गर्भ में ही खत्म हो जाता है। ऐसी बेटियां जो अपना जीवन देख ही नहीं पाती, और अगर देख भी पाती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सामने भविष्य में इतनी अड़चने आ जाती हैं, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो या आर्थिक रूप से, जहां उनका भविष्य बनना होता है लेकिन वो बन नहीं पाता। भावना, ये आप तो जानती हैं कि बहुत बड़ा विषय है, और मैं तो आपसे इसलिए भी बात करना चाहता हूँ क्योंकि आप खुद एक बेटी हैं। आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष भी देखे हैं और आप एक समाज सेवी की तौर पर भी काम करती रही हैं, और आपने अपने उस समाज सेवा में भी कई नन्ही जानों को जो बेटियां हैं उन्हें अपने हाथ में खिलाया है। तो मैं चाहूंगा कि आप वो भी अपना कुछ अनुभव साझा करें कि आखिर में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान कितना जरूरी हो जाता है ऐसे हालातों के बीच में।
1: आशीष, हम जरूर बताना चाहेंगे आपको, क्योंकि जब बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी परिवार का हर सदस्य आगे बढ़ेगा। और जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है आशीष, तो मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ऑर्फनेज में काम किया था तो जो अनाथ बच्चों की संख्या बेटों की अपेक्षा बेटियों की ज्यादा थी। बहुत अधिक अनुपात में बेटियां रोड के किनारे लावारिस अवस्था में, कहीं कूड़े के किनारे तो कहीं कहां तो कहीं कहां ऐसे मिलती थी। ऐसी बच्चियों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी।
0: बिल्कुल भावना, और कहीं ना कहीं इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकार इतनी गंभीर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए, और वो चाहती है कि जो सेक्स रेशियो की बात हम लोग कर रहे हैं, जो लिंगानुपात की हम बात कर रहे हैं, वो सुधरे, बल्कि बेटियों की संख्या ज्यादा करने पर जोर दिया जाता है। अगर बहुत सारे देश के ऐसे राज्य हैं, खासकर हम जब हरियाणा या राजस्थान का जिक्र करते हैं, वहां पर इस तरीके के मामले बहुत आते थे। एक समय तो ऐसा भी हरियाणा में हो गया जहां बेटियों की संख्या बहुत कम हो गई थी, उनका जो लिंगानुपात था वो इस स्तर पर पहुंच गया था कि चिंता का विषय बन गया था कि अब यानी कि जिनके बेटे थे उनकी शादियां कैसे होंगी।
1: बिल्कुल सही कहा आशीष आपने, क्योंकि ये जो आप बात बता रहे हैं वो लगातार जारी है, क्योंकि लोगों को अपने बच्चों के लिए यानी बेटों के लिए बेटियां मिलना मुश्किल हो गई थी आशीष।
0: अच्छा, तो आपको भावना नहीं लगता कि इसमें सबकी गंभीरता और सजगता बहुत जरूरी है, खासकर वो माँ जो खुद एक बेटी है किसी की, जो खुद एक लड़की से माँ बनती है, जब वो बच्चे को जन्म देती है तो वो खुद भी इस बात को एक्सपेक्ट करती है कि उसको बेटा पैदा हो।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आशीष, लेकिन ये कम कैसे होगा? ये तभी हो सकता है जब शिक्षा की बात हमारे और सभी बच्चियों के लिए एकदम जिसे कहते हैं अनिवार्य हो जाए। अनिवार्य तो खैर सरकार ने कर ही दिया है, लेकिन इसके साथ ही साथ और इसका इम्प्लीमेंटेशन करें कि बेटियां आगे बढ़ सकें।
0: बिल्कुल जरूरी है और जागरूकता फैलाना जरूरी है, इसीलिए हम अपने रेडियो चैनल के जरिए सभी को जागरूक करना चाहते हैं कि बेटियों को सहेज कर रखिए, यही असली धन है। ये पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो ये सिर्फ अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगी बल्कि आपके परिवार और आपके समाज को एक बहुत मजबूती के साथ संबल देते हुए भविष्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की कोशिश करेंगी। इसीलिए बहुत सारी बेटियों की सफलता की कहानियां भी हम आगे अपने कार्यक्रमों के जरिए बताएंगे, सुनाएंगे, उनके बदलाव भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है भावना कि हवा बदल रही है क्या? आज ओलंपिक से लेकर अंतरिक्ष तक अगर आप देखें तो बेटियां ही तिरंगा फहरा रही हैं।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा आशीष, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा ही नहीं है, यह एक जन आंदोलन बन चुका है। हमें अपनी सोच की बेड़ियां तोड़नी होंगी। बेटी है तो कल है।
0: बिल्कुल, अभी तक हम ये जरूर कहते हैं कि जल है तो कल है, लेकिन बात जल की नहीं, बात है बेटी की। बेटी भी एक जल, जल जो कि जीवन के लिए जरूरी है, और बेटी भी है जो खुद में जीवन है। अगर बेटी है तभी कोई ना कोई संतान इस दुनिया में आएगी जो भविष्य में अपना कहीं ना कहीं एक अलग मकाम हासिल करेगी। अगर बेटी नहीं है तो जन्म होना किसी का ये संभव ही नहीं हो सकता है। इसलिए बेटी है तो कल है। हमारी सरकार, हमारा समाज, हमारा सिस्टम, हमारे तमाम तरीके की गैर सरकारी संस्थाएं या जिम्मेदार लोग सभी यही जागरूक करना चाहते हैं कि हमें अपनी बेटियों को सहेज कर संभाल कर रखना चाहिए, उनकी संरक्षा के लिए काम करना चाहिए, उनकी पढ़ाई के लिए काम करना चाहिए। और शायद भावना यही श्रोताओं के लिए संदेश भी है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आशीष आपने। तो रेडियो के सभी श्रोताओं से हमारी एक अपील है कि अपने आसपास किसी भी बेटी की पढ़ाई रुकने ना दे। यदि आप किसी ऐसी बेटी को जानते हैं जिसे सहायता की जरूरत है तो सरकारी हेल्पलाइन या पास के आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करें।
0: बिल्कुल, और याद रखिए जब एक बेटी पढ़ती है तो दो परिवार संवरते हैं।
1: तो जाने का वक्त हो गया है, पर यह चर्चा आपके घरों में हमेशा ही जारी रहनी चाहिए श्रोताओं।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसी चर्चा, एक ऐसा विषय है जो कभी ना खत्म होने वाला, ना रुकने वाला विषय है। बेटियां हमेशा इस देश को इसकी तरक्की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ाती रहेंगी। बेटियां आज हर क्षेत्र में हैं, चाहे वो सेना हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो विज्ञान हो। वैज्ञानिक के तौर पर बेटियां आगे बढ़ रही हैं, अंतरिक्ष में बेटियां जा रही हैं, खेलों में बेटियां जा रही हैं, और इसीलिए भावना कहते हैं हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो श्रोताओं सुनते रहिए अपना फेवरेट रेडियो, खुश रहिए, बेटियों को आगे बढ़ाइए
0: और बेटियों को खूब पढ़ाइए, क्योंकि बेटियां हैं तो हमारा समाज है, और हमारा समाज है तो हमारा
1: कल है।
0: तो आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: माँ की नज़र फिर से साफ हो, पापा बिना चश्मे अखबार पढ़ सकें, बच्चों को कम उम्र में चश्मा ना लगे, यही तो ख्वाहिश है हर परिवार की। तो आंखों से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आज ही आए बजाज आई हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर आकाश बजाज और डॉक्टर अशोक बजाज लाते हैं आधुनिक मोतियाबिंद सर्जरी और नेत्र रोगों का विशेषज्ञ इलाज। हॉस्पिटल का पता ताड़ीखाना चौराहा मुरादाबाद, कॉन्टैक्ट 9548088900।
1: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
1: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लविना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। Thank you.

0: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना FM मुरादाबाद 89.6 MHz पर मैं आरजे राज आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, यूं तो हम हर रोज अपने जीवन से जुड़े कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं, पर हमारी आज की बातचीत थोड़ी ज्यादा खास है। हम सभी के जीवन में कभी न कभी किसी किताब की तरह कुछ पन्ने पलटते हैं और फिर शुरू होती है एक नई कहानी। हमारे वो सभी सपने सच हो जाते हैं जिनके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। ऐसे ही एक युवक के सपनों की दास्तान मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज के कार्यक्रम में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ जानने के लिए कि कैसे उत्तर प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा संचालित CM युवा उद्यमी विकास योजना ने वाराणसी के चोबेपुर के सतीश के सभी सपनों को साकार कर दिया।
1: फिल्मों में हम अक्सर देखते हैं कि कैसे हीरो रातों रात अमीर हो जाता है और उसका देखा हर एक सपना हकीकत बन जाता है, पर वास्तविक दुनिया में ऐसी बातें महज एक कल्पना है।
0: वाराणसी के एक डिग्री कॉलेज से इंजीनियरिंग में स्नातक करने के बाद सतीश के सारे दोस्तों का लक्ष्य दिल्ली बम्बई में ऊँचे औहदे की नौकरी पाना था, पर हमारे सतीश की अभिलाषा कुछ और ही थी।
1: मैं अपने घर का इकलौता बेटा हूँ और मेरे लिए अपने माता पिता और गांव को छोड़कर जाना तर्कसंगत फैसला नहीं होता। बाबूजी ने मेरे लिए हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा किया था और अब मेरी बारी थी कि मैं अपने अभिभावकों के बुढ़ापे की लाठी बनूं।
0: सतीश का मन लगातार अपने और परिवार के भविष्य को लेकर बोझिल रहता था।
1: मेरी रातों की नींद बस इन्हीं ख्यालों को सोच सोच कर उड़ सी गई थी। आखिर ऐसा क्यों होता है कि सपनों को पूरा करने के लिए अपनों का साथ छोड़ना पड़े या उनसे कहीं बहुत दूर जाना पड़े।
0: दोस्तों, सतीश जैसी दुविधा हमारे देश के हजारों युवाओं के मन में होती है, जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर संसाधनों की कमी के चलते उनके सपने बस उनकी कल्पना में ही रह जाते हैं।
1: महीनों बीत गए थे अपने शहर में इंटरव्यू देते देते, मेहनत के हिसाब से कहीं पर भी पैकेज नहीं जमा। फिर एक दिन सुबह अखबार खोला तो उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के बारे में पता चला।
0: और दोस्तों, यही है सतीश की कहानी का वो पन्ना जिसने पूरी दास्तान बदल कर रख दी। इससे पहले कि सतीश आपको आगे की कहानी बताए, मैं आपको बताता हूँ कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना आखिर है क्या। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है जिससे वह अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
1: जैसे ही मैंने इसका इश्तेहार को देखा तो फटाफट से मोबाइल पर इसके बारे में मैंने सर्च किया और मुझे पता चला कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अप्लाई करने के लिए कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है और आवेदनकर्ता को किसी सरकारी ट्रेनिंग योजना से प्रशिक्षण लिया होना चाहिए या मान्यता प्राप्त संस्था से स्किल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए।
0: श्रोताओं, इस योजना की औपचारिक शुरुआत 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
1: मैंने जब अपने फ्रेंड सर्कल में देखा तो मेरे जैसे दो बैचमेट्स रवि और निर्भय थे जो मेरे ही जैसे समस्या से जूझ रहे थे। मैंने उन्हें भी इस योजना के बारे में बताया और हम सभी ने साथ में ही हमारी दुविधा का हल निकालने की ठान ली थी। सबसे पहले हम इस योजना से संबंधित बैंक गए और वहाँ के कर्मचारियों ने हमें लोन मिलने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया।
0: साथियों, हमारे देश के सर्वाधिक युवाओं वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश के युवाओं की असीमित क्षमता को गति देने और माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को साकार करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अति महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान CM युवा की मिशन रोड से शुरुआत की गई। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को उत्पाद सेवा संबंधित उद्यम स्थापित कराकर स्वरोजगार से जोड़ना, प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा 10 वर्षों में कुल 10 लाख स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है।
1: जितनी जानकारी मैंने प्राप्त की थी उसके हिसाब से मुझे योजना को लेकर काफी कॉन्फिडेंट फील हो रहा था, पर मेरे साथियों के मन में थोड़ा डाउट था, कहीं हमारी दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो जाएगा, पर डॉक्यूमेंट को लेकर सभी का ये संकोच जल्दी ही क्लियर भी हो गया। जब हमने हमारी उम्र के एक नौजवान को बैंक में मिठाई बांटते देखा, उससे बात हुई तो पता चला कि वो भी युवा उद्यमी विकास योजना के जरिए अपना बिजनेस चला रहा है और जोरों शोरों से व्यवसाय चलाने के बाद उन्होंने अपनी बहन की शादी भी तय कर दी है। फिर क्या, हमने हमारे भी सपनों को अपनी आँखों के सामने सच होते हमें भी दिख रहे थे।
0: अब सतीश और उसके दोस्तों की गाड़ी तो चल पड़ी, पर आप सभी के लिए योजना के चरणों के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। साथियों, इस योजना के पहले चरण में 5 लाख तक की परियोजना हेतु 4 वर्षों तक 100% ब्याज तथा गारंटी मुक्त ऋण मिलता है और दूसरे चरण के लिए पहले चरण में लिए गए मूलधन पैनल इंटरेस्ट की पूर्ण वापसी करने वाला अभ्यर्थी पात्र होता है। साथियों, सतीश की इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए हम सुनते हैं संबंधित विभाग के अधिकारी का ये मुख्य संदेश।
2: उपायुक्त उद्योग मुरादाबाद, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु उद्योगों को गति प्रदान करने के लिए युवाओं को रोजगार प्रदान करने का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 10 लाख युवा उद्यमी बनाए जाने हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की जो प्रमुख एलिजिबिलिटी है वो है कि कोई भी युवा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हो और न्यूनतम 8वीं पास हो और 21 से 40 साल का अगर वो युवा आयु है उसकी, तो वो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत लाभ ले सकता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का कोलेट्रल फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन उस पर मिलता है, जिस पर युवा को कोई भी ब्याज अगले 4 वर्ष तक नहीं देनी है। ऊपर से उसको 10% उसको सब्सिडी उसको मिलेगी। अब तक जनपद मुरादाबाद में इस वित्तीय वर्ष में 25 से 26 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत 2230 युवाओं का ऋण स्वीकृत हो चुका है, जिसमें कि 2000 युवाओं को ऋण प्राप्त भी हो चुका है। तो इस योजना के अंतर्गत कोई भी युवा अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस एक्टिविटी अपना कार्य शुरू करना चाहता है तो हमारी इस योजना के अंतर्गत बैंक के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री इंटरेस्ट फ्री बिना किसी गारंटी के बिना किसी ब्याज के ये ऋण प्राप्त करके अपना व्यवसाय अपना उद्योग स्थापित कर सकता है, जिस पे उसको 10% जो ऋण है उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 10% उसको सब्सिडी के रूप में भी मिलेगा। महिलाओं के लिए और SC/ST के लिए जो परियोजना लागत का जो ओन कंट्रीब्यूशन होता है स्वयं का अंशदान होता है वो सिर्फ 10% उनको लगाना होगा, सामान्य वर्ग के लिए 15% उसको लगाना होगा। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत जनपद मुरादाबाद के लोगों से युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि रोजगार सीकर न बन के जॉब गिवर के बारे में सोचें और अपना स्वयं का व्यवसाय उद्योग इस योजना के अंतर्गत लाभ लेकर अपना उद्योग स्थापित करें।
0: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया था तो मन में सिर्फ नौकरी करना यही विचार आता था। मेरा खुद का बिजनेस होगा और मैं अपने साथ दूसरों को भी नौकरी देने में सक्षम बन पाऊंगा, ऐसा मैंने और मेरे परिवार वालों ने कभी नहीं सोचा था।
1: साथियों, इस योजना के तमाम फायदे हैं पर कुछ लाजमी शर्तें भी हैं, जैसे डिजिटल लेन देन के सापेक्ष रूप 1 प्रति ट्रांजेक्शन तथा अधिकतम 2,000 रूपए प्रति वर्ष के अतिरिक्त अनुदान प्रति लाभार्थी दे होता है। योजना के अंतर्गत सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक, ग्रामीण बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत सभी वित्तीय संस्थान ऋण वितरण हेतु पात्र है। तंबाकू उत्पादक जैसे गुटखा, पान मसाला, अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेट पेय पदार्थ, पटाखे, प्लास्टिक कैरी बैग 40 माइक्रोन से कम तथा भारत राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रतिबंधित श्रेणी में रखे उत्पाद योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होते हैं। योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड में होता है। जिला स्तर पर जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है। अधिक जानकारी के लिए आप cmyuva.org.in विजिट कर सकते हैं।
0: जब हम सभी ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम एक कंप्यूटर और डिवाइस सर्विस सेंटर खोलना है तो बिना देरी के हम अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पहुंचे और वहां जाकर हमें पता चला कि आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है। अप्लाई करने के लिए MSME पोर्टल को लिंक पर ऑनलाइन आवेदन किया के पोर्टल पर लिंक आवेदन किया जाता है। जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र में ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण के उपरांत आवेदनों को बैंक में भेजा जाता है जहां समयबद्ध रूप से ऋण स्वीकृति एवं वितरण की व्यवस्था की जाती है। साथ ही बैंकों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से मार्जिनी मनी, ब्याज उत्पादन तथा CGTMSE प्रतिपूर्ति प्राप्त किए जाने की व्यवस्था भी होती है। आज मेरी इस उपलब्धि का पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, जिन्हें महज वादे ही नहीं किए बल्कि धरातल पर कोशिशों को साकार भी किया। आज ये उन्हीं की देन है कि मैं और मेरे साथी काम करने वाले पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने और अपने परिवारों का भरण पोषण कर रहे हैं। सचमुच लीडर हो तो ऐसा, योगी जी इसी दूरदर्शी सोच के लिए उन्हें मेरा सैल्यूट है।
1: दोस्तों, वाराणसी के चौबेपुर निवासी सतीश और उनके बिजनेस पार्टनर्स रवि, निर्भय और उन सभी के परिवार वालों को आज महत्वपूर्ण चीजों पर खर्च करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। आज वो आर्थिक रूप से मजबूत भी हैं और अपने शहर में रहकर अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम भी हैं।
0: मेरे लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी ही असली फ्रीडम है और हम सभी युवाओं के लिए यही बदलती उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी है। ये नया यूपी है जहां अब युवा रोजगार के लिए भटकेगा नहीं बल्कि अपने रास्ते खुद तय करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार और युवाओं के हित में सोचने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को ढेर सारा धन्यवाद। और साथ ही रेडियो के माध्यम से मैं अन्य लोगों को भी ये बोलना चाहूँगा कि खूब सपने देखिए, क्योंकि आपके सपने और लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश आपके साथ है।
1: साथियों, बदलते और प्रगति की ओर बढ़ते उत्तर प्रदेश की और भी कहानियाँ हम लेकर आएंगे आपके पसंदीदा प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश में। साथ ही अगर आप चाहें तो अपनी कहानियाँ हमारे माध्यम से जनता तक पहुँचा सकते हैं। सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे राज। जल्दी ही मिलूंगा ऐसी और बहुत ही खूबसूरत कहानियों के साथ।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद,
3: कॉल 8826213131।
4: और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल होगी एमएसपी। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार, प्रदेश में भी ईंधन बचाने के विभिन्न उपायों पर जारी हुए दिशा निर्देश। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित, 85% से ज्यादा विद्यार्थी पास, छात्राएं रही अव्वल। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत, सीतापुर और कानपुर देहात में गिरे ओले। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए किसानों को अनुमानित 2,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा।
5: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया, उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं, उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
4: श्री वैष्णव ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल की अधिकतम बढ़ोतरी सूर्यमुखी बीजों के लिए की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य के लिए 2,441 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरे के लिए 2,900 प्रति क्विंटल, मक्का के लिए 2,410 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग के लिए 8,780 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल के फैसलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आभार जताया है। खरीफ फसलों की एमएसपी वृद्धि पर प्रदेश के किसानों ने खुशी जताई है। वाराणसी के किसान दुर्गेश ने बताया कि इससे किसानों को फायदा होगा।
6: जो केंद्र सरकार ने हम जैसे किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है, ये एक तरह से अगर कहा जाए तो ये बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि जिस तरह से समर्थन मूल्य जो घट रहा था, हम किसानों को बड़ा ही घाटा हो रहा था, लेकिन एमएसपी बढ़ने के साथ साथ हम लोगों की आय में भी दुगुना होगी। और इस सरकार के फैसले को हम बहुत ही सराहना पूर्वक उन्हें धन्यवाद देते हैं।
4: पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। एक रिपोर्ट।
7: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो, बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद न करें। उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों आदि की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी की जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
4: इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित अध्ययन भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी पत्नी अपर्णा यादव भाजपा की सदस्य हैं और वर्तमान में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपर्णा यादव के घर जाकर प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर में अंचल के पहले और प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने संबंधित अधिकारियों के साथ आज परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
8: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में तेजी लाने और सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से आकार लेगा। निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 63.39 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
4: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थीं। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। मुख्य सचिव SP गोयल ने आज जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में चल रही स्वगणना प्रक्रिया की समीक्षा कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि आम जनों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जो कल से पूरे देश में लागू हो जाएंगी। राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में बारिश और तेज आंधी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। सीतापुर जिले में कई स्थानों पर ओले गिरे, कई जगहों पर पेड़ गिरने से विद्युत आपूर्ति बाधित हुई। वहीं कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। अमरोहा में भी दिन में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कई स्थानों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में 16 और 17 मई को लू चलने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा। ग्रेड ए धान के लिए 2,461 रुपए और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति कुंतल होगी MSP। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। प्रदेश में भी ईंधन बचाने के विभिन्न उपायों पर जारी हुए दिशा निर्देश। CBSE के 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित। 85% से ज्यादा विद्यार्थी पास, छात्राएं रहीं अव्वल। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। सीतापुर और कानपुर देहात में गिरे ओले। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
9: फिर से आप सभी का स्वागत है। आपने ट्यूनिंग किया है FM मुरादाबाद 89.6। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। आनंद के साथ हैं आप और इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक खास स्पेशल गेस्ट को हमने इनवाइट किया है। श्रोताओं, देखिए आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ना बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है हमारे साथ जिनको हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं। स्पेशली छोटे छोटे दर्द जिन्हें हम कहते हैं कुछ नहीं है, हाथ में हल्का से दर्द तो है, मगर कुछ नहीं है, मैं एक मेडिकल से गोली लाऊंगा, खाऊंगा, मेरे को आराम मिल जाएगा। बट वही चीज कभी कभी ना जब हम खा रहे होते हैं तो हमें लगता है हाँ आसान है, बहुत ईजी है, बट जब आगे चल के वो चीज बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है फिर हमें समझ में आता है काश यार उस टाइम पे हम उस एक्सपर्ट को दिखा देते, उस डॉक्टर से मिल लेते तो शायद हमारे लिए ये इतनी बड़ी समस्या नहीं बनती। और आज बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जैसे मैंने आते जिक्र किया शुरुआत की दर्द के साथ। तो आज हमने एक बहुत ही कमाल की स्पेशलिस्ट को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। श्री साई हॉस्पिटल के बारे में ऑफ कोर्स आप जानते हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट हमारे रेडियो पे आप सुनते हैं। डॉक्टर निदा नसीम मैम को ही इनवाइट किया जाए। बहुत सारी जो दर्दों के हमने चिट्ठा बना रखे ना जिससे भी बात करते हैं, तो मैम का वार्म वेलकम करते हैं। मैम हाउ आर यू, कैसे हैं आप? जोरदार तालियों से वेलकम टू एफएम मुरादाबाद।
10: थैंक यू सो मच। मैं हूं डॉक्टर निदा नसीम, इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट फ्रॉम श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद।
9: थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। पहले ही बताइए आपको रेडियो पे आके कैसा लग रहा है?
10: बहुत अमेजिंग,
9: मतलब आपने वो हॉस्पिटैलिटी से निकल के दूसरी हॉस्पिटैलिटी में आप आज आ गए हो,
10: डिफरेंट एरा।
9: या तो मतलब थोड़ा सा कूल लग रहा है, कुछ नया सा है।
10: या एग्जैक्टली, इट्स वेरी एक्साइटिंग, अ न्यू थिंग, समथिंग न्यू थिंग इज।
9: थैंक यू सो मच मैम। तो देखिए हम जो डॉक्टर्स होते हैं ना उनसे भी हैपनिंग बातें करवा ही लेते हैं, ये यही तो खासियत होती है एक रेडियो जॉकी की। सो मेरे स्टूडियो में मैं मैम के साथ अकेला नहीं हूँ, दो लोग और भी हैं, उनके लिए भी मैं तालियां बजा देता हूँ। उनकी आवाज आप भले ही नहीं सुनोगे अलग है। सो सी आगे बढ़ते हैं मैम। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल जो मेरे को लगता है कि मुझे पर्सनली आपसे पूछना है, ये दर्द विशेषज्ञ डॉक्टर कौन होते हैं पहले तो मुझे बताओ मैम,
10: क्योंकि बहुत लोगों का सवाल है ये कौन हो गए, कहाँ से आ गए ये अभी। एक्चुअली देखिए दर्द दो तीन तरह का दर्द होता है, ठीक है। एक होता है अक्यूट पेन, एक होता है सब अक्यूट पेन, और फिर आता है हमारा क्रॉनिक पेन। अक्यूट पेन तो वो हो गया जो कि 4 हफ्ते या 4 हफ्तों से कम का दर्द हुआ, जो कि कोई जैसे चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन के होने वाले बाद वाला जो दर्द होता है,
9: हाँ जी मैं,
10: वो अक्यूट में आता है।
9: ओके।
10: फिर हम आते हैं सब अक्यूट पेन में, जो कि 4 हफ्ते से लेकर हमारा 6 हफ्ते या 8 हफ्ते तक रहता है, ठीक है। फिर हमारा आता है क्रॉनिक पेन। अब दर्द और ज्यादा बढ़ता बढ़ता हमारा क्रॉनिक में आ गया है, जो कि 12 हफ्ते 3 महीना 3 महीने से ज्यादा होने वाले दर्द को क्रॉनिक पेन बोलते हैं। अब इसमें ऑपरेशन वाले पेशेंट भी आते हैं कि भाई ऑपरेशन तो हो गया है लेकिन दर्द हमारा जा नहीं रहा है ना, जैसे गठिया हो गया कि घुटना हमने बदलवा लिया है बट उसका दर्द अभी भी चल ही रहा है, दर्द हमारा नहीं जा रहा है, तो वो दर्द हो गया। या फिर कोई पहले से कोई पेन हो गया, माइग्रेन हो गया, कैंसर से जुड़ा दर्द हो गया, कमर का, एड़ियों में होने वाला दर्द, कूल्हे का दर्द, तो तो जैसा कि मैंने बताया, क्रॉनिक पेन जो 3 महीने से होने वाले बाद होने वाला जो दर्द होता है वो क्रॉनिक में आता है
9: ओके।
10: और उसी के हम विशेषज्ञ हैं, उसके लिए हम दवाइयां देते हैं और कुछ और भी फर्दर मैनेजमेंट होते हैं जो कि इंटरवेंशनल मैनेजमेंट में आते हैं, वो हम करते हैं
9: ओके। बहुत ही बढ़िया। तो गाइस ये जो दर्दों का खेल है ना, आज आपको पता लगेगा होता क्या है। छोटे छोटे दर्द होते हैं, वैसे इतने सारे भी दर्द होते हैं मुझे पता नहीं था मैम, आज मेरे को पता लग गया कि इतने सारे दर्द भी होते हैं। 2-3 ही सुने थे मैंने बट ये थोड़े बड़े लिस्ट आ गई है। एग्जैक्टली। सो दोस्तों अब आपको ना सारे दर्दों के बारे में तो पता चल गया है, अब जो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो होता है मैम कमर दर्द। कमर दर्द एक ऐसा दर्द होता है जो किसी को भी हो सकता है। तो कमर दर्द के जो मुख्य कारण होते हैं, उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर थोड़ा विस्तार से आप बताएं।
10: देखिए कमर दर्द के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं हमारा पोस्चर, हम कैसे बैठे हैं, कितनी देर बैठे हैं, हमारा प्रोफेशन क्या है। ज्यादा जैसे फॉर एग्जाम्पल आईटी प्रोफेशनल हो गए जिनको डेस्कटॉप पे बैठे रहना पड़ता है, तो उनमें क्या होता है गर्दन में होने वाला दर्द और कमर दर्द, क्योंकि दबाव पूरे शरीर का जो वेट है हमारा उस पार्ट में जाता है, तो उन लोगों में ज्यादा होते हैं। ठीक। फिर आता है हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हमारा डाइट प्रॉपर नहीं है, मोस्टली फीमेल्स में होता है बिकॉज ऑफ साइक्लिकल लॉसेस एंड ऑल। तो क्या होता है कि एनीमिया होना क्रॉनिक, और विटामिन डी डेफिशिएंसी होना जो कि बोन्स को चाहिए, ठीक है, B12 डेफिशिएंसी होना, तो इन सारी अब आते हैं। इसके बाद होता है हमारा मांसपेशियों में होने वाला दर्द
9: ओके।
10: ठीक है, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं। फिर आता है हमारी बोन में होने वाले जो दर्द होते हैं, जैसे कि फैसेट ज्वाइंट आर्थ्रोपैथी, जो बोन में भी बहुत सारे हमारे ज्वाइंट्स होते हैं, तो उन ज्वाइंट का क्या बोलते हैं अर्थराइटिस बोलते हैं, फैसेट आर्थ्रोपैथी हो गया, डिस्क का पीछे की तरफ जाना जिसकी वजह से नसों में दबाव पड़ना, तो वो जो दर्द है वो कमर के साथ साथ पाँव में भी जाएगा। जो आपने सुना होगा शैटिका होती है, पाँव में झंझनाहट होना, कमर से पाँव में जाना, तो वो सारे हमारे कमर के दर्द के कारण होते हैं
9: ओके।
10: चीज मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें, आई जस्ट फॉरगॉट, कुछ पेशेंट क्या होते हैं ना ओबेज होते हैं, मॉर्बिड ओबेसिटी, वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ना, तो वो भी एक कारण इसमें आता है कि हमारा जो स्पाइन है वो मैक्सिमम लोडिंग के साथ में गुजर रहा है, तो जब ओवरलोडिंग हो जाती है वजन ज्यादा बढ़ने की वजह से, तो उसकी वजह से ये दर्द और ज्यादा बढ़ने लगते हैं, क्योंकि दबाव जो है डिस्क पे, हमारे स्पाइन पे, मांसपेशियों पे, वो और बढ़ जाता है। दूसरा आता है कि पेशेंट कोई और बीमारियों से जूझ रहा है, जैसे कि हमारा डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, ये सारी बीमारियां क्या करती हैं कि हमारी मांसपेशियों की जो नर्व की जो क्षमता होती है दर्द बर्दाश्त करने की वो कम हो जाती है, थोड़ा सा भी दर्द उसको बहुत ज्यादा लगता है
9: ओके। मैम ये तो हमने बात कर ली सिम्टम्स की, अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की।
10: ट्रीटमेंट देखिए ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पहले पेशेंट कितने टाइम से पेशेंट को दर्द है और दर्द किस तरह का दर्द है। नसों का दर्द में क्या होता है, पेशेंट बोलेगा कि मुझे भाई झंझनाहट हो रही है, आग सी निकल रही है, मेरा घुटना या पांव पूरा सुन्न हो गया है, तो ट्रीटमेंट पहले तो हमारा हम मेडिसिन देते हैं, न्यूरोपैथिक नोसिसेप्टिव दोनों की अलग अलग दवाइयां होती हैं, वो देने के बाद में हम आते हैं जांचें कराते हैं, MRI में प्रॉपर पता चलेगा कि भाई कौन सा डिस्क है, कौन से लेवल पे कितना कंप्रेशन है, कितना डायमीटर है कैनाल डायमीटर, उसके बाद में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं इंटरवेंशन की। अब इंटरवेंशन क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि भाई कमर में सुई लगाएंगे डॉक्टर साहब तो उससे तो और भी ज्यादा दर्द बढ़ जाएगा, ये बहुत ही बोलते हैं ना कि मिथ है, ये इट्स अ मिथ कि स्पाइनल देने की वजह से दर्द हमारा और ज्यादा बढ़ गया, आपने भी सुना होगा है ना, ये बहुत ही बड़ा मिथ है, मैं आज ये क्लियर करना चाहती हूँ सब लोग के साथ में। तो क्या होता है कि जो हम इंजेक्शन देते हैं, अच्छा वो जो दर्द होता था वो बहुत पहले सुइयां दूसरी आती थी, जो हम कमर में टीका लगाते थे वो सुइयां दूसरी थी, आज के जमाने में मॉडर्न एनेस्थीसिया में हम बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ नीडल यूज करते हैं जिसकी वजह से दर्द नहीं होता, वो जो दर्द है वो मांसपेशियों का क्या बोलते हैं ना वीकनेस की वजह से वो दर्द होता है
9: ओके। तो मतलब इसमें डॉक्टर की और इंजेक्शन की कोई गलती नहीं है,
10: बिल्कुल भी नहीं है
9: ये आपने बहुत अच्छा मिथ दूर किया है मैम।
10: और इसकी वजह से क्या होता है ना कि लोग डर गए हैं कि भाई हम तो सुई लगवाएंगे ही नहीं, आज भी कुछ कुछ पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो ये लगवाऊंगा ही नहीं, बिकॉज मुझे तो दिमाग में वो इमेज है कि इस सुई से दर्द मेरा बढ़ जाएगा, तो वो मिसकंसेप्शन है। अच्छा बात आपके क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्या है वो नीडल इंटरवेंशन डिपेंड करता है कि कौन से लेवल में कितना कंप्रेशन है। हम सियाम और सियाम जो एक्सरे मशीन होती है, एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में हम उस पर्टिकुलर नर्व को टारगेट करते हैं। जिस भी लेवल का कंप्रेशन होगा हम उस नर्व को टारगेट करते हैं, तो ये इसका इलाज है।
9: मैम आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैम आजकल कुछ दर्द के रीजन ये स्ट्रेस और ये तनाव भी है क्या?
10: बिल्कुल,
9: मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा आ रहा है कई बार, मेरे को भी जब कभी कभी प्रेशर आ जाता है ना काम का, तो मेरे को दर्द सर में होने लगता है।
10: बिल्कुल,
9: तो क्या मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि दिस इज नॉर्मली होगा, तो क्या एक्चुअली इसका रीजन ये भी हो सकता है?
10: बिल्कुल हो सकता है। देखिए जो भी दर्द 3 महीने से ज्यादा प्रोलॉन्ग प्रोग्रेस करता है तो उसमें क्या होता है कि दर्द तो है
9: जी,
10: अब क्या है कि मैंने कोई गर्म प्लेट छुई,
9: हाँ।
10: वो सर मेरे दिमाग पे आया, मुझे पता चला कि भाई दर्द हो रहा है, मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया, ठीक है। मैं एग्जांपल बहुत छोटा सा मैं ऐसे दे रही हूँ आपको, क्या अब क्रॉनिक पेन ना होता है, बार बार वो सिग्नल ब्रेन पे जा रहे हैं, ब्रेन में क्या हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है बार बार ना, इम्पल्स जनरेट हो रही है।

0: हो जाएगा वट एवर द वर्क यू लाइक.
1: ओके
0: ऐसे.
1: ओके मैम. सो मतलब मुझे ना ऐसा भी लगता है कई बार कि आजकल का लाइफस्टाइल भी इसका कारण बनता जा रहा है क्या?
0: डेफिनेटली.
1: जैसे आजकल तो खैर सोशल मीडिया की तो बात ही नहीं करेंगे, ये तो है ही सबसे बड़ा सरदर्द, बट फिर भी इसके अलावा आजकल लोगों का रूटीन भी बहुत चेंज हो गया है, तो क्या इसकी वजह से भी कुछ चीजें कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो दर्द को कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं मैम?
0: बिल्कुल. क्या होता है कि हम हमारा जो लाइफस्टाइल आजकल बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, सोशल मीडिया AI आ गया है, लोगों का जो ध्यान है, इवन नॉट अडल्ट आई एम टॉकिंग अबाउट जो बच्चे हैं, जो जेंजी है, जेन अल्फा है,
1: बीटा है,
0: और बहुत सारी जनरेशन आ गई है.
1: Correct.
0: तो क्या होता है कि इनका ध्यान सोशल मीडिया पे ज्यादा हो गया है. मैं अपने घरों में भी देखती हूँ बच्चों क्या है कि फोन देखते हैं, तो पोस्चर उनका खराब हो रहा है. पुराने जमाने में क्या होता था कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करते थे, आजकल वो फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही है. लोग जो हैं, जो यंग जनरेशन के हैं, वो गैजेट्स में इन्वॉल्व हैं. कुछ लोग अपने वर्क रिलेटेड उनको गैजेट में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, दे हैव टू गिव प्रोलॉन्ग सिटिंग. तो ये वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा ना इम्बैलेंस चल रहा है बेसिकली, तो जिसकी वजह से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं पा रहा है, तो हम अपने आप को अपने शरीर को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं. तो क्रॉनिक पेन का सबसे पहला इलाज मैं ये बोलूंगी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. आप किस टाइम पे क्या खा रहे हो वो आपने ध्यान में रखना है, किस समय पर खा रहे हो ये इम्पोर्टेंट है.
1: बिल्कुल मैम.
0: और टाइम ऑफ स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना, तो हर एक चीज फैक्टर ये बहुत बड़ा रीजन है क्रॉनिक पेन का, और इलाज भी इसका यही है. जो भी पेशेंट मेरी ओपीडी में आते, सबसे पहले मैं उनको ये बोलती हूँ, डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज करो, यही सब मैं बोलती हूँ.
1: मतलब लाइक मुझे भी ऐसा लगता है जैसे आजकल की जनरेशन, अब ऑलरेडी हम पूरा दिन काम कर रहे होते हैं, उसके बाद हम रात को भी अपना मोबाइल देखना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, हमारी आंखें जो
0: बीच में भी हम देखते हैं,
1: फिर भी हम देख रहे होते हैं. करेक्ट. तो कहना कि आंखों पे उसका जब इम्पैक्ट पड़ता है तो वो सरदर्द भी बनता है.
0: बिल्कुल. माइग्रेन, हेडेक होना.
1: करेक्ट. तो मैं वहीं पर आ रहा था कि माइग्रेन और सामान्य सरदर्द में क्या फर्क होता है मैम?
0: देखिए, माइग्रेन और सामान्य सरदर्द, माइग्रेन क्या होगा, एपिसोड पे डिपेंड करता है. ठीक है, कितने एपिसोड दिन में आ रहे हैं और हफ्तों में कितने एपिसोड्स आ रहे हैं, दवाइयाँ आप कौन सी खा रहे हो. ठीक है, और प्लस आपका लाइफस्टाइल हो गया, कितनी बार आपको हो रहा है. अगर और फिर आते हैं आपके साइंस जो हम पूछते हैं पेशेंट को कि भाई अगर माइग्रेन है आपको, तो माइग्रेन में पेशेंट को फड़फड़ाता हुआ, कुछ हेडेक होता है, पल्सेटाइल जिसे हम बोलते हैं, फोटोफोबिया होगा, ग्लेयर होगा, किसी को नॉइस से होता है कि भाई तेज साउंड से भी माइग्रेन. सामान्य सरदर्द में ये सारे सिम्टम्स लक्षण नहीं होंगे. माइग्रेन में ये फड़कता हुआ दर्द होना, लाइट से, साउंड से, किसी भी तेज चीख से, इनफैक्ट AC की हवा से भी कभी कभी होता है ट्रिगरिंग फैक्टर. और ये तो हम माइग्रेन की बात कर रहे हैं. माइग्रेन के अलावा भी एटिपिकल फेशियल पेन्स होते हैं, जैसे कि ऑसिपिटल न्यूरेल्जिया. पेशेंट बोलेगा कि भाई सीधी मेरे पीछे के हिस्से में दर्द है, जिसे बोलते हैं ऑसिपिट, पीछे से वो आंखों की तरफ दबाव पड़ता है. तो हमारी पीछे की नस होती है ऑसिपिटल नर्व, तो उसका नस का घूम जाना मांसपेशियों में, या उसकी सराउंडिंग जो मांसपेशियां हैं का घूम जाना, तो उसकी वजह से ये दर्द होता है. तो दर्द के बहुत सारे कारण हैं.
1: बिल्कुल. डॉक्टर निधा नसीम हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम उनसे बहुत सारे दर्द के ऊपर बात कर रहे हैं. निधा मैम, कई बार ऐसा होता है, डॉक्टर साहब आपने भी देखा होगा, यू नो यूजुअली आज भी ग्रामीण इलाकों में भी ऐसा होता है, हम भी कई बार करते हैं कि छोटा सा दर्द हुआ हम अवॉइड कर देते हैं, और ये दर्द लगातार भी हो रहा होता है, कहीं बहुत टाइम से चल रहा होता है, बट हम बहुत टाइम से इसे अवॉइड करते हैं कि हमने पेन किलर लिया, मेडिकल पे गए, हमने एक पेन किलर लिया, रिलीफ मिला, देन हमने अवॉइड कर दिया, फिर 2-3 दिन बाद रिपीट हो रहा है. तो अगर ये केस में लोग ये चीज रिपीटेड कर रहे हैं, तो क्या ये करना चाहिए या फिर
0: बिल्कुल नहीं करना चाहिए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और ये बहुत कॉमन सवाल है हमारे आसपास के एरिया में, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि भाई दर्द की दवाई खा ली और भाई दर्द चला गया, फिर अपना काम पे चले गए, बिकॉज दे आर टू मच ऑक्यूपाइड इन देयर वर्क. फीमेल्स को मैं बोलूंगी वो अपने घरों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई, उनके पास अपने लिए टाइम निकालने का वक्त ही नहीं है.
1: करेक्ट.
0: तो क्या होता है कि दर्द की दवाइयाँ कब खानी है वो इम्पोर्टेंट है. कभी कभार अगर आपके एपिसोड्स हो रहे हैं, आप दवाइयाँ खा रहे हो, ठीक हो जा रहे, दैट इज प्योरली ओके. कभी कभी क्या होता है, हम ज्यादा ओवर वर्क कर लेते हैं.
1: Exactly.
0: कुछ भारी सामान उठा लिया, कुछ एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लिया, तो जिसकी वजह से हमारा दर्द होता है वो ठीक हो जाता है.
1: ठीक है.
0: अब क्या होता है कि एपिसोड्स हमारे बढ़ रहे हैं.
2: टायर लो सोना जीतो.
3: क्या
2: जी हाँ,
3: चावला टायर
2: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल

0: 9412211111।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आवश्यकता अनुसार न्यूनतम वाहनों का उपयोग करने और कार पूलिंग तथा सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की अपील की है। इसी पहल के अनुरूप श्रीमती गुप्ता ने आज दिल्ली मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने दिल्ली के लोगों से भी ऊर्जा संरक्षण के इस राष्ट्रीय प्रयास में शामिल होने का आग्रह किया। इसी क्रम में दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने आज दिल्ली परिवहन निगम की बस में यात्रा की। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर सिंह ने दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने का आह्वान किया।
5: हम अपनी दिल्ली की जनता को ये अपील करते हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर अग्रसर हो, दिल्ली सरकार वचनबद्ध है बेहतर सुविधा देने के लिए। ट्रांसपोर्ट विभाग इसके ऊपर सजग रहेगा कि आप जितनी सुविधा देनी है उतनी सुविधा लास्ट माइल शुल्क पर दे सके, और उसी के ऊपर काम के लिए अपील भी कर रहे हैं।
4: मंत्री कपिल मिश्रा ने भी आज दिल्ली मेट्रो से यात्रा की। श्री मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर दिल्ली सरकार ऊर्जा संरक्षण के लिए संकल्पित है। उन्होंने दिल्ली की जनता से इस वैश्विक संकट के बीच ऊर्जा संरक्षण करने का आह्वान किया।
6: प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, उस आह्वान का पालन करते हुए ईंधन बचाना, ऊर्जा का संरक्षण करना, राष्ट्रीय जो हमारा कर्तव्य है उसका पालन करना, उसका आज मुख्यमंत्री जी ने भी संकल्प लिया है और सभी मंत्रियों को, अधिकारी गणों को निर्देश भी दिया है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे, सार्वजनिक यातायात का इस्तेमाल करेंगे।
4: दिल्ली सरकार लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार यह नीति राजधानी में माल ढुलाई तथा आपूर्ति प्रणाली को अधिक कुशल, तेज और कम लागत वाला बनाने के साथ साथ व्यापार को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। एक रिपोर्ट।
7: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में माल परिवहन से होने वाली भीड़भाड़ को कम करना, प्रदूषण घटाना और राजधानी को एक आधुनिक, कुशल और पर्यावरण अनुकूल लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नीति के तहत शहर के बाहर परिधीय क्षेत्रों में शहरी समेकन एवं लॉजिस्टिक्स वितरण केंद्र विकसित किए जाएंगे, जहां बड़े स्तर पर आने वाले माल को एक स्थान पर एकत्र कर आवश्यकता के अनुसार शहर के भीतर भेजा जाएगा। इस नीति के अंतर्गत बाजार स्तर के गोदाम और सूक्ष्म पूर्ति केंद्र विकसित किए जाएंगे, जिससे सामान की अंतिम चरण तक डिलीवरी तेज और व्यवस्थित होगी। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत अंतरदेशीय कंटेनर डिपो का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा तथा लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर, ट्रक टर्मिनल और पार्किंग हब विकसित किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
4: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के साथ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति पर एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य दिल्ली में वॉक टू वर्क यानी पैदल चलकर काम पर जाने की अवधारणा पर आधारित समुदायों का निर्माण करना है। उपराज्यपाल ने कहा कि यह नीति दिल्ली के शहरी परिदृश्य और क्षितिज को एक नया रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस नीति के अंतर्गत मेट्रो और RRTS स्टेशनों के आसपास उच्च घनत्व और मिश्रित उपयोग वाले क्षेत्रों का विकास किया जाएगा, जिससे यातायात की भीड़ में कमी आएगी, शहरी गतिशीलता बेहतर होगी और किफायती आवास की उपलब्धता में वृद्धि होगी। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों, कुलपतियों और निदेशकों के साथ आज एक बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दिल्ली के शैक्षणिक संस्थाओं को नवाचार, अनुसंधान और सामाजिक परिवर्तन के इंजन के रूप में विकसित होना चाहिए। उपराज्यपाल ने आज दिल्ली यातायात पुलिस के प्रस्तावों और अवसंरचना से जुड़े कामों की समीक्षा भी की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार परिवहन व्यवस्था को और आधुनिक, पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। श्री संधू ने गलत साइड ड्राइविंग, बिना अनुमति पार्किंग और भारी वाहनों के अवैध प्रवेश जैसी समस्याओं को मिशन मोड में हल करने की जरूरत पर बल दिया। इसके लिए उन्होंने एक व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार IEC और प्रवर्तन अभियान चलाने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सहित पूरे देश के विद्यार्थियों ने अपने परिश्रम, अनुशासन और संकल्प के बल पर यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए हैं, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में हर अनुभव आगे बढ़ने, सीखने और स्वयं को और बेहतर बनाने का अवसर देता है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी सफल विद्यार्थियों को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बैठक के बाद सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
0: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
4: मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि यह योजना भारत की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
0: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीस का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
4: हरियाणा के नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरियाणा की जनता और विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने एक बार फिर विकास की राजनीति और डबल इंजन सरकार के सुशासन को अपना समर्थन दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कीरोडिमल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने आज दिल्ली विधानसभा का दौरा किया। विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भ्रमण करने के लिए आए छात्रों का विधानसभा परिसर में मार्गदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने इतिहास, कार्यप्रणाली तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में विधानसभा की भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त की। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने आज जनकपुरी में एक जनसुनवाई के दौरान जनता की रोजमर्रा की समस्याओं को सुना। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि जनता की सभी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव एस कृष्णन ने नई दिल्ली में आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान एक IP कैटलिस्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। सम्मेलन का विषय है पेटेंट से उत्पाद तक इलेक्ट्रॉनिक्स और IT में IP व्यवसायीकरण में तेजी लाना। श्री कृष्णन ने कहा कि देश आज विकसित भारत की परिकल्पना की दिशा में नवाचार यात्रा के महत्वपूर्ण मोड़ पर है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली पुलिस के बीच आज महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संस्थागत समन्वय मजबूत करने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने समन्वित और पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण अधिकारियों और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल महिलाओं को समय पर सहायता और न्याय दिलाने के लिए बेहद आवश्यक है। दिल्ली के कंझावला इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक फैक्ट्री में आज सुबह आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग के अनुसार उन्हें इस घटना की सूचना सुबह लगभग 9:54 पर मिली। खबर लिखे जाने तक दमकल विभाग के उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी DB मुखर्जी के अनुसार विभाग की 28 गाड़ियां मौके पर काम कर रही थी। उन्होंने बताया कि अब तक बिल्डिंग में काम करने वाले किसी मजदूर के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।
3: हमारे कोई भी कर्मचारी जो है इंजर्ड नहीं हुए हैं। तक तो हमें सूचना मिली है कि बिल्डिंग के अंदर काम करने वाले कोई भी मजदूर या कोई भी व्यक्ति इंजर्ड नहीं हुआ है। बिल्डिंग जिस तरह से बनाई गई है उस हिसाब से देखा जाए तो बिल्डिंग सेफ नहीं है और आसपास की फैक्ट्रियों को बिल्कुल सेफ रखा हुआ है। किसी भी फैक्ट्री में जो है आग नहीं पहुंची है।
4: दिल्ली में मानसून से पहले जलभराव की समस्या से निपटने के लिए तैयारियां तेजी से चल रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि राजधानी के सभी बड़े ड्रेन से 76% गाद निकाल लिया गया है। आधुनिक मशीनों, लगातार निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई के जरिए नालों की सफाई का काम तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि 29 लाख मीट्रिक टन गाद हटाने के लक्ष्य में से अब तक 22 लाख मीट्रिक टन से अधिक गाद निकाली जा चुकी है। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। प्लैटिनम पर आयात शुल्क भी 6.4% से बढ़ाकर 15.4% कर दिया गया है। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। यह फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। एयर इंडिया ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं में यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। दिल्ली शिकागो मार्ग, मुंबई न्यूयॉर्क मार्ग, दिल्ली शंघाई, चेन्नई सिंगापुर और 2 अन्य मार्गों पर अस्थायी रूप से उड़ानें कम की जाएंगी। महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि बिबवेवाड़ी इलाके से गिरफ्तार इस महिला को प्रारंभिक पूछताछ के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 की परीक्षा इस महीने की 3 तारीख को हुई थी। पेपर लीक के आरोपों के कारण इसे कल रद्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 1998 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए हैं। पुलिस ने तस्करी में शामिल 2 मुख्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक वाहन भी जब्त किया गया है। और अब दिल्ली में मौसम। राजधानी में आज सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, हालांकि दिन भर मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है, हालांकि कल का अधिकतम तापमान 40 से 38 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 28 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वाहनों का कम उपयोग करने और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की अपील की। दिल्ली सरकार लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। यह नीति राजधानी में माल ढुलाई और आपूर्ति प्रणाली को अधिक कुशल बनाएगी। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति पर बैठक की। इस नीति का उद्देश्य दिल्ली में वॉक टू वर्क अवधारणा विकसित करना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित किए। मुख्यमंत्री ने परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को बधाई दी। और राष्ट्रीय महिला आयोग तथा दिल्ली पुलिस ने महिला सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अगर 12th के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान, तो सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
1: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।
8: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
9: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
10: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपने ट्यूनिंग किया है
1: एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लिया तो जिसकी वजह से हमारा दर्द होता है वो ठीक हो जाता है।
10: ठीक है,
1: अब क्या होता है कि एपिसोड्स हमारे बढ़ रहे हैं, हम अगर पूरे हफ्ते अगर हम पेन किलर खा रहे हैं और जिसकी वजह से दर्द हमारा जा ही नहीं रहा है, या फिर 10-20% हमें रिलीफ मिल रहा है लेकिन हम पेन किलर के सहारे कैसे जैसे हम अपना टाइम काट रहे हैं, वो चीज बिल्कुल सही नहीं है।
10: तो मतलब ऐसे
1: बिकॉज क्या होता है कि क्रॉनिक ये जो दवाइयां होती हैं, इन दवाइयों से हमारा जो इम्पैक्ट है, मैक्सिमम इम्पैक्ट, जैसे हम ज़ीरोडॉल सुना होगा आप लोगों ने भी ना कि खा लेते हैं, अब इनका असर क्या होता है कि किडनी पे पड़ता है। लंबे समय तक अगर हम ये दवाई खाएंगे तो किडनी पे और बल्कि हमारा जो गट है उस पे हमारा असर पड़ता है, तो वो चीज बहुत गलत है।
10: डॉक्टर निदा नसीम जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, ढेर सारी बातचीत चल रही है उनसे आज, दर्द को लेके हम काफी सारे डिस्कशंस कर रहे हैं। देखिए जो दर्द होता है ना, जितना आसान आपको लगता है कि गोली खा के हम उसको एकदम से जो है छू मंतर करा देंगे, उतना आसान होता नहीं है। वही दर्द का बड़ी जो है गंभीर रूप ले सकता है और बड़ी समस्या बन सकता है, ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते। और उन्हीं पर आज डिस्कस करने के लिए डॉक्टर निदा नसीम जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से। मैम एक बार फिर से आपका स्वागत है, और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन कि जैसे कई बार दर्द होता है तो हम लोग ना होम रेमेडी में भी बिलीव करते हैं, घरेलू उपाय जैसे सिकाई कर लो सर के दर्द की, मम्मी ने कहा हल्दी वाला दूध पी ले कुछ नहीं होगा, ये पिएगा तो ठीक हो जाएगा, या फिर मतलब हल्की सी स्ट्रेचिंग कर ले, बाहर घूम के आ जा थोड़ा सा, इन सब से भी सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो क्या ये चीजें वर्क करती है जेन्युइनली?
1: देखिए डिपेंड करता है अगेन ड्यूरेशन कितना है।
10: ऑलराइट,
1: ठीक है।
10: अच्छा,
1: जो अगर मैंने बोला कि हड्डियों का होने वाला दर्द है जो कि डैमेज बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसमें इसका कोई भी इलाज नहीं है।
10: ओके,
1: मतलब जो इनिशियल स्टेज होती है जो कि मायोफेशियल पेन, जो कि मसल्स वाला जो मांसपेशियों का जो दर्द होता है, वो हम इससे ट्रीट कर सकते हैं कि लोकल सिकाई कर लिया, थोड़ा सा बाम लगा लिया, या ऑयल जो औरतों का तेल आता है तेल लगा लिया, वो सब हम कर सकते हैं, उसमें ट्रांजिएंट पीरियड के लिए रिलीफ मिलेगा।
10: ओके,
1: लेकिन पेन अगर क्रॉनिक हो गया है, वही मैं बोल रही हूँ बार बार, क्रॉनिक पेन 3 महीने से ज्यादा होने वाला दर्द में बहुत ही ट्रांजिएंट रिलीफ मिलेगा, उसमें बस सिकाई कर सकते हैं।
10: ओके,
1: हॉट फर्मेंटेशन,
10: वो फिर उसका कोई अल्टरनेट तरीका है ही नहीं ना?
1: बिल्कुल नहीं है।
10: करेक्ट, वही तो दोस्तों, अगली बार अगर आपको कुछ ऐसा महसूस हो तो ये सब चीजें फॉलो करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें, बहुत जरूरी है। क्योंकि मैम मुझे लगता है कि सही डॉक्टर से जब तक हम सही तरीके से कंसल्टेशन नहीं लेंगे, सही इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, तब तक हम उस चीज को जड़ से खत्म नहीं कर पाएंगे, है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि उस चीज से आपको जड़ से उसकी जो है भाई साहब वो टाटा बाय बाय हो जाए,
1: पेन में पेन को ठीक नहीं करते हम, बीमारी को ढूंढते हैं।
10: एग्जैक्टली,
1: पेन का मैनेजमेंट का जो तरीका है वो होलिस्टिक अप्रोच है, माइंड बॉडी एंड सोल, और ट्रीटमेंट भी माइंड बॉडी एंड सोल पे ही काम करता है।
10: ओके, मैम कई बार बहुत सारे लोगों को ना ऐसा होता है कि सर में ना पूरे सर में दर्द नहीं होता, उनके आधे सर में दर्द होता है।
1: बिल्कुल,
10: बहुत बड़ी ऐसे आपके पास केसेस आते होंगे, तो उसका क्या रीजन है? मतलब पूरे सर में दर्द ना होके आधे सर में दर्द होता है, सर के आधे हिस्से में दर्द कई बार होने लगता है।
1: देखिए सर के आधे हिस्से में होने वाला दर्द राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड, तो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में कब दर्द हो रहा है। कुछ होता है कि हम स्ट्रेस रिलेटेड जो होता है कि हम जब काम करते हैं उस टाइम पे दर्द हो रहा है, बाकी सब ठीक है।
10: ठीक है,
1: ठीक है, ठीक है। और जो मांसपेशियों का जो दर्द होता है वो भी हो सकता है कि हम जैसे होता है कि राइट साइड ऑफ द बॉडी हम कन्वर्ट लेके जैसे सोते हैं, तो हो सकता है कि हम राइट साइड में सो रहे हैं, हमारा पोस्चर ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें रूल आउट करने के बाद अगर पेन की सीवियरिटी बहुत ज्यादा है, जैसे हमारा मैंने बोला कि ऑक्सिपिटल न्यूरेल्जिया जो कि पीछे से होता है और आगे की तरफ आता है,
10: ओके,
1: और ऐसा लगता है मरीज बोलेगा कि मेरे को आंख ऐसे लग रहा है कि निकल जाएगी, इतना ज्यादा पीछे से आगे की तरफ दर्द हो रहा है, ऑक्सिपिटल न्यूरेल्जिया वाला जो दर्द होता है। एक पेशेंट अभी आई थी मेरे पास यहाँ पे, तो ये सारे कारण होते हैं। तो उसका इलाज डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन कितना है, कौन से टाइप का वो है पेन, किस प्रकार का पेन है। जैसे कि पेन तो
11: क्या है कि पेशेंट बोलेगा कि बर्निंग सेंसेशन या फिर चुभने वाला दर्द है, चुभने के साथ में उसको लगता है करंट भी दौड़ रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स वगैरह हम पूरे अच्छे से असेस करते हैं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट।
10: दर्द का मानसिक तनाव से भी कुछ लेना देना है?
11: बिल्कुल है,
10: थोड़ा सा इस विषय में भी हम सोच रहे हैं आपसे बात कर लें।
11: बिल्कुल है, मानसिक तनाव, देखिए स्ट्रेस, मैंने बताया ना कि स्ट्रेस जब 3 महीने

0: ज्यादा दर्द अगर बढ़ेगा तो वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो है वो हमारे लिम्बिक, जो हमारा इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, उस पे इम्पैक्ट करता है.
1: ठीक है.
0: तो जब पेन जो है क्रॉनिक हो जाएगा वो उस पे इम्पैक्ट करेगा, तो उसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और ये सारे लक्षण जो है मरीज में ज्यादा आएंगे उस टाइम पे.
1: ठीक है मैम, हमने बहुत सारे दर्द के ऊपर डिस्कशन किया आपसे और आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया सारे दर्द के बारे में, सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई. लेकिन अब जो मेन पॉइंट है वो ये कि अभी जो लोग इस चीज से जूझ रहे कहीं ना कहीं, अब उनको डॉक्टर से कब मिलना है एक्चुअली, क्या उनको तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना है या कौन सी सिचुएशन में डॉक्टर से मिलना चाहिए?
0: देखिए, आपका कोई भी दर्द जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है या फिर आपको ये लग रहा है कि मेरा जो है पूरा दिन, आप पूरा महीना आपका दवाइयों से ही खा के आपका गुजर रहा है, आई एम ऑन रेगुलर मेडिकेशन, ठीक है मैं छोड़ ही नहीं पा रही हूँ, तो आपने डॉक्टर को संपर्क करना है. या फिर आपका कोई भी दर्द जो कि तीन महीने से ज्यादा आपका प्रोग्रेस कर रहा है,
1: ठीक है,
0: उसमें आपने अपने पेन फिजिशियन को कंसल्ट करना है.
1: ठीक है. ओके मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू वेरी मच. तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या अपनी तरफ से सलाह देना चाहेंगी, क्या आप एडवाइस देना चाहेंगी जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं रेडियो पर?
0: देखिए, मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप दर्द को बर्दाश्त ना करें, नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें. अगर 3 महीने से ज्यादा दर्द, क्योंकि दर्द एक ऐसा चीज है कि हर किसी के साथ होता है, हर घर में एक दर्द का मरीज जरूर होगा.
1: बिल्कुल,
0: ऐसा मैं शायद एक्सपेक्ट कर रही हूँ.
1: बिल्कुल
0: ऐसा ही है
1: मैम, एक्चुअली ऐसा इसलिए भी क्योंकि आजकल मोबाइल की वजह से भी
0: दर्द, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो बोलते ना कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या फिर वर्क लाइफ बैलेंस इतना ज्यादा इम्बैलेंस हो गया है कि हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं.
1: बिल्कुल मैम, मैं सही बोला. इनफैक्ट मैम, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल दर्द का रीजन मोबाइल तो सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि ऐसे अगर हम ऑफिस में बैठे हैं तो हमारा जो गर्दन है पूरा मोबाइल में घुसा होता है, तो कहने की उसकी वजह से भी हमारे
0: सर्वाइकल पेन, नेक पेन, मायोफेशियल पेन, ये वाला जो है, ये हमारा जो आईटी, मैंने बोला आईटी प्रोफेशनल जिनका बैठे रहने का काम ज्यादा है, डेस्कटॉप पे काम ज्यादा कर रहे हैं, या फिर फोन में लो बच्चे, बच्चों को भी आजकल ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है.
1: बिल्कुल.
0: क्या होता है कि हमारा जो गर्दन है वो एकदम आगे की तरफ झुक जाता है जब हमारा
1: फोन,
0: हाँ, अनइंटेंशनल हो जाता है, हमें नहीं पता होता. या महिलाओं में जो किचन में काम कर रही है, वो शॉपिंग किचन में काम करते हुए गर्दन नीचे झुक जाती है, तो जो सर का भार है वो तो आगे की तरफ हैंग हो रहा है.
1: बिल्कुल.
0: लेकिन जो उसका वेट स्ट्रेस है वो हमारे लोअर नेक पे जा रहा है.
1: ओके.
0: जिसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द होना, सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ जाना, ये सब इसके कारण हैं.
1: ओके. सो दोस्तों, आपको तमाम, उम्मीद करता हूँ तमाम जानकारियाँ आपको मिली होंगी इस इंटरव्यू के माध्यम से. थैंक यू सो मच डॉक्टर निदा मैम, आपने तमाम सारी इन्फॉर्मेशन दी, हमारे स्टेशन पे आप आए, आपने इतना सारा टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच. मैम, कुछ और जाते जाते जो आपको लगता है कि आप हमारे रेडियो लिसनर्स को बता सकती हैं जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त, कोई एक मैसेज जो आप चाहती हैं कि सबको देना चाहिए? बिल्कुल, स्पेशली वो मेडिकल से जाके हम एकदम पेन किलर ले लेते हैं.
0: बिल्कुल, दर्द की दवाइयाँ आप लोग, मैं यही बोलना चाहूंगी कि मेडिकल स्टोर से लेना बंद करें.
1: इवन आजकल लोग ये भी कर रहे हैं कि गूगल पे जाके, चैट जीपीटी पे जाके भी कर रहे हैं लोग,
0: AI
1: इसका इस्तेमाल भी करते हैं सर दर्द को भगाने के लिए, तो उसके लिए भी आप प्लीज कुछ इंक्लूड करिएगा.
0: नहीं, सर दर्द देखिए, गूगल आपको आधी नॉलेज देता है, ठीक है, जो डॉक्टर इतनी पढ़ाई करके, फेलोशिप की ट्रेनिंग करके, एक्सपर्टाइज होके अब वो आया है, अगर आपको वो बोल रहा है कि भाई दर्द की जो दवाइयां हैं वो लंबे समय तक नहीं खानी चाहिए, कभी कभार आप खा लो, लंबे समय तक खाएंगे तो उसका किडनी पे, आपकी आंतों पे आपका असर पड़ेगा.
1: बिल्कुल.
0: जो आपको अभी नहीं, मे बी लेटर ऑन, आप जब 40-50 साल की जब उम्र हो जाएगी तब पता चलेगा, वो अभी हमें पता नहीं चल रहा है. तो वो खाना बिल्कुल बंद करें, अपने लाइफस्टाइल पे काम करें, किस टाइम पे आप क्या खा रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट. अपनी 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें, और अगर आप 3 महीने से या फिर ज्यादा दर्द से जूझ रहे हैं तो अपने नियरेस्ट पेन फिजिशियन को जल्द से जल्द संपर्क करें, मैं यही बोलूँगी.
1: थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा आपने जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी और इतने अच्छे से आपने बताया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच. और हम आशा करते हैं कि, थैंक यू मैम, हम आशा करते हैं आप अगली बार भी जरूर जल्द आएंगे, फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, बहुत अच्छा लगा. और गाइज, आप कहीं मत जाइए, ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातों के लिए प्लीज ट्यून रखिए आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6. अभी के लिए मैं लेता हूँ डॉक्टर निदा मैम से इजाजत. मैम थैंक यू सो मच, और गाइज आपसे भी इजाजत, फिर जल्दी मिलते हैं. बाय बाय.

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
5: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
4: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
5: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने शो सेहत सही लाभ कई में। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे रीना। दोस्तों, जब हम सेहत की बात करते हैं तो कई ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य पर असर करती है। इसमें से एक और मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी मासिक धर्म स्वच्छता। दुनिया की 50% जनसंख्या मेंस्ट्रुएशन अनुभव करती है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं, शर्म महसूस करते हैं, घरों में स्कूल में बात नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप आर्जेरीना जी। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ये बात सच है कि हम मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक धर्म और उससे जुड़ी हुई बातों पर चर्चा नहीं करते, लेकिन ये भी सच है कि आज की नई पीढ़ी अब खुलकर बात करने के लिए तैयार है।
0: जी बिल्कुल, लेकिन अभी भी बहुत कम है। हमारे गांव में बात करना तो दूर बल्कि सदियों से चले आ रहे इससे जुड़े हुए भ्रम और रूढ़िवादी प्रथाओं को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन मैं अपनी सभी श्रोताओं को बताना चाहती हूं कि इस बार जब मैं रेडियो फेस्टिवल के लिए दिल्ली गई थी तो मैंने एक महिला और सामाजिक सोच पर बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन सुना। आपको पता है, उसमें एक प्राइवेट चैनल की बहुत मशहूर महिला आरजे जैसे ही मंच पर आई और बोली, भाई मैं कुर्सी पर पाँव ऊपर करके बैठूंगी क्योंकि मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, कृपया बुरा ना माने। उन्होंने कहा कि मासिक धर्म के कारण उनकी पीठ में भी दर्द है, इसीलिए उन्हें आराम से बैठना है। कुछ सेकंड के लिए तो हॉल में बैठे सभी लोग शांत हो गए, फिर किसी ने ताली बजाई और हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। जो शो को मॉडरेट कर रहे थे उन्होंने भी उस आरजे की सराहना करते हुए कहा कि यदि और महिलाएं इस प्रकार से खुल कर बात करे तो शायद मासिक धर्म जैसे मुद्दों पर चर्चा नॉर्मल समझी जाने लगेगी।
1: ये तो वाकई में बहुत बड़ी बात है कि एक 300-400 लोगों की सभा में कोई महिला इस प्रकार खुलकर बात करे। और अब मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मैं जब यहाँ आ रही थी तो मैंने सुना और देखा भी कि पीरियड्स की सुंदा जी अपनी बेटी को अपने आंगन में खड़ा करके बोल रही थी कि रसोई में मत जाना, जो खाना होगा बता देना, मैं लाकर दे दूंगी, और कपड़े भी एक ही जोड़ी पहनना, बार बार बदलना नहीं। आप टीकन देवी यानी मुझे तो जानते

0: मैंने तुरंत दरवाजा पूरा खोला और अंदर चली गई। मैंने उनसे पूछा कि क्यों, क्या हुआ? बेटी को धीरे से मेरे कान में फुसफुसाकर बोली, अरे धीरे बोलो, उसे मासिक धर्म आ रहा है।
1: अरे ये तो बड़े अफसोस की बात है कि आज भी ऐसी धारणाएं हमारे समाज में प्रचलित है। लेकिन आपने क्या किया?
0: उन्हें बताया कि इसमें धीरे बोलने, एक ही जोड़ी कपड़े पहनने या छुआछूत करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो हर महिला को होता है और ये कोई बीमारी नहीं है।
1: तो क्यों ना हम अपने सभी सुनने वालों को, महिला, पुरुष, लड़के, लड़कियों को, बूढ़े, जवान, सभी को मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जिसका सेहत से डायरेक्ट लिंक है, इसके बारे में बताए। शायद हमारा प्रोग्राम सुनकर वहम भ्रम और सोच में परिवर्तन आ जाए।
0: बिल्कुल, और आज का दिन भी इस बात पर चर्चा करने के लिए बिल्कुल सही है। आज 28 मई है और आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी है। मुझे सिखाने और ज्ञान बांटने के मुंह में जुड़ गए हैं आपके इस कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई के चलते। हम भी हर सप्ताह कुछ नया सीखते हैं। हमारे श्रोताओं के साथ सेहत से जुड़ी ढेर सारी बातें करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, हर साल 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इसलिए इस दिन का मकसद होता है कि हम मासिक धर्म को लेकर फैली गलतफहमियों को दूर करें और साफ सफाई को बढ़ावा दें।
1: तो यह दिन कब से मनाया जा रहा है?
0: ये दिन सबसे पहले वर्ष 2014 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत जर्मनी के एक संस्था वॉश यूनाइटेड ने की थी, जिसका उद्देश्य स्वच्छता, स्वच्छ जल और हाथ धोने जैसी आदतों को बढ़ावा देना है। तब से हर वर्ष ये दिन वैश्विक स्तर पर लोगों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है और ये हर वर्ष एक नई थीम देता है।
1: तो फिर इस साल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे का विषय क्या होता है?
0: इस साल की थीम है पीरियड्स फ्रेंडली वर्ल्ड के लिए है एक साथ, मतलब हम सब मिलकर ऐसा माहौल बनाएं जहां कोई लड़की या महिला सिर्फ इसलिए पीछे ना रह जाए क्योंकि वो पीरियड्स में है।
1: जी, मैं श्रोताओं में आपको एक ऐसी जानकारी देना चाहती हूँ जिससे आप बहुत चक्के रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं दुनिया में हर दिन करीब 80 करोड़ महिलाएं मासिक धर्म से होती हैं और इसके दौरान होने वाली कोई स्वास्थ्य संबंधी बात या साफ सफाई या फिर पोषण की हम बात नहीं करते हैं।
0: जो बात होती है वो केवल पीरियड्स को लेकर जो मान्यताएं चलाई जा रही हैं वही होती हैं, जैसे पीरियड्स के दौरान महिला कहीं खान पीन की चीजें के आसपास ना आए, पूजा में ना बैठे, मंदिर में ना जाए क्योंकि अशुद्ध माना जाता है, लड़कियों को स्कूल जाने से रोक दिया जाता है, कई जगहों पर बच्चियों को शादी के लिए तैयार मान लिया जाता है, मानो कि बस इसलिए कि उन्हें पहली बार पीरियड्स हुआ है,
1: और यही सोच उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान से दूर कर देते हैं। बहुत सी लड़कियां स्कूल नहीं जाती क्योंकि उनके पास सैनिटरी पैड्स नहीं होते हैं या स्कूल में शौचालय की सुविधा नहीं होती है और बहुत सी जगह पर पानी की कमी होती है। उसके कारण भी पीरियड्स के दौरान बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
0: सबसे पहले मैं ये समझाना होगा कि मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं है, ये एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है, हमें इसे सामान्य बात की तरह अपनाना होगा।
2: हेलो दोस्तों, आज हमारे बीच में खास मेहमान विदिशा सिंह, जो एक काउंसलर, पीयर सपोर्टर एवं पॉजिटिव साइकोलॉजी कोच हैं, जो बच्चों के साथ उनके माता पिता और महिलाओं के इमोशनल वेलबींग, सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ लव के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत हैं। दोस्तों, उनका मानना है कि सशक्त मन ही सशक्त जीवन की नींव होता है। माइंडफुलनेस और मोटिवेशन के माध्यम से वह बच्चों को आत्म जागरूकता, भावनात्मक संतुलन और आत्मविश्वास की दिशा में प्रेरित करती हैं। उनका कार्य केवल काउंसलिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्वास, आत्म स्वीकृति और सकारात्मक परिवर्तन की एक सतत यात्रा है। मैं हूं भावना और मेरे साथ है मेरे साथी आशीष। हमारे बीच में स्वागत करते हैं दोनों मिलके विदिशा सिंह जी का। हेलो मैम।
3: हेलो भावना जी।
4: और जैसा हम लोग हमेशा से किसी ना किसी विषय पर चर्चा करते हैं, तो आज आपके साथ विशेष चर्चा हम बच्चों को लेकर करना चाहेंगे कि जब हम बच्चों के एग्जाम्स के रूटीन में जा रहे होते हैं तो बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर काम कर रहा होता है और भले ही पेरेंट्स उनको ये समझाएं कि बेटा तुम बहुत मेहनत से पढ़ो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर बहुत सारे डर घर कर गए होते हैं क्योंकि उनको अच्छे मार्क्स चाहिए। तो ऐसे में आप उन्हें क्या यहाँ से कोच करना चाहेंगी और कैसे उनके अंदर की ये एंग्जाइटी, ये डर हम दूर कर पाएंगे? मैम,
3: जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हम बड़े ही उस डर की शुरुआत करते हैं। आमतौर पर कभी भी आपने देखा होगा जब बोर्ड एग्जाम्स या नॉर्मल एग्जाम्स की शुरुआत होती है तो हम हमेशा बच्चों को सिर्फ एग्जाम्स आ रहे हैं नहीं बोलते, एक तरह से एक एनवायरमेंट सेटअप कर देते हैं जिसमें कि हम बोलते हैं एग्जाम फीवर, एग्जाम स्ट्रेस,
4: फोबिया।
3: Exactly. तो कहीं ना कहीं हमने ऑलरेडी बच्चों को ये बता दिया कि ये जो एग्जाम है ये आपको स्ट्रेस देगा ही देगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर शुरुआत से हम थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान दें कि एग्जाम्स हैं, साल भर आपने जो पढ़ा है वो बस एक तरह से आपका एक टेस्ट लेने की उसमें कोशिश है कि आपने कितना सीखा, कैसे सीखा और उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपनी लाइफ में।
4: फटाफट उठो, पढ़ाई करो, रात में जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी जाग जाना क्योंकि तुम्हें पढ़ाई करनी है, सुबह का पढ़ा हुआ बच्चों को याद ज्यादा रहता है। तो उसको हम कैसे क्या ऐसा बताएं कि वो उनके लिए स्ट्रेस बस्टर का काम करें और वो अपने उस फ्लो चार्ट पर काम करें, उस पैटर्न पे काम करें जिससे उनके मार्क्स पर उसका असर दिखाई पड़े।
3: एग्जैक्टली। अब मैं आपको आप ही के इस लाइन से एक चीज बताना चाहूंगी कि ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही एग्जाम्स के बारे में बात आती है तुरंत उसका जो रिलेशन होता है वो मार्क्स कितने स्कोर करोगे, कैसा परफॉर्म करोगे उसके ऊपर हो जाता है।
4: एग्जैक्टली।
3: सबसे पहले मैं हर माता पिता को ये बोलना चाहूंगी कि जब एग्जाम है तो उसको आप एक पर्टिकुलर चीज लेकर के चलिए। आज टाइम है कि बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम पूरा फोकस दे देते हैं जैसा अभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे वैसा ही रिजल्ट आएगा।
4: एग्जैक्टली।
3: रिजल्ट एक सेकेंडरी ऑप्शन है जो एग्जाम्स देने के बाद आता है। आई अंडरस्टैंड कि एग्जाम है तो रिजल्ट आएगा ही आएगा लेकिन अभी जो फोकस है वो सिर्फ इस पे होना चाहिए कि हमारे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं तो उस वक्त हम क्या ऐसा कुछ करें कि जिससे हमारे बच्चे जो हैं वो थोड़े से शांत मन से रहें, एंग्जाइटी कम रहे उनके अंदर और एक जो डर है वो खत्म हो। और उसके लिए इस वक्त मैं आपको बताऊं कि माता पिता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि आपका बच्चा ऑलरेडी परेशान है और खास करके ये बात मैं माओं के लिए कहना चाहूंगी कि जितना बच्चा परेशान नहीं होता शायद उससे 50-60% ज्यादा उनकी माताएं परेशान हो जाती हैं। आप एक ऐसा एनवायरमेंट ऑलरेडी अपने घर में सेटअप कर दे रहे हैं, टीवी नहीं चलेगा, खेलने नहीं जाना है, हम बाहर खाना नहीं खाने जा सकते, किसी की वेडिंग अगर, क्योंकि देखिए मार्च ही सीजन होता है, फेब्रुअरी मार्च जिस टाइम पे शादियां भी हो रही होती हैं और इसी टाइम पे एग्जाम्स भी आ रहे होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन घर में कर्फ्यू जैसा माहौल बन जाता है। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं इस बात पे भी हमें थोड़ा सा रुक कर सोचने की जरूरत है कि अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और जितना उनको पढ़ना था उन्होंने ऑलरेडी अपनी पढ़ाई अब पूरे साल भर कर ली है।
4: एग्जैक्टली।
3: अब खाली जो उन्होंने पढ़ा हुआ है उस चीज को वो कितना याद कर पा रहे हैं, उस चीज को रिवाइज कितना कर पा रहे हैं उसके ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए।
4: लेकिन नहीं लगता भावना कि एक साइकोलॉजी ऐसी है जो कहीं ना कहीं बच्चों की कंडीशनिंग के साथ में आती है? क्योंकि हम जब बच्चा छोटा है, जैसे अभी आपने कहा कि बड़े बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई कर चुके हैं, उनको भी पता है कि उन्हें क्या तैयार करना है, लेकिन कंडीशनिंग वैसी हुई है ना फ्रॉम द रूट्स, तो वो फ्रॉम द रूट वाली कंडीशनिंग का कहीं ना कहीं एक ओवर शेडो बनता उनके हायर क्लासेस में भी दिखाई पड़ता है और वो एक फोबिया उनके चारों तरफ क्रिएट करके हम रख देते हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो स्वतंत्र होकर दिमाग से काम करें जैसे आपने कहा।
2: और आशीष एक बात और मैं कहूं कि बड़े बच्चे के साथ साथ अब हम लोग छोटे बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डालने लगे हैं कि आपका बच्चा नर्सरी या फर्स्ट में ही रहता है फिर भी आप उससे इतनी ज्यादा उम्मीदें करने लगते हैं कि हमारा बच्चा जितने भी क्षेत्र है उसमें बिल्कुल अव्वल ही आए और वो बच्चा पीठ पर बोझ लादे किताबों का, वो कहां से बढ़ता साइकोलॉजिकल चेंजेस कहां से शुरू हो रहे हैं?
3: बहुत समय लगेगा और कहीं ना कहीं मेरा जो काम है मेरी भी कोशिश इसी क्षेत्र में है कि सबसे पहले ये जो कंडीशनिंग हो गई है कि एग्जाम्स चाहे सेकेंड थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चे का हो या क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के बच्चे का हो, एक कंडीशनिंग के साथ हमने ये मान लिया है कि एग्जाम्स हैं तो हमें वो प्रेशर बनाना ही है, हमें पढ़ाना ही है और बच्चों को अच्छा स्कोर करना ही है। इसमें आपको पता है मैं एक बात बहुत इम्पोर्टेंट ये करना चाहूंगी कि आपको सबसे पहले अपने बच्चे का जो शेड्यूल है ना उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करना होगा कि क्या आपका बच्चा जिस चीज को आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट ले रहा है
4: जी,
3: क्या वो कभी भी एग्जाम आने से पहले, एक अलग बात हो गई, लेकिन पूरे साल में क्या वो पूरे दिन भर में एक बार भी उन किताबों को, अगर उसको होमवर्क नहीं मिला है उसके अलावा भी क्या वो उन किताबों को खुद कभी उठा करके बैठता है या सिर्फ उन पन्नों को खुद पलट करके ऐसे देखने की कोशिश करता है कि आज मुझे स्कूल में क्या पढ़ाया गया। तो शुरुआत हमें वहां से करनी है
4: जी।
3: ये नहीं कि जब बच्चा क्लास 10th में आ गया तो उस चीज को आपने एक फोबिया बना दिया कि अब आपके बोझ आ गए हैं और आपको बिल्कुल करो या मरो की स्थिति को में पहुंच चुके हैं और इसको आपको पूरा करना ही करना है
4: जी।
3: कहीं ना कहीं एक और बात मैं बोलना चाहूंगी दोबारा से कि ये जो मार्क्स है ना ये इतना बच्चों के लिए ट्रॉफी सिंबल नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉफी सिंबल है कि मेरे बच्चे ने 99% स्कोर किया, 95% स्कोर किया। आप अपने बच्चों से उम्मीदें रखते हैं, हर माँ बाप रखते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस उम्मीद को पूरा करने के लिए कब आपने उसका हाथ पकड़कर साथ उसके बैठ करके ये बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कितने भी नंबर आ जाएं,
1: बिल्कुल
3: तुम लाइफ में कुछ बन पाओ नहीं बन पाओ, आगे बढ़ पाओ नहीं बढ़ पाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। सिर्फ ये एक लाइन एक बच्चे को जो आत्मविश्वास दे सकती है वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे सकता, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं दे सकता, कोई काउंसलर नहीं दे सकता
4: जी।
3: क्योंकि ये एक ऐसा कनेक्शन फॉर्म करता है जहां बच्चे को ये एहसास होता है कि मुझे ये पढ़ाई किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी है, लेकिन
4: Correct.
3: एक विश्वास जो मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर है, जो माता पिता ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है उसे मुझे आगे बढ़ाना है,
4: उसे प्रूव करना है कहीं। लेकिन नहीं लगता आपको कि ये एक स्टिग्मा हो चुका है सोसाइटी लेवल पर, या जैसे आपने पेरेंट्स का जिक्र किया तो एक मजबूरी भी है शायद पेरेंट्स की, क्योंकि जब बच्चों का परसेंटाइल देखे जाते हैं, परसेंटेज देखे जाते हैं, पता चला कि साहब किसी का 92% आ रहा है, किसी के 95, अब तो 99% नंबर भी मिलने लगे बच्चों को, हालांकि हमारे टाइम पे ऐसे हम लोगों को तो नहीं मिलते थे, लेकिन जहां 99 के स्कोर तक कुछ बच्चे पहुंच रहे हैं और वहां पर अगर कोई बच्चा 90% भी ला रहा है तो ये माहौल बन जाता है कि अरे इसके तो 90% आए, मतलब इतने कम ये क्या कर पाएगा। ये पेरेंट्स में जो बना हुआ एक डर है, आपको नहीं लगता कि पहले ये निकल जाए?
3: ये जो डर है ना ये कलेक्टिवली नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जब कलेक्टिवली हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तो आप भी ये मानेंगे कि हर अभिभावक जो होता है ना वो हामी जरूर भरता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, परेशान होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही वो भीड़ से अपने घर के दरवाजे के अंदर पहुंचता है तो उसको अगर आंख बंद करके वो सोचे ना तो वो कह सच में ये बात बोलता होगा अपने आप से, बात तो सही कह रहे हैं लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है।
4: Correct.
3: क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया।
4: वही चीज।
3: यहां मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो सोच बदलने की बात हो रही है ये हमें इंडिविजुअल स्तर पे करनी पड़ेगी। हर एक पेरेंट जब इस विश्वास के साथ अपने बच्चे से बात करेगा कि जो कंपटीशन का माहौल हो रहा है, जिस तरह से हमें आगे बढ़ना है, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, उसमें एवरेज होकर के भी आप कुछ अलग कर सकते हैं, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको पता लगाना पड़ेगा। देखिए बहुत नॉर्मल सी बात है, हर कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता।
4: राइट।
3: आजकल के टाइम में भी जिस तरह से कंपटीशन है या बहुत पहले से चला आ रहा है, जितनी सीट्स हैं, जिस हिसाब से बच्चे परफॉर्म करते हैं, जो लोग निकलते हैं, लेकिन मेरा आज भी ये मानना है कि अगर आप 99% नहीं स्कोर कर पा रहे तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आप कुछ लाइफ में कर नहीं पाएंगे।
4: एग्जैक्टली। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे आपके बीच में जहां पर बहुत कम स्कोर करने वाले भी इतिहास रच के चले गए। क्यों भावना?
1: बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी मैम आपने अभी कहा है कि ना कि 99% के बावजूद भी 90% लाने वाले भी लोग बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन ये बात जो है माता पिता के मन में ये कैसे बिठाए जाए, क्योंकि वो इतना प्रेशर कर देते हैं कि बच्चा इंटर किया नहीं। आप आज हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा सरकारी नौकरी में आए ही आए, क्या इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है? ये माता पिता के दिमाग में कैसे लाई जाए ये बात?
3: भावना जी, ये जो मार्क्स है ना, कब तक? जब तक आप ग्रेजुएशन करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन कब तक?
1: जी
3: जब तक आप वहां पर पहुंच रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो चेंजेस आपके अंदर आने वाले हैं कहीं ना कहीं लाइफ में, आज मैं फिर इस बात को बोलूंगी कि वही इंसान सक्सेसफुल हो पाता है जो

0: के लिए ही नहीं है, ये बात उन सारे बच्चों के लिए है कि सिर्फ जिंदगी यहीं खत्म नहीं हो जाती। बहुत ही अच्छी बात आप बोल रही, क्योंकि ये बात सिर्फ माता पिता ही नहीं समझा सकते, ये बात आप जैसे काउंसलर भी समझा सकते हैं।
1: एक माता पिता अपने बच्चे का सबसे बड़ा सपोर्टर होता है
0: जी।
1: विश्वास मानिए, आज भी हर बच्चा जो मेहनत करता है और जब उसके पिताजी घर में आ रहे होते हैं और एक नजर जब उस बच्चे की अपने पिता जी पे, अपने माता जी पे पड़ती है, तो उसे आज भी ये लगता है मुझे दुनिया को नहीं, मुझे इनको प्रूव करना है।
2: Correct.
1: और सिर्फ उस वक्त अगर आप अपने बच्चे के कंधे पे हाथ रख के ये कह देंगे ना कि बेटा मुझे पता है तुमने मेहनत की है, चाहे जितनी भी की हो, जितना पढ़ लिया है उतना ही परफॉर्म कर लो। यकीन मानिए, अगर बच्चे ने अपना सिर्फ 60% कोर्स भी पूरा करा हुआ है ना, और उस 60% को वो अगर 100% लगन से रिवाइज कर लेगा, जो टाइम पीरियड इस वक्त चल रहा है, बिल्कुल एग्जाम्स 2-3 दिन ही बाद हैं, शुरू होने वाले हैं, उसके परफॉर्मेंस में 70-80% इम्प्रूवमेंट आ जाएगा।
2: करेक्ट। और वैसे भी देखिए, स्काई इज द लिमिट, आपके पास खुला आसमान है, आप अपने आप को जैसा भी मोल्ड करना चाहते हैं ढाल सकते हैं, बशर्ते आपको एक अच्छा गाइडेंस मिले। और शायद रेडियो खीरी 88.4 मेगाहर्ट्ज़ अपने तमाम लिसनर्स को इसी तरीके से गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो बीइंग अ पेरेंट आप हमारे शो को सुनिए, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो बीइंग अ स्टूडेंट आप हमारे शो को सुनिए, और कुछ ऐसी बातें अपने अंदर बदलने की कोशिश कीजिए जो आपके फ्यूचर को और बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकती हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान विदिशा सिंह जी हमारे साथ में हैं, जो काउंसलर हैं और जो आपको ये बता सकती हैं कि एक साइकोलॉजी कौन सी काम कर रही होती है कि बच्चा उस फोबिया को अपने अंदर से निकाल सके। लेकिन विदिशा जी, आपने कामनेस की बात की कि पेरेंट्स जब आए तो एक बच्चों को कंसोल करते हुए कामनेस दें कि बेटा तुम चिंता मत करो। हमें भी ऐसा लगता है कि अगर हम लोग अपने थोड़ा सा जिंदगी में थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो जब हमारे माता पिता हमारे सामने आते थे तो हमें डर ये लगता था कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, कि डांट पड़ जाए। लेकिन आज बच्चे मुझे लगता है कि उस गलती के बारे में नहीं सोचते कि डांट पड़ेगी अगर कुछ गलत करेंगे, लेकिन हाँ उनके दिमाग में ये जरूर है स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो जरूर हमारी खिंचाई होने वाली है, डांट पड़ने वाली है। साइकोलॉजी जो काम कर रही होती है, क्योंकि मैं आपसे थोड़ा सा टेक्निकली जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या होता है कि हम बच्चे के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं और अपने ऊपर भी क्रिएट करते हैं, और उसका रिजल्टेंट क्या होता है कि हमने देखा बहुत सारे कोटा में बच्चों को देख लीजिए जो डेथ कर जाते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर लेते हैं, और छोटे छोटे बच्चों के अंदर आज के डेट में आप देखिए डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं बच्चे, जबकि ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियों के बाद होता था। तो इसको कैसे कैसे दूर करें, इसके लिए क्या फ्लो चार्ट बना के चलें, क्या क्या हमको सेगमेंटाइज करना होगा अपनी चीजों को?
1: बहुत दुख होता है जब ऐसी कोई खबरें मैं सुनती हूं, या कभी कभी ऐसा होता है कि ऑलरेडी मैं कुछ ऐसे पेरेंट्स से डील कर रही होती हूँ जिनको मैं समझाने में बहुत असमर्थ रहती हूँ कि इतनी प्रेशर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद भी बहुत रिलक्टेंट होते हैं, वो मेरी बात को सुनने को नहीं तैयार रहते। लेकिन इन सब में सबसे पहले मैं बोलूंगी कि जो सबसे ज्यादा कम समय हम देते हैं वो शायद हम देते हैं इमोशंस के ऊपर ध्यान नहीं देकर। बच्चा आया और उसने बोला मम्मी मुझे डर लग रहा है, तुरंत क्या जवाब आता है? डरने की कोई जरूरत नहीं है।
2: या फिर कंपेयर कर देते हैं हम किसी से, देखो वो तो नहीं डरता।
1: एग्जैक्टली। लेकिन आपको मैं सच बताऊं, इसका शायद सही तरीका ये होता है कि उस वक्त आप बच्चे को बोलिए कि हाँ बेटा मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, ऐसे समय में ये होना बहुत आम बात है। जब बच्चा जो फील कर रहा है, जो भी उसके डर, भय या एक तरह से आत्मविश्वास नहीं आ पाना, जो भी उसके इमोशंस हैं, अगर आप उन इमोशंस पे ध्यान दें और उनको एक्सेप्ट करें कि हाँ मेरा बच्चा ऐसा फील कर रहा है, और इनफैक्ट ये बात मैं बच्चों के लिए भी बोलूंगी कि जब आपको ऐसा फील हो कि मुझे घबराहट हो, तो बिल्कुल ही जैसे जिसको हम अपने टर्म्स में एक फेक पॉजिटिविटी भी कहते हैं
2: जी,
1: जिसमें हम कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आप कुछ फील कर रहे हैं और आप अगर उसको दबाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो इमोशन शूट अप करेगा।
2: एग्जैक्टली।
1: तो जब आपको डर लगे, जब आपको एंग्जाइटी हो, हर बच्चे से भी मैं ये बोलूंगी, उनके माता पिता को भी ये बोलूंगी कि आप एक्सेप्ट करिए कि आपके बच्चे को डर लग रहा है
2: जी।
1: बहुत नॉर्मल है। एंजाइटी हो रही है, हार्ट बीट्स बढ़ रही हैं, घबराहट हो

0: रही है। आप अपने बच्चे को बताइए कि हाँ ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसके लिए बच्चों को मैं एक बहुत क्विक टिप देना चाहूंगी
1: प्लीज,
0: कि सबसे पहले तो जब आप अपने रिविजन के टाइम पे या नॉर्मल भी अगर आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमने देखा होगा कि बच्चे अमूमन क्या करते हैं कि वो 1.5 से 2 घंटे का पूरा शेड्यूल बना करके रखते हैं, और अगर 2 घंटे से पहले बच्चा कमरे से बाहर आ गया तो उसको घर के सारे लोग ऐसी निगाहों से देखते हैं जैसे कि उसने कितनी बड़ी कोई गलती कर दी। बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन स्पैन सिर्फ 35 मैक्सिमम 40 मिनट्स का होता है। उसके बाद अगर आपका बच्चा बैठ के पढ़ भी रहा है तो यकीन मानिए वो डिस्ट्रैक्टेड है, जिसमें उसको भी नहीं पता होता कि वो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्शन में जा चुका है। बच्चों के लिए क्विक टिप ये है कि हर 30 मिनट पे एक अलार्म क्लॉक रखिए और उसमें अलार्म सेट करिए। जैसे ही 30 मिनट्स का टाइम पीरियड चला जाएगा आपका अलार्म बजेगा, आप उसको बंद करिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और क्विकली आप अपने आप को ये एक ऐसे फेज में ला करके रखिए कि आप यहाँ पे रिवाइज कर पाएं, देख पाएं कि आप जब आपने अलार्म बंद किया तो आप पढ़ रहे थे या आपका माइंड कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड था। ये एक अवेयरनेस क्रिएट करता है।
1: ठीक है,
0: बच्चा जितनी ज्यादा 35 to 40 मिनट्स के बाद जब एक क्विक राउंड लेके आएगा, घर में एक अच्छा माहौल देखेगा, माता पिता भाई बहनों या आजू बाजू थोड़ा सा वो बाहर निकल के आएगा, तो वो दोबारा से रेडी होगा अपने कॉन्सेंट्रेशन स्पैन को शुरू करने के।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: हाय डीएन एनर्जी, आपका दूल्हा तो जज रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
0: हेलो दोस्तों, पैन सिर्फ 35 मैक्सिमम 40 मिनट्स का होता है। उसके बाद अगर आपका बच्चा बैठ के पढ़ भी रहा है तो यकीन मानिए वो डिस्ट्रैक्टेड है, जिसमें उसको भी नहीं पता होता कि वो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्शन में जा चुका है। बच्चों के लिए क्विक टिप ये है कि हर 30 मिनट पे एक अलार्म क्लॉक रखिए और उसमें अलार्म सेट करिए। जैसे ही 30 मिनट्स का टाइम पीरियड चला जाएगा आपका अलार्म बजेगा, आप उसको बंद करिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और क्विकली आप अपने आप को ये एक ऐसे फेज में ला करके रखिए कि आप यहाँ पे रिवाइज कर पाएं, देख पाएं कि आप जब आपने अलार्म बंद किया तो आप पढ़ रहे थे या आपका माइंड कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड था। ये एक अवेयरनेस क्रिएट करता है।
1: ठीक है,
0: बच्चा जितनी ज्यादा 35 to 40 मिनट्स के बाद जब एक क्विक राउंड लेके आएगा, घर में एक अच्छा माहौल देखेगा, माता पिता भाई बहनों या आजू बाजू थोड़ा सा वो बाहर निकल के आएगा, तो वो दोबारा से रेडी होगा अपने कॉन्सेंट्रेशन स्पैन को शुरू करने के लिए।
1: बहुत ज्यादा बच्चों पर लोग बोलते हैं कड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे जमाने में तो कहा था समझावन लाल होते थे, समझावन लाल छड़ी को बोलते थे हमारे मास्टर्स की, जब तक तुम्हारे ऊपर छड़ी नहीं पड़ेगी तब तक तुमको आएगी नहीं, कहते मुक्का पड़े घमाघम विद्याए झमाझम, ऐसा बोलते थे। तो अब कहीं ना कहीं वो नैरेटिव्स बदल चुके हैं पढ़ाई के,
0: और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा भी है, क्योंकि बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ इसके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी को आप डरा करके बिठा तो सकते हैं लेकिन पढ़ा नहीं सकते।
1: बहुत बढ़िया, करेक्ट।
0: और जैसे आपने मुझे बोला कि ऐसा क्यों माँ बाप को लगता है कि अगर वो डांटेंगे नहीं, अपनी आवाज को ऊंचा करके नहीं बोलेंगे तो उनकी बात सुनी नहीं जाएगी। हमेशा हमें अपनी बात बोलने के टाइम पे अपने टोन पे ध्यान देना चाहिए।
1: जी,
0: आवाज ऊंची करके, चिल्ला करके, यकीन मानिए आप उस टाइम बच्चे को जैसे ही आप चिल्लाना शुरू करते हैं बच्चा का दिमाग ऑलरेडी बंद हो जाता है, उसे सुनाई देना, समझना सब कम हो जाता है। उससे ज्यादा बेहतर ये है कि आप अपनी एक फिक्स्ड टोन रखिए। सीरियसली बेटा, मैंने तुम्हें बता दिया है, ये समय पढ़ने का है, जाओ कमरे में बैठो पढ़ो, बात खत्म हो जाती है।
1: ठीक है, जैसे मान लिया अगर वो फिर भी नहीं मान रहा है, देन
0: ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ आता है। आप ये एक्सपेक्ट करें कि एग्जाम्स के पहले बिल्कुल आपने अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर करना शुरू कर दिया, यही मैं बोलना चाहूंगी कि आपका बच्चा किसी भी क्लास में हो इस वक्त, ये टाइम है एज अ पेरेंट आपको ऑब्जर्व करने का।
1: ठीक है,
0: कि आपका बच्चा जो है वो बोलने पे भी पढ़ने जा रहा है या नहीं जा रहा, ये आपको रियलाइज कराएगा कि अब समय जो है अभी वाला रुक चुका है। फिर मैं बोलूंगी समय खत्म नहीं हुआ है,
1: एग्जैक्टली
0: ये वाले साल का जो समय था वो पूरा हो चुका है, अगला साल फिर आएगा। शुरुआत से ही आप एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जो है अपने बच्चे का जो शेड्यूल है उसके ऊपर काम करिए। अमूमन हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी गलती यहाँ करते हैं कि हम हमेशा बहुत हड़बड़ाहट में रहते हैं। जब समय आ गया तभी करना है,
1: लास्ट आर
6: मतलब जब से सेशन शुरू होता है तब से हम पढ़ाई बच्चों के लिए, आपने अप्रैल मई में सारी चीजें फिर से पढ़ाई एक बार शुरू हो जाती है और जुलाई से तो सभी फिर से कंटिन्यू हो जाते हैं, अब तो जून में ही क्लासेस शुरू होने लगी हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए उनका शेड्यूल अभी से बनाना शुरू कर दे, चाहे वो 2 घंटे का हो या 3 घंटे का हो। और कहीं ना कहीं मैम ये भी जरूरी है कि बच्चों के साथ माता पिता को खुद भी बैठ के पढ़ना चाहिए या पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मोबाइल का आज जो समय है
1: करेक्ट
6: वो कहीं ना कहीं बच्चों और माता पिता को डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है। आशीष जी आपका क्या कहना है?
1: नहीं, बिल्कुल सही कहा, स्क्रीन टाइमिंग बच्चों की बहुत कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। मुझे लगता है कि रैंडमली अगर बच्चा फोन उठा ले रहा है तो मुझे लगता है उसको एक, जैसे आपने बोला कि फिक्स टाइम होना चाहिए कि बेटा अब उठिए, अब आपका टाइम हो गया, जाइए पढ़िए। इसी तरीके से अगर उनको मोबाइल देखना है या टीवी देखना है, क्योंकि आप रोक तो नहीं सकते उन्हें कि ऐसा मत करो क्योंकि आप उन्हीं के सामने मोबाइल देख रहे हो। तो बच्चों के आजकल अक्सर सवाल भी होते हैं, भावना आप तो कर रहे हो मुझे रोक रहे हो। तो
0: कैटेगरी के लिए देखिए, क्योंकि इसका जवाब हर एज ग्रुप के लिए बहुत डिफरेंट, मतलब जैसे जब हम छोटे बच्चों को केटर करेंगे तो अलग होगा, बड़े बच्चों के लिए इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि आजकल काफी ज्यादा स्कूल्स भी डिपेंडेंट हो गए हैं मोबाइल फोन्स पे ही, बहुत सारे मैसेजेस हो गए, जो भी पढ़ना है ये सारी चीजें भी
1: कंटेंट आता है उसपे,
0: एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं बच्चों ने भी एक ही आदत बना ली है कि मैं मोबाइल पे पढ़ूंगा, मेरा ये पर्सनली मानना है। वैसे
1: कोविड ने तो ये सिखा दिया है कि पढ़ो
6: मोबाइल से पढ़ो,
0: लेकिन मेरा, फिर मैं बोलूंगी, मेरा ये एक बहुत पर्सनल ओपिनियन यही है कि जो भी पढ़ाई हो रही है, जितनी अच्छी पढ़ाई आप बुक से कर सकते हैं उतनी अच्छी पढ़ाई शॉर्ट नोट्स की तरह आप एक क्विक रिविजन तो यूट्यूब पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, आपको बैठ कर ये कंसिस्टेंटली पढ़ना है। जब हम किसी चीज को विजुअली देखते हैं तो देखिए, ये तो बहुत डेफिनेट है कि विजुअल देखने में हमें वो चीज दिमाग में बैठ जाती है, लेकिन आपको एग्जाम्स ओरली नहीं देने होते, राइट? आपको बड़े बड़े लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स, या मैं कहूंगी एमसीक्यूज भी आपको करने होते हैं। उसके लिए अगर आप प्रॉपर ब्रीफली पढ़ाई नहीं करेंगे, आप पैराग्राफ वाइज रीडिंग्स अगर नहीं करेंगे तो आपको उन आंसर्स को लिखने में परेशानी डेफिनेटली आएगी।
1: करेक्ट,
0: आप अपना जो टाइम शेड्यूल है, अगर आप 1 घंटे में 45 मिनट्स बुक्स को दे रहे हैं तो 15 मिनट का टाइम आप मोबाइल फोन से, यूट्यूब से उसके रेफरेंसेस को पढ़ने के लिए दे लीजिए। लेकिन आजकल शायद इससे ऑपोजिट चीजें चल रही हैं, कि 45 मिनट्स स्क्रीन टाइम देखते हैं और 15 मिनट आप उसके बाद उन किताब के जो भी आपके टॉपिक्स हैं उन पेजेस को आप आगे पीछे करके देख लेते हैं।
1: मुझे लगता है कि बच्चों को इस तरीके की यूटिलिटी या फैसिलिटीज देनी चाहिए, लेकिन उसको मॉनिटर आप करते रहें, बीइंग अ पेरेंट बहुत जरूरी है।
0: मैं फिर बोलूंगी कि अगर बच्चा इतना बड़ा है कि आपने मोबाइल फोन उसके हाथ में दिया, ऐसा तो होगा नहीं कि बच्चे ने,
1: नहीं, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पर्सनल मोबाइल फोन्स नहीं है लेकिन अपने पेरेंट के मोबाइल फोन तो यूज कर रहे हैं।
0: परफेक्ट।
1: और जैसे आपने यूट्यूब का जिक्र किया, या वो यूट्यूब पे हो सकता है कुछ कार्टून्स देख रहे हो या कुछ पोएम सीख रहे हो या कुछ इस तरीके के इंटरेक्टिव सेशंस लर्न कर रहे हो, तो ऐसे में हमें कम से कम ये मॉनिटर तो करना जरूरी है ना कि वो देख क्या रहे हैं।
0: एग्जैक्टली, इसके लिए तो मैं हमेशा बोलूंगी कि वो देख क्या रहे हैं, ये हमेशा पेरेंटल कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके माध्यम से इस बात को भी मैं अवगत सच में कराना चाहूंगी कि जो बच्चे YouTube किड्स करके आता है उस पर भी आप मेरी बात मानिए, ऐसे ऐसे कंटेंट आते हैं जो शायद बच्चों को नहीं देखने चाहिए। जो उनकी नजरों के, लेकिन वो एनिमेटेड होते हैं, बच्चों को भी नहीं पता होता कई बार, मुझे लगता है कि
1: बिल्कुल सही कह रही हैं।
0: देखिए मैं आपको बहुत छोटे, क्योंकि मैं बहुत सारे स्कूल्स भी विजिट करती हूँ, ऑनलाइन पेरेंटिंग सेशंस भी लेती हूँ, मदर्स से भी स्पेशली मेरी बहुत बात होती है, हमेशा एक सवाल आता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे बच्चे को इसके बारे में पता कहाँ से चला।
1: अगर
0: मतलब यहाँ क्योंकि हम एक नॉर्मल पेरेंटिंग के ऊपर भी बात कर रहे हैं, तो मेरा दोबारा से ये कहना है कि अगर आपको ये पता चल भी गया कि आपके बच्चे को किसी एक पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक के बारे में पता चला है जिसको आपको लगता है कि इस एज ग्रुप में उसे नहीं पता
1: जो
0: होना चाहिए
1: लगता है,
0: बिठाइए, डांटने से पहले अपने बच्चे से उसके बारे में बात करिए
1: जी।
0: ये बिल्कुल मत पूछिए कहां से पता लगा, क्योंकि यकीन मानिए अगर वो किसी दोस्त ने बताया होगा तो आपका बच्चा आपको कभी नहीं बताने वाला कि मुझे मेरे दोस्त ने बताया है। जी
1: जी।
0: लेकिन जब आप बोलेंगे कोई बात नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता तुमने ये कहां से सीखा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास अवेलेबल है वो आधी अधूरी है। मैं कह रही हूँ शायद अगर वो अमूमन बोलचाल की भाषा में गाली के बारे में ही क्यों ना हो, जिस दिन आपने अपने बच्चे को ये परमिशन दे दी कि मैं ही तुम्हारा गूगल हूँ, मैं ही तुम्हारी टीचर हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए यहाँ अवेलेबल हूँ,
6: बिल्कुल
0: आओ उस सवाल को मुझसे पूछो, हम दोनों साथ मिलके देखेंगे कि तुम्हारी एज ग्रुप के हिसाब से कौन सी चीज कितनी चाहिए।
1: जी सही बात है, वो कहीं ना कहीं बच्चों को भी इस बात के लिए उनका नर्चर करना जरूरी है कि आप भी समझें क्या आपके लिए ठीक है क्या नहीं ठीक।
0: एग्जैक्टली
1: ठीक है, जहां तक बात हम लोग कर रहे हैं पेरेंटिंग को लेकर भी कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम्स के खासकर टाइम पर बच्चे बहुत सारी उलझनों में होते हैं अपने नोट्स को लेकर, अपने कंटेंट को लेकर, तो ऐसे में हम चाहेंगे कि थोड़ा आप सेगमेंट वॉइस उनको बता सकें कि आप अपने पढ़ाई के फ्लो चार्ट को कैसे बनाएं ताकि अपने फोबिया भी दूर करें, और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एक डर है तो उस डर को धीरे धीरे निकालें और अच्छा परफॉर्म करें।
0: सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत जो है एक स्ट्रेस वाले माहौल से मत करिए। जैसे ही आप उठे, बॉक्स ब्रीदिंग करके एक टेक्निक होती है जिसमें आपने ब्रीद लिया 1 2 3 4 फोर सेकेंड्स के लिए ब्रीद को रोकिए और एक्सहेल करिए मुंह से जोर से, वो एक्सहेल भी 1 2 3 4 आपने रोका और दोबारा आपने इनहेल किया, तो एक तरह से साइकिल की तरह फॉर्म हो गया, एक बॉक्स फॉर्म हो गया, आपने इनहेल किया और आपने एक्सहेल किया और उस बीच में आपने 4 सेकेंड का
1: स्टे किया,
0: स्टे रखा। इससे आपकी जो स्ट्रेस है, आप जब सुबह उठे हैं तो आपका जो एनवायरमेंट है वो आपको अपने कंट्रोल में फील होगा।
1: ओके।
0: दूसरा, अपने दिन की शुरुआत एफर्मेशन से कीजिए। दिन भर आप ये सुनते होंगे कि बेकार है, कुछ नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा बदलते हैं, दुनिया नहीं बोल रही लेकिन मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप बहुत जोर से अपने आप को गले लगाइए, हक करिए जैसे कहते हैं। जैसे जब मैं ये बात बोलती हूँ तो हर बच्चा बहुत सरप्राइज्ड होता है, हम अपने आप को कैसे हक कर सकते हैं।
1: करेक्ट।
0: करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है, हक करिए और बोलिए आई एम इनफ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है।
1: करेक्ट।
0: मैं आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ। सुनने में ये बातें बहुत नॉर्मल रहती हैं, लगती हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि जब आपको क्लास स्कूल में क्यों होता है कि एक टाइम टेबल सेट किया जाता है, तो ये समझ लीजिए कि आप अपने एनर्जी फील्ड का एक टाइम टेबल सेट कर रहे हैं इन दो चीजों को करके।
1: जी।
0: तीसरा पॉइंट आता है, हाइड्रेटेड रहिए। पानी आपको स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फील कराता है, बहुत लगातार नहीं लेकिन एक पानी की बोतल अपने पास हमेशा भर के रखिए और दिन भर पढ़ते वक्त भी आप उसको जरूर पीजिए।
1: ठीक है।
0: खाने की बात करें तो प्लीज जंक फूड से इस वक्त बिल्कुल दूर रहिए। मैं मानती हूँ बहुत टेस्टी लगता है बच्चों को, इस वक्त मन भी बहुत करता है, कुछ चटपटा बना दो मम्मा, एग्जाम चल रहे हैं, अच्छा लगेगा, लेकिन फ्रूट्स खाइए, अच्छी चीजें खाइए जो आपको एक्टिव रहने में बहुत मदद करेंगे।
1: एग्जैक्टली।
0: और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आजकल मुझे लगता है 90% बच्चे नहीं करते हैं, प्लीज प्लीज समय पे सोना शुरू कर दीजिए। मैक्सिमम मैं कह रही हूँ 11:00, 11:30 इसको खींच लीजिए, लेकिन टाइम पे सोना शुरू करिए। जब आप अपना टाइम थोड़ा सा सेट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि मॉर्निंग में अगर आप 7 बजे उठ रहे हैं तो अगर आपने 11 बजे सोना शुरू कर दिया तो आप अगर 6 से 6:30 बजे उठना शुरू कर देंगे वो आपको फोकस करने में बहुत हेल्प करेगा।
1: मतलब एक फिक्स स्लीप साइकिल आपका होना चाहिए,
0: आपको टाइम शेड्यूल जो कहते हैं ना, बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं ये बात बोलते हैं कि अरे 24 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला
1: जी,
0: क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत बहुत देर से की है।
6: बिल्कुल सही बात है। मेरा एक प्रश्न ये है कि हमारे जो ज्यादातर श्रोता हैं रेडियो खीरी के सुनने वाले श्रोता, वो ज्यादातर ग्रामीण समुदाय से हैं और जब हमारी टीम विजिट करने जाती है तो आमतौर पे माता पिता का एक सवाल होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के करी है का है। हम क्यों पढ़ाएं उन्हें? आपको पता है बहुत ज्यादातर बच्चे यहाँ पे एनरोल हैं सरकारी स्कूल में, वहाँ की पढ़ाई की वजह से कि क्या वजह है वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, और जो भेजना भी चाहते हैं तो वो उनका यही प्रश्न रहता है कि आधे समय में बच्चा वापस आ जाता है। उनको पढ़ाई की ऐसे माता पिता के लिए एक ऐसा संदेश कुछ दीजिए कि उनके अंदर भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने की एक ललक हो, पढ़ाई के प्रति भी वहाँ के जो माहौल है एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके घर का माहौल नहीं बन पाता है, आखिर क्या वजह है?
0: भावना जी, क्योंकि आपको पता है आज भी हम जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर हम पढ़ाई को सीधे सीधे नौकरी से ही जोड़ते हैं
6: जी,
1: बिल्कुल
0: कहीं ना कहीं हम,
1: और वो भी सरकारी नौकरी से,
0: कहीं ना कहीं हम बहुत असफल हैं ये बताने में कि अगर आपका बच्चा आज पढ़ लेता है तो वो अपने लिए एक बदलाव ला सकता है। जिस माहौल में आप रह रहे हैं वो आगे चल के अपने बच्चों के उस माहौल को बदल सकता है। जैसे हमेशा एक बात होती है कि ये महिलाओं के लिए भी कहा जाता है, इतना पढ़ लिख करके घर संभाल रही हो, लेकिन एक पढ़ी लिखी महिला जिस तरह से अपने घर को संभाल रही होगी
1: या संभाल सकती है,
0: या जैसे संभाल सकती है, और एक ऐसी महिला जिसको नहीं पता है कि क्या करना चाहिए अच्छा सेहतमंद खाने के लिए, किस तरह से क्या बनाना चाहिए, घर का माहौल कैसे रखना चाहिए, उसमें और जो पढ़ी लिखी है जिसको जानकारी है इन सारी चीजों के बारे में, बहुत ज्यादा अंतर होगा। तो बस सबसे पहले तो माता पिता को ये समझना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा पढ़ लिख लेगा तो वो अपने लिए एक ऐसा जीवन खोज सकता है या ऐसे एक जीवन को तैयार कर सकता है जिसमें उन्हें प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि वो खाएगा क्या।
6: बिल्कुल
1: ठीक है। बहुत सारी चर्चा हुई है मुझे लगता है कि लेकिन एक बहुत अगर रैपिड राउंड में मैं जाऊं तो मैं कुछ कुछ चीजें आपसे पूछना चाहूंगा कि बच्चों को डांटना चाहिए?
0: डांटना चाहिए लेकिन अपने शब्दों पे काबू रखना चाहिए।
1: ठीक है, बच्चों को पढ़ाई में हम कैसे लगाएं और क्या ऐसा कह दें कि वो तुरंत जुट जाएं?
0: सबसे पहले पढ़ाई बहुत जरूरी है, ये एक जो फोकस है वो आपको बच्चों को हमेशा बता करके रखना चाहिए। एक एनवायरमेंट, एक डिसिप्लिन, एक रूटीन बच्चों को आपको सेट करके देना ही पड़ेगा।
1: बच्चों को मोबाइल से कितना जल्दी दूर करें?
0: बहुत जल्दी।
6: कितने घंटे देखें मोबाइल?
0: अमूमन पूरे दिन भर में शायद 1 से 2 घंटा सफिशिएंट है, छोटे बच्चों की बात में।
6: माँ बाप कितने घंटे देखें?
0: ये उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो मोबाइल फोन के अलावा अपने आप को और दूसरे किन चीजों में इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये तो देखिए एक ब्लेम गेम हो गया फिर।
1: Correct.
0: आपने देखा, मैंने देखा, मैंने नहीं देखा, आपने देखा, और इस लड़ाई में हम कहीं भी कभी भी कहीं पहुंच नहीं पाएंगे।
1: करेक्ट। टीचर्स को क्या ऐसे में करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के लिए?
0: टीचर्स को अवेलेबल रहना चाहिए, उन्हें बच्चों के ऊपर ये विश्वास जताना चाहिए कि जो भी आपने किया है सब कुछ बहुत अच्छा होगा और ये सिर्फ एक एग्जाम है। और पेरेंट्स के साथ साथ जो रिलेटिव्स हैं मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब बच्चा एग्जाम देके आ जाए तो प्लीज मत पूछिए एग्जाम कैसा गया, दे आया अच्छा ही गया,
1: जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है। बहुत सारी पीटीएम्स होती हैं जिसमें पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि किस पॉइंट को सबसे ज्यादा पीटीएम में डिस्कस होना चाहिए इन बिटवीन पेरेंट एंड टीचर?
0: बच्चे का बिहेवियर कैसा है क्लास में, मेरा बच्चा इन्वॉल्व रहता है कि नहीं रहता है, क्या कुछ ऐसा है जो आपको बच्चे के बिहेवियर में एज अ टीचर लगता है कि घर के माहौल में कुछ ऐसे चेंजेस करने चाहिए?
1: योगा करना चाहिए?
0: बिल्कुल करना चाहिए।
1: बच्चों के लिए कितना फिट है करना योगा?
0: बच्चों के लिए 110% फिट है। डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, इनफैक्ट क्लास में भी जब बच्चे पहुंचे या जब दिन की शुरुआत हो तो एक अच्छी ब्रीदिंग टेक्निक से अगर आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं है।
1: क्या एग्जामिनेशन के टाइम पर उनको खेलने का मौका देना चाहिए?
0: बिल्कुल देना चाहिए।
1: कितने? टाइम का?
0: ये डिपेंड करता है कि बच्चा कितना प्रिपेयर्ड है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि 35 to 40 मिनट्स के बाद आप, अगर आपका बच्चा खुद कमरे से बाहर नहीं निकल रहा तो आप वहां जाकर के कोई एक जोक सुना के चले आइए, कुछ एक ऐसा एनवायरमेंट वो कर लीजिए, बच्चे का हाथ पकड़ करके टेबल चेयर से उठाइए और बोलिए आओ एक राउंड लगा करके आते हैं।
1: ठीक है, तो बहुत सारी चर्चा हमने की है और निश्चित रूप से ये चर्चाएं हमें लगता है कि हमारे लिसनर्स के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली हैं।

0: बहुत ज्यादा आशीष, बहुत ज्यादा, और खासकर स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी। और मेरी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट दोबारा है पेरेंट्स के लिए, जिन्होंने भी ये सुना हो, जहां से भी वो सुन रहे हैं, जब वापस आप घर जाइए तो एक बार बहुत जोर से अपने बच्चे को गले लगाइए और बोलिएगा कि मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ तो बेटा कर ही लोगे। ये बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा क्या करना चाह रहा है, अगर आप उस चीज पे आत्मविश्वास नहीं दिखाएंगे, और अगर आपका बच्चा थोड़ा सा जिद्दी है तो वो उस चीज को करेगा ही करेगा।
1: Exactly.
0: बस आपसे डिस्कनेक्ट होके करेगा, और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि सिर्फ परेशानियां के अलावा कुछ और हाथ नहीं आता
2: जी।
0: है तो बेहतर है, एक परिवार है तो हाथ पकड़ करके आगे सब लोग जब बढ़ेंगे तो सबको वो खुशी मिलेगी और सब उस चीज को, उस सक्सेस को एंजॉय कर पाएंगे।
2: बिल्कुल, श्रोताओं पूरा आसमान आपका है।
1: बिल्कुल, एक लास्ट सवाल, रेडियो खीरी में आप आए, कैसा लगा?
0: बहुत अच्छा और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं चाहूंगी कि आगे और इस तरह के सेशंस होते रहें ताकि लोगों को सुनने का भी मौका मिले और ग्रेजुअली वो समझ भी पाएंगे कि ये सेशंस हम क्यों कर रहे हैं और एक्चुअली इसके पीछे का रीजन क्या है।
3: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
4: टायर लो सोना जीतो।
5: क्या?
4: जी हाँ,
6: चावला टायर
4: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
6: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
7: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
8: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
7: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
8: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
7: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
8: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: हाय हेलो जी, कैसे हैं आप हमारे लिसनर्स। मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और उम्मीद करती हूं कि आप भी अच्छे होंगे। जानती हूं दोस्तों, थोड़ा थक गए होंगे, अपने घर पहुंचने वाले होंगे या फिर पहुंच गए होंगे। दोस्तों फिलहाल ये शाम बड़ी ही अच्छी लगती है, जहां हम अपनी भागती दौड़ती जिंदगी से दूर अपने कमरे में आ जाते हैं। हमारा कमरा ही तो होता है जो हमारा इंतजार करता है, जहाँ हम खुद से मिलते हैं और खुद से बातें करते हैं। सच में दोस्तों, मुझे तो शाम का इंतजार रहता है और मुझे लगता है मेरी तरह आपको भी शाम का इंतजार रहता होगा। फिलहाल दोस्तों, आप और हम खुद से बातें करेंगे और आज खुद की बातें करेंगे। दोस्तों, इस भागती दौड़ती जिंदगी को लेकर मुझे एक शायरी याद आ रही है, वो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। दिन भर की शाम अब ढलने लगी है, शाम होते ही एक नई उम्मीद जगने लगी है। वो शहर का मिजाज और रास्ते का शोर, हाथों में चाय और यादों का सिलसिला, लगता है खामोशी भी अब बातें करने लगी है। दोस्तों जिंदगी के सफर में आप अकेले नहीं है, मैं हूँ आपके साथ हमेशा, आपकी दोस्त प्राची।
1: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
2: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
1: अरे वाह।
2: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
1: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।

0: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ हैं अखिल। और दोस्तों, आप इस वक्त कहाँ है ट्रैफिक में, आप हमें बता सकते हैं, आप हमसे बातें कर सकते हैं हमारे मैजिकल नंबर 9837896896 पर। और दोस्तों, आप कहीं मत जाइए क्योंकि 2 घंटे तक हम रहने वाले हैं आपके साथ। और दोस्तों, आज हम करेंगे ढेर सारी बातें। हम बातें करेंगे दोस्तों आज ऑफिस के प्रेशर, घर की जिम्मेदारी, सोशल मीडिया की तुलना और भी बहुत सारी बातें।
1: तो जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। हमें रहेगा आपके मैसेज का इंतजार। अगर कहीं भी आप फंसे हुए हैं तो हमें अपडेट करें, हमें बताएं कि कहां ज्यादा है जाम और कहां है सरल सा रास्ता। और मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: इम्पैक्ट भी डाल रही हैं, पर दोस्तों हमें अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है।
1: और बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तनाव बुरा नहीं है मगर ज्यादा होना भी खतरनाक है। प्राची, पागबाड़ा से मनोज जी कहते हैं, थोड़ा सा ठहर जाओ, ये जिंदगी भागे जा रही है, जो खुद को भूल गया वही सबसे ज्यादा हारा है।
0: अरे वाह मनोज जी, आपने बिल्कुल सही बात हमारे साथ शेयर की। दोस्तों और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं जो हम शामिल करते रहेंगे, आप भी अपने मैसेज हमें करना ना भूलें। और दोस्तों एक बहुत छोटी सी टिप हमारे अखिल आपको बताएंगे, तो अखिल बताइए।
1: छोटी सी टिप यही है कि रोज 10 मिनट खुद के लिए भी निकालिए, बिना मोबाइल और बिना शोर के, और हमारे साथ रहिए ट्यून अप।
0: और दोस्तों अगर ज्यादा हो स्ट्रेस तो कर लीजिएगा ट्यून अप FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहो गुनगुनाते रहो।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548।

0: FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आप ये सोच रहे होंगे ना कि आर्जेरीना बीच में कैसे आ गई। अरे मैं कभी भी आ जाती हूँ आप सभी के साथ कनेक्ट होने के लिए। फिलहाल तो प्राची और अखिल जी साथ में हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं भी चली जाती हूँ। लेकिन ये बात कर रहे हैं स्ट्रेस के बारे में कि अगर आप ऑफिस का जो प्रेशर है, फिर घर पर आके आपको थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, तो मुझे लगता है कि इस चीज के लिए ना आपको टेंशन नहीं लेना है। बस हमारा रेडियो कनेक्ट करके रहना है। जो गाने तो होते लाजवाब, साथ ही साथ बातें भी अटपटे चटपटे होते रहते। सो प्राची, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप देखिए, जब भी आप सुबह से लेकर शाम तक काम करती हो, है ना, लेकिन कोई समय आपके लिए ऐसा होता है ना कि बस अब मुझे शांति चाहिए, तो कौन सा वो समय है आपके लिए?
1: मेरे पास वो टाइम है, मैं अक्सर शाम में प्रेफर करती हूँ, क्योंकि शाम में हम जब आते हैं तो जो हमारा रूम होता है वहाँ जाके जो आराम मिलता है उसकी बात नहीं है। और सच में वो रूम हमारा इंतजार करता है और बहुत सारी बातें हमसे करता है। और सच में जो नींद अपने रूम में आती है वो कहीं नहीं आती।
0: क्या बात है, जिनको नींद भी अपने रूम में ही आती है और बातें भी बड़ी मीठी मीठी करती है श्रोताओं। तो अखिल जी से जानना चाहेंगे कि शाम होते ही आपको क्या करने का मन करता है, जिससे आपको शांति मिले?
2: मेरा तो मन करता है कि मैं शाम होते ही अपनी निकालूं बाइक और निकल जाऊं सैर पे।
0: क्या बात है, मतलब पूरी रात गेड़िया शेड़िया मारने का इरादा रहता है क्या आपको?
2: बिल्कुल सही, अभी
0: मतलब नाइट आउट आपको बहुत ज्यादा पसंद है।
2: हाँ, थोड़ा सा नाइट आउट होना चाहिए लाइफ में और थोड़ी सी मस्ती भी होनी चाहिए, थोड़ा सा इधर उधर मूवी टाइम। मैं एक्चुअली क्या मूवी बफ भी हूँ, अगर मुझे लगता है कि कोई मूवी आज रात देखनी चाहिए तो हम फटाफट जाके टिकट बुक करो और निकल जाऊंगे।
0: चलिए श्रोताओ, हम भी मूवी देखने चलेंगे, लेकिन मिलते हैं आप सभी को म्यूजिकल ब्रेक के बाद। बस बने रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जी फिलहाल तो मैं इन दोनों को यहीं छोड़कर जाने वाली हूँ, वो गलती से मैं बीच में आ गई थी।
3: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
4: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
3: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ। प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: वेलकम बैक जी, मैं हूँ प्राची और मेरे साथ हैं अखिल और दोस्तों। आज हमने बात की थी मेंटल स्ट्रेस की, पर दोस्तों अब हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। तो बता दीजिए अखिल कि वो क्या है टॉपिक हमारे श्रोताओं के लिए।
1: टॉपिक तो मैं अभी बताता हूँ, मगर उससे पहले राजू जी का मैसेज पढ़ता हूँ। राजू जी कह रहे हैं कि MDA में किले के पास थोड़ा जाम लगा हुआ है। हाँ राजू जी, थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, बाकी सबको भी पता चल गया है। और हम बात करेंगे अब अपनी कार की।
0: अच्छा दोस्तों, जैसे कि हमारे दिमाग को आराम चाहिए होता है, वैसे ही हमारी कार की मेंटेनेंस भी जरूरी है। कार की हेल्थ को भी हमें टाइम टाइम पर चेक करते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा प्राची, हर 6 महीने सर्विस भी जरूरी है और इंजन ऑयल को भी समय समय पर बदला जाए और इंजन ऑयल को भी समय समय पर बदलना जरूरी है।
0: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और एक बात और मत भूलिएगा कि टायर प्रेशर भी चेक करते रहिए, क्योंकि कम हवा माइलेज कम कर देती है।
1: बिल्कुल, पता चला 2 टायरों में ज्यादा हवा है और 2 टायरों में हवा कम है, अपना है लेवल बराबर।
0: और बैटरी और ब्रेक की जांच करना भी बहुत जरूरी है।
1: अरे ब्रेक से याद आया, हमें एक म्यूजिकल ब्रेक भी ले लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल दोस्तों, तब तक के लिए ट्यून अप रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
2: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
3: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
2: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
3: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
2: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz और चल रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम खेती किसानी पर चर्चा, और मैं हूं आपके साथ आपका आशीष। दोस्तों, धरती माँ की गोद में पसीना बहाकर जो अन्न उगाता है, वही हमारे देश का असली हीरो है, हमारा किसान। हम बात करेंगे खेती से जुड़ी नई तकनीकों की, मौसम की, फसलों की देखभाल की, सरकारी योजनाओं की और उन छोटी छोटी बातों की जो खेती को आसान और फायदेमंद बना सकती है। दोस्तों, समय बदल रहा है और खेती का तरीका भी। पहले जहां सिर्फ परंपरागत खेती होती थी, तो वहीं अब किसान नई तकनीकों को अपना रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती और मिट्टी परीक्षण जैसी चीजें किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही हैं। अगर किसान भाई समय समय पर मिट्टी की जांच करवाएं, तो उन्हें ये पता चलता है कि खेत में किस पोषक तत्व की कमी है। इससे खाद का सही इस्तेमाल होता है और खर्च भी कम आता है। और जैविक खेती, आज बाजार में जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, यानी अच्छी सेहत के साथ अच्छी कमाई भी। जहां तक बात खेती में बीज और बुआई की है, तो मुनाफे की फसल खुद उग जाएगी अगर आपका बीज सही तरीके से बोया गया है। कई बार जानकारी ना होने की वजह से किसान भाई उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते जो खासकर उनके लिए बनाई गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आर्थिक और तकनीकी सहायता देना है। अगर आपने अभी तक इन योजनाओं की जानकारी नहीं ली है, तो अपने नजदीकी कृषि विभाग या जन सेवा केंद्र पर जरूर संपर्क करें। दोस्तों, जानकारी ही किसान की सबसे बड़ी ताकत है।
5: तो श्रोताओं, बात खेती किसानी की हो रही है, हम आपको तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं, तो क्यों ना वो भी बात सुन ली जाए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्यक्रम के दौरान अपने देश के अन्नदाताओं को संबोधित करते हुए कही थी। उन्होंने इन तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए ये बताया था कि कैसे इस देश का अन्नदाता इन योजनाओं से आगे बढ़ रहा है। आइए सुनते हैं।
6: अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 4 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। 4 लाख करोड़ रुपया मेरे देश के किसानों के खाते में सीधे जमा किए हैं। इसी साल किसानों की मदद के लिए 2 योजनाएं, नई योजनाएं शुरू किए पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, इससे खेती को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, हम किसानों की हर जरूरत को ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं। खराब मौसम की वजह से फसल नुकसान होने पर किसान को फसल बीमा योजना का सहारा मिल रहा है। फसल का सही दाम मिले इसके लिए खरीद की व्यवस्था सुधारी गई है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब मेरा किसान मजबूत होगा, और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद हमने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से पशुपालकों और मछली पालकों को भी जोड़ दिया था। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, ये केसीसी की सुविधा मिलने के बाद हमारे पशुपालक, हमारे मछली पालन करने वाले इन सबको खूब लाभ उठा रहा। केसीसी से इस साल किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। बायो फर्टिलाइजर पर जीएसटी कम होने से भी किसानों को बहुत फायदा हुआ है। सरकार भारत के किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है। हमने नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग शुरू की, आज लाखों किसान इससे जुड़ चुके हैं। बीते कुछ सालों में देश में 10,000 किसान उत्पाद संघ एफपीओ बने हैं। हमारी सरकार ने खाद्य तेलों, पाम ऑयल से जुड़ा मिशन भी शुरू किया है। ये मिशन भारत को खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही, यहाँ के किसानों की आय भी बढ़ाएगा।
5: तो सुना आपने देश के प्रधानमंत्री का क्या कहना है? श्रोताओं, खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर करती है, ये हम सभी जानते हैं। कभी ज्यादा बारिश, कभी सूखा, लेकिन सही तैयारी से नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बीज हमेशा प्रमाणित खरीदें। फसल में रोग दिखाई दे तो तुरंत कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें, और पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। आजकल मौसम की जानकारी मोबाइल पर भी आसानी से मिल जाती है। और तो और, तकनीक का फायदा उठाइए और खेती को मजबूत बनाइए। दोस्तों, एक किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, वो पूरे देश की उम्मीद जगाता है, वो पूरे देश की उम्मीद उगाता है। इसीलिए कहता हूँ, अब समय है हमारे श्रोताओं की बात सुनने का। अब देखिए, बहुत सारे लोग हमें अलग अलग जगहों से प्रश्न करते हैं। रामपुर से स्वरूप जी कहते हैं, पानी की कमी की वजह से खेती मुश्किल हो रही है। जबकि हापुड़ से गीता देवी कहती हैं, महिलाएं भी अब खेती में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यहाँ तक कि मुरादाबाद से किशन कहते हैं कि खेती तो बहुत अच्छी करना चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं मिलती। दोस्तों, खेती सिर्फ मेहनत नहीं, परिवार और समाज की ताकत भी है। आप हमें बता सकते हैं क्या आपके गांव में खेती की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्योंकि जब तक आप अपनी समस्या के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक उसका समाधान कैसे ढूंढेंगे? किसान चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजरे, फिर भी हर सुबह नई उम्मीद के साथ खेत में उतरता है, और यही हौसला भारत की असली ताकत है, क्योंकि वो अन्नदाता है। याद रखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती दोस्तों। धरती माँ हर पसीने की कीमत जरूर चुकाती है। जब खेत हरे भरे होते हैं, तभी तो देश खुशहाल होता है। तो दोस्तों, इसी खूबसूरत संदेश के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपके साथ आपका आरजे आशीष, और आप सुन रहे हैं खेती किसानी पर चर्चा। अपने खेतों से प्यार कीजिए, नई जानकारी अपनाइए और मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय जवान, जय किसान। मिट्टी की खुशबू मेहनत की निशानी, देश की शान है अपनी किसानी। और इसी तरह की खेती किसानी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां पाने के लिए आप सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। और जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको अपने देश की खेती किसानी की परिपाटी और हरे भरे खेतों से जुड़े हुए इस गीत के साथ। नमस्कार।

0: पूरा यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
1: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
0: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
1: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
0: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

आपके आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

आपके आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: अगर 12th के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान, तो सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
1: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।

आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है, क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं, तो अब चिंता छोड़िए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस, सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
1: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर। संपर्क करें 9548539705।